आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रोग्राम है भोर सुहानी। हर नया सवेरा एक नया मौसम लेकर आता है। बीते हुए कल की चिंताओं को पीछे छोड़िए।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 25 जुलाई 2026 सुबह के 5:53 हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

सुबह 6:10 का समय होगा प्रोग्राम अर्पण का। 6:44 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम श्री रामचरितमानस गान। सात बजकर दस मिनट का समय रहेगा प्रोग्राम गोल्ड सुप्रभात का।

8:45 का समय रहेगा म्यूजिकल दिल की। 10:30 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम दिल का मेल बॉक्स।

11:10 का समय होगा तस्वीर का। दोपहर 12:10 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम घर आंगन।

3:25 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम मन भावन। शाम 5:10 का समय रहेगा प्रोग्राम गाते गुनगुनाते का। सात बजकर 25 मिनट पर आप सुनेंगे प्रोग्राम सांझ ढले। दस बजकर 30 मिनट का समय होगा प्रोग्राम हार श्रृंगार का और 11:40 पर आप सुनेंगे गीत मेरे मन मीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और सख्त सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन परिसर में मंत्रिमंडल की बैठक में इस मसौदे को स्वीकृति दी गई। ये विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। एनटीए ने बताया कि ये उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। एनटीए ने संविदा आधार पर महाप्रबंधक के 4 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। इनमें से प्रत्येक की प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष की होगी। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी पेपर लीक और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है।

संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के अपार समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामले की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटक्कल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलो भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। टीम ने पहले मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड सुबह के 6:11:50। ये समय है भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्पण का। शनिवार की सुबह सुनीता है आपके साथ। नमस्कार, सुप्रभात।

अरस्तु ने कहा, अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी है लेकिन वो गलत काम करता है तो उससे दूर रहना चाहिए।

भगवान महावीर ने कहा, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए हमें जियो और जीने दो संदेश पर कायम रहना चाहिए।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड। सुनीता के साथ आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण। समय नोट कर लें, 6:28 और 40 सेकंड।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी FM गोल्ड पर अब समय है रामचरित मानस गान का। आइए अयोध्या कांड से ये अंश सुनते हैं।

श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड की रचना प्रारंभ करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने श्री शंकर तथा रघुवंश भूषण श्री रामचंद्र की स्तुति के पश्चात गुरु के चरण कमलों की वंदना की है। श्री राम सहित सभी दशरथ कुमार विवाह करके अयोध्या आ चुके हैं, जहां नित्य नए मंगल हो रहे हैं, आनंद के बधावे बज रहे हैं। अयोध्या नगरी का रूप कभी उस चौदहों लोक रूपी पर्वत की तरह दिखाई देता है, जिस पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं, तो कभी उस सागर की भांति जिसमें रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियों का जल उमड़ घुमड़ कर आ मिलता है। सबकी अभिलाषा है कि राजा श्री राम को युवराज पद दे दें। एक दिन दर्पण में अपनी छवि देख राजा दशरथ अपने मुकुट को सीधा कर रहे थे कि कानों के पास के केश सफेद दिखे, मानो बुढ़ापा उपदेश कर रहा हो कि ज्येष्ठ पुत्र को युवराज पद देकर उन्हें अपना जन्म और जीवन सफल कर लेना चाहिए। अतः एक दिन शुभ समय देखकर हर्षित मन से उन्होंने गुरु वशिष्ठ को अपना विचार जा सुनाया।

101.1 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड और अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस गान में अयोध्या कांड से एक अंश। और अब समय ये कह रहा है कि हम जान ले देश दुनिया का हाल और सुने समाचार संस्कृत हिंदी और अंग्रेजी में। उसके बाद एक बार फिर 7:10 पर यहीं सुनीता मिलेगी आपसे प्रोग्राम गोल्ड सुप्रभात के साथ। फिलहाल समय है समाचार का।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभङ्ग प्रकरणेषु परीक्षासु अनुचित साधन प्रयोगस्य च प्रकरणेषु च द्रुत न्यायालयानां स्थापनाय सहैव दोषेभ्यः कठोर दण्ड विधानं सुनिश्चेतुं प्रारूप विधेयकम् अनुमोदितम्। संसद भवन परिसरे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अध्यक्षतायां सम्पन्ने मन्त्रिमण्डलीयोपवेशने एतत् प्रारूप विधेयकम् अनुमोदितम्। सूत्राणाम् अनुसारेण प्रस्तावितं विधेयकम् आगामि सप्ताहे संसदि प्रस्तुतं भविष्यति। अस्मिन् मध्ये परीक्षा परिष्काराणां दिशि महत्वपूर्ण पदक्षेपेण राष्ट्रिय परीक्षाभिकरणेन 47 अधिकारिणः सेवातः निष्कासिताः। अभिकरणेन महाप्रबन्धक स्तरस्य वरिष्ठ व्यावसायिक पदानां तथा संघलोक सेवायोगस्य प्रतिभासेतु इति पटलमाध्यमेन 16 युव व्यावसायिकानां नियुक्त्यै आवेदनानि आमन्त्रितानि, विज्ञापनानि अपि प्रकाशितानि। अभिकरणेन विज्ञप्तौ उक्तं यत् एतानि सर्वाणि उपायानि प्रोफेसर के राधाकृष्णन् इत्येतस्य अध्यक्षतायां निर्मितोच्चस्तरीय विशेषज्ञ समितेः अनुशंसानुसारं क्रियमाणानि सन्ति। केन्द्रीय मन्त्रिणो जेपी नड्डा, डॉ जितेन्द्र सिंहः च नवदिल्ल्यां सीजेपी इत्येतस्य प्रतिनिधिमण्डलेन सह अमिलताम्। उपवेशनानन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयन् श्रीनड्डा अवदत् यत् परीक्षा व्यवस्था परिष्कार सम्बद्धाः प्रतिनिधिमण्डलस्य याचनाः प्रशासनेन धैर्येण गंभीरतया च श्रुताः। तेनोक्तं यत् प्रतिनिधिमण्डलेन त्रयः प्रमुखाः प्रस्तावाः प्रस्तुताः। प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभङ्गस्य निवारणाय कतिपयाः परिष्कारोपायाश्च प्रतिपादिताः। श्रीनड्डा अवदत् यत् प्रशासनं प्रतिनिधिमण्डलेन सह अद्य पुनरेकवारं विचारविमर्शं करिष्यति। नीट प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभङ्गप्रकरणमाधृत्य छात्राणां विरोधप्रदर्शनानि च अधिकृत्य पञ्चमदिवसे अपि निरन्तरं जातेन कोलाहलेन संसदः उभयोः सदनयोः लोकसभा राज्यसभयोः कार्याचरणं सोमवासरपर्यन्तं स्थगितम्। प्रशासनेन पुनः पुनः आश्वासनं प्रदत्तं यत् तत् नीट प्रकरणे सार्थकचर्चायै सज्जमस्ति। तथापि विपक्षेण केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रिणः त्यागपत्रस्य आग्रहं कुर्वन् स्वविरोधं निरन्तरं प्रदर्शितम्। आर्थिक प्रकरणानां मन्त्रिमण्डलीय समित्या कर्णाटकान्ध्रप्रदेशयोः बल्लारी गुण्टकल रेलखण्डस्य तृतीय चतुर्थ रेलमार्गयोः निर्माणाय आहत्य 64.12 लाख कोटि रूप्यकाणाम् अनुमोदनं प्रदत्तम्। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् अनया परियोजनया आन्ध्रप्रदेश कर्णाटकयोः मध्ये रेल सम्पर्कः अधिकः सुदृढः भविष्यति।
1: आज अप्रूवल हुआ है गुंतकल से बिल्लारी थर्ड एंड फोर्थ लाइन और उसके आगे फिर होसपेट से हुबली थर्ड एंड फोर्थ लाइन का ऑलरेडी डीपीआर अंडर प्रिपरेशन है। ये करने से नॉर्थ कर्नाटका का एक कंप्लीट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनता है। कर्नाटक आंध्र प्रदेश दोनों को जोड़ेगा। ये एक बड़ा मेजर ब्रिज है वेदावती रिवर पे और उसके अलावा 7 मेजर ब्रिजेस है, 52 माइनर ब्रिजेस है और 3 साल का ये प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है।
0: तेन एतदपि सूचितं यत् देशे त्रयाणां रसायनोद्योगिक संकुलानां स्थापनाय भव्य इति भारतोद्योगिक विकास योजना रसायन इत्येषा योजना मन्त्रिमण्डलेन अनुमोदिता। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः रूमानिया देशस्य बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज इत्यनेन विश्वविद्यालयेन डॉक्टर ऑनरीस कौसा इति मानद विद्या वाचस्पति उपाधिना सम्मानिता। अयं सम्मानः तस्याः लोकसेवायां शिक्षाक्षेत्रे सामाजिक समावेशे च विशिष्ट योगदानस्य भारत रोमानिया देशयोः सम्बन्ध सुदृढीकरणे च मान्यता स्वरूपः प्रदत्तः। सम्मानम् अंगीकुर्वती राष्ट्रपतिः एतत् सम्माननं भारतस्य 1.4 अर्बुदजनेभ्यः समर्पितवती इति वार्ताः। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर CJP की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि दिल्ली में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 18 स्टेशन बंद रहेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के अपार समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि सम्मान दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। भारत सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के उन मीडिया दावों को खारिज किया जिनमें भारत पर जानबूझकर बाढ़ लाने का आरोप

7:10 और 52 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड स्टूडियो की घड़ी में यही है वक्त। गोल्ड सुप्रभात की सुरीली महफिल सजी है यहीं। प्यारी सी सुबह शनिवार की और आपके रूबरू हूँ मैं सुनीता।

लिरिसिस्ट मजरूह सुल्तानपुरी, म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर का ये डुएट 1972 की फिल्म एक नजर से था, जिसके राइटर डायरेक्टर बीआर इशारा जी थे और 25 जुलाई यानी आज ही के दिन 2012 में हुआ था उनका निधन। दोपहर 1:10 पर प्रोग्राम कलाकार बेमिसाल में आज बीआर इशारा जी के बारे में ही बातें होंगी और उनके बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। बढ़ते हैं अगले सॉन्ग की ओर, इसमें भी फूलों की ही बात हो रही है। फिल्म 1979 की तराना और आवाज शैलेंद्र सिंह की है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

एवरग्रीन रेट्रो म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर। मौसम का मिजाज जान लीजिए। मैक्सिमम 33 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 24 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा आज तापमान। हल्की फुल्की बारिश कहीं कहीं होगी, बादल छाए रहेंगे, यानी जो कुछ दिनों से हम मौसम देख रहे हैं वैसा ही मौसम कुछ कुछ आज भी रहने वाला है। और आपके दिल का मौसम रहेगा सदाबहार हमारे सॉन्ग्स की तरह। यह है गोल्ड सुप्रभात, मैं हूं सुनीता और देवता फिल्म से ये बहुत ही प्यारा सा लता मंगेशकर और किशोर कुमार जी का डुएट अब आपके लिए।

अगर आप एफएम गोल्ड के रेगुलर लिसनर हैं तो आप वाकिफ ही होंगे कि हम आपके लिए खास प्रोग्राम्स लेकर आते हैं अपने इस चैनल पर। आज की बात करें तो सुबह 10:30 पर प्रोग्राम होगा दिल का मेल बॉक्स। तस्वीर प्रोग्राम में आज सुबह 11:10 पर आज कोडाईकनाल तमिलनाडु के बारे में जानकारी दी जाएगी। दोपहर 1:10 पर कलाकार बेमिसाल प्रोग्राम में राइटर डायरेक्टर बी आर इशारा जी के जीवन से जुड़ी बातें होंगी। तो जुड़े रहिए आकाशवाणी एफएम गोल्ड के साथ।

0: गोपालदास नीरज के बोल, जो कि कवि भी थे, गीतकार भी थे, और एसडी बर्मन का संगीत फिल्म थी प्रेम पुजारी। और इसी के साथ सुनीता लेगी इजाजत, क्योंकि समाचार सेवा प्रभाग के प्रोग्राम आज सवेर का वक्त हो चला है।
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।

0: सांस में अब भूल वो जलती कहानी, आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। प्रस्तुत पंक्तियों में हिंदी साहित्य में छायावाद की प्रमुख स्तंभ कवित्री महादेवी वर्मा कहती हैं कि मनुष्य को आलस्य का त्याग कर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। महादेवी कहती हैं कि इंसान को अपनी पुरानी असफलताओं और दुखों को याद करके ठंडी सांसें नहीं भरनी चाहिए। जब हृदय में दृढ़ संकल्प और कुछ करने की आग होगी, तभी आंखों में आने वाले मनुष्य के आंसू भी सार्थक हो जाएंगे। कवित्री मनुष्य के मन के भीतर जीवंतता की अलख जगाने के लिए कहती हैं कि यदि इस सफलता रूपी साधना के मार्ग पर चलते हुए तुम्हें हार का भी सामना करना पड़े, तो वो तुम्हारी हार स्वाभिमान और विजय की पताका बन जाएगी। ठीक उसी प्रकार जैसे एक पतंगा दीपक की लौ में जलकर राख तो हो जाता है, लेकिन वो राख उस अमर दीपक की निशानी बन जाती है उसके लिए। महादेवी आगे कहती हैं कि हे कर्तव्य पथ के साधक, तुम्हें संघर्षों और कांटों रूपी अंगारों की शैया पर भी अपने कोमल मन से प्रेम और शांति के फूल बिछाने हैं, अर्थात तुम्हें विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धैर्य और कोमलता बनाए रखते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो श्रोताओं, सफलता के सौंदर्य रस से सनी हुई इन स्वर्णिम पंक्तियों को हम भी अपने जीवन में उतारें और बढ़ते रहें सफलता के मार्ग पर, मनुष्यता के मार्ग पर। श्रोताओं, आज के दिन की इस खूबसूरत और सुहावनी प्रभात में आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। कार्यक्रम आज सवेरे के इस अंक में आपके साथ मैं हूं मुकेश कुमार बल, और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी सुभद्रा रामचंद्रन। सुभद्रा, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार मुकेश, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर लिसनर्स। यस फ्रेंड्स, फॉलो योर ड्रीम्स एंड बी डिटरमिन्ड, एंड रिमेंबर नथिंग कैन बीट हार्ड वर्क। So let us welcome you all to another brand new edition of Aaj Savere. Stay on and enjoy the program. And Mukesh, let us start with some news headlines.
0: जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। यह अपने पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है।
1: As part of a state visit to Romania, President Draupadi Murmu paid tribute to the tomb of the unknown soldier in Carroll Park, Bucharest today. She laid a wreath at the memorial dedicated to Romania's unidentified soldiers who made supreme sacrifice in the first

0: World War. We have more from our correspondent.
1: The solemn ceremony was marked by military honors and reflected Romania's enduring respect for its fallen heroes. The memorial stands as a symbol of nation's gratitude to soldiers whose identities remain unknown, but whose courage and sacrifice continue to inspire generations. President Murmu's tribute also underscored the shared commitment of India and Romania to honor the valor and sacrifices of their armed forces. This is Subhashree Mahapatra for Akashvani News, Bucharest, Romania.
2: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। और विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने एक आधुनिक, पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुकूल कानूनी माहौल बनाने के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता पर बल दिया है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि आयोग ने समावेशिता, आम सहमति और विविध कानूनी परंपराओं के सम्मान के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए नई वास्तविकताओं के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता लगातार दिखाई दी है। उन्होंने कहा कि लगातार सदस्यता रखने वाले 8 देशों में से एक होने के नाते भारत ने कई क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून के विकास में सक्रिय रूप से योगदान दिया है।
0: In Ladakh, Kargil War Memorial at Dras is fully prepared to host the grand celebrations of the 27th Kargil Vijay Divas, commemorating India's victory in Operation Vijay. The 2-day commemorative events will begin today with a series of programs honoring the courage and supreme sacrifice of the soldiers who laid down their lives during the 1999 Kargil War. Today's schedule includes Yudh Sansmaran at Lamochan Viewpoint, Gauravmay Sanskriti at Vishwanathan Stadium, Vijay Bhoj, and the Shaurya Sandhya Ceremony at the Kargil War Memorial, bringing together veterans, next of kin of martyrs, senior army officers and dignitaries. Tomorrow, Raksha Mantri Rajnath Singh will be the chief guest at the Shraddhanjali Samaroh. He will pay floral tributes at the cenotaph, inaugurate the virtual walk-through portal, address the gathering, interact with Beer Naris and Beer Matas, and flag off the Shaurya Vijay Yatra motorcycle rally. The program will also include a media visit to Sandotop and an operational capability demonstration by the Indian Army at Matai. The Kargil War Memorial has been tastefully decorated ahead of the occasion, reflecting the nation's gratitude to the brave soldiers whose courage and sacrifice safeguarded the country's sovereignty. We have more from our correspondent.
3: The Kargil War Memorial at Dras is wearing a festive yet solemn look as preparations for the 27th Kargil Vijay Divas celebration have been completed. The 2-day commemorative event begins today, while tomorrow, Honorable Raksha Mantri Rajnath Singh will lead the nation in paying homage to the martyrs of Operation Vijay. Thousands of visitors, veteran family members of the Bravehearts and military personnel are expected to participate in the commemorative events. The celebration stands as a tribute to the unmatched valor, courage and supreme sacrifice of the Indian Armed Force during the 1999 Kargil War. For Akashvani News, Zanaid Ali from Kargil.
2: तो सुभद्रा, ये तो बात हुई करगिल में आयोजित होने वाले कल विजय दिवस समारोह की, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों के वीर रणबांकुरों को सम्मानित किया जाएगा और उनकी याद में एक तरीके से स्मरणोत्सव का ये कार्यक्रम है। लेकिन आप जानकारी देते हैं अपने श्रोताओं को खेल से जुड़ी खबरों की। उधर ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक भी जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया। लाइटवेट वर्ग में अशोक मलिक चौथे और परमजीत कुमार सातवें स्थान पर रहे। महिला वर्ग में जसप्रीत कौर छठे और सुमन देवी सातवें स्थान पर रहीं।
0: And Indian squash player Anahat Singh created history by reaching the women's singles final of the World Junior Squash Championships after defeating Egypt's Bob Samay 3-1 in the semi-final at Ontario, Canada this morning. The 18-year-old became the first Indian player to enter the final of the prestigious junior tournament. She will now face Egypt's Rukaya Salem in the title clash this afternoon at the same venue. The match is expected to begin at 1 p.m. IST. Anahat is now just one victory away from becoming India's first ever World Junior Squash Champion and will look to cap a historic campaign with a title-winning performance. Anahat secured a place in the last four after defeating Egypt's Habiba Rizk 3-1 in the quarterfinals at Ontario, Canada on Thursday. With that victory, she became the first Indian squash player to reach the World Junior Championships semifinals in two consecutive years. She had also reached the semifinals in the 2025 edition, where she won a historic bronze medal after losing to Egypt's Nadine El Hamami. With her latest triumph, Anahat has gone one step further and continues to make history for Indian squash on the global stage.
2: और अब कार्यक्रम आज सवेरे में बात करते हैं महानगरों की खबरों का, तो इस कड़ी में सबसे पहले जानते हैं शहर चेन्नई का हाल सुभद्रा से।
0: Yes, starting with news from Chennai, the two-day Thamirar 4.0 business conclave began in Chennai yesterday. The event, which is organized by the Confederation of Tamil Agriculture, Commerce, Industry and Services, was inaugurated by Tamil Nadu Assembly Speaker J.C.D. Prabhakar. More than 100 business networking sessions, business meetings and commercial agreements are set to be facilitated. Over 500 Tamil entrepreneurs and business leaders from countries including European countries, UAE, which have entered into free trade agreement, and Southeast Asian countries are attending the conference. We have another news, Mukesh, from Chennai. A couple wanted in connection with an armed robbery case in West Bengal by a joint team of West Bengal police and the Madura Royal Police while they were hiding at their relative's house in Chennai. A team from West Bengal sought the assistance of the Madura Royal Police. After confirming that the couple were staying at a particular house, the joint team arrested the couple. The accused were produced before a magistrate court in the city and later taken to West Bengal for further interrogation. And Mukesh, you have Delhi now.
2: जी. दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। यातायात पुलिस ने ऐप आधारित परिवहन सेवाओं, राइड हेलिंग, खाद्य वितरण, लॉजिस्टिक्स तथा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों को भी निषेधाज्ञा की अवधि के दौरान प्रतिबंधित क्षेत्र में अपने परिचालन को आवश्यकतानुसार विनियमित करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया कि आपातकालीन सेवाएं, जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत सरकारी वाहन शामिल हैं, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। यातायात पुलिस ने सभी संबंधित पक्षों से निषेधाज्ञा प्रभावी रहने तक लागू प्रतिबंधों का पालन करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूर्ण सहयोग प्रदान करने की अपील की है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने कांवड़ यात्रा को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कल दिल्ली सचिवालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि कांवड़ यात्रा सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। दिल्ली सरकार ने बताया कि कांवड़ियों के स्वागत के लिए राजधानी के विभिन्न प्रमुख मार्गों और प्रवेश स्थलों पर स्वागत द्वार बनाए जाएंगे। इसके साथ ही कांवड़ समितियों को आवश्यक अनुमतियों और सुविधाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था भी की गई है। बैठक के दौरान श्रीमती गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कांवड़ समितियों के साथ समन्वय मजबूत रखा जाए और उनकी वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप हर संभव सहायता उन्हें उपलब्ध कराई जाए। और अब क्या है सुभद्रा, बेंगलुरु की खबरें आपके पास?
0: यस, बेंगलुरु न्यूज नाउ। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर D.K. Shiv Kumar called upon the industry leaders to invest in Karnataka, known for its talent pool and innovation ecosystem. He was addressing the CEOs of various industries in Bengaluru. The chief minister highlighted Karnataka's economic performance and opportunities available to set up industries. He spoke of software exports that crossed 4.36 lakh crore last year, the highest in the country. He informed that the global capability centers in the state have evolved into innovation hubs that develop products for the globe. D.K. Shivakumar announced that in the next 100 days, the government will introduce a policy to encourage operations beyond Bengaluru by offering world-class infrastructure and highly affordable costs, including office space for as little as 50 cents per square foot. The Asia's largest technology show, well known as Bengaluru Tech Summit, will be held in the state capital from November 17 to November 19th. It will bring together global leaders, entrepreneurs, investors, researchers, and policymakers to unlock new opportunities across artificial intelligence, deep tech, electronics and semiconductor, biotechnology, startups, AVGC, and other frontier technology sectors. To you now.
2: जी, महाराष्ट्र सरकार ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज मुक्ति योजना के अंतर्गत 16,96,000 पात्र किसानों की पहली सूची जारी कर दी है। इस योजना से राज्य भर में लगभग 56,00,000 किसानों को लाभ मिलने की संभावना है। सहकारिता मंत्री बाबा साहेब पाटिल ने पात्र किसानों से लाभ प्राप्त करने के लिए एग्रीस्टेक पंजीकरण और आधार प्रमाणीकरण पूरा करने की अपील की है। सत्यापन की प्रक्रिया पूरा होने के बाद ऋण माफी की राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणाली के माध्यम से सीधे पात्र लाभार्थियों के ऋण खातों में भेजी जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने पनवेल नगर निगम के लिए एक शहरी क्लस्टर संसाधन केंद्र की स्थापना को भी मंजूरी दी है। इसके साथ ही 272 स्कूल और लगभग 1,75,000 छात्र नगर निगम के शिक्षा विभाग से सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में आ जाएंगे। और महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी सहायता प्राप्त नगर निगम द्वारा संचालित और निजी गैर सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों से MBBS स्नातकों के लिए अनिवार्य एक वर्षीय सामाजिक उत्तरदायित्व सेवा बॉन्ड को समाप्त किया है। कल जारी एक बयान में कहा गया कि यह निर्णय स्नातकों की संख्या में वृद्धि और सरकारी बॉन्ड पदों पर सीमित संख्या को देखते हुए लिया गया है। जिन छात्रों ने पहले ही अपने बॉन्ड सेवा पदों पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है वे सेवा जारी रखेंगे, जबकि जिन छात्रों ने अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया या आवंटन की वे प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें इससे छूट दी जाएगी। अब हैदराबाद से जुड़ी खबरें।
0: यस मुकेश
2: जी,
0: तेलंगाना गवर्नर शिवा प्रताप शुक्ला डिस्क्राइब पेइंग टैक्सेस इज नॉट जस्ट a legal duty, but as a vital partnership in nation building. Speaking as a chief guest at the 167th income tax celebrations held in Banjara Hills, Hyderabad, the governor highlighted that honest taxpayers act as the silent architects of India's progress. He noted that tax revenues returns to citizens through infrastructure, national security and public welfare programs. Modern achievements ranging from advanced defense capabilities to space missions like Chandrayaan, Gaganyaan, are fully fueled by taxpayer contributions. Commending the Income Tax Department's digital transformation, the governor praised initiatives like faceless assessments, e-proceedings, and swift refund processing for enhancing transparency. He urged officials to uphold taxpayer trust and called on citizens to take pride in contributing toward a self-reliant India. He also emphasized that expanding the tax base and fostering voluntary compliance are essential for achieving the vision of Viksit Bharat by 2047.
2: और उधर कोलकाता में आयकर विभाग के पश्चिम बंगाल और सिक्किम सर्कल ने कल 167वां आयकर दिवस मनाया। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने कहा कि सत्ता परिवर्तन के बाद राज्य सरकार के कर संग्रह में 15% की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से सुदृढ़ सरकार के लिए कर संग्रह प्रणाली का मजबूत होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पहले कर संग्रह प्रणाली कठिन थी लेकिन अब उसे सरल बना दिया गया है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे आकाशवाणी गोल्ड पर मुकेश और सुभद्रा के साथ। कार्यक्रम में अब बात महानगरों के मौसम की। शुरुआत करते हैं दिल्ली से। इधर राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। उधर अगर बात करें मुंबई की तो आज वहां भी बादल छाए रहने और तेज बारिश का अनुमान है। न्यूनतम तापमान शहर का 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोलकाता में आज तेज हवाएं चलने और बारिश की संभावना है। शहर में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल सुभद्रा से।
0: Chennai, generally cloudy sky will be seen with light rain. The minimum temperature is expected to be around 28 degrees Celsius. Maximum will be around 36. Bengaluru will also have generally cloudy sky with moderate

0: society to one goal, unite to reduce drowning by 35% by 2035.
1: जी.
0: And of course, Mukesh, drowning can result from various causes like floods, storms, accidents like जी. Boat accidents, ship accidents, lack of supervision, unsafe water sources, so many other things.
1: जी.
0: And so the main risk factors for drowning also include age, like little children shouldn't जी. Be allowed near the pool without any proper guidance.
1: जी.
0: And gender, location, access to water, swimming ability, and lack of awareness. And it would
1: बिल्कुल.
0: Be do us also good to stay away from drinking and swimming.
1: बिल्कुल. लेकिन सुभद्रा, अगर हम इस संदर्भ में जो आपने बात करी डूबने से लोगों को बचाने के लिए जो एक दिवसीय मनाया जा रहा है, इसमें अगर हम देखें तो हिंदी साहित्य में एक दोहा है जो इसके दूसरे अर्थ को भी रेखांकित करता है. जो मैं दोहा वो अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि जिन खोजे तिन पाइए, गहरे पानी पैठ, मैं बवरी डूबन डरी, ग्रही किनारे बैठ. अर्थात कि हम सफलता तभी प्राप्त करेंगे जब हम कह सकते हैं कि हम एक निराशाओं या हार्ड वर्क के जो एक समुद्र है, जो ओशन है, उसमें हम सोचते हैं कि हम साइड में बैठे रहें किनारे पर और एक सफलता का मोती आएगा, वो हमें यूं ही मिल जाएगा. लेकिन जब तक हम उस गहरे समुद्र में डूबेंगे नहीं, उसमें डूबने की चेष्टा नहीं करेंगे, तब तक उस मोती को हाथ नहीं ला सकते.
0: दैट इज ट्रू, वेरी ट्रू.
1: इसीलिए हमें सफलता के लिए अपना प्रयास करते रहना चाहिए और ये जैसा कि आपने ये दिवस बताया इसको भी बिल्कुल अवेयर रखना चाहिए. जी. और इसी कड़ी में हम बात करते हैं तो आज श्रोताओं न्यायिक कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी है. कल्पना कीजिए कि आपको हर दिन जीवन बदलने वाले निर्णय लेने पड़ते हैं. पीड़ादायक कहानियां सुनना, साक्ष्यों का विश्लेषण करना और निष्पक्षता सुनिश्चित करना, ये सब कानून को बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाते हुए करना पड़ता है. यही न्यायाधीशों, मजिस्ट्रेटों, न्यायालय आयुक्तों और मध्यस्थों की दैनिक वास्तविकता है. लेकिन यहाँ एक सवाल है कि क्या न्याय देने वाले लोगों की देखभाल कौन करता है? एक्स्ट्रा वर्क आवर्स, अकेलापन और टफ डिसीजंस लेते समय इमोशंस का बोझ न्यायिक अधिकारियों पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है. जब उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता है तो तनाव, उन्हें दबाव, हितों के टकराव और यहां तक कि न्याय व्यवस्था में जनता के विश्वास को कमजोर करने के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकता है. इसलिए न्यायिक कल्याण महत्वपूर्ण है. और अब बात करते हैं आज के दिन के इतिहास के बारे में. तो वर्ष 1689 में फ्रांस ने इंग्लैंड के खिलाफ आज ही की तारीख को घोषणा की थी. इसके बाद 1813 में भारत में पहली बार नौका दौड़ प्रतियोगिता कलकत्ता में आयोजित की गई. इसके बाद 1837 में पॉइंट टू पॉइंट टेक्स्ट मैसेजिंग सिस्टम इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के इस्तेमाल का पहली बार सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया.
0: And 1965 at the Newport, Rhode Island Folk Festival, American singer-songwriter Bob Dylan initially replaced his acoustic guitar to go electric. The controversial performance is considered one of the most pivotal moments in the history of rock and roll. And 1978 this day, Leslie Brown gave birth to world's first test tube baby, delivered by cesarean section in Oldham, England. Dr. Patrick Steptoe and Dr. Robert Edwards developed the process to conceive a child in a laboratory and then planted inside the mother's womb.
1: और अब समय हो गया है उन विशेष महानुभावों की पुण्यतिथियों, जयंतियों और जन्मदिन के बारे में बात करने का. तो इस कड़ी में हम सबसे पहले बात करते हैं गणेश वासुदेव जोशी के बारे में. सामाजिक कार्यकर्ता गणेश वासुदेव जोशी की आज पुण्यतिथि है. गणेश वासुदेव ने मुख्तार वकील की परीक्षा पास करके पुणे में रहकर ही वकालत की. इन्होंने देशी व्यापार उत्तेजक मंडल की स्थापना कर शाही साबुन, मोमबत्ती, छाते आदि स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया. उन्होंने 1870 में पुणे सार्वजनिक सभा की भी स्थापना की.
0: And Godavarish Mishra was a famous social reformer, doyen of Odia literature, and public activist from Orissa. He has written poems, plays, novels, short stories, biography, etc. And notable works include dramas Purushottama Deba and Mukunda Deba. His poems played a crucial role in creating awareness towards the nation. A follower of Mahatma Gandhi, Mishra participated in the non-cooperation movement in 1921. His autobiography was awarded by the Bharatiya Sahitya Academy after he passed away this day in 1956.
1: जी, अगर हम उनकी गोदावरीश मिश्र की आप बात करें, उनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो कुसुम, कलिका, किसलय, आलेखिका, कवितायन, चयनिका, गीतायन, गीति गुच्छ, इनमें जाना जाने कितने ही नाम शामिल हैं जो उनकी रचनाओं में शुमार हैं.
0: एंड फ्रेंड्स, 1908, रिमेम्बरिंग अ कर्नाटिक म्यूजिक लेजेंड सेमन गुडी श्रीनिवास अय्यर,

मुंबई आने पर इशारा ने जहां पहली नौकरी की, उस निर्माता ने उन्हें बाबू नाम दिया। वो उन्हें अपने गुरु के नाम रोशन लाल से नहीं पुकारना चाहते थे, तो बाबू ने पहले अपने नाम में राम जोड़ा। फिर लेखक बने तो अपना तखल्लुस इशारा रख लिया, तो उनका पूरा नाम इस तरह से हुआ बाबूराम इशारा। आइए सुनते हैं 1970 में आई उनकी फिल्म दस्तक से ये एक और खूबसूरत सा नगमा। मजरूह सुल्तानपुरी की कलम से निकले इस गाने को भी अपनी मीठी आवाज से सजाया है लता दीदी ने।

अपनी फिल्मों में नए लोगों को ब्रेक देने वाले बीआर इशारा ने अमिताभ बच्चन की फिल्म एक नजर का निर्देशन भी किया था। तो लीजिए इसी फिल्म से ये एक और गाना।

0: as a trumpeter, drummer, composer, arranger, recording artist.
1: और श्रोताओं, जयंतियों में आज सबसे पहला नाम है भारतीय समाज शास्त्री और साहित्यकार श्यामचरण दुबे का। वर्ष 1993 में उन्हें उनकी कृति परंपरा और इतिहास बोध के लिए भारतीय ज्ञानपीठ ने मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया। और अब घड़ी की सुइयां जो हैं इशारा कर रही हैं कि श्रोताओं से अपने विदा ली जाए।
0: Stay tuned for coming up now with Samachar Prabhat, a Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15. Thanks for tuning in, friends. Have a great day. Namaskar.

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
3: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। कहा, आपसी संबंध और अधिक घनिष्ठता के साथ आगे बढ़ेंगे। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक जहाज एमवी ओमर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में एक भारतीय नाविक की मौत। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार वेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
5: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
6: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
4: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली

0: सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। उन्होंने बताया कि सीजेपी ने 3 प्रमुख मांगे रखी हैं और पेपर लीक रोकने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं।
1: बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 शामिल हुई।
0: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है।
2: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अलग अलग प्राधिकारियों की ओर से आयोजित होने वाली पब्लिक परीक्षाओं से जुड़े अपराधों की जांच तेजी से और पेशेवर तरीके से विशेष कार्यबल द्वारा की जाएगी। इनमें संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के साथ साथ केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग और स्टाफ के भर्ती के लिए उनसे जुड़े हुए और अधीनस्थ कार्यालय शामिल है। जांच के अलावा विशेष कार्यबल मुकदमा चलाने वाली एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल भी बनाए रखेगी ताकि तेजी से मुकदमा चलाया जा सके और ये पक्का किया जा सके कि ऐसे मामलों में सुनवाई रोजाना हो। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर के वरिष्ठ पेशेवर पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 18 स्टेशन बंद हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता तथा भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी परिवर्तन के इस युग में विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है कि वे ये सुनिश्चित करें कि ज्ञान का मार्गदर्शन विवेक, नैतिकता और करुणा द्वारा किया जाए।
2: टुडे एज द वर्ल्ड इज बीइंग रिशेप्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड अदर रैपिड साइंटिफिक एडवांसेस, यूनिवर्सिटीज लाइक दिस हैज गिवन ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट नॉलेज इज गाइडेड बाय विजडम, ethics and compassion. India's national education policy reflects this vision by promoting innovation, research, creativity and international academic collaboration.
1: भारत सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता।

0: नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के उन मीडिया दावों को खारिज किया जिनमें भारत पर जानबूझकर बाढ़ लाने का आरोप लगाया गया था।
1: रिसेंट इंक्रीज इन फ्लोज
2: चेनाब नदी में जल प्रवाह में हालिया वृद्धि 20 से 23 जुलाई के दौरान जम्मू और आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का परिणाम है। नदी के जल प्रवाह में वृद्धि एक प्राकृतिक जल वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है और ये भारत द्वारा जानबूझकर किए गए किसी भी प्रयास का परिणाम नहीं है।
1: नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी डेलिबरेट एक्शन बाय इंडिया।
0: भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोफ्री पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 18 जुलाई को काला सागर से गुजरते समय पोत पर हमला हुआ। हमले में एक भारतीय नाविक की मृत्यु हो गई। पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे। अन्य 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आज पुष्टि की कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जल क्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 28 सदस्य सुरक्षित हैं। दूतावास ने आधिकारिक बयान में एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। लद्दाख के द्रास में स्थित करगिल युद्ध स्मारक ऑपरेशन विजय में भारत की जीत की स्मृति में मनाए जाने वाले 27वें करगिल विजय दिवस के भव्य समारोहों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: द्रास का कारगिल वॉर मेमोरियल 27वें कारगिल विजय दिवस समारोह के लिए पूरी तरह से तैयार है। शहीदों की याद में बनाए गए इस स्मारक को विशेष रूप से सजाया गया है। 2 दिवसीय समारोह का आगाज आज युद्ध संस्मरण गौरव में संस्कृति और शौर्य संध्या जैसे कार्यक्रमों के साथ हो रहा है। कल 26 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होंगे। द्रास कारगिल से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं इनायत अली।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंध्र कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत के स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। सेमीफाइनल में अनाहत ने मिस्र के बाब सामे को 3-1 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद कनक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त किए जाने की खबर आज के अखबारों की पहली सुर्खी है। हिंदुस्तान ने इसे नीट को लेकर सरकार की बड़ी कार्रवाई बताया है। अमर उजाला लिखता है आक्रोश का असर, एनटीए से 47 अफसर बर्खास्त। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है पेपर लीक पर होगा 10 करोड़ रूपये जुर्माना, 10 साल की सजा। संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी, कड़ी सजा का प्रस्ताव। दैनिक जागरण कहता है कानून बदला, कार्रवाई हुई, फिर भी सीजेपी टस से मस नहीं। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अटकी बात। दैनिक भास्कर ने लिखा है कानून में संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी, एनटीए में बदलाव की तैयारी। राजस्थान पत्रिका ने इसे बवाल थामने का प्रयास बताया है। नवभारत टाइम्स ने एनटी पेपर लीक बिल में संशोधन पर अपने संपादकीय में लिखा है सरकार तेजी से निर्णय लेकर छात्रों को यकीन दिलाने का प्रयास कर रही है कि उनकी आवाज अनसुनी नहीं रह गई है। पत्र लिखता है केंद्र द्वारा नीट में किए जा रहे सुधारों की सर्वोच्च न्यायालय लगातार निगरानी करेगा। छात्र अब मूलभूत बदलाव चाहते हैं और शीर्ष अदालत की निगरानी से इसमें मदद मिलेगी। सोशल मीडिया प्रसारण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जनसत्ता में सबसे ऊपर है। अनुमति के बिना कार्यवाही को पोस्ट करने पर रोक। लोकसत्य लिखता है सोशल मीडिया पर नहीं डाल पाएंगे कोर्ट की वीडियो। कक्षा 6 से 8 में कौशल शिक्षा अनिवार्य करने के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देश को भी

0: Before we end the bulletin, the headlines once again. Government approves anti-paper leaks draft bill for stricter punishment. Legislation likely to be introduced in Parliament next week. Prime Minister Narendra Modi thanks youngsters for the suggestions to his video on proposed reforms against paper leaks issue. Says relations will continue with more bonding. Government and CJP to hold third round of talks today. President Draupadi Murmu conferred Dr. Honoris Causa in Romania for a distinguished public service. New Delhi strongly condemns attack on commercial vessel in the Black Sea, claiming life of an Indian seafarer. Heavy rainfall expected in parts of Gujarat, Konkan, Goa and Odisha. And in the Commonwealth Games, Jhandu Kumar clinches bronze medal for India in the men's heavyweight para powerlifting. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। हुकूमत ने पेपर लीक वाकयात की रोकथाम के लिए ज्यादा सख्त सजा से मुतालिक बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि यह बिल पार्लियामेंट में अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नौजवानों का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने पेपर लीक वाकयात की रोकथाम के लिए मुजवजा इस्लाहात से मुतालिक उनके वीडियो पर तजावीज पेश की हैं। उन्होंने कहा कि ये ताल्लुकात मजीद मजबूती के साथ ताल्लुकात जारी रहेंगे। हुकूमत और CJP आज तीसरी बार बातचीत करेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को उनकी इम्तियाजी अवामी खिदमात पर रोमानिया ने डॉक्टर ऑनरिस कोजा के खिताब से नवाजा है। भारत ने बहरे असवद में कमर्शियल जहाज पर किए गए हमले की सख्त मजम्मत की है, जिसमें एक भारतीय मल्लाह की मौत हो गई थी। गुजरात, कोंकण, गोवा और उड़ीसा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। और दौलत मुश्तरक खेलों में झंडू कुमार ने मर्दों के हैवी वेट पैरा पावर लिफ्टिंग मुकाबले में भारत की तरफ से कांसे का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने तेजी से काम करने वाली अदालतें कायम करने और पेपर लीक से निमटने और इम्तिहान में गलत तौर तरीके अपनाने पर सख्त सजा को यकीनी बनाने से मुतालिक बिल के एक मसौदे को मंजूरी दे दी है। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में बिल के इस मसौदे को मंजूर किया गया। जराए ने हमारे नामनिगार को बताया कि उम्मीद है कि यह मुजवजा बिल पार्लियामेंट में अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। इसी दौरान इम्तिहान के निजाम में इस्लाहात करने की एक बड़ी कोशिश के तौर पर इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली एजेंसी NTA ने 47 अफसरान को बर्खास्त कर दिया। जराए के मुताबिक इनमें से कुछ एहलकारों के खिलाफ कानूनी और फौजदारी कार्रवाई भी की जाएगी। ये इकदामात NTA में मुकम्मल तौर पर तब्दीली लाने का एक हिस्सा है। इम्तिहानात मुनाकिद कराने से मुतालिक कौमी एजेंसी NTA ने जनरल मैनेजर की सतह पर सीनियर पेशावर अफराद के तकरूर के लिए इश्तिहारात जारी किए हैं। उसने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पोर्टल प्रतिभू सेतु के जरिए 16 नौजवान पेशावर अफराद की खिदमात हासिल करने के लिए भी दरखास्त तलब की है। NTA ने एक बयान में कहा है कि इन इकदाम से एजेंसी की इदारा जाती तश्कील 9 के पहले इकदाम की अक्कासी होती है। NTA ने कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर 4 जनरल मैनेजर के ओहदों को नोटिफाई किया है, जिनमें से हर एक की इब्तदाई मुद्दत 3 साल मुकर्रर की गई है। उसने बताया कि नौजवान पेशावर अफराद की पहली मर्तबा खिदमात हासिल की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक के वाकयात और इम्तिहान से मुतालिक दीगर जराइम की तहकीकात के लिए एक खसूसी टास्क फोर्स STF तश्कील दी है। ये टास्क फोर्स सरकारी इम्तिहानात में नाजायज तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक 2024 के कानून के तहत तश्कील दी गई है। तफसील हमारे नामनिगार से।
2: दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा है कि यह टास्क फोर्स मुख्तलिफ अथॉरिटीज के जरिए मुनक़िद कराए जाने वाले सरकारी इम्तिहानात से मुतालिक जराइम की फौरी पेशावराना और जामे तहकीकात कराएगी। इन इम्तिहानात में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे भर्ती बोर्ड्स, बैंकिंग अमले के इंतखाब का इदारा, इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी और मरकजी हुकूमत की वजारतें व महकमे नीज अमले की भर्ती के लिए इनसे मुंसलिक और ज़ेरी दफातर शामिल हैं। تحقیقات کے علاوہ یہ خصوصی ٹاسک فورس مقدمہ چلانے والی ایجنسیوں کے ساتھ مؤثر تالمیل رکھے گی تاکہ اس طرح کے مقدمات میں تیزی لانے کے لیے روزانہ سماعت کو یقینی بنایا جا سکے۔ شیوانگ مشرا کی

0: कोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
1: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक के वाकयात और इम्तिहान से मुतालिक दीगर जराइम की तहकीकात के लिए एक खसूसी टास्क फोर्स एसटीएफ तश्कील दी है। ये टास्क फोर्स सरकारी इम्तिहानात में नाजायज तरीकों की रोकथाम से मुतालिक 2024 के कानून के तहत तश्कील दी गई है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि यह टास्क फोर्स मुख्तलिफ अथॉरिटीज के जरिए मुनक़िद कराए जाने वाले सरकारी इम्तिहानात से मुतालिक जराइम की फौरी पेशावराना और जामे तहकीकात कराएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो से मुतालिक मौसूला मुस्बत रद्दअमल और तजावीज़ पर हरेक का शुक्रिया अदा किया है, जिसमें उन्होंने पेपर लीक मामले में मुलव्वस अफराद को सजा देने का एक सख्त कानून तश्कील देने की हुकूमत के फैसले का ऐलान किया था। एक वीडियो पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि पेपर लीक मामलात की रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई से मुतालिक शिकों को शामिल करते हुए एक नया बिल अगले हफ्ते पार्लियामेंट के इस इजलास में पेश किया जाएगा। बिल के इस मुसवदे को कल मरकजी काबीना ने मंजूरी दी। इस मुसवदे का ऐलान वजीर आजम ने अपने एक इंस्टाग्राम वीडियो में किया था। जनाब मोदी ने एक ताज़ा वीडियो पैगाम में, जो उनके इंस्टाग्राम हैंडल से कल जारी किया गया है, कहा कि ये ताल्लुकात मजीद मजबूती के साथ जारी रहेंगे।
2: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
1: हुकूमत इम्तिहान के निजाम में इस्लाहात और पेपर लीक की रोकथाम के इकदाम के सीजेपी के मुतालबात पर आज इसके वफद के साथ एक बार फिर बातचीत करेगी। इससे पहले मरकजी वज़रा जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीजेपी वफद से मुलाकात की थी। मीटिंग के बाद नामानिगारों से बात करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि मीटिंग के दौरान उन्होंने इम्तिहान के निजाम में इस्लाहात के बारे में सीजेपी के मुतालबात को पूरे सब्र व तहम्मुल के साथ सुना। जनाब नड्डा ने कहा कि सीजेपी ने तीन असल मुतालबात सामने रखे और इम्तिहान पेपर लीक पर काबू पाने के लिए इस्लाहात की कुछ तजावीज पेश की।
3: वातावरण में हुई और कई दृष्टि से सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः तीन डिमांड थी और पांच शामिल हुई।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को उनकी मुमताज अवामी खिदमत, तालीम और समाजी शमूलियत के लिए उनकी अहदबस्तगी और भारत रोमानिया ताल्लुकात को मजबूत बनाने में उनके ताउन के एतराफ में रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज की जानिब से डॉक्टर ऑनरिस कोजा के एजाजी खिताब से नवाजा गया है। इस एजाज को कबूल करते हुए सदर जमहूरिया ने यह अवार्ड भारत के 140 करोड़ लोगों के नाम वक्फ किया और कहा कि यह दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान देरीना दोस्ती की अक्कासी है। भारत और रोमानिया के दरमियान गहरे सकाफती और तहजीबी ताल्लुकात पर रोशनी डालते हुए सदर जमहूरिया मुर्मू ने एक सदी कबल रविन्द्रनाथ टैगोर के दौरे बुखारेस्ट को याद किया। उन्होंने मुश्तरका तहकीकी फैकल्टी और तलबा के तबादलों के जरिए मजीद तालीमी तआवुन की हौसला अफजाई की और ऐलान किया कि भारत ने रोमानिया के लिए ITEC ट्रेनिंग स्लॉट्स को दोगुना कर दिया है।
4: For decades, Romanian universities have welcomed Indian students, particularly in medicine, engineering and technology. I would encourage Romanian educational institutions to deepen cooperation through joint research and faculty and student exchanges. I hope that my visit will lead to new academic partnerships and encourage more students and researchers from Romania to engage with India.
1: मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
5: बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज में माहौल गर्मजोशी, वकार और मसरत से भरपूर था, क्योंकि वहां सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को यूनिवर्सिटी का अहम एजाजी डॉक्टरेट का खिताब पेश किया गया। अजीमुशान ऑडिटोरियम में एकेडमिक रोप में मलबूस फैकल्टी मेम्बरान, तलबा, सफारतकारों और मुमताज मेहमानों से भरा हुआ था, जिन्होंने खड़े होकर सदर जमहूरिया का पुरजोश इस्तकबाल किया। ये तकरीब सिर्फ एक तालीमी तकरीब नहीं थी, बल्कि भारत और रोमानिया के दरमियान बढ़ती हुई दोस्ती का जश्न भी थी, जिसमें बामी एहतराम और उम्मीद का जज्बा पूरा हॉल महसूस कर रहा था। रोमानिया से सुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत ने बहरे अस्वद में कमर्शियल MV ओमोर्फी जहाज पर हमले की सख्त मजम्मत की है, जिसमें एक भारतीय शहरी की मौत हो गई थी। भारत ने तिजारती जहाजों पर किए जाने वाले हमलों को नाकाबिले कबूल करार दिया और सभी मुतालिका फरीकों से कहा है कि वो समंदर में आबदोरफ्त और बैन अलाक्वामी तिजारत की हिफाजत को यकीनी बनाएं। वजारत खारजा के तर्जुमान इस जहाज पर 18 जुलाई को हमला किया था। वजारत खारजा के मुताबिक इस जहाज पर 18 जुलाई को हमला किया गया था जब यह जहाज बहरे अस्वद से गुजर रहा था। इस जहाज में अमले के 10 अफराद सवार थे जिनमें 3 भारतीय शहरी भी थे। वजारत खारजा ने बताया कि इस हमले में 1 भारतीय मल्लाह की जान चली गई और 2 भारतीय बाशिंदे जहाज में महफूज हैं। वजारत ने एक बयान में मुतासरा कुनबों से ताजियत का इजहार किया है और कहा है कि भारत तजारती जहाजों को निशाना बनाकर किए गए इस तरह के हमलों और अमले के बेकसूर अरकान की जिंदगियों को जोखम में डालने की वाजह तौर पर सख्त मजम्मत करता है। ईरान की हदूद में मोजम्बिक के परचम बरदार LPG टैंकर दिशा पर हुए हमले के बाद इसमें सवार अमले के तमाम 28 भारतीय महफूज हैं। तेहरान में भारतीय सिफारतखाने ने इसकी तस्दीक की है और LPG टैंकर दिशा के साथ पेश आने वाले वाकये की बात तस्लीम की है। एक सरकारी बयान में सिफारतखाने ने कहा है कि वो अमले की खैर वाफियत को यकीनी बनाने के लिए मकामी अफसरान के साथ राब्ते में है। हुकूमत ने कहा है कि वादी सिंध का समझौता उस वक्त तक इल्तिवा में रहेगा जब तक पाकिस्तान सरहद पार की जाने वाली दहशतगर्दी की हिमायत से बाज नहीं आ जाता। नई दिल्ली में नामनिगारों से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तानी मीडिया की इन खबरों को मुस्तरद कर दिया कि भारत पड़ोसी मुल्क में जानबूझकर सैलाब की सूरत हाल पैदा कर रहा है। कल वजीर दिफा राजनाथ सिंह श्रद्धांजलि समारोह में बहैसियत मेहमान खसूसी शिरकत करेंगे। तफसील हमारे नामनिगार से।
5: द्रास में वाकई कारगिल वार मेमोरियल 27वीं कारगिल विजय दिवस की तकरीबात की तैयारियों की तकमील के बाद पुरवकार और पुरजोश मंजर पेश कर रहा है। 2 रोजा यादगारी तकरीबात का आगाज आज से हो रहा है जबकि कल वजीर दिफा राजनाथ सिंह ऑपरेशन विजय के शोधा को खिराज अकीदत पेश करने में कौम की क्यादत करेंगे। हजारों विजिटर साबिक फौजियों शोधा के अहलखाना और फौजी एहलकारों की इन यादगारी तकरीबात में शिरकत की तवक्को है। ये तकरीबात 1999 की कारगिल जंग के दौरान भारतीय मुसल्ला फौज की गैर मामूली शुजात हिम्मत और अजीम कुर्बानी को एक अजीम शान खिराज अकीदत है। कारगिल से इनायत अली रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: ग्लासगो में 2026 के दौलत मुश्तरक खेलों में भारत ने मेडल जीतने का आगाज कर दिया है। झंडू कुमार ने मर्दों के हैवी वेट पैरा पावर लिफ्टिंग में कांसे का तमगा हासिल किया। उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए दूसरी कोशिश में 190 किलोग्राम वजन उठाया। इस तरह उन्होंने 130.9 पॉइंट्स के साथ कांसे का तमगा हासिल किया। मर्दों के क्रिकेट में आज हरारे में भारत 3 मैच की T20 सीरीज के दूसरे मैच में मेजबान जिम्बाब्वे से मुकाबला करेगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम को सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल है। उसने जुमेरात को पहले मैच में 7 विकेट से जीत हासिल की थी। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने आज सुबह कनाडा के ओंटारियो में मिस्र की बार्ब समय को सेमीफाइनल में 3-1 से हराकर आलमी जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के खवातीन सिंगल्स के फाइनल में पहुंचकर तारीख रकम की है। भारत की 18 साला अनाहत इस अहम जूनियर मुकाबले के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मुत्तला किया है कि कौमी राजधानी में सिक्योरिटी के सबब 18 स्टेशनों को सुबह 7:30 बजे से दूसरी हिदायत जारी होने तक कल बंद कर दिया गया है। इनमें राजीव चौक, पटेल चौक, नई दिल्ली सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ITO, मंडी हाउस, सुप्रीम कोर्ट और दीगर स्टेशन शामिल हैं। अलबत्ता DMRC ने वाजे किया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर ट्रेन तब्दीली की सहूलियत बरकरार रहेंगी। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
0: शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने पेपर लीक मामले में कसूरवार को सख्त सजा दिए जाने वाले तरमीम बिल के मसौदे को काबीना की तरफ से मंजूरी मिलने की खबर को सुर्खी बनाया है जिसमें कसूरवारों को 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए जुर्माने का इल्तिजाम रखा गया है। रोजामा प्रताप ने पेपर लीक मामले में एनटीए के 47 अफसरों को बर्खास्त किए जाने की खबर को जली सुर्खी के साथ शाया किया है। रिपोर्ट के मुताबिक एनटीए इंतजामिया में गड़बड़ियों की शिकायतों के बाद यह बड़ा कदम उठाया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल रात एक वीडियो पैगाम में नौजवानों और आम लोगों को यकीन दिलाया कि हुकूमत पेपर लीक के मामले में सख्त कार्रवाई कर रही है। इस खबर को रोजनामा इंकलाब ने पहले सफे पर जगह दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बुखारेस्ट में भारत रोमानिया बिजनेस फोरम से खिताब के दौरान रोमानियाई कंपनियों से भारत की तरक्की के सफर में शामिल होने की अपील की। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने खुसूसी तौर पर शाया किया है।
1: और आखिर में खास खबर एक बार फिर, हुकूमत ने पेपर लीक वाकयात की रोकथाम के लिए ज्यादा सख्त सजा से मुतालिक बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि यह बिल पार्लियामेंट में अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नौजवानों का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने पेपर लीक वाकयात की रोकथाम के लिए मुजवजा असलाहत से मुतालिक उनके वीडियो पर तजावीज पेश की है। उन्होंने कहा कि ये ताल्लुकात मजीद मजबूती के साथ जारी रहेंगे। हुकूमत और CJP आज तीसरी बार बातचीत करेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को उनकी इम्तियाजी अवामी खिदमात पर रोमानिया ने डॉक्टर ऑनरिस कोजा के खिताब से नवाजा है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।

प्रोग्राम म्यूजिकल दिल्ली फ्रीक्वेंसी 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल आकाशवाणी एफएम गोल्ड। सुबह शनिवार की और वादे के मुताबिक सुनीता है आपके साथ और अंजुम सिद्दीकी साहब फरमाते हैं कि आरजू की ये सजा है कि जमाना है खिलाफ। आरजू की ये सजा है कि जमाना है खिलाफ, उनसे मिलने की खुदा जाने सजा क्या होगी।

0: ये फिल्म थी 1975 की रफू चक्कर, बढ़िया कॉमेडी, बेहतरीन संगीत कल्याण जी आनंद जी का, और इस सॉन्ग में आवाज शैलेंद्र सिंह और आशा भोसले की थी।
1: भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ieefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
2: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
3: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
2: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
3: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
2: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
0: मेरी प्लेलिस्ट का अगला गाना 1982 की फिल्म नमकीन से है। गुलजार और पंचमदा की जोड़ी का ये गाना है, तो जाहिर है अलग भी होगा और प्यारा भी। आवाज आशा भोसले की है।

0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: अम्मा सर पे टोकरी लिए सारा दिन।
1: सुनिए, क्या आपने पी

बादलों की आंख मिचौली जारी है, बारिश की दरकार है। ये है म्यूजिकल दिल्ली की, मैं हूँ सुनीता। बस थोड़ा सा गाना बाकी है, उसके बाद अगले शनिवार होगी हमारी मुलाकात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून को लाने को लेकर राजी किए गए अपने वीडियो संदेश जारी किए गए अपने संदेश पर लोगों के सुझावों और प्रतिक्रियाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। इस विधेयक के मसौदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जनता के साथ उनका रिश्ता विश्वास और सहयोग पर आधारित है और ये जुड़ाव आगे भी लगातार मजबूत होता रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी के इंस्टाग्राम वीडियो ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इस वीडियो को 24 घंटे में 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा गया है। इसके साथ ही ये दुनिया में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो बन गया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड 30 करोड़ व्यूज का था।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
0: सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। उन्होंने बताया कि सीजेपी ने तीन प्रमुख मांगे रखी हैं और पेपर लीक रोकने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि ये कार्यबल विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा आयोजित लोक परीक्षाओं से संबंधित अपराधों की त्वरित, पेशेवर और व्यापक जांच करने के लिए जिम्मेदार होगा। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। नीट परीक्षा पेपर लीक पर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों में पांचवें दिन भी कार्यवाही बाधित रही और दोनों सदनों में कार्यवाही सोमवार तक स्थगित है। दिल्ली मेट्रो के 18 स्टेशन आज सुरक्षा कारणों से अगले आदेश तक बंद रहेंगे। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। लद्दाख के द्रास में स्थित करगिल युद्ध स्मारक ऑपरेशन विजय में भारत की विजय की याद में मनाए जाने वाले 27वें करगिल विजय दिवस के भव्य समारोहों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। दो दिवसीय स्मारक कार्यक्रम आज से शुरू होंगे, जिसमें 1999 के करगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के साहस और सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रही श्री अमरनाथ यात्रा आज फिर शुरू हो गई है। यात्रा बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से जारी है। इस बीच आज सुबह 6,269 श्रद्धालुओं का नया जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। प्रशासन ने यात्रियों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। भारत के स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। सेमीफाइनल में अनाहत ने मिस्र की बार्ब सामे को 3-1 से हराया। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा

T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं देश की जानी मानी हॉकी खिलाड़ी और इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित सविता पुनिया के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही है ममता चोपड़ा।
2: नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, आपके साथ मैं हूँ ममता चोपड़ा। कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनके लिए आंकड़े भी फेल हो जाते हैं, मतलब इतने आंकड़े उनके रिकॉर्ड्स के खड़े हो जाते हैं कि सुनने वाले को लगता है वाकई कोई इतनी उपलब्धि भी हासिल कर सकता है। और हमारे देश की बेटियां इस तरह का काम कर भी रही हैं। आज हमारे साथ देश की ऐसी ही बेटी है जो लगभग 17-18 साल से हॉकी के क्षेत्र में अपना दमखम दिखा रही है। जैसे ही पदार्पण किया वहां से जो शुरुआत हुई, तो आज भी वे सफलतम हॉकी प्लेयर्स में गिनी जाती हैं और हम आप सब उन्हें जानते हैं ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से, सविता पुनिया। तो आइए करते हैं मुलाकात सविता पुनिया से। सविता, बहुत बहुत स्वागत आपका।
3: थैंक यू मैम, थैंक यू।
2: जब मैं आपका डिटेल्स देख रही थी तो मुझे बहुत हैरानी हुई, मतलब 300 से ज्यादा मैचेस खेल चुकी हैं आप, मतलब 17-18 साल से आप उसी पेस को बनाए रख पा रही हैं खेल के मैदान में। मुझे लगता है अब तो आपको आदत पड़ गई होगी इस तेज रफ्तार जिंदगी की, हाई पिच।
3: या मैम, डेफिनेटली। जब मैं सबसे पहले इंडिया टीम में आई थी तो मेरे कोच आजाद सिंह मलिक ने बात बोली थी कि इंडिया टीम में आना आसान है बट उस जगह को मेंटेन रखने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और वो चीज मेरे माइंड में थी हमेशा कि मुझे खेलना है और ऐसा खेलना है कि मैं एक एग्जाम्पल सेट करूं अपनी टीम के लिए, अपने सभी लड़कियों के लिए, क्योंकि बहुत कम चांस मिलता था उस टाइम पे लड़कियों को घर से बाहर निकलने के लिए। तो बहुत ब्लेस्ड हूं क्योंकि उस चीज के लिए मैंने बहुत डेडिकेशन के साथ काम किया और हमेशा अपनी फैमिली को वो क्रेडिट देती हूं क्योंकि आज फैमिली की सपोर्ट है तो मुझे पता ही नहीं चला कि इतने साल कैसे निकल गए। तो हर एक बच्चे को मैं बोलती हूं कि इंडिया टीम में आना आपको जरूर, अगर आपने मेहनत की है तो आपको एक मौका जरूर मिलेगा, वो प्लेटफॉर्म मिलेगा, बट उसको मेंटेन रखने के लिए आपको बाकियों से ज्यादा फोकस होना चाहिए, वो डेडिकेशन होना चाहिए, वो पैशन होना चाहिए। सो इट्स नॉट इजी।
2: हाँ, और इसीलिए हैरानी इसलिए होती है कि आप निरंतर उसको बनाए पा रही हैं, रखा हुआ है आपने उसको, अभी भी आप इसी होड़ में हैं। लेकिन जब आप जूनियर ही थी, जब आप सीनियर टीम में चली गई थी, यहाँ पे देश के लिए खेलना शुरू कर दिया था, तब तो जाहिर है कि आपने हॉकी खेलना, ड्रिबल करना शुरू किया होगा
3: जी।
2: कैसे एक हॉकी के मैदान में गोलकीपर तक का सफर तय हुआ? अभी तो आप गोलकीपर के तौर पर ही लोग आपको जानते हैं
3: जी। मुझे याद है जब मेरे घर पे सबसे पहले मेरे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर आए पापा के पास और 2003 में बोला गया कि आपकी बेटी और मेरी कजन की अगर खेलना चाहते हैं, स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं, तो हम सिरसा में एक नर्सरी खुल रही है गवर्नमेंट की तरफ से और वहां पे हॉकी, बैडमिंटन और जूडो है। तो मैं और मेरी बहन काफी एक्साइटेड थे क्योंकि गांव से शहर जाना ही हमारे लिए 2003 में एक बहुत बड़ी बात होती थी कि ओके हमें वहां जाना है। तो मेरे मम्मी जी को गठिया था उस टाइम पे और मैं सब घर के काम करती थी, जो भी घर का झाड़ू पोछा, गाय भैंस का जो काम होता है, मैं, पापा और भाई मिलके करते थे। तो मेरे लिए ऐसे था कि मन में एक डर था कि मम्मी की तो तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कैसे जाऊंगी। बट फिर मैं दादाजी के पास गई और उनकी जो खुशी थी, दादाजी ने बोला कि बेटा मैं चाहता हूं तू हॉकी खेल। मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा क्योंकि मुझे हॉकी की नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे, सिर्फ क्रिकेट सुना था क्योंकि घर में टीवी भी नहीं था, न्यूज़पेपर भी नहीं आता था। तो मैंने बोला कि दादाजी हॉकी क्या होता है, कैसे? तो बोलते बेटा एक बॉल होती है, 11 दो टीम में प्लेयर होते हैं, सब एक बॉल के पीछे भाग रहे होते हैं, पर बहुत डिफिकल्ट गेम है। उनकी जो वर्डिंग थी ये थी कि डिफिकल्ट गेम है, तो मैं चाहता हूँ मेरी पोती हॉकी खेले। और हम एक, दादाजी का ऐसा था कि हमारे घर में पोतों से ज्यादा पोतियों को या बेटे से ज्यादा बेटियों को प्यार मिलता था। तो मैंने कहा दादाजी ने मेरे से कुछ बोला है तो मुझे खेलनी तो हॉकी है।
2: अच्छा
3: जी। फिर मैंने हॉकी की ट्रायल दी और वहां मेरी फिजिकल टेस्ट हुए थे क्योंकि हॉकी खेलनी तो आती नहीं थी, तो नॉर्मल टेस्ट, तो वहां पे मैं सेकंड आई थी। गई, मन नहीं लगा क्योंकि वो लाइफ बहुत एक
2: गवर्नमेंट होती है ना
3: जी, डिसिप्लिन। एंड मम्मी की हेल्थ का ऑलरेडी बताया, वो माइंड में था, तो काफी रोती थी। हफ्ते में सिर्फ एक बार फोन आना होता था फ्राइडे को घर।
2: क्या उम्र थी आपकी उस समय?
3: 13 साल की थी।
2: अच्छा जी, 13 साल की सविता के लिए वो सब बहुत ज्यादा हो गया।
3: अभी भी याद करती हूँ तो सोचती हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पापा मम्मी ने मुझे छोड़ने नहीं दिया, इस वजह से आज मैं यहाँ पे।

0: क्योंकि मैंने अपनी तरफ से सब कोशिश की कि किसी भी तरह से मैं हॉकी छोड़ दूं और घर वापस चली जाऊं। काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी, मम्मी को बोला कि नहीं बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी, खाना भी छोड़ दिया था। खाना मेरे फ्रेंड्स बोलते थे पापा को कि ये ठीक से खा नहीं रही है, सो नहीं रही है, पूरा टाइम रोती है,
1: ओहो,
0: आप लेके जाओ।
1: अच्छा
0: तो पापा लेने आए और तब मेरे कोच थे सुंदर सिंह खरब, उन्होंने बोला कि इसकी हाइट अच्छी है और हम इसे गोलकीपर बना देते हैं, तो मे बी वन डे शी कैन प्ले फॉर इंडिया। वो वर्ड पापा के लिए, एक इंडिया खेल सकती है आपकी बेटी, मेरे लिए बहुत बड़ा सपना देख लिया था उन्होंने। मैं जो भी होगा अपनी बेटी के लिए फिर तो करूंगा, बट ये बात मुझे उस दिन नहीं पता थी। मैं खुशी खुशी घर गई हूँ कि मैं हॉकी छोड़ के आ चुकी हूँ, मम्मी के पास जाके बता रही हूँ। तो मम्मी ने बोला नहीं बेटा, मंडे को तू वापस जा रही है। मैंने बोला नहीं, मैंने छोड़ दिया है सबको, मैं अपनी फ्रेंड्स को बाय बोल के आई हूँ। तो बोले कि नहीं बेटा, अब तू एज ए डिफेंडर नहीं खेलेगी, गोलकीपर खेलेगी। उससे पहले मैं एज ए डिफेंडर ट्रेनिंग करती थी। तो मैंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं है। बोल तो मम्मी ने बताया कि बेटा तेरे पापा ने 18,000 रुपए गोलकीपर किट के कोच को देके आए हैं, क्योंकि कोच ने बोला ऑलरेडी मेरे ग्राउंड पे 2 गोलकीपर हैं, तो मेरे पास साल में 2 ही किट आती है, या तो आपको एक
1: लेकिन
0: साल।
1: आपके पापा के पास तो पैसे नहीं थे ना किट
0: जी,
1: के।
0: मेरे पापा जॉब करते थे, बट 8,500-9,000 रुपए सैलरी थी, और वो चीज मेरे को ऐसे हुआ कि 18,000 रुपए ऑलमोस्ट 2 महीने की सैलरी मेरे को मेरे किट पे पापा ने लगा दी, और मेरा मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं है मैं कुछ कर पाऊंगी। काफी रोई मैं, पर मम्मी ने बोला कि बेटा दुखी मत हो, कोशिश कर, क्या पता भगवान, तू मेहनत कर, क्या पता भगवान वो दिन ला दे और पापा के लिए एक रिटर्न गिफ्ट होगा। उसके बाद में मैं प्रैक्टिस किया, सिरसा में ही थी, और फिर मेरी सिलेक्शन आगे स्टेट में गई मैं वहां पे, और काफी अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि नॉर्मली हम शाहबाद की टीम से काफी गोल खाते थे, बट वो मेरा पहला टूर्नामेंट था जहां पे हमने बहुत कम मार्जिन से मैच को लूज
1: और
0: किया।
1: आपने काफी गोल बचाए।
0: जी, तो वहां जो हमारे जो शाहबाद टीम के कोच थे, उन्होंने मुझे आके 100 रुपए दिए कि आज तेरी वजह से टीम का परफॉर्मेंस अच्छा ऐसा रहा है। तो वो चीजें मुझे फिर मोटिवेट किया कि ठीक है
1: लेकिन
0: मुझे।
1: आपने जो शुरुआत की, जब उसके बाद आप साई एकेडमी गई, उसके बाद
0: जी
1: नेशनल टीम में आप 2008 में आ चुकी थी, 17 साल की उम्र में आप नेशनल टीम में आ गई थी, मतलब है ना।
0: जी
1: उस पर आपने एशिया कप खेला। ये जो आपने हॉकी के मैदान में गोल के आगे आप खड़ी हो जाती हैं कि ये बॉल को मैं पास नहीं होने दूंगी, उस वक्त सविता का क्या जज्बा होता है मन में?
0: मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम इंडिया कैंप में आई, और हम गांव में रहते हैं, तो पापा के पास फोन गया कि आपकी बेटी का नाम नेशनल कैंप में आ गया है। तो पापा बोले कि जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई थी उस दिन मैंने लड्डू बांटे थे और एक आज लड्डू बांटूंगा। तो वो चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती है। कोच के पास मैसेज आया कि मेरा और एक मेरे साथ की प्लेयर थी कि दोनों का नाम इंडिया कैंप में आया, आजाद सर उस टाइम मेरे कोच थे। तो सर ने सेम जो मैंने आपको बोला वो बात बोल के भेजा कि एक बार तो कोई भी इंडिया खेल लेता है, बट उस जगह को मेंटेन करने के लिए आपको बाकियों से और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। गई कैंप में और मैं जूनियर थी उस टाइम पे, और अगले ही कैंप में मुझे बोला गया कि आप जूनियर से सीनियर में शिफ्ट हो रहे हो। तो भंगू सर हमारे कोच थे नेशनल टीम के उस टाइम, तो हर चीज पापा को बताती थी, तो बड़ी खुशी से कि पापा का सपना मे भी पूरा होने वाला है, एक अच्छी फीलिंग आ रही थी। जो चीज ने मुझे मोटिवेट किया हॉकी खेलने के लिए वो ये था कि मैं घर गई और दादाजी मेरे पास आए और बोले कि बेटा एक पेपर में एक आर्टिकल आया हुआ है जहाँ नाम आया है कि रंजीत सिंह पुनिया की पोती सिरसा की पहली इंटरनेशनल प्लेयर है, और काफी खुशी थी उनकी आंखों में और बहुत इवन इमोशनल थे, बट वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि बेटा आज मैं ये पेपर अपनी कबड़ में रखता हूँ, आज का दिन तू देख और आज से पूरा एक साल बाद मैं तुझे खुद से पढ़ के दिखाऊंगा।
1: अच्छा?
0: मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा।
1: क्या बात।
0: और आज वो हमारे साथ नहीं है, बट वो चीज सच हुई। एक साल बाद उन्होंने वो खुद से पेपर मुझे पढ़ के सुनाया। उस दिन मैंने सोच लिया कि अगर मैं 67 ईयर की एज में दादाजी को इंस्पायर कर सकती हूँ पढ़ने के लिए, तो फिर अब तो मैं हॉकी नहीं छोड़ूंगी, अब तो मैं गिव अप नहीं करूंगी, क्या पता और कितनी लड़कियों को मैं इंस्पायर कर सकती हूँ।
1: बिल्कुल ठीक। और उसके बाद सविता ने जो काम शुरू किया, इंस्पिरेशन बहुत बहुत ज्यादा लड़कियों को मिल पाई, क्योंकि ये एक वॉल की तरह जो खड़ी होती है गोल के आगे सविता, वो वाकई एक उदाहरण पेश करता है। लेकिन खासकर उन इंस्टांसेस की बात बताएं जब आपने जापान के गोल रोके, जब आपने ऑस्ट्रेलिया के इतने 9-9 गोल रोक डाले, उस समय किस तरीके का उत्साह था टीम के अंदर, उस समय किस तरीके का ऑडियंस का रिएक्शन था, और आप उस समय क्या महसूस कर रहे थे?
0: सबसे बड़ी बात थी कि मुझे एज ए डिफेंडर से गोलकीपर आना, मैंने उस चीज को बहुत इंजॉय किया, क्योंकि मुझे हेलमेट के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है मुझे मैं कैमरे से या पब्लिक प्लेस से काफी दूर रहती थी, बट ग्राउंड में मेरे को लगता था कि मैंने हेलमेट पहन रखा है, अब मैं किसी को नहीं दिख रही हूँ, तो वो चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती थी। और जापान के मैच की जो आप बात कर रहे हैं, वो रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन था, और हमारी टीम में एक ही बात होती थी उस टाइम पे कि हमारी टीम ने कभी भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किया है। 1980 में बुलाया था, बट वो एक इन्विटेशन था, है ना, टीम ने क्वालिफाई नहीं किया। तो वो मुझे था कि मैं गोलकीपर हूँ और गोलकीपर के ऊपर बहुत गेम डिपेंड होता है, तो शायद मुझे कुछ उस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि मैं अपनी टीम को और कितना कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो काफी अच्छा मैच

0: था वो मुझे आज भी याद है। और उस 1.5 ईयर हुआ था उस टाइम मुझे बींग ए फर्स्ट गोल कीपर, प्रेशर सिचुएशन था, बट जब जब एक सेव करते हैं और पता है कि एक स्टेप क्लोज जा रहे हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है, और नेक्स्ट मोमेंट के लिए नर्वसनेस भी होती है कि अभी और गलती ना हो जाए, अभी और गलती ना हो जाए। तो जैसे ही पता चला कि हमने रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, और उसके बाद में रियो ओलंपिक्स में मेरी और मेरी टीम दोनों की ही परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, घर पे आई अगेन पापा के साथ सब कुछ डिस्कस किया कि मैं उतनी खुश नहीं हूँ अपनी परफॉर्मेंस से, तो पापा ने बोला बेटा पहला ओलंपिक्स था, कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस आएगा तो बाद में और अच्छा होगा। उसके बाद में मैंने सोचा कि मुझे हॉकी ने बहुत कुछ दिया है, बट मुझे लगता है कि मुझे अपनी टीम के लिए और भी बहुत कुछ करना है, तो मैं डायरी लिखती हूँ नॉर्मली। तो मैंने फिर उस सारी चीजें उसमें लिखा कि मुझे नेक्स्ट ओलंपिक खेलना है और अपने आप को और डे बाय डे बेटर बनाना है ताकि मैं टीम की अच्छी परफॉर्मेंस में अपना और योगदान दे सकूं। बस मैम, बहुत गोलकीपर की नॉर्मली लोगों को शायद लगता है कि गोलकीपर्स का सिर्फ मैच खेलना तो आसान है क्योंकि बाकी प्लेयर्स भागते हैं, गोलकीपर सिर्फ 60 मिनट खड़े रहते हैं। गोलकीपर्स के बहुत सेशंस एक्स्ट्रा होते हैं, बाकी टीम से ज्यादा एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करते हैं, हमें ड्रैग फ्लिक रोकना है, शूट आउट रोकना है, और बाकी जो भी फुटवर्क की बहुत एक्सरसाइज करनी होती है, तो वो मैंने अपनी रूटीन में ज्यादा एक्स्ट्रा एड की और कोचिज से हेल्प लेती थी उस चीज में कि मुझे बताओ कि बेटर परफॉर्म करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक्स आता है, और जब हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया का क्वार्टर फाइनल था, सभी को यही, हमें जो मैसेज मिल रहे थे सभी यही था कि ऑस्ट्रेलिया ने तो अपने पूल में टॉप किया है और इंडिया अपने पूल में लास्ट आया, और एक अच्छी बात ऑस्ट्रेलिया के लिए ये था कि ओपोनेंट के ऊपर प्रेशर आने के लिए कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने पूल मैचेस में एक भी गोल कंसीड नहीं किया है। जैसे ही मैच से पहले वाले दिन पापा से बात होती है तो पापा बोल रहे कि बेटा ऑस्ट्रेलिया के साथ है, काफी टफ ओपोनेंट है, बट कोई बात नहीं, तुम अपनी तरफ से, वो एक मैच खेलने के बाद रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। मैंने पापा को बोला पापा आप टेंशन मत लो, हम जीतेंगे। अच्छा। मेरे पापा भी अगर आप बात करोगे वो जरूर ये चीज को मेंशन करेंगे। अपने आप से ऐसे कॉन्फिडेंस था क्योंकि हमारे एज ए टीम हमने बहुत काम किया था। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था और काफी टीम अच्छा खेल रही थी, मेरा भी अच्छा चल रहा था, और लास्ट क्वार्टर क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि 1-0 वो डाउन थे, बट उनको वो एक बॉडी लैंग्वेज जो देखते हैं ना, क्योंकि हाफ टाइम हुआ वो हंसते हुए आ रहे हैं, क्वार्टर टाइम हुआ हंसते हुए वापिस आ रहे हैं, अदरवाइज ओलंपिक्स का मैच है, हार रहे हैं, तो कोई भी उस टाइम पे उनको एक था कि शायद हम
1: साइकोलॉजिकल गेम्स भी खेली जाती हैं,
0: दैट आल्सो डेफिनेटली, बट थोड़ा ये उनको था कि हम निकाल लेंगे, गोल निकल जाएगा, हमें भी हमारी टीम पे कॉन्फिडेंस था। तो हमने यही बात किया कि आज के मैच में डू और डाई, और एक एक मिनट एक एक सेकंड इम्पोर्टेंट है, और लास्ट क्वार्टर में उससे पहले 2 पेनल्टी कॉर्नर मिले थे, लास्ट क्वार्टर में 7 पेनल्टी कॉर्नर मिले, और मेरे साथ साथ ऐसा नहीं है कि मैंने अकेले ने रोका, मेरे साथ मेरे दूसरे डिफेंडर भी थे, तो एज ए टीम हमने वो मैच जीता।
1: आपके जैसे खिलाड़ी हैं जिनकी वजह से हॉकी लोगों के बीच में पॉपुलर हो पाई है, और मतलब आप इकलौती ऐसी खिलाड़ी हैं अभी जिनको 3 बार लगातार FIH की ओर से बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, जो वाकई सराहनीय है। सविता, आप तो कैप्टन भी रही है ना, आपने इतने सारे गोलकीपर के तौर पर जो हासिल किया, कैप्टन जब बनी थी तो कुछ प्रेशर महसूस होता था क्या?
0: डेफिनेटली, क्योंकि वो गोलकीपर अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है, बट उसके साथ बींग ए कैप्टन और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एड होती है, तो प्रेशर होता है क्योंकि वहां पे सिर्फ आप अपनी परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, पूरी टीम के लिए है, तो ऑफ कोर्स कैप्टन इज है
1: बहुत रिस्पॉन्सिबल और प्रेशर वाली जॉब तो है। अच्छा, हमने हमेशा आपको जैसे इस तरह के ट्रैक सूट्स में ही देखा है, खेलते हुए भी, अभी भी आप हमारे साथ इसी तरह से हैं। इन ट्रैक सूट के पीछे की सविता क्या ऐसी भी है जो बिंदी लगाती है, चूड़ियां पहनती है, आम लड़कियों की तरह सजती है, पसंद करती है?
0: नो मैम, मैं बहुत ही सिंपल रहना पसंद करती हूँ, और बचपन में मुझे मम्मी बताते हैं कि मैं छोटी थी तब था मुझे, बट 5th-6th क्लास तक था कि कुछ गांव में जाते थे, बैंगल्स लेते थे और पायल लेते थे, बट मैंने सिर्फ लेके रखी है, पहना कभी भी नहीं है। और आज के टाइम पे ये है कि मुझे अगर कोई बोलता है कि मेकअप करना है तो इट्स मेक मी स्ट्रेस, कि मुझे उतना पसंद नहीं, मुझे सिंपल रहना ज्यादा पसंद है।
1: ज्यादा पसंद करती हैं। लेकिन हेलमेट के पीछे जब छुपी होती हैं, उनके बाहर निकलकर जो सविता सामने आती है, उस सविता के बारे में ऐसी क्या बातें हैं जो एक हॉकी प्लेयर से हटकर लोगों को जाननी होती है?
0: हॉकी से बाहर ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं, बट हाँ कि हॉकी ने मुझे कॉन्फिडेंट बनाया है, बिना हेलमेट के भी आज मुझे वो कॉन्फिडेंस फील होता है। मैं उस दिन का शुक्रगुजार करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स की वजह से मैंने अपनी हॉकी जर्नी को कंटिन्यू रखा।
1: वैसे आप जब छोटी थी उस वक्त आप के प्रैक्टिसेस के लिए जाना करना, और हरियाणा जैसे राज्य जहां पर हम देखते थे कि लड़कियों को लेकर उस वक्त तो आंकड़े और भी लैंगिक अनुपात के हिसाब से बहुत अच्छे नहीं थे, ऐसे में आपको जब ट्रेनिंग के लिए जाना होता था, करना होता था, तब क्या क्या मुश्किलें आती थी?
0: 2011 की बात है, उस टाइम हमें जो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती थी ट्रांसपोर्ट की, बहुत दिक्कत होती थी। तो मैं दिल्ली में ही थी, बेंगलोर से मैं दिल्ली आई थी और बस स्टैंड पे थी मैं, क्योंकि उस टाइम टैक्सी फ्लाइट ये सब उतना नहीं होता था, ट्रेन से आते थे और यहाँ से आगे रोडवेज से जाते थे। मिडिल क्लास फैमिली से थी, तो मैं बहुत बार ऐसा होता था कि पापा को मैं बताना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि अदरवाइज वो लेने आएंगे, फिर पैसा लगेगा, खर्चा होगा। मैं दिल्ली बस स्टैंड पे थी, मेरे पास गोलकीपर बैग था और मैं ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे खड़ी थी, कोई मुझे बस में चढ़ा नहीं रहा था, क्योंकि इतना बड़ा बैग है, देखे सबकी बैग रखेगी उतनी जगह पे दो सवारी और बैठ जाएंगे, मेरा गला भराया था। मैंने कंडक्टर से रिक्वेस्ट किया कि मैं 2 घंटे से वेट कर रही हूँ, प्लीज मुझे बस में बिठाओ। तो उन्होंने बोला इतना बड़ा बैग और पास में जो लोग खड़े मजाक कर रहे थे, लग रहा है देश छोड़ के जा रही है। तो वो चीजें मुझे अंदर से वीक कर रही थी, इट्स नॉट कि मुझे गुस्सा आ रहा था, मुझे वीक कर रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं क्यों खेल रही हूँ। और उसके बाद में ज्यादा खराब तब हुआ जब मैंने कंडक्टर से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बोला कि नहीं, हम आपको बस में नहीं बिठाएंगे, या तो आपको 2 पैसेंजर की टिकट खरीदनी पड़ेगी जी। और 250 मुझे याद है 250 रुपीज की एक टिकट होती थी, और मैंने कहा नहीं, 500 रुपीज तो एक्स्ट्रा, वो पैसे तो मैं बचा सकती हूँ। मैंने कहा नहीं, तो फिर बोलते आप ऊपर रख दो बस के ऊपर, छत पे रख दो। मैंने बोला इतना बड़ा बैग लेके मैं अकेली कैसे जाऊंगी, आप बोल दो, आप किसी की हेल्प के लिए मुझे बोलो। तो मैं उस बस में नहीं चढ़ी और मैंने पापा को रोते हुए फोन किया कि पापा मुझे नहीं खेलना है, मुझे हॉकी छोड़नी है, क्योंकि ऐसे तो मैं नहीं खेल पाऊंगी, कि मुझे बहुत खराब लगा आज ऐसे ऐसे हुआ। तो पापा ने बोला कि बेटा आज आज का दिन कैसे भी निकाल ले, चाहे मुझे सेकंड हैंड गाड़ी लेनी पड़े, पर मैं तुझे इस वजह से तो हॉकी नहीं छोड़ने दूंगा। पेरेंट्स की सपोर्ट क्या होती है वो मेरे से ज्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि सब एक्सपेंसिव उठाना। और मैं इंडिया टीम में 2008 में आई थी और 18 तक मेरे पास जॉब नहीं थी। तो बट कभी भी पापा ने कभी रियलाइज नहीं होने दिया कि मेरी बेटी के पास जॉब नहीं है। मम्मा थोड़ी टेंशन लेती थी, क्योंकि मम्मी को थोड़ा सा ये था कि क्या पता कब इंजरी हो जाए। तो ये टाइम थे जहां पे लगता था कि मैं अपने माँ बाप को जो खुशी देना चाहती हूँ वो अभी भी अधूरी है, बट
1: और उनकी खुशी के लिए आप लगी रही
0: जी
1: लगी। ये जो आपने लोगों की बात की कि लोग ऐसे कमेंट करते थे, सब करते थे, जब आपने खेलना शुरू किया तब भी तो आपको कमेंट सुनने को खूब मिलते होंगे।
0: बिल्कुल, बट मैं इस चीज में बहुत लकी हूँ कि मेरे को ये चीजें बाद में, जब मैंने ऑलमोस्ट इंडिया टीम में आने के भी 3-4 साल हो चुके थे, तब मुझे मम्मी ने बताना स्टार्ट किया।
1: तो क्या बोलते थे मम्मा, क्या बताते थे?
0: यही कि मतलब हाइट लंबी है तो क्यों शॉर्ट्स पहनना, क्यों जींस पहनना, और घर से बाहर भेजना वो भी तो सेफ नहीं है, कल को अपनी मर्जी से शादी करवाएगी, ये सब चीजें थी जहां। और बट मेरे पापा ने बोला कि हमारा डिसीजन है, हमारी बच्ची है, हम देखेंगे क्या करना है। तो वो मुझे बहुत बाद में खुशी होती थी कि कितने अच्छी चीजें कि वो चीजें मुझे पता नहीं चलने दी।
1: आपके मामा पापा का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा, बहुत जिसकी वजह से आप यहाँ पर आज पहुंची हैं। आई एम श्योर बहुत से ऐसे हरियाणा के भी परिवार होंगे, बेटियां होंगी, जो आज आपको देखकर बहुत प्रेरणा ले रही हैं। चलिए यहाँ पर एक रैपिड फायर करेंगे सविता के साथ। पेनल्टी शूट आउट या पब्लिक स्पीकिंग, किससे ज्यादा नर्वस होती हैं आप?
0: पब्लिक स्पीकिंग।
1: अच्छा, एक स्ट्राइकर दुनिया का जिसको आपको लगता है कि सबसे ज्यादा अलर्ट रहती है आप उसके खिलाफ?
0: ड्रैग फ्लिकर है, नीदरलैंड से, ये भी जेंसन।
1: ओके, अगर आप हॉकी प्लेयर नहीं होती तो क्या होती?
0: डॉक्टर।
1: डॉक्टर, आप डॉक्टर बनना चाहती थी?
0: पापा का सपना था, क्योंकि मेरे पापा फार्मासिस्ट हैं, तो उन्होंने किसी वजह से, क्योंकि पैसों की कमी की वजह से अपनी स्टडी को रोकना पड़ा। पापा ने बोला मेरी बेटी को मैं डॉक्टर बनाऊंगा।
1: एक टीममेट जो आपको कितना ही टेंस मोमेंट हो हंसा सकता है?
0: नेहा गोयल, शी इज वेरी फनी।
1: अच्छा, क्या मुश्किल है, पेनल्टी कॉर्नर बचाना या फिर अपने फेवरेट फूड को ना कहना?
0: पेनल्टी कॉर्नर बचाना।
1: अच्छा
0: जी,
1: खाने को ना करना आसान है।
0: हाँ, मेरे लिए, मैं आई एम नॉट रियली फूडी पर्सन।
1: ओके, अगर आपको किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन दुनिया के से एक स्किल सीखनी हो तो क्या होगी?
0: मैं मैरी कॉम की फिटनेस को बहुत इंस्पायर करती हूँ।
1: ये सेंटेंस पूरा करिए कि लोग मुझे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं क्योंकि
0: मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ।
1: अगर आपको मैच खेलते हुए अपनी एक पोजीशन किसी के साथ स्वैप करनी हो गोलकीपर के हटकर तो क्या होगी?
0: मैं हमेशा ग्रेस, जो हमारी प्लेयर थी, उनके साथ हमेशा मजाक करती थी कि मुझे एज ए डिफेंडर खेलना पसंद है, क्योंकि जैसे गोलकीपर का एक परमिशन मिलता है कोचिंग करना, वैसे एक डिफेंडर है जो पूरी गेम को खिला सकता है। सो इट्स सेंटर डिफेंडर आई ऑलवेज एंजॉय।
1: ऑलराइट सविता, इट वाज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। लेकिन अंत में देश की बेटियों के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगी?
0: जी, मैं हर एक उस बेटी को बोलना चाहती हूँ कि आप अपना एक गोल सेट करें लाइफ में और बहुत फोकस और डेडिकेशन के साथ बहुत हार्डवर्क करें और अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाएं। उससे ज्यादा बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती।
1: बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको और उम्मीद करते हैं कि अब जब भी आप मैदान पे उतरेंगी जो आप गोल बचाती आई हैं वैसा ही आप करिश्मा दिखाती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए।
0: थैंक यू सो मच मैम।
1: सविता पुनिया, जाहिर है कि द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया ने जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं और जो प्रेरणा देश की बेटियों को दे रही हैं वही आगे भी लगातार जारी रहे, हमारी ओर से यही शुभकामनाएं हैं। आज बस इतना ही, नमस्कार।
2: हमारे विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे जानी मानी हॉकी खिलाड़ी और इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित सविता पुनिया के साथ खास बातचीत। संवाद का संचालन कर रही थी ममता चोपड़ा। ये कार्यक्रम DD News के सहयोग से प्रस्तुत किया गया। पीपल्स पद्म

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह है प्रोग्राम म्यूजिकल दिल लगी और मैं हूं आपके साथ भावना।

जो दिल में छिपे रहते हैं ना, वो हमेशा यादों में, ख्यालों में बसे रहते हैं। यादों और ख्यालों में अपनों को रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर समय नहीं। सड़क पर पैदल चलते वक्त आपको यादों में नहीं, सड़क पर रहना है, यानी अपने ध्यान को सड़क पर केंद्रित रखना है। बहुत सारे नियम होते हैं यातायात के जिनको हम जानते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कभी कभी भूल जाते हैं। जैसे कि लाल बत्ती होने पर ही सड़क पार करें, पहले कोशिश ना करें कि अभी गाड़ियां नहीं आ रही, निकल जाते हैं, गलत है। और जेब्रा क्रॉसिंग या काली सफेद लाइनों पर चलकर ही सड़क पार करें, और सबसे बड़ी बात, कान में ईयरफोन्स लगाकर सड़क पार ना करें, क्योंकि इससे पीछे आने वाले ट्रैफिक की आवाज को आप सुन नहीं पाएंगे।

0: बाहों में खुशियां भर जाएं, इसके लिए गवर्नमेंट बहुत कुछ करती रहती है। अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग योजनाएं आती रहती हैं ताकि सब खुश रहें, सब आगे बढ़ें। और ऐसी ही एक योजना है निर्विक स्कीम। ये उन छोटे छोटे निर्यातकों के लिए है स्कीम जो आसानी से अपना काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे की थोड़ी कमी हो जाती है, तो ऋण यानी लोन उपलब्ध कराया जाता है इसमें। इसको निर्विक योजना कहते हैं और नियत ऋण विकास योजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो छोटे निर्यातक हैं उनको आसानी से जो है वो ऋण मिल जाए और बीमा प्रीमियम जो है वो उसका कम हो, 90% जो है मूलधन और ब्याज दरों पर छूट मिल सके, बीमा कवर मिल सके और नुकसान होने पर जो दावे करते हैं लोन कंपनीज जो हैं तो वो उन दावों को पूरा करें और बैंक जो है वो निर्यातकों को अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध करा सके, यानी अधिक से अधिक ऋण मिले, कम लागत पर मिले, मतलब ब्याज दर जो है वो कम हो, 90% बीमा कवर हो आपके ऋण के मूलधन और ब्याज दोनों का, और अगर कोई भी इमरजेंसी या आप ऐसी स्थिति में आते हैं कि आपको बीमा कवर लेना पड़े तो आपको आसानी से जो है वो बीमा कवर मिल भी जाए, आपको भुगतान आसानी से हो जाए। ज्यादा से ज्यादा वैश्विक बाजार यानी कि वर्ल्ड मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में निर्यातक जो है वो अपने आप को सिद्ध कर सकें, प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकें, इसका ये मेन मोटिव होता है, उद्देश्य होता है।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आज 25 जुलाई है और 25 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे, यानी कि विश्व डूबने से बचाव का दिवस। पानी में डूबने से हर साल दुनिया भर में लगभग 2.5 लाख लोग अपनी जान

ला सके। और जो सुरक्षित बचाव कौशल टीम होती है ना, जो एक्सपर्ट होते हैं, जो आपने देखा होगा बीचेस के पास होते हैं ना, कि मतलब ये लोग बचा लेंगे अगर कोई डूब रहा होगा, तो उनको प्रशिक्षण ज्यादा से ज्यादा देना, ताकि वो लोगों की जान बचा सके अगर किसी को तैराकी नहीं भी आती है तो भी। और बच्चों के लिए सुरक्षित क्रच की व्यवस्था करने पर जोर दिया जाता है आज के दिन, किस तरह से पानी से बचा जाए। और अगर कोई हादसे का शिकार हो गया है, उसे बचा के लाया जा चुका है बाहर, तो किस तरह से आप वायु मार्ग से, मुंह में सांस देकर यानी CPR से किस तरह से मदद कर सकते हैं उस व्यक्ति को रिवाइव होने में, यानी उसकी जान बचाने में, ये सब लोगों को आना चाहिए, ताकि आप डूबे तो किसी के प्यार में, पानी में नहीं।

0: आय का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
4: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
3: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
4: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
3: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।

म्यूजिकल दिल लगी का सफर आज यहीं तक। अभी भावना को चलना होगा म्यूजिकल दिल लगी से, लेकिन वैसे मैं कहीं नहीं जा रही क्योंकि 10:30 बजे दिल का मेल बॉक्स प्रोग्राम है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। हमारा ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए fmgoldairdelhi@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर लीजिए 9868868753। तो इन दोनों में से किसी में भी आप अपनी मेल भेजिए या व्हाट्सएप हमें कीजिए और अपनी फरमाइश हमें लिखकर भेज दीजिए, हम जरूर शामिल करेंगे प्रोग्राम दिल का मेल बॉक्स में। तो अभी स्वीकार कीजिए भावना का नमस्कार। अब से थोड़ी देर में सुनिए समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
0: श्री मोदी के वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। इस विधेयक के मसौदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। उन्होंने बताया कि सीजेपी ने तीन प्रमुख मांगे रखी हैं और पेपर लीक रोकने के अलावा कुछ सुझाव भी दिए हैं।
2: बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः तीन डिमांड थी और पांच विशाल सुझाव हुए।
0: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2026 के अंतर्गत आता है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि ये कार्यबल विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा आयोजित लोक परीक्षाओं से संबंधित अपराधों की त्वरित, पेशेवर और व्यापक जांच करने के लिए जिम्मेदार होगा। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। नीट पेपर परीक्षा लीक पर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों में पांचवें दिन भी कार्यवाही बाधित रही और दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारतीय जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 18 जुलाई को काला सागर से गुजरते समय पोत पर हमला हुआ। हमले में एक भारतीय नाविक की मृत्यु की खबर है। पोत पर तीन भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रही श्री अमरनाथ यात्रा आज से फिर शुरू हो गई है। यात्रा बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से जारी है। इस बीच आज सुबह 6,269 श्रद्धालुओं का नया जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। प्रशासन ने यात्रियों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. The Union Cabinet has approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in Parliament next week. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, the National Testing Agency has terminated 47 officials from service. According to sources, legal and criminal actions will also be taken against some of these officials. This is part of a complete overhaul of NTA that has been in controversy over paper leaks. Prime Minister Narendra Modi thanked youngsters and everyone for the responses and positive suggestions received to his video, where he announced the government's decision to bring a strict law to punish those involved in paper leaks. In a fresh video message released through his Instagram handle yesterday, Mr. Modi said the relations will continue with more bonding.
1: Thank you, friends. मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था, उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी. ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहे.
3: That video also created a new world record with the most views on a reel in 24 hours, garnering 303 million views as of now, surpassing earlier record of 300 million views. The government will hold another round of discussions with the CJP delegation today on its demands for reforms in the examination system and measures to prevent examination paper leaks. Union Ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh met the CJP delegation in New Delhi yesterday. Talking to media after the meeting, Mr. Nadda said that during the meeting, they gave patient hearing to the demands of the CJP regarding reforms in the examination system. The National Testing Agency, NTA, has issued advertisements for a set of senior professional appointments at the level of general manager and engagement of 16 young professionals through the Pratibha Setu portal of the Union Public Service Commission. The NTA, in a statement, said that these measures represent the first concrete step in the institutional rebuild of the agency that is being implemented in line with the recommendations of the high-level committee of experts chaired by Professor K. Radha Krishnan. Meanwhile, Delhi Metro Rail Corporation has informed that 18 stations have been closed from 7:30 this morning till further instructions due to security reasons in the national capital. These include Rajiv Chowk, Patel Chowk, New Delhi, Central Secretariat, ITO, Mandi House, Supreme Court and others. However, DMRC noted that interchange facilities shall remain available at Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat. President Draupadi Murmu was conferred the honorary title of Doctor Honoris Causa by the Bucharest University of Economic Studies in Romania in recognition of her distinguished public service, commitment to education and social inclusion and contribution to strengthening India-Romania relations. Accepting the honor, the President dedicated the award to 1.4 billion people of India and said it reflected the enduring friendship between the people of the two countries. Rescue and relief operations are being carried out on a war footing following the heavy rains in Gujarat. In the last 24 hours, 265 taluks of the state have received rain. 5 deaths confirmed by State Relief Commissioner. The Chief Minister of State, Bhupendra Patel, held a high-level review meeting in Gandhinagar. So far, about 40,500 people have been evacuated. In Jammu and Kashmir, the annual Sri Amarnath Yatra resumed today after remaining suspended for 6 days due to inclement weather conditions. The Yatra has been resumed for both Baltal and Pahalgam routes. India opened its medal tally at the 2026 Commonwealth Games in Glasgow after Jhandu Kumar clinched the bronze medal in the men's heavyweight para powerlifting. Jhandu, who hails from Nalanda district of Bihar, delivered a strong performance by lifting 190 kilograms in his second attempt, earning 130.9 points and securing a place on the podium. And that is the end of this news bulletin.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत रोमानिया में तकनीकी और आर्थिक सहयोग प्रशिक्षण इकाई की संख्या दोगुनी करेगा। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक जहाज एमवी उमरफी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में एक भारतीय नाविक की मौत। भारत और इसराइल के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का दूसरा दौर सफलतापूर्वक सम्पन्न। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। और अनाहत सिंह ने कनाडा में विश्व जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के लिए प्रतिबद्धता तथा भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। राष्ट्रपति ने इसे भारत की जनता को समर्पित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत रोमानिया के लिए भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग प्रशिक्षण इकाई दोगुनी कर रहा है। उन्होंने कहा कि एआई और तकनीकी परिवर्तन के इस युग में विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि ज्ञान का मार्गदर्शन विवेक, नैतिकता और करुणा द्वारा किया जाए।
1: टुडे एज द वर्ल्ड इज बीइंग रिशेप्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड अदर रैपिड साइंटिफिक एडवांसेस, यूनिवर्सिटीज लाइक दिस हैज इवन ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट नॉलेज इज गाइडेड बाय विजडम, एथिक्स एंड कंपैशन। इंडियाज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिफ्लेक्ट दिस विजन बाय प्रमोटिंग इनोवेशन, रिसर्च, क्रिएटिविटी एंड इंटरनेशनल एकेडमिक कोलैबोरेशन।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने गांव के संग्रहालय का दौरा भी किया और एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत वहां एक पौधा लगाया। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी उमरफी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 18 जुलाई को काला सागर से गुजरते समय पोत पर हमला हुआ। हमले में एक भारतीय नाविक की मृत्यु हो गई। पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे। अन्य 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आज पुष्टि की कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जल क्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 28 सदस्य सुरक्षित हैं। दूतावास ने आधिकारिक बयान में एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। भारत सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के उन मीडिया दावों को खारिज किया जिनमें भारत पर जानबूझकर बाढ़ जैसी स्थिति बनाने का आरोप लगाया गया था।
2: चेनाब नदी में जल प्रवाह में हालिया वृद्धि, 20 से 23 जुलाई के दौरान जम्मू और आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का परिणाम है। नदी के जल प्रवाह में वृद्धि एक प्राकृतिक जल वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है और ये भारत द्वारा जानबूझकर किए गए किसी भी प्रयास का परिणाम नहीं है।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक आधुनिक, पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुकूल कानूनी माहौल बनाने के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता पर बल दिया है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में उन्होंने कहा कि आयोग ने समावेशिता, आम सहमति और विविध कानूनी परंपराओं के सम्मान के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए नई वास्तविकताओं के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता लगातार दिखाई है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत और इसराइल ने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का दूसरा दौर सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया है। 20 से 23 जुलाई तक नई दिल्ली में 4 दिन तक चली वार्ता में पक्षों ने समझौते के सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान दोनों पक्षों के तकनीकी विशेषज्ञों ने वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, उत्पत्ति के नियमों, स्वच्छता और पादप उपायों, व्यापार में तकनीकी बाधाओं, बौद्धिक संपदा अधिकारों, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और व्यापार सुगमता, आर्थिक सहयोग और प्रस्तावित समझौते के अन्य अध्यायों पर विशेष सत्र आयोजित किए। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि चर्चा रचनात्मक और दूरदर्शी थी। इसमें दोनों पक्षों ने मतभेदों को दूर करने और सहमति के क्षेत्र की पहचान करने के उद्देश्य से विस्तृत तकनीकी विचार विमर्श किया। उन्होंने एक संतुलित, व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को शीघ्र संपन्न करने की दिशा में काम करने की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। इससे द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक संबंध और अधिक मजबूत होंगे। विश्व दर्पण समाचार के लिए समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: भारत और तंजानिया ने व्यापार, निवेश, विकास, साझेदारी, रक्षा और सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, कृषि, स्वास्थ्य, संस्कृति तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की है। दोनों देशों के बीच विदेश कार्यालय परामर्श बैठक इस महीने की 22 तारीख को तंजानिया के दार सलाम में हुई। यूक्रेन में रूसी हमलों में करीब 15 लोगों की मौत हो गई है और करीब 100 लोग घायल हुए हैं। कीव के पास ड्रोन तकनीक से जुड़ी एक प्रदर्शनी को निशाना बनाकर मिसाइल हमला किया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस अगले 48 घंटों में बड़ा मिसाइल हमला कर सकता है। इस बीच ज़ेलेंस्की अगले सप्ताह अमरीका जाकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं। स्पेन और फ्रांस में भीषण जंगलों की आग ने हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान करीब 50 दमकल कर्मी घायल हुए। स्पेन में मैड्रिड के पश्चिमी इलाकों में लगी तीन बड़ी आग मिलकर एक विशाल आग में बदल गई है। स्पेन सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। स्पेसएक्स के स्टारशिप रॉकेट ने अपनी नवीनतम परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की। इसमें उसने दुनिया के आधे हिस्से की यात्रा की और 20 उन्नत स्टारलिंक उपग्रहों को स्थापित किया। 124 मीटर लंबे इस रॉकेट को कल टेक्सस से लॉन्च किया गया। नए स्टारलिंक उपग्रहों ने लेजर लिंक का उपयोग करके मौजूदा उपग्रहों से सफलतापूर्वक संपर्क स्थापित किया। मध्य प्रदेश सरकार ने ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया है। एक रिपोर्ट।
4: ओरछा को 2027-28 के दौरान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करवाने के लिए जरूरी दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। पिछले साल यूनेस्को की संस्थान आईकॉमर्स ने सुझाव दिया था कि ओरछा की धरोहरों के प्रबंधन को और मजबूत बनाने की जरूरत है। इसी सुझाव के आधार पर अब ये कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी ओरछा में चल रही और आने वाली सभी परियोजनाओं की समीक्षा करेगी ताकि वे धरोहर संरक्षण के नियमों के अनुरूप हों। कमेटी ये भी सुनिश्चित करेगी कि सभी विभाग ओरछा की योजना को मंजूरी देते समय धरोहर संरक्षण से जुड़े पहलुओं का ध्यान रखें। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए वैष्णवी।
0: 27वें करगिल विजय दिवस पर कल देशभर में कई आयोजन किए जाएंगे। इस अवसर पर लद्दाख के द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंड कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। भारत के स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। सेमीफाइनल में अनाहत ने मिस्र की बार्ब सामह को 3-1 से हराया। वे इस जूनियर टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। अब फाइनल में आज अनाहत का सामना मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा भारत रोमानिया में तकनीकी और आर्थिक सहयोग प्रशिक्षण इकाई की संख्या दोगुनी करेगा। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक जहाज MV उमरफी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में एक भारतीय नाविक की मौत। भारत और इसराइल के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का दूसरा दौर सफलतापूर्वक संपन्न। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता और अनाहत सिंह ने कनाडा में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good morning. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the World News. The headlines. President Draupadi Murmu announces India doubling the number of Indian technical and economic cooperation training slots for Romania. New Delhi strongly condemns attack on commercial vessel in Black Sea, claiming life of an Indian seafarer. India-Israel concludes second round of negotiations for proposed India-Israel free trade agreement. In Commonwealth Games, Jhandu Kumar clinches bronze medal for India in the men's heavyweight para powerlifting. And Indian squash player Anahat Singh creates history by reaching the women's singles final of the World Junior Squash Championships in Canada. President Draupadi Murmu was conferred the honorary title of Doctor Honoris Causa by the Bucharest University of Economic Studies in Romania in recognition of her distinguished public service, commitment to education and social inclusion, and contribution to strengthening India-Romania relations. Accepting the honor, she dedicated the award to the 1.4 billion people of India and said it reflected the enduring friendship between the people of the two countries. President Murmu described education as the single most transformative force in her life. Highlighting the deep cultural and civilizational ties between India and Romania, President Murmu recalled Rabindranath Tagore's visit to Bucharest a century ago. She encouraged greater academic collaboration through joint research, faculty and student exchanges and announced that India has doubled the number of Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) training slots for Romania, including in emerging fields such as artificial intelligence.
1: For decades, Romanian universities have welcomed Indian students, particularly in medicine, engineering, and technology. I would encourage Romanian educational institutions to deepen cooperation through joint research and faculty and student exchanges. I hope that my visit will lead to new academic partnerships and encourage more students and researchers from Romania to engage with India.
5: Our correspondent has filed this report.
6: The atmosphere at the Bucharest University of Economic Studies was marked by warmth, dignity and celebration as President Murmu was conferred the university's prestigious honorary doctorate. The grand auditorium was filled with faculty members in academic robes, students, diplomats and distinguished guests who greeted the president with a standing ovation. The event was not just an academic ceremony, but also a celebration of growing friendship between India and Romania, with a sense of mutual respect, optimism evident throughout the hall. Subhashree Mahapatra from Bucharest, Romania.
5: India strongly condemned the attack on the commercial vessel MV OMORFI in the Black Sea that claimed the life of an Indian national, describing attacks on merchant shipping as unacceptable and calling on all concerned parties to ensure the safety of maritime navigation and international commerce. According to the Minister of External Affairs, MEA, the vessel was attacked on July 18th while transiting the Black Sea, reportedly in Russian territorial waters. The ship had 10 crew members on board, including 3 internationals. The MEA said one Indian sailor lost his life in the attack, while the other 2 internationals on board are safe. The governor said that Indus Waters Treaty remains in abeyance until Islamabad abjures support for cross-border terrorism. Briefing media New Delhi, spokesperson in the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, dismissed Pakistan media reports that India is deliberately causing flooding in the neighboring country.
7: The recent increase in flows in the Chenab River is a direct consequence of intense monsoon rainfall over Jammu and the adjoining catchment areas during the last 3 days, which is between 20 and 23rd July. The rise in river flows is therefore a natural hydrological response to heavy rainfall and not the result of any deliberate action by India. Attempts to portray a weather-driven flood event as an upstream intervention are factually incorrect.
5: On China's readout, the spokesperson said that India does not violate China's sovereignty in any manner and has been consistent. He pointed out it is actually India that should be raising sovereignty issues. External Affairs Mr. Dr. S. Jaishankar has emphasized India's unwavering commitment to create a modern, transparent and internationally compatible legal environment. Addressing the inaugural session of International Conference of the 60th Anniversary Commemoration of United Nations Commission on International Trade Law, UNCITR,

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये है प्रोग्राम दिल का मेल बॉक्स, यानी आपके दिल की बातें आपके मेल्स के जरिए हम तक पहुंचने वाला शो। आपके व्हाट्सएप नंबर से आने वाला संदेश जो आपके दिल की बात लेकर आता है वो वाला शो। तो हमारा ईमेल आईडी fmgold@gmail.com, जिस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें 9868687533 पर। मैं हूं आपके साथ भावना, और हमारे साथ जुड़ गए हैं मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल हसन, अनम यशफ और रसीद वारसी, किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान और सबीहा अंजुमन खान, और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से संजय बमारकंडेय, ममता बमारकंडेय, और साथ में है बेबी किटू। बहुत ही प्यारा सा नाम है और गाना भी बहुत अच्छा चुना है आपने। ये रहा आपकी पसंद का गीत।

तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, ये बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं और लेकर भी जाए हम भी हैं जी हाँ आप भी हैं। और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना का संदेश हमें मिला है। अब एक संदेश महाराष्ट्र से और एक गुजरात से है ना। गांव कुष्टा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से ये संदेश हमें मिला है। कुष्टा बुजुर्ग मतलब पहली बार मैंने इस गांव का नाम सुना है। प्रवीण हागुणे, योगिता हागुणे, प्रियाली हागुणे और पार्थ हागुणे हैं। ये महाराष्ट्र अमरावती से हमें जो संदेश मिला है वो है। और गुजरात के वीरम गांव से हमारे पास संदेश आया है। अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश और सन्नी भावसार का। और गाना सुनना चाहते हैं, कौन सी फिल्म है? फिल्म का नाम है चेतना, गाना है ये।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के

0: ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
3: सौ 100.1 MHz आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है ये, और मैं हूँ आपके साथ भावना। प्रोग्राम है दिल का मेल बॉक्स, मोताला महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से बहुत सारी संदेश आने शुरू हो गए हैं ना पिछले दिनों, मैंने नोटिस किया। ये विजय सुरलकर जी हैं, रतन माला सुरलकर हैं, आरती सुरलकर हैं और कुमकुम गुड़िया भी हैं साथ में। और कुमकुम गुड़िया ने शायद ही लिखकर भेजा है ऊपर मुझे, भावना दीदी हम भी आपको लाइव सुन रहे हैं, नाम शामिल करना जी। जरूर जरूर गुड़िया, हमने आपका जो संदेश शामिल कर लिया। दिल्ली से मनोहर लाल गांधी, प्रकाश गोगिया, सत्य प्रकाश गोयल ये भी हमारे साथ जुड़े हैं और गाना सुनना चाहते हैं ये।

आपकी बात का जवाब दें न दें, लेकिन आपका संदेश, आपका ईमेल जरूर शामिल करेंगे हम। मोहम्मद सईद अब्बासी साहब हैं, निगत परवीन अब्बासी हैं, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और पूरा अब्बासी परिवार हमारे साथ है, ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से। दिल्ली से हमारे पास बहुत सारे संदेश आ रहे हैं और महाराष्ट्र से भी। महाराष्ट्र पुणे से सुनील, सुषमा, राजवीर, अनन्या गायकवाड, ये हमारे साथ जुड़े हैं और कह रहे हैं कि लगातार बारिश हो रही है पुणे में, बहुत खूब रंग छाए हैं, सारे पेड़ पौधे हरे हरे नजर आ रहे हैं, सड़कें एकदम काली काली नजर आ रही हैं और बहुत ही सुंदर लग रहा है आसमान। तो ऐसे में रंग बिरंगा गाना है फिल्म आन मिलो सजना से, वो सुनवा दीजिए। तो ये रहा आपकी पसंद का गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही।

नवाब अहमद भारती, महेश अग्रवाल, बबलू कश्यप, अशरफ अली और सिराज मिथुन दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। अफरोज शेख है लेमुआ सुपौल बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत सारे संदेश हमारे पास ऐसे आते हैं ना कि आप अगर सिर्फ नाम ही ले दें हम खुश हो जाएंगे। जब ऐसा पढ़ते हैं ना तो लगता है कितनी सादगी, कितना भोलापन और कितना अपनापन है हम सब में, है ना। और कौन है हमारे साथ? ताज मोहम्मद साहब हैं, ये लक्सर हरिद्वार से हमें लिख रहे हैं। गुलाम साबिर राही भी हैं, मेहराजा भी हैं, आज़ाद नगर है लक्सर हरिद्वार का, वहाँ से इनका संदेश हमारे पास आया है। इसके अलावा जॉन डिकोस्ट्रा हैं, रोजी हैं, पोल हैं, विलिस हैं, इन्हें हम कहाँ से ये जुड़े हुए हैं हमारे साथ? जनकपुरी सहारनपुर से ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा और कौन से संदेश आए हैं हमारे पास? जी हाँ, बोधराज खुरवाल साहब हैं, ये कमला रानी जी इनके साथ हैं, भानु प्रकाश, गीतिका खुरवाल हैं, उत्तम नगर दिल्ली से इनका संदेश हमें मिला है। ये कैलाश जाधव जी हैं और मनोहर, इनका नाम जो है कैलाश मनोहर जाधव है और अक्षरा कैलाश जाधव है, खंडाला जिला सतारा महाराष्ट्र से इनका संदेश हमारे पास आया है। और

0: और कौन है जो हमारे साथ जुड़े? बहुत सारे मैसेजेस ऐसे भी होते हैं जो रिपीट होते हैं, तो कौन सा नया है ये हमें देखना पड़ता है। जी हाँ जी हाँ, ये भगवत वर्मा जी हैं, भागवत वर्मा है एक्चुअली। भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, दतरेंगी से इनका संदेश हमारे पास आया। अच्छा, आप जब भी लिखते हैं ना यहाँ से, जैसे दतरेंगी इन्होंने लिखा है, दतरेंगी कहाँ, वो स्टेट का नाम भी आप लिखेंगे तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। और जो फरमाइश का गीत हम सुनवाने वाले हैं वो है ये।
1: चला।

राशिद हुसैन अंसारी साहब का भी संदेश हमें मिला है, ईमेल है एक्चुअली, और इन्होंने अपना एड्रेस नहीं ले भेजा है। कोई बात नहीं, आप अपना एड्रेस भी लिखकर भेजें तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अभी स्वीकार कीजिए भावना का नमस्कार 11:10 पर प्रोग्राम तस्वीर में। मैं भावना आपके साथ ही रहूंगी, लेकिन उससे पहले अभी समय है समाचारों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटे में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। इस विधेयक के मसौदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। उन्होंने बताया कि सीजेपी ने 3 प्रमुख मांगें रखी हैं और पेपर लीक रोकने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं।
2: बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से हम सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 विषयों में सुझाव हुए।
0: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि ये कार्यबल विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा आयोजित लोक परीक्षाओं से संबंधित अपराधों की त्वरित, पेशेवर और व्यापक जांच करने के लिए जिम्मेदार होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने उनके विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने एक आधुनिक, पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुकूल कानूनी माहौल बनाने के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आयोग ने समावेशिता, आम सहमति और विविध कानूनी परंपराओं के सम्मान के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए नई वास्तविकताओं के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता लगातार दिखाई है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जल क्षेत्र पर हुए हमले के बाद जहाज पर सवार सभी 28 भारतीय चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। एक आधिकारिक बयान में दूतावास ने एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वे स्थानीय अधिकारियों के साथ सक्रिय संपर्क में हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताते हुए कहा कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज से दोबारा शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। The Union Cabinet has approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, the National Testing Agency has terminated 47 officials from service. According to sources, legal and criminal actions will also be taken against some of these officials. This is part of a complete overhaul of the NTA that has been in controversy over paper leaks.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह है प्रोग्राम तस्वीर और मैं हूं आपके साथ भावना। आज तस्वीर में जहां हम जाने वाले हैं, जहां की रेडियो

तस्वीर हम बनाने वाले हैं वो है खूबसूरत कोडाईकनाल, जिसे धरती पर स्वर्ग कहा जाता है और अक्सर इसे पहाड़ी स्टेशंस की रानी कहा जाता है। ताजगी भरा माहौल, सुकून भरा वातावरण, मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ चट्टानों से लेकर ट्रैकिंग मार्गों तक, मंदिरों से लेकर संग्रहालयों तक, गुफाओं तक, झरनों से लेकर पार्क्स और झीलों तक सब कुछ मिल जाएगा। कोडाईकनाल का हिल स्टेशन दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करता है, अपने पास बुलाता है।

जो भी देखता है कोडाई झील को उसे देखता है और चाहने लगता है। कोडाई झील वो झील है जिसके नाम पर कोडाई कनाल का नाम पड़ा है। जी हाँ, ये 500 मीटर की लंबी झील है और 60 एकड़ में फैले हुए एक तारे की तरह लगती है। जो इसका आकार है वो एक तारे की शेप का है। बहुत ही खूबसूरत लगती है ये झील अगर आप ऊपर से देखेंगे, टॉप एंगल से। हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन में बैठ के तो बहुत ही खूबसूरत लगेगी। ऐसा लगेगा जैसे एक आसमां धरती पर, एक तारा धरती पर। इस झील में आप नौका विहार करिए और उसके चारों ओर आप सवारी कीजिए। छोटे छोटे टट्टू होते हैं उनकी, बहुत ही खूबसूरत लगेगा, बहुत मजा आएगा आपको। एक और झील है इसी के आसपास है, मतलब 21 किलोमीटर दूर है थोड़ी कोडाई कनाल से, बेरिजम झील है। यहाँ पर लोग पिकनिक मनाने आते हैं, बहुत ही खूबसूरत झील है ये। एक और है, ये 34 किलोमीटर दूर है यहाँ से कोडाई कनाल से, लोग यहाँ पे भी आते हैं जो कोडाई कनाल घूमने आते हैं। नाम है इसका मन्नावनूर झील। और ये जो झील है ना, जब इस पे आप जाएंगे तो रास्ते में यूकेलिप्टस और चीड़ के पेड़ों से घिरी सड़कें आपको दोनों तरफ मिलेंगे और ये रास्ता जो है पेड़ों से भरा हुआ और भी ज्यादा खूबसूरत बना देता है इस झील तक पहुंचने के सफर को। कोकर वॉक है ये, लगभग आधा किलोमीटर दूर होगा कोडाई कनाल झील से। बहुत ही खूबसूरत है ये। लोग अक्सर क्या करते हैं, सुबह या शाम को टहलते हुए यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ की हरी भरी हरियाली, ताजगी भरा वातावरण, यहाँ पर सैर करके उनको मजा आता है। कोकर वॉक जो कोडाई कनाल का है। डॉल्फिन की नाक है ये, कोडाई कनाल झील से लगभग 8 किलोमीटर दूर होगा और बहुत ही खूबसूरत है। एक सपाट उभरी हुई चट्टान है जो काफी एकांत और शांत है। पम्बन पुल के तुरंत बाद शुरू होने वाले जो पथरीले रास्ते हैं वहां से यहाँ पहुंचा जा सकता है। मोयर पॉइंट है, मोयर पॉइंट जो है वो भी बहुत खास पॉइंट है जिसे देखने लोग आते हैं। ये हरे भरे पहाड़ों के मनमोहक दृश्य को प्रस्तुत करने वाला है मोयर पॉइंट, जो है पूरे हिल स्टेशन में फैला हुआ है कोडाई कनाल के, और बहुत ही खूबसूरत सी जगह है ये, जिसको लोग इंजॉय करते हैं, साथ में आते हैं, हाथ में हाथ पकड़े यहाँ घूमते हैं।

गाना गुनगुनाना, साथ साथ चलना और अपना समय बिताना, ये सब कुछ तब होता है जब कोई बहुत खूबसूरत सा व्यू पॉइंट हमारे सामने हो, जैसे कि कोडाईकनाल का साइलेंट वैली व्यू पॉइंट। बहुत ही खूबसूरत नज़ारों में से एक है ये कोडाईकनाल के, और यहाँ पहुंचकर आपको लगेगा जैसे आप दुनिया के शिखर पर हैं, इतनी खूबसूरती है यहाँ पर। ग्रीन वैली व्यू भी है, हरी भरी हरियाली का बेजोड़ नज़ारा आप यहाँ से देख सकते हैं। टेलीस्कोप हाउस है जो हमने आपको बताया था ना, कोकर वॉक, जहाँ पर लोग सैर के लिए जाते हैं हाथों में हाथ लिए, वहीं पर है टेलीस्कोप हाउस भी। यहाँ से इस टेलीस्कोप हाउस से आप घाटी और आसपास के जो छोटे छोटे कस्बे हैं ना बसे हुए, उनको देख सकते हैं। बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा। वेम्बाड़ी शिखर है जिसको हम वेदम्बी चोटी के नाम से भी जानते हैं, मतलब यहाँ के जो लोकल्स हैं वो इसको वेदम्बी चोटी भी कहते हैं, वेम्बाड़ी शिखर भी कहते हैं। ये जो है ना, इस शिखर से आप बैरिजम झील, बंदरावू पर्वतमाला, मन्ना वनूर भेड़ फार्म, पुम्बराई घाटी, इन सब की शानदार नज़ारे देख सकते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ उस चोटी पर जहाँ पे हैं आप, वहाँ से देख रहे हैं, नीचे घाटी है, हरियाली है, मतलब आप आंखें बंद करके अगर सोचेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कितनी खूबसूरत और कितनी विशाल जगह होगी ये। इस चोटी की जो चढ़ाई है ना, कोडाईकनाल का टीवी टावर है वहाँ से शुरू होती है। पेरुमल शिखर है ये कोडाईकनाल से लगभग 11 किलोमीटर दूर है। रोचक कहानियां, मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है ये पेरुमल शिखर। ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, और स्थानीय निवासी जो यहाँ पर जब आप जाएंगे तो बताते हैं वो कि ये शिखर कभी एक सक्रिय ज्वालामुखी था और 1000 सालों से भी ज्यादा समय से ये अब निष्क्रिय है। तो यहाँ पर लोग घूमने आते हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाटों के मनोरम दृश्य, रोमांचक ट्रेकिंग मार्ग इस जगह को और भी ज्यादा खूबसूरत और रोमांच से भरा बना देते हैं।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर,
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न आईटीआर 1 या आईटीआर 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
3: दशमलविक मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ भावना बात हो रही है कोडाई कनाल की।

आप जरूर जाइएगा पिलर रॉक्स। ये ग्रेनाइट के तीन विशाल शिलाखंड हैं। विशाल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर एक 400 फीट ऊंचा है। बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है ये। और दो जो शिलाखंड है ना, उनके बीच एक कक्ष है जिसको शैतान की रसोई कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है ये तो अब जब पहुंचेंगे तो यहाँ के लोकल्स आपको बताएंगे, या फिर जो टूरिस्ट गाइड आपके साथ होंगे वो भी आपको इसकी कहानी सुनाएंगे। आराम से सुनिएगा, हमें बताइएगा कि क्यों कहा जाता है। पिलर रॉक्स ये एक शानदार जगह है। आप यहाँ के पहाड़ी इलाके की जो ताजगी है उसका अनुभव यहाँ पर कर सकते हैं। छोटा सा एक बगीचा भी है यहाँ पर जो इस जगह को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाता है। इसके अलावा ना ये है अपर लेक व्यू। एक ऐसी जगह है ये जहाँ से आप, हमने बताया था ना आपको, तारे के आकार की झील है ना, कुडाई झील, जिसके नाम पर कुडाई कनाल का नाम पड़ा है, उसको आप यहाँ से देख सकते हैं, इस व्यू पॉइंट से देख सकते हैं, अपर लेक व्यू से। ये कोकर वॉक जो हमने बताया था कि हाथ में हाथ डाल के सब लोग घूमते हैं, मतलब अच्छे से घूमते हैं वहाँ पर, जहाँ पे आपको बताया कि वो भी था जहाँ से आप देख सकते हैं वॉच टावर, वहीं पर ये है। उससे मतलब लगभग जो है ना 3.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ से थोड़ा और दूर आप चलिए कोडाई कनाल झील से 2 किलोमीटर की दूरी पर भालूशोला जलप्रपात है। मतलब इसका नाम क्यों पड़ा भालूशोला जलप्रपात, क्योंकि बहुत सारे भालू यहाँ पानी पीने अक्सर आते हैं यहाँ पर। मतलब जो मानसून चल रहा है ना, अभी जो समय चल रहा है बारिश का आने वाला है, और आ गई है बारिश कहीं कहीं पर तो काफ़ी ज़्यादा। पुणे में बताया था सुबह, हमारे पास जब मैसेज आया कि बहुत दिनों से, मतलब जो है 3 दिन से लगातार कह रहे थे बारिश हो रही है वहाँ पर। तो ये इस समय बारिश के महीनों में जो इस जलप्रपात का जो दृश्य है वो देखने लायक होता है, भालूशोला जो शोला जलप्रपात है। इसके अलावा थलेयार जलप्रपात भी है। थलेयार जलप्रपात जो है तमिलनाडु का सबसे ऊंचा और भारत का छठा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और मतलब क्योंकि ये इतनी ऊंचाई से गिरता है, बहुत मतलब 975 फीट की ऊंचाई से लगभग ये पानी नीचे गिरता है, और इसकी धार जो होती है ना बहुत पतली हो जाती है। इतनी पतली धार को भी आप नंगी आंखों से देख सकते हैं, कोई भी ऐसा चश्मा या खास उपकरण लगाए बिना। तो बहुत ही खास बात है ये यहाँ की। कोडाई कनाल से ये जलप्रपात जो है ना लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। जो लोग आते हैं वो यहाँ पर भी आते हैं। इसके अलावा एक और है, पंबर गांव में है पंबर जलप्रपात, ये भी बहुत खास है। यहाँ पर ना घुमावदार चट्टानी संरचना है और फिर नीचे एकदम एंड में जाकर ये जल निकाय का रूप ले लेती हैं। तो ये खास संरचना है जिसको देखने लोग आते हैं। सिल्वर कैस्केड फॉल्स, सिल्वर कैस्केड जलप्रपात जो है ये कोडाई झील से इसको जल प्राप्त होता है, और झील का अतिरिक्त जल एक खड़ी चट्टान से गिरता है और फिर एक कुंड बन जाता है। यही चीज देखने लोग यहाँ पर आते हैं। तो बहुत ही खास खास चीजें आप देख पाएंगे कोडाई कनाल और उसके आसपास जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइएगा। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

जलवा अगर आपको देखना है ना तो ब्रायंट पार्क है कोडाईकनाल का, वहां का देखिए आप। वनस्पति उद्यान है ये, 325 से ज्यादा प्रजातियों के पेड़ पौधे झाड़ियां यहाँ आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ना एक 160 साल पुराना यूकेलिप्टस का पेड़ है और एक और पेड़ है धार्मिक बोधि वृक्ष जिसको कहते हैं, इसको देखने लोग दूर दूर से आते हैं। और यहाँ हर साल वार्षिक बागवानी की प्रदर्शनी भी आयोजित की जाती है जो दुनिया भर के प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करती है। एक और जगह है चेट्टियार पार्क, ये कोडाईकनाल की शान है। एक पौधों की विस्तृत श्रृंखला जो है वो श्रृंखला आपको अपनी ओर खींचेगी। और यहाँ का जो मेन आकर्षण है वो यह है कुरुंजी फूल, 12 साल में एक बार खिलता है ये। और ये जो पार्क है चेट्टियार पार्क, ये कुरुंजी मंदिर के रास्ते में पड़ता है। बहुत ही खास है ये जगह।

0: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ieefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: पर्सनल लोन ऑफर
3: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
2: फ्री ट्रिप टू दुबई
3: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
4: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
3: तो क्या करूं?
4: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड।

0: देशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
1: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
0: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।

बहुत सारी खूबसूरत चीजें हैं कोडाईकनाल में। पलयार जनजातियों की विभिन्न कलाकृतियों को देखने के लिए आप यहाँ के संग्रहालय में आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत कुछ जो ऐसा खास हो, जैसे कि मोम संग्रहालय कोडाईकनाल का। बहुत सारी जो खास पर्सनालिटीज हैं हमारे देश की, उन सब के आप यहाँ पे मोम के संग्रहालय देख सकते हैं। भगवान कृष्ण और गोपिकाओं का आप मोम संग्रहालय में उनकी मोम की मूर्तियों को देख सकते हैं, यीशु को देख सकते हैं, लोक नृत्यों की देख सकते हैं, कलाकृतियों को देख सकते हैं अलग अलग। कोडाईकनाल की सौर वेधशाला, ये भी बहुत खास है जिसे देखने लोग आते हैं। इसके अलावा भगवान मुरुगन को समर्पित है यहाँ का कुरुंजू मंदिर। कुरुंजी मंदिर जो है बहुत ही खास है, कुरुंजी फूल के लिए भी प्रसिद्ध है ये जगह। और यहाँ पर आपको लॉ सलेथ चर्च भी देखने को मिलेगा कोडाईकनाल में, क्राइस्ट द किंग चर्च भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा कोदाई इंटरनेशनल स्कूल के पास जो है लूथरन चर्च आप जा सकते हैं। यहाँ का सुब्रमण्य मंदिर आप देख सकते हैं जो बहुत खास है। यहाँ का अन्ना सलाई बाजार है जहाँ से आप पीतल के बर्तन, चमड़े और लकड़ी से बने उत्पाद ले सकते हैं। यहाँ घर में बनी चॉकलेट्स आप ले सकते हैं, हस्तशिल्प।

भूषण आभूषण और इसके साथ साथ तेल और मसालों की भी बहुत सारी श्रृंखला आपको देखने को मिल जाएगी, खरीदने को मिल जाएगी। आपके लिए है यहाँ पर 80 मील का चक्कर आप लगा सकते हैं, जिसको 80 मील राउंड ट्रैक कहते हैं। रोमांचक अनुभव आपको मिलेगा यहाँ पर। और कोडाईकनाल का गोल्फ क्लब आप घूम सकते हैं, 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। बहुत कुछ है यहाँ देखने और घूमने के लिए, बस आपको यहाँ आना है।

12:10 पर घर आंगन प्रोग्राम आप देखेंगे आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। अब स्वीकार कीजिए भावना का नमस्कार। मैं चलती हूँ लेकिन आप कहीं मत जाइए, अब से थोड़ी देर में समाचार सुनिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। श्री नड्डा ने बैठक को सकारात्मक बताया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो फर्जी और एआई से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोरफिम पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताया और कहा कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज से दोबारा शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को ये जानकारी दी। वहीं असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। सबसे अधिक प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। वहीं गुजरात में तेज बारिश के बाद बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के 265 क्षेत्रों में बारिश हुई है। राज्य राहत आयुक्त ने 5 मौतों की पुष्टि की है। मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. The Union Cabinet has approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashwani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. Prime Minister Narendra Modi posted a fresh video message on his Instagram handle last night, thanking everyone for the responses and positive suggestions received to his previous video, where he had announced the government's decision to bring a strict law to punish those involved in paper leaks. In the fresh video message, Mr. Modi said the relations will continue with more bonding.
1: Thank you, friends. मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी. ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा.
2: Mr. Modi created a new world record with the most views on a reel in 24 hours, garnering 303 million views as of now. The earlier record was 300 million views. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, the National Testing Agency NTA has terminated 47 officials from service. This is part of a complete overhaul of the NTA.

0: आंगन।
1: जी हाँ, कार्यक्रम है घर आंगन। आप सुन रहे हैं FM

0: गोल्ड चैनल FM 100.1 MHz पर आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर और DRM 810 किलोहर्ट्ज पर भी। और आज के इस कार्यक्रम में हम हैं आपके साथ, मैं राधा पाठक
1: और मैं हूँ दीपा भूषण।
0: हम दोनों का प्यार भरा
1: नमस्कार। राधा कैसी हो?
0: बहुत अच्छी हूँ,
1: बहुत दिन बाद मुलाकात।
0: हाँ, आपकी मुस्कुराहट देख के तो वैसे भी मन में बहुत प्रसन्न हो जाता है।
1: और देखो राधा, मौसम सुहाना हो रहा है और हमारे श्रोतागण घर आंगन कार्यक्रम सुनने के साथ साथ सुहाने मौसम का भी आनंद ले रहे हैं।
0: और इस आनंद को और बढ़ाने के लिए हम घर आंगन कार्यक्रम में ले आए ढेर सारी काम की बातें और सुरीली खूबसूरत गीत। दीपा जी, कौन सा सुंदर विचार लेकर आई हैं आप?
1: बिल्कुल राधा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना ज़रूरी नहीं, बल्कि जो रिश्ते हैं, जो रिश्ते हमारे साथ हैं, उनमें जीवन यानी सच्चाई और अपनापन होना बहुत ज़रूरी है।
0: सच में दीपा, ये बहुत सुंदर संदेश है। जीवन में रिश्तों की संख्या नहीं, बल्कि उनमें प्रेम, विश्वास, ईमानदारी और अपनापन सबसे अधिक मायने रखता है। और जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं, वही जीवन के सच्चे अर्थों में समृद्ध और सुखद बनाते हैं।

0: को हम ढेर सारी जानकारी देते हैं।
1: जी हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो आए हैं हम। देखिए ये गीत हमने सुना कोहिनूर फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में।
0: और दोस्तों अब हम आज बात करेंगे मैदान की, मेडल की नहीं बल्कि उस मजबूत व्यक्तित्व की जो मैदान से निकल कर आता है।
1: बिल्कुल, हम अपनी बेटियों की पढ़ाई, अच्छे स्कूल, करियर और भविष्य की बहुत चिंता करते हैं, लेकिन एक सवाल है, क्या हम उतना ही ध्यान इस बात पर देते हैं कि हमारी बेटियां किसी न किसी खेल से भी जुड़ी हों?
0: बिल्कुल दोस्तों, और यही तो बात है, अक्सर खेल को हम अक्सर सोचते हैं कि ये मनोरंजन या खाली समय बिताने का साधन है, लेकिन सच तो ये है कि खेल जीवन की सबसे अच्छी पाठशाला है।
1: बिल्कुल, और खेल जो है वो सिर्फ शरीर को मजबूत नहीं बनाते बल्कि मन और व्यक्तित्व को भी गढ़ते हैं। खेल सिखाते हैं अनुशासन, समय का महत्व, हार के बाद दोबारा उठना, जीत के बाद विनम्र रहना, सही समय पर सही निर्णय लेना, और सबसे बड़ी बात है दीपा, दूसरों के साथ मिलकर आगे बढ़ना।
0: बिल्कुल सही कहा राधा। और दोस्तों खेल का मतलब केवल क्रिकेट, हॉकी या बैडमिंटन नहीं है। अगर आपकी बेटी को दौड़ना पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, हो सकता है उसे शतरंज पसंद हो, किसी को तीरंदाजी अच्छी लगती है, किसी को शूटिंग, किसी को तैराकी।
1: और जब परिवार विश्वास करता है तो बेटियां कमाल करती हैं। हमारी बेटियां लगातार विश्व स्तर पर भारत का परचम लहरा रही हैं।
0: और राधा इसके पीछे क्या है, एक ऐसा परिवार जिसने कहा खेलो हम तुम्हारे साथ हैं, यही विश्वास किसी भी बेटी की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है।
1: और दीपा मुझे लगता है कि हर बेटी का लक्ष्य मेडल जीतना होना भी नहीं चाहिए, खेलना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे व्यक्तित्व निखरता है, आत्मविश्वास आता है, लोगों में घुलना मिलना सीखा जाता है, समाज को समझा जा सकता है, चुनौतियों का सामना किया जा सकता है और मानसिक रूप से मजबूती भी मिलती है।
0: और बिल्कुल आज राधा बिल्कुल सही बात कही तुमने, और आज तनाव, प्रतिस्पर्धा और तेजी से बढ़ती दुनिया में मानसिक मजबूती सबसे बड़ी आवश्यकता है। खेल हमें सिखाते हैं कि हर हार अंत नहीं होती बल्कि अगली जीत की तैयारी होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात कि हर हार जो है वो अंत नहीं होती, क्योंकि जिंदगी में ये सबक बहुत जरूरी है कि हार अंत नहीं होती बल्कि अगली जीत की तैयारी होती है। याद रखिए दोस्तों, खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार मेडल नहीं होता, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है एक स्वस्थ शरीर, एक सशक्त मन, सही निर्णय लेने की क्षमता, अनुशासित जीवन और सकारात्मक व्यक्तित्व।
0: तो आइए दोस्तों आज हम एक छोटा सा संकल्प लेते हैं, अपनी बेटियों को सिर्फ पढ़ने का ही नहीं खेलने का भी पूरा अवसर देंगे, क्योंकि जब एक बेटी खेलती है तो केवल एक खिलाड़ी नहीं बनती, वह जीवन की हर चुनौती का सामना करने वाली एक सशक्त नागरिक बनती है।

0: श्रोताओं, अभी आपने गीत सुना सच हुए सपने तेरे, फिल्म थी काला बाजार और गायिका थी आशा भोसले।
1: और एफएम गोल्ड पर चल रहा है कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम चल रहा है जी, घर आंगन। और हम अपनी महिलाओं से, श्रोताओं से बातें कर रहे हैं ढेर सारी। आज है 25 जुलाई जब मनाया जाता है विश्व डूबने से बचाव दिवस यानी वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे। इस दिन का मुख्य उद्देश्य पानी में डूबने की घटनाओं और उससे होने वाले हादसों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है।
0: बिल्कुल राधा, तुमने सही जानकारी दी। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार हर साल बहुत से लोग पानी में डूबने से अपनी जान गंवा देते हैं।
1: और इसके बचाव के उपाय भी बता दीजिए दीपा जी।
0: इसके बचाव के लिए पानी तक पहुंच को नियंत्रित करने के लिए बैरियर लगाना बहुत जरूरी है। बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करना, तैराकी सिखाना और सुरक्षित बचाव तकनीकों का प्रशिक्षण देना राधा बहुत जरूरी
1: है। जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि खेल सिखाने चाहिए बच्चों को। हाँ, तो तैराकी तो भी उसी में आता है कि तैराकी भी हमें अपने बच्चों को जरूर सिखानी चाहिए।

0: ठंडी हवा काली घटा, ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म थी मिस्टर एंड मिसेस 55, गायक कलाकार थे गीता दत्त और साथी। और राधा, अब तुम कहो तो कुमाऊं की बात करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और एक गीत तुमने सुना होगा, बेड़ू पाको बारमासा, सुनाया गया? हाँ, ये कुमाऊं से बहुत फेमस गीत है। और ये धुन सुनते ही मन जो है उत्तराखंड की हरी भरी वादियों में पहुंच जाता है। और दोस्तों, उत्तराखंड की पहचान सिर्फ उसके पहाड़, नदियां और लोकगीत ही नहीं, बल्कि उसकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं भी हैं। और ऐसी ही एक खूबसूरत परंपरा है पिछौड़ा, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं।
1: पिछौड़ा यानी दुपट्टा, जिसे विवाहित महिलाएं लहंगे या साड़ी के ऊपर ओढ़ती हैं। ये पीले और लाल रंग का होता है और उसपे कुछ डिजाइनिंग होती है, एक सुंदर और पारंपरिक परिधान है। एक बात और मुझे याद आई है दीपा, कि दिल्ली में हम जो ये पिछौड़ा तरीके का दुपट्टा हम ओढ़ते हैं, जो हम दिल्ली के महिलाएं किसी भी त्योहार पे, उसे हम बोलते हैं पीलिया।
0: अच्छा अच्छा,
1: वो उसी तरीके का होता है, बस थोड़ा सा डिजाइन चेंज होता है।
0: अच्छा अच्छा, बिल्कुल राधा। और कुमाऊं में इसे विवाह, जनेऊ, नामकरण, देवी पूजन, हरेला, नवरात्र और दूसरे मांगलिक अवसरों पर महिलाएं बड़े सम्मान के साथ इसको धारण करती हैं। खासकर विवाह में दुल्हन को पिछौड़ा ओढ़ाने की परंपरा सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन की मंगल कामना से भी जुड़ी है।
1: और दीपा, इसकी बनावट भी बहुत खास होती है। पारंपरिक जो पिछौड़ा होता है वो हल्के पीले या केसरी रंग के कपड़े पर बनाया जाता है। उस पर लकड़ी का नक्काशीदार मोहरों से लाल रंग के सुंदर डिजाइन छापे जाते हैं। और पीला और लाल रंग मिलके जो खूबसूरती आती है ना,
0: बहुत
1: ही खूबसूरत होता है,
0: प्यारा लगता है राधा। और इसके बीच में स्वस्तिक, सूर्य, चंद्रमा, शंख, घंटी, कलश और कमल जैसे शुभ प्रतीक बनाए जाते हैं, जो सुख, समृद्धि और मंगल का संदेश देते हैं।
1: वाह वाह वाह, यानी पिछौड़े का हर रंग और हर आकृति अपने आप में एक कहानी बताती है।

0: महबूबा फिल्म का ये गीत हमने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में।
1: और राधा, हम फिर आ जाते हैं जो हम बात अभी कर रहे थे अपने श्रोताओं से पिछौड़े की, कुमाऊं के। और एक रोचक बात मैं और बताना चाहूंगी कि जो पहले पिछौड़ा जो था पूरी तरह से हाथ से ही बनाते थे, अब लकड़ी के ब्लॉकों से छपाई की जाती थी और प्राकृतिक रंगों का उपयोग आता था। आज भले ही आधुनिक तकनीक आ गई है, लेकिन आज भी हाथ से बने पारंपरिक पिछौड़े की पहचान और सम्मान आज भी कायम है। आज भी लोग उसी तरह से उसको देखते हैं।
0: मुझे तो ये देखकर बहुत अच्छा लगता है दीपा, कि आज की युवा पीढ़ी भी अपनी संस्कृति से जुड़ रही है, चाहे वो देश हो या विदेश। शादी और धार्मिक अवसरों पर गर्व से पिछौड़ा पहना जाता है।
1: बिल्कुल, और इसमें स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों और शिल्पकारों का भी बड़ा योगदान है। वे इस पारंपरिक कला को जीवित रखे हुए हैं, इससे हमारी सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रहती है और स्थानीय लोगों को, राधा देखो, रोजगार भी मिल जाता है।
0: और पिछौड़ा जो है वो सिर्फ एक परिधान नहीं होता, बल्कि हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है, हमारी परंपरा है और हमारी सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है और जो आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ता है।

0: अभी आपने फिल्म तुमसा नहीं देखा का एक गीत सुना, आवाजें थी मोहम्मद रफी और आशा भोसले जी की।
1: और दीपा, हम बात करेंगे अब एआई की। जी हाँ, आजकल तो एआई बहुत चल रहा है,
2: बहुत
1: क्योंकि मशीनों में इंसानों जैसी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता है। आज हमारे दैनिक जीवन को आसान और तेज और स्मार्ट बनाने के लिए जो एआई है वो बहुत प्रमुख साधन बन चुका है, पहले से ही है। अब गूगल मैप्स खोलते हैं, हम मैप देखते हैं, कहीं जाते हैं, कोई नई भाषा सीखनी होती है, कोई भी हम सोशल मीडिया में गाने देखते हैं या फिल्में देखते हैं, वो सब एआई ही तो है। अब डिजिटल तकनीक जो है ये हर पल बदलती दुनिया में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ी वजह बनता जा रहा है। इसकी बहुत जरूरत होगी, हर समय इसकी जरूरत है हमें। लेकिन अब एआई से जुड़ी नई नई जानकारियां, एप्स और टूल्स की जो भरमार है ना, उसने तनाव को बढ़ा दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि एआई हमारे काम को आसान बनाने के लिए आया है, लेकिन यदि इसका उपयोग संतुलित तरीके से न किया जाए तो मानसिक तनाव भी हो सकता है। हर समय नई तकनीक को अपनाने और उसके बारे में जानने की कोशिश लोगों को तनाव में डाल रही है। अब इसके कुछ उपाय आप दीपा जी बताइए।
0: हाँ, मैं बिल्कुल अपने श्रोताओं को इसके उपाय बताती हूँ। इसके लिए आप आवश्यक नोटिफिकेशन ही चालू रखें, स्क्रीन टाइम सीमित करें, काम के दौरान बीच बीच में छोटा सा ब्रेक जरूर लें, एआई का उपयोग केवल आवश्यकता के अनुसार करें, हर नई तकनीक को तुरंत अपनाने का दबाव न डालें, दिन में कुछ समय मोबाइल और इंटरनेट से पूरी तरह दूर रहें। ये तो बहुत जरूरी है,
1: बिल्कुल, क्योंकि लेकिन डिजिटल दुनिया से पूरी तरह से जो दूरी बनाना ना बिल्कुल संभव नहीं होता, लेकिन उसका संतुलित उपयोग हम कर सकते हैं। हमें अपने दिमाग में सोचना होगा कि हम बैलेंस कैसे बनाएं, कब फोन का इस्तेमाल करना है, कब एआई का इस्तेमाल करना है, कब नहीं करना है। यदि हम एआई और डिजिटल साधनों का समझदारी से उपयोग करेंगे तो इसके लाभ भी मिलेंगे और मानसिक तनाव से भी बचा जा सकता है।

0: बताऊं, अभी आपने गीत सुना दिल तेरा दीवाना है सनम, फिल्म थी दिल तेरा दीवाना, गायक कलाकार थे लता मंगेशकर मोहम्मद रफी।
1: एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन, और आज का इस कार्यक्रम में हम हैं आपके साथ, मैं राधा पाठक
0: और मैं हूं दीपा भूषण।
1: बातें कर रहे हैं हम काम की, अपनी महिलाओं की, अपने श्रोताओं के काम की बातें हम आपको बता रहे हैं। और अब बात करेंगे बहुत जरूरी, जो किचन से भी जरूरी मतलब जुड़ी हुई है दीपा, और हम बताने वाले हैं गीला और सूखा कचरा प्रबंधन यानी अपशिष्ट प्रबंधन। अब देखिए घर में जो भी निकलता है कचरा तो उसे डिवाइड करना बहुत जरूरी है। अभी तो सारा इकट्ठा कर दिया जाता है, कई महिलाएं उस कचरे को अलग अलग भी करती हैं, बहुत काबिले तारीफ है ये बात कि वो अलग अलग रखती हैं। लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता देते हैं कि गीला और सूखा कचरा प्रबंधन दो मुख्य हिस्से हैं। गीला कचरा सड़ने वाला जैविक कचरा होता है जिससे खाद बनती है जो हरे डिब्बे में जाता है, और सूखा कचरा नहीं सड़ने वाला रिसाइकिल योग्य कचरा होता है, वो नीले डब्बा होता है। इसे अलग रखना पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है।
0: और दोस्तों जो गीला कचरा है ये पूरी तरह से जैविक होता है और प्राकृतिक रूप से सड़ जाता है। इसका उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है, जैसे फलों और सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, चाय की पत्तियां, अंडे के छिलके और पौधों की पत्तियां। गीले कचरे के लिए हम हरा डस्टबिन का उपयोग करते हैं।
1: बिल्कुल सही बताया दीपा, क्योंकि जैसे घास का रंग हरा होता है ना, ऐसे सोचा जा सकता है कि हम उसे खाद बना देंगे तो हरा डस्टबिन हमें याद रहेगा। और जो सूखा कचरा होता है ड्राई वेस्ट, वो नीला डस्टबिन में जाता है जिसे रिसाइकिल किया जा सकता है और आसानी से प्राकृतिक रूप से वो नहीं सड़ता है। जैसे प्लास्टिक की बोतलें हैं, पॉलिथीन है, दूध के खाली पैकेट हैं, कागज है, गत्ते हैं, धातु के डिब्बे हैं, कांच है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो है वो सूखा कचरा होता है। एक बात और है, जो कांच है ना नीले में डाल सकते हैं लेकिन

0: अगर अलग से पॉलिथीन में पैक करके अगर उसे ब्लैक में दिया जाए, क्योंकि वो हैजार्डस वेस्ट होता है, क्योंकि खतरनाक होता है, तो उसे अलग से दिया जाना चाहिए।
1: और अब मैं बताए चाहूंगी श्रोताओं को कि सूखे और गीले कचरे को अलग क्यों करना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: है ना, गीले कचरे से जैविक खाद तैयार की जाती है, सूखे कचरे को रिसाइकल करके नई चीजें बनाई जाती हैं। यदि दोनों को मिला दिया जाए तो बदबू पैदा होती है, कचरे का रिसाइकल नहीं हो पाता और बीमारियों के पनपने का खतरा बढ़ जाता है।
0: इसलिए अपने किचन में और घर में हर जगह ध्यान रखिए कि गीला कचरा हमें अलग रखना है और सूखा कचरा अलग।
2: तुम्हें
1: हाँ
2: क्या चुप रहूं
1: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है,
1: क्या है

0: कहना है और अपने दिल में जो भी बात है वो हमारे श्रोताओं को भी कहनी है कि ये कार्यक्रम उन्हें हमारा कैसा लग रहा है, हमारी ईमेल आईडी पे fmgoldga@gmail.com पे बता देना है कि ये कार्यक्रम कैसा लगता है और क्या क्या चाहते हैं उस कार्यक्रम में। ये गीत हमने लिया था दीवार फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में।
1: और राधा, बारिश का मौसम है, देखो कभी ना कभी घूम फिर के बारिश आ रही है, कभी धूप भी आ जा रही है,
0: और दिल्ली में कहीं बारिश हो रही है कहीं नहीं हो रही है, और मौसम बड़ा सुहावना है,
1: बहुत सुहावना। और राधा, बरसात की रिमझिम फुहारे हो और ठेले पर ताजे ताजे जामुन दिख जाए तो मन अपने आप उनकी ओर खींचा चला जाता है।
0: बिल्कुल दीपा, और जामुन खाते ही सबसे पहले जीभ का जो बैंगनी हो जाना है ना वो याद आता है। बचपन में तो हम सब एक दूसरे को जीभ दिखाकर खूब हंसते थे।
1: बहुत सही कहा, लेकिन जामुन सिर्फ बचपन की यादें ही नहीं, सेहत का भी खजाना है। आयु

0: यही कारण है दीपा कि बरसात के मौसम में जामुन का सेवन शरीर को ताजगी देने के साथ साथ संतुलित आहार का भी अच्छा हिस्सा माना जाता है।
1: और मैं बताऊं राधा, जामुन खाने के साथ साथ बहुत से लोग घर पर जामुन का शरबत भी बनाते हैं। साथ ही इसमें मौजूद फाइबर पाचन तंत्र में सहायक माना जाता है। मौसम के ताजे फल हमारे भोजन को और भी पौष्टिक बना देते हैं
0: और एंटीऑक्सीडेंट शरीर की कोशिकाओं की सुरक्षा में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। और कहा जाता है कि जो फल जिस मौसम में मिले उसका आनंद उसी मौसम में लेना चाहिए।
1: तो दोस्तों, इस बरसात में जामुन जैसे ताजे और मौसमी फलों को जरूर खाएं। और हाँ, खाने से पहले इन्हें अच्छी तरह धोना ना भूलें। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और प्रकृति के इन अनमोल उपहारों का आनंद लीजिए।

0: सायोनारा जी हाँ, लव इन टोक्यो फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे हैं और कार्यक्रम का ये अंतिम गीत है दीपा, और हम चाहते हैं श्रोताओं से इजाजत,
1: और हम भी सायोनारा कहें।
0: सायोनारा, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। सबसे अधिक प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 61 हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। वहीं गुजरात में तेज बारिश के बाद बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के 265 क्षेत्रों में बारिश हुई है। राज्य राहत आयुक्त ने 5 मौतों की पुष्टि की है। मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
0: इस वीडियो को अब तक 30,30,00,000 से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की

बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपाय से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। श्री नड्डा ने इस बैठक को सकारात्मक बताया था। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारी को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो फर्जी है और AI से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से टेलीफोन पर बातचीत की और राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शर्मा ने कहा कि असम के लोग इस कठिन समय में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन और अटूट समर्थन के लिए उनके प्रति अत्यंत आभारी हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम से प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। खेलों में ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताया और कहा कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हो चला है 1:10 और 57 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का ये FM गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और कार्यक्रम कौन सा है? कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल। और कलाकार बेमिसाल कार्यक्रम में मैं संगीता हूँ आप सभी के साथ। दोस्तों, हर फिल्मकार का अपना एक अलग अंदाज होता है, वो अपनी सोच के मुताबिक कहानियां चुनता है। आज की अगर हम बात करें, आज के दौर की अगर हम बात करें, तो बॉलीवुड में बोल्ड फिल्मों का दौर है और OTT पर भी बोल्ड कंटेंट पर सीरीज बन रही हैं। लेकिन अगर हम 7वें और 8वें दशक की बात करें, तो 7वें और 8वें दशक में निर्देशक B.R. इशारा ने अपनी बोल्ड थीम वाली फिल्मों से धूम मचा दी थी। सच्चाई तो ये है कि B.R. इशारा ही थे जो कम बजट की बोल्ड फिल्में बनाने का ट्रेंड लेकर आए थे। तो कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल और आज जिक्र किसका? B.R. इशारा का। मैं संगीता हूं आप सभी के साथ और ये खूबसूरत सा गीत आपके लिए।

तो आपसे कहना ये है कि अगर अभी अभी आप हमारे साथ जुड़े हैं, फिल्म गोल्ड के साथ जुड़े हैं, तो हम आपको बता देते हैं कि कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल, और आज हम कलाकार बेमिसाल में बीआर इशारा की बात कर रहे हैं। बीआर इशारा की पहली सुपरहिट फिल्म थी चेतना, जिसका गीत अभी हमने आपको सुनाया। 1970 में आई थी ये फिल्म, और एक ऐसी लड़की की कहानी है जो गलत रास्ते पे चली जाती है, और इस कहानी ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। फिल्म में रेहाना सुल्तान थी, शत्रुघ्न सिन्हा थे और अनिल धवन थे। वैसे आपको पता है, हिमाचल के अपने घर से भागकर मुंबई पहुंचे थे बीआर इशारा। फिल्मों के सेट पर बीआर इशारा चाय पिलाने का काम किया करते थे। किसी को क्या पता था कि सेट पर चाय पिलाने वाला ये लड़का एक दिन अपनी बोल्ड थीम वाली फिल्मों से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा देगा। बीआर इशारा की कुछ और बातें करेंगे, लेकिन इस एक खूबसूरत से गाने के बाद।

हम भी आपसे तो यही कहेंगे कि एक नजर हमारी तरफ भी फेरिए और देखिए तो सही कि हम क्या कार्यक्रम लेकर आए हैं। आज हम बात कर रहे हैं बीआर इशारा की। बीआर इशारा सेट पर धीरे धीरे लिखने का काम करने लगे। 1964 में अजीत को लेकर उन्होंने फिल्म बनाई, उस फिल्म का नाम था आवारा बादल, और उसके बाद संजीव कुमार और पृथ्वीराज कपूर को लेकर फिल्म गुनाह और कानून का निर्देशन किया, लेकिन पुख्ता पहचान मिली फिल्म चेतना से ही। इसके बाद तो उन्होंने हमेशा ऐसे विषयों को ही उठाया जिस पर लोग बात करने में भी संकोच करते हैं। पर्दे पर देखना तो बहुत दूर की बात थी। इशारा की फिल्मों में रिश्तों, भावनाओं और उससे उपजी मुश्किलों को बड़ी खूबसूरती के साथ और बड़ी गहराई के साथ प्रस्तुत किया गया।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
5: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
4: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
5: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
4: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।

कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल, और कलाकार बेमिसाल में आज हम बात कर रहे हैं निर्देशक बी आर इशारा की। बी आर इशारा ने कई ऐसी फिल्में बनाई जिससे उस समय लोगों ने पसंद किया, लेकिन उसकी आलोचना भी की, शायद इसलिए भी कि वो फिल्में अपने समय से काफ़ी आगे थी। और जब भी कोई ऐसी फिल्म बनती है जो समय से आगे की फिल्म होती है, उस समय तो लोग उसे नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आने वाले समय में वो एक क्लासिक फिल्म बन जाती है। मेरा नाम जोकर की बात करें या फिर तीसरी कसम की बात करें, बहुत सारी ऐसी फिल्मों का जिक्र किया जा सकता है। और इशारा ने तो ऐसे ऐसे कंटेंट चुने, ऐसे ऐसे विषयों को चुना जिस पर हमारा समाज बात करना जरूरी नहीं समझता। तो बहुत सारी फिल्में बनाई जिसमें अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी को लेकर भी उन्होंने एक फिल्म बनाई, 1972 में आई थी ये फिल्म। इसमें एक युवा कवि है जो एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है, एक ऐसी युवती से शादी करना चाहता है जो एक गलत रास्ते पर चली जाती है, जहां पर एक कहा जाए कि वो देह व्यापार के रास्ते पर चली जाती है। और इसी तरह से 1974 में एक फिल्म आई थी प्रेम शास्त्र, उसमें रिश्तों में जो वर्जित रिश्तों की कहानियां हैं, संबंधों की कहानियां हैं, देवानंद और जीनत अमान इस फिल्म के नायक नायिका थे। इसी तरह कागज की नाव एक अमीर आदमी के अयाशियों की कहानी है। बी आर इशारा की फिल्मों की अगर बात करें तो उनकी फिल्में अक्सर अपने बोल्ड और साहसिक विषयों के कारण विवादों में घिरी हुई होती थी। तमाम आलोचनाओं के बावजूद दर्शकों का एक वर्ग उनका दीवाना था, उनका फैन था, जो उनकी लीक से हटकर बनाई फिल्मों की सराहना करता था। असल में हम एक बने बनाए पैटर्न पर चलते हैं, बने बनाए ढर्रे पर चलते हैं, और जो लीक से हटकर चलता है हम उसकी आलोचना भी बहुत करते हैं, लेकिन सराहे वही जाते हैं जो लीक से हटकर चलते हैं।

बी आर इशारा ने कुछ ऐसी फिल्मों को चुना जिसमें टिपिकल प्रेम कहानी नहीं थी कि एक प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है और बड़ी हैप्पी एंडिंग होती है। इस तरह की कहानियों को उन्होंने नहीं चुना। मैंने शुरू में बताया कि किस तरह की कहानियां उन्होंने चुनी जिसमें संबंधों का उलझाव था और उसे किसी अंजाम तक पहुंचाना था, और हुआ उसका नतीजा ये कि बी आर इशारा को बी ग्रेड फिल्मों का डायरेक्टर कहा जाने लगा। लेकिन ये उनकी कहानियों की ताकत थी कि बी ग्रेड बताए जाने के बावजूद अपने दौर के तमाम बड़े सितारों के साथ उन्होंने काम किया, चाहे वो संजीव कुमार हो, राजेश खन्ना हो, राज बब्बर हो, राज किरण हो, जया बच्चन हो, अरुणा ईरानी हो, या पृथ्वीराज कपूर, या बहुत सारे और कलाकारों का, रीना रॉय की बात करें, ये तमाम कलाकार हैं जिन्होंने बी आर इशारा के साथ काम किया।

तो कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल, और कलाकार बेमिसाल में आज हम बात कर रहे हैं बीआर इशारा की। बीआर इशारा ने कई नए चेहरों को भी मौका दिया जो आगे चलकर स्टार बने। इनमें हम बात कर सकते हैं अमिताभ बच्चन की, डैनी की, विजय अरोड़ा की, शत्रुघ्न सिन्हा की, रीना रॉय की, रजा मुराद इनकी भी, ये सभी शामिल हैं। और हाँ, इतना ही नहीं, क्रिकेटर सलीम दुरानी को और परवीन बॉबी को भी बीआर इशारा ने ही डेब्यू कराया था।

क्या कमाल का गीत है और क्या सुर लगे हैं सौतेला भाई। फिल्म से हमने आपको ये गीत सुनाया था और जाहिर सी बात है आवाज़ लता दी की थी। और फिलहाल जो समय है वो कह रहा है कि वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। तो फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही और हमें यकीन है इस बात का कि आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा, गाने भी आपको पसंद आए होंगे। और फिलहाल संगीता को दीजिए इजाज़त और आपसे कहना ये है कि आप कहीं नहीं जाइएगा, आप बने रहिए एफएम गोल्ड के साथ, जुड़े रहिए एफएम गोल्ड के साथ, क्योंकि गोल्ड पर तो कार्यक्रमों का सिलसिला चलता ही रहेगा। और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे उर्दू में समाचार और उर्दू में समाचारों के बाद गोल्ड पर कार्यक्रम का सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन जाते जाते आपसे कहना ये है कि आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा और हमारी आपकी जल्दी ही फिर से मुलाकात होगी और फिर हम होंगे हाजिर कलाकार बेमिसाल लेकर और किसी बेमिसाल कलाकार का जिक्र करेंगे, उनके बारे में बातें करेंगे, उनके गीत सुनेंगे। और तब तक के लिए संगीता को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं हबीब रहमान। आसाम में सैलाब की सूरत हाल नाजुक बताई जाती है। मरने वालों की तादाद बढ़कर 61 तक पहुंच गई है। 1 लाख से ज्यादा अफराद ने इमदादी कैंपों में पनाह ले रखी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। गुजरात में बारिश से मुतासर इलाकों में बचाव और इमदादी काम जोर शोर से जारी है। भारतीय साहिली मुहाफिजों ने 170 महसूर अफराद को बचाया है। जम्मू और कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू हो गई है। खराब मौसम की वजह से 6 दिन से ये यात्रा मुअत्तल थी। आज सरकार और CJP के दरमियान इम्तिहानात में इस्लाहात और पेपर लीक की रोकथाम के इकदामात पर तीसरे दौर की गुफ्तगू होगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 4 खसूसी अदालतें नामजद की हैं, जिनमें पेपर लीक और मुतालिका बदगुमानियों के मामलों की तेजी से समाप्त होगी। भारत की अनाहत सिंह ओंटारियो में स्क्वाश की खवातीन की आलमी जूनियर चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। और भारत और जिम्बाब्वे की मर्दों की क्रिकेट टीम के दरमियान आज तीसरे पहर हरारे में दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। आसाम में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन बताई जाती है। वहां 1,15,000 से ज्यादा लोगों ने इमदादी कैंपों में पनाह ले रखी है। खबरों में कहा गया है कि ये शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट जिले में सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। मजीद 14 अफराद के हलाक होने की खबर मिलने के बाद सैलाब से वाबस्ता वाकयात में मरने वालों की तादाद बढ़कर 61 हो गई है। धीखू, दिसांग और धानसीरी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे सूरत हाल और बिगड़ गई है। बचाव इमदादी काम जारी हैं। आफात से निमटने वाली टीमें और जिला

काम जंगी पैमाने पर जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 265 तालुका में बारिश हुई है। रियासत की इमदाद से मुतालिक कमिश्नर ने बारिश से वाबस्ता वाकयात में 5 अफराद की जानें तलफ होने की तस्दीक की है। खबरों के मुताबिक भारत के साहिली मुहाफिजों ने 170 महसूर अफराद को बचाया है। हुकाम ने बचाव और इमदादी काम तेज कर दिए हैं और मुतासरा इलाकों के हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। जम्मू और कश्मीर में सालाना श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। खराब मौसम की वजह से 6 दिन मुअत्तल रहने के बाद आज से ये यात्रा शुरू हुई है। हुक्काम हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं ताकि यात्रियों के तहफ्फुज को यकीनी बनाया जा सके और यात्रा खुशउसलूबी से जारी रह सके। यात्रियों को मशवरा दिया गया है कि वो इंतजामिया की तरफ से जारी हिदायत पर सख्ती से अमल करें। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा है कि ऐवान में गुजारा जाने वाला हर दिन, हर घंटा, हर मिनट और हर लम्हा जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नई दिल्ली में राज्यसभा के नौ मुंतखब और नामजद अरकान के लिए मुनाकदा दो रोजा तारुफी व तरबियती प्रोग्राम की इफ्तताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बहस मुबाहसा हमेशा किसी नतीजे और फैसले तक पहुंचना चाहिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज आषाढ़ी एकादशी के पवित्र मौके पर शहरियों को अपनी नेक ख्वाहिशात पेश की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि यह शुभ दिन अकीदत और हमदर्दी के अबदी पैगाम का है। वजीर आजम ने दुआ की कि भगवान विट्ठल का आशीर्वाद सभी के लिए खुशी, भाईचारा और खुशहाली लेकर आए और मुल्क को एक बेहतर मुआशरे की जानिब रहनुमाई करे। हुकूमत आज सहपहर नई दिल्ली में CJP के वफद के साथ तीसरे दौर की बातचीत करेगी। इस बातचीत में इम्तिहान के निजाम में इस्लाहात और पेपर लीक को रोकने के इकदामात पर तबादले ख्याल किया जाएगा। ये मीटिंग सहपहर 3:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुनाकिद होगी। इससे कबल मरकजी वजरा JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CJP के वफद से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए JP नड्डा ने कहा कि हुकूमत ने इम्तिहान के निजाम में इस्लाहात से मुतालिक CJP के मुतालबात को पूरी संजीदगी और तवज्जो से सुना है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 4 खसूसी अदालतों को नामजद किया है जिनमें इम्तहानात का पर्चा लीक होने और मुतालिका बदउनवानियों के मामलात की तेजी से समाप्त की जाएगी। यह हिदायत दी गई है कि फर्द जुर्म दाखिल होने के 3 महीने के अंदर अंदर समाप्त मुकम्मल की जाए। कायम मकाम चीफ जस्टिस विवेक रूसिया ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर की जिला और एडिशनल सेशन अदालतों को खसूसी अदालत नामजद किया है। इससे पहले मरकज ने इम्तहानात से मुतालिक बदउनवानियों के मामलात की जल्द समाप्त का यकीन दिलाया था और वजीर आला मोहन यादव ने भी 4 शहरों में खसूसी अदालतें बनाने का ऐलान किया था। लद्दाख में 27वीं करगिल विजय दिवस की मुनासबत से 2 रोजा यादगारी तकरीबात का आगाज आज दरास में हुआ। इन तकरीबात का मकसद ऑपरेशन विजय में भारत की फतेह को याद करना और 1999 की करगिल जंग में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहीदों को खराज अकीदत पेश करना है। इस मौके पर युद्ध संस्मरण प्रोग्राम का

0: से दो रोजा यादगारी तकरीबात का आगाज आज दरास में हुआ। इन तकरीबात का मकसद ऑपरेशन विजय में भारत की फतेह को याद करना और 1999 की करगिल जंग में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहीदों को खराज अकीदत पेश करना है। इस मौके पर युद्ध संस्मरण प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें ऑपरेशन विजय पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म, बहादुर फौजियों को खराज तहसीन, शहीदों के अहले खाना से मुलाकातें और जंग में शामिल फौजियों की तजुर्बात शामिल थे। कल वजीर दफा राजनाथ सिंह करगिल विजय दिवस की मरकजी तकरीबात की क्यादत करेंगे और करगिल जंगी यादगार पर शहीदों को खराज अकीदत पेश करेंगे।
1: द्रास का कारगिल वॉर मेमोरियल 27वें कारगिल विजय दिवस की तकरीब के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। शहदा की याद में तामीर किए गए इस यादगार को खुसूसी तौर पर सजाया गया है। दो रोजा तकरीबात का आगाज आज युद्ध संस्मरण गौरव में संस्कृति और शौर्य संध्या जैसे प्रोग्रामों के साथ हो रहा है। कल 26 जुलाई को वजीर दिफा राजनाथ सिंह मेहमान खुसूसी की हैसियत से श्रद्धांजलि समारोह में शिरकत करेंगे और करगिल जंग के अजीम शहदा को खराज अकीदत पेश करेंगे। करगिल विजय दिवस मुल्क के बहादुर जवानों के शुजात, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी को सलाम पेश करने का एक बावकार मौका है। करगिल से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं इनायत अली।
0: उड़ीसा का पवित्र शहर पुरी आज शाम सालाना रथ यात्रा की सबसे शानदार और अहम रसूमात में से एक सुनहरी लिबास की तकरीब का गवाह बनने जा रहा है। इस मौके पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को शानदार सुनहरी लिबास और जेवरात से आरास्ता किया जाएगा। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मांग की है कि वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को काबीना से हटाया जाए। आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस रहनुमा ने यह मुतालबा भी किया कि एहतजाज के दौरान जो लोग तलबा पर मुबैना तौर पर हमले के जिम्मेदार हैं उनकी जवाबदेही की जाए। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने कैनेडा के ओंटारियो में मिस्र की बारब सामह को सेमीफाइनल में 3-1 से हराकर आलमी जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के खवातीन सिंगल्स फाइनल में पहुंचकर तारीख रकम कर दी है। भारत की 18 साल अनाहत इस अहम जूनियर मुकाबले के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले 2005 में जोशीना चिनप्पा ने यह कामयाबी हासिल की थी। अब खिताबी मुकाबले में उनका सामना आज रात मिस्र की रुकैया सालिम से होगा। तवक्को है कि यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे होगा। मर्दों के क्रिकेट में आज हरारे में भारत 3 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मैच में मेजबान जिम्बाब्वे से मुकाबला करेगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे शुरू होगा। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। आसाम में सैलाब की सूरत हाल नाजुक बताई जाती है। मरने वालों की तादाद बढ़कर 61 तक पहुंच गई है। 1 लाख से ज्यादा अफराद ने इमदादी कैंपों में पनाह ले रखी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। गुजरात में बारिश से मुतासर इलाकों में बचाव और इमदादी काम जोर शोर से जारी है। भारतीय साहली मुहाफिजों ने 170 महसूर अफराद को बचाया है। जम्मू और कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू हो गई है। खराब मौसम की वजह से 6 दिन से ये यात्रा मुअत्तल थी। आज सरकार और CJP के वक्त के दरमियान इम्तिहानात में इस्लाहात और पेपर लीक की रोकथाम के इकदामात पर तीसरे दौर की गुफ्तगू होगी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 4 खसूसी अदालतें नामजद की हैं, जिनमें पेपर लीक और मुतालिका बदउनवानियों के मामलात की तेजी से समाप्त होगी। भारत की अनाहत सिंह ओंटारियो में स्क्वाश की खवातीन की आलमी जूनियर शिप के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। भारत और जिम्बाब्वे की मर्दों की क्रिकेट टीम के दरमियान आज तीसरे पहर हरारे में दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Good afternoon. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the Midday News. The headlines. Flood situation in Assam remains critical as death toll reaches 61. Over 1 lakh people take shelter in relief camps. Prime Minister Narendra Modi assures all possible assistance. Rescue and relief operations in full swing in rain-hit Gujarat. Over 40,000 people evacuated. Shri Amarnath Yatra and Shri Mata Vaishno Devi Yatra in Jammu and Kashmir resume after remaining suspended for 6 days due to inclement weather. Government to hold third round of talks with CJP delegation on exam reforms and paper leak prevention measures this afternoon. Madhya Pradesh High Court

0: चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची और क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 1 लाख से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से संबंधित मामलों में 14 और लोगों की मौत हुई। इनमें चराईदेव में 7, शिवसागर में 6 और जोरहाट में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। एक रिपोर्ट।
1: राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 61 हो गई है। प्रमुख नदियां दीखो, दिसंग और धनसरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे ऊपरी असम में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। आपदा मोचन बल, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियां राहत सामग्री उपलब्ध कराने, फंसे हुए लोगों को निकालने और बाढ़ प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने में लगी हुई है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित जिलों राहत उपायों को तेज कर दिया गया है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से टेलीफोन पर बातचीत कर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शर्मा ने कहा कि असम के लोग इस कठिन समय में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन और अटूट समर्थन के लिए उनके प्रति अत्यंत आभारी हैं। इस बीच गुजरात में मॉनसून की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
2: सीआरपीएफ की 32 प्लांटून और सेना की 6 टुकड़ियां भी विभिन्न जिलों में तैनात की गई है। लगातार हो रही बारिश से राज्य के जलाशय में जल स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध में जल भंडारण क्षमता का लगभग 69% पानी भर चुका है, जबकि राज्य के 21 बांधों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। जल भराव के कारण यातायात और विद्युत सेवाएं भी प्रभावित हुई है। 34 स्टेट हाईवे समेत राज्य के 600 से अधिक सड़कें एहतियातन बंद कर दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारतीय तटरक्षक बल ने 22 जुलाई की मध्यरात्रि से चलाए गए 11 बचाव अभियानों के माध्यम से दमन, दादरा और नगर हवेली तथा दक्षिण गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे 170 लोगों को बचाया है। वहीं सिक्किम के नामची जिले के फामतम गांव में आज भूस्खलन के कारण 2 लोगों के मारे जाने की आशंका है। नामची के एसएसपी ने बताया कि बचाव अभियान चलाया जा रहा है। 2 घायलों को नामची जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। यात्रियों को सुरक्षित तीर्थयात्रा के लिए प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। इस बीच 6,269 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के कारण लगातार 6 दिन तक निरस्त रही श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज फिर शुरू हुई। इस मार्ग पर लगातार बारिश, भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने के जोखिम के कारण यात्रा को निरस्त कर दिया गया था। तीर्थयात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान श्राइन बोर्ड और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों तथा सुरक्षा परामर्श का पालन करने और मौसम संबंधी जानकारी से अवगत रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार आज दोपहर नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता करेगी। इस बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा होगी। ये बैठक दोपहर 3:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित होगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CJP प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी।

0: के बाद मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी सीजेपी की मांगों को गंभीरता और धैर्यपूर्वक सुना है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने परीक्षा प्रश्न पत्र लीक और उससे जुड़े अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों को नामित किया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर इन मामलों का निपटारा किया जाए। उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये अदालतें राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा भेजे गए संबंधित मामलों की भी सुनवाई करेगी। इनका अधिकार क्षेत्र आसपास के जिलों तक विस्तारित रहेगा। न्यायालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना तथा ऐसे मामलों में त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार अब इस घोषणा को अमल में लाते हुए 4 प्रमुख शहरों में विशेष अदालतें स्थापित कर रही है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए की थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल मध्य कोलकाता में कई वामपंथी संगठनों द्वारा नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में आयोजित रैली के दौरान पत्रकारों पर हुए कथित हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में कहा कि इस घटना के संबंध में 7 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर वो सोशल मीडिया पर लगातार नजर रख रही है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि फर्जी खबरें और एआई द्वारा निर्मित सामग्री फैलाने वाले 400 से अधिक सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक दिया गया है।
2: दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि वाले दावों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक कंटेंट फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस संबंधित एजेंसियों के एक साथ मिलकर ऐसे और अकाउंट्स की पहचान करने पर लगातार काम कर रही है। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें AI जनरेटेड कंटेंट, डीपफेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है।
0: और अभी समाचार मिला है कि नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि संसद में बिताया गया हर दिन, हर घंटा, हर मिनट और हर सेकंड लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए समर्पित होना चाहिए। नई दिल्ली में आज राज्यसभा के नव निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सदन में होने वाली बहस हमेशा किसी सार्थक निर्णय तक पहुंचनी चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो फर्जी और AI से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर

0: पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज राज्य विधानसभा में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की 28 लंबित रिपोर्टें पेश की हैं। इन लंबित रिपोर्ट को पेश करके पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना किया गया वायदा पूरा किया। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने ये रिपोर्ट पेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने आज कनाडा के ओंटारियो में खेले गए सेमीफाइनल में मिस्र के बार्ब सामेह को 3-1 से हराया। वहीं फाइनल में अनाहत का सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात करीब 10:30 बजे शुरू होने की उम्मीद है। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के बाद उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए अपने कोच और प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त किया।
1: बहुत अच्छा लग रहा है, पहला मेडल है हमारा। हमारे पीछे कोच हैं राजेंद्र सिंह और हमारा JP सर हैं, वो भी बहुत सहयोग किए हैं। आज उन्हीं सब बदौलत हमें आज मेडल प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम पे आज इतना प्रैक्टिस करवाए, प्यार दिए, और भी आगे हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताते हुए कहा है कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार 4:30 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत हम करगिल युद्ध के जाबाज योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर सेवानिवृत्त मेजर DP सिंह से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल दोपहर 12:30 से किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। सरकार और CGP के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई। 1 लाख से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर, 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। और खेलों में स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। वहीं क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। कार्यक्रम किसान की बात का ये समय आज फिर से एक बार शुरू होता है, जिसमें हम सब आप सभी के लिए लेकर आते हैं

0: ये सारी जानकारियां। और आज कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप सभी से बस यही कहना चाहेंगे कि जल है तो कल है, केवल ये एक नारा नहीं है बल्कि किसान के जीवन, खेती और हमारे भविष्य की सबसे बड़ी सच्चाई है। बारिश की हर बूंद अपने साथ जीवन, हरियाली और समृद्धि का संदेश लेकर के आती है। किसान पूरे वर्ष जिस बारिश का इंतजार करता है, वही बारिश उसकी फसल, उसकी मेहनत और उसके सपनों की नींव होती है। लेकिन बदलते समय, अनियमित वर्षा और लगातार घटते भूजल स्तर ने आज जो है खेती के सामने एक गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। आज इसी विषय पर बातचीत होगी कार्यक्रम किसान की बात में कि किस तरीके से आप इस जल का संचयन कर सकते हैं, इस जल का अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ कोमल और मेरे साथ हैं
1: अरुणेश कुमार। स्वीकार कीजिए हम दोनों का नमस्कार। तो कोमल, जैसा कि आपने अपने शुरुआती संबोधन में जल के महत्व को काफी विस्तार से बताया है और ये बात बिल्कुल सच है कि जल ही जीवन है और वो जल किसान भाइयों के लिए भी बेहद आवश्यक है, क्योंकि बिना पानी के, बिना सिंचाई के कोई भी फसल का उत्पादन बहुत अच्छा नहीं हो सकता। तो आजकल बारिश का सीजन है, वर्षा का मौसम है, ऐसे में वर्षा जल संचयन की तकनीकें कौन कौन सी हैं, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मनोज खन्ना, जो कि पूर्व प्रधान वैज्ञानिक हैं जल संरक्षण केंद्र पूसा नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि हम आज बात करने वाले हैं कि जो जल संरक्षण मतलब वर्षा के जो क्षेत्र हैं, मुख्य रूप से वर्षा आधारित जो क्षेत्र हैं भारत में, क्योंकि भारत जो है बहुत विविध मौसम लेकर के है, संस्कृति लेकर के, लेकिन इसमें अगर हम वर्षा आधारित क्षेत्रों की जब बात करते हैं तो वो कौन कौन से क्षेत्र जो है उनको हम मान सकते हैं जहां पर वर्षा के जल का संचयन या उसका जो इस्तेमाल है ज्यादा अच्छे तरीके से किया जा सकता है?
2: जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पूरे देश में मानसून अभी सक्रिय हो चुका है
0: जी।
2: और पूरे देश में बारिश का है, लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी भी है कि इस बार मानसून इतना सक्रिय नहीं रहेगा और अनुमान है कि करीब करीब 10% वर्षा हमारे देश में कम होने की संभावना है। ऐसे समय में जल संचयन की उपयोगिता बहुत बढ़ जाती है। आपने पूछा वर्षा आधारित क्षेत्र कौन से हैं, हमारी काफी क्षेत्र भूमि वर्षा आधारित खेती पर निर्भर करती है। करीब करीब आधा हमारे देश का जितना भी खेती वाला क्षेत्र है उसमें करीब करीब ये कह सकते हैं आधे से ज्यादा में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन काफी आधे से करीब क्षेत्र में कम, थोड़े से कम में, कि सारी खेती हमारी वर्षा पर आधारित है। और वर्षा पर आधारित है इसका मतलब कि हमें जो बारिश की एक एक बूंद गिर रही है उसे किसी भी तरह से उसका संचयन अच्छे से अच्छे तरीके से करना है कि ये पानी हमारे यहाँ सारा सारा खेत में संरक्षित हो और या भूजल की तरफ जा सके, भूजल की तरफ जा सके और उसमें इकट्ठा हो सके, और वो पानी ना केवल इस खरीफ सीजन में बल्कि रबी सीजन के लिए भी बहुत आवश्यक है। अगर ये वर्षा जल संचयन नहीं होगा तो हमारी रबी फसलों पे भी बहुत असर पड़ेगा,
0: यानी कि भविष्य की भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब। और इसी बीच हम अपने सभी श्रोताओं को, अपने सभी किसान भाई बहनों को बताना चाहेंगे जो कि हमारे नियमित श्रोता हैं, हालांकि उनको मालूम है कि ये हमारा फोन इन कार्यक्रम है, आप हमें सीधे स्टूडियो में फोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। और अगर कुछ नए श्रोता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो उनके लिए एक बार मैं फोन नंबर बता देता हूं, 2342108 और 2342108 इन नंबर से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना नहीं भूलें। हमें आपके सवालों का इंतजार है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल वर्षा जल संचयन की तकनीकों से लेकर है तो आप जरूर कीजिए। तो डॉक्टर साहब, इसी से शुरुआत करते हैं, चूंकि यहां पर एक शब्द आ गया तकनीकी, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे किसानी में, खेती किसानी में, कृषि संबंधी कार्यों में, फसलों में पारंपरिक रूप से सिंचाई की जाती है, तो कौन सी ऐसी आधुनिक तकनीकी हैं जिनका प्रयोग हमारे किसान भाई बहन कर सकते हैं जिससे कि जल संरक्षण की दिशा में वो एक बड़ा कदम साबित होगा?
2: आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं पहले वर्षा जल संचयन की बात करूं
1: जी,
2: तो सबसे पहले तो हमें उस पानी को इकट्ठा करना है जो भी बारिश हमारे लिए ला रही है। तो हमारे को बहुत कोशिश ये करनी है कि खेत का पानी खेत में और हमारे गांव का पानी गांव में ही

0: इसी तरह रहे।
1: बिल्कुल,
0: उसके लिए हमारे किसान भाई अभी तैयारी कर रहे होंगे, खरीफ फसलों की बुआई की तैयारी कर रहे हैं या बुआई कर चुके हैं, तो कोशिश करें अच्छे से अपनी खेत की मेड़ बना लें। मेड़ मतलब उसके चारों तरफ बाउंड्री बना लें और वो करीब करीब आप समझ लीजिए 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची बनाएं, जिससे कि जितना पानी खेत में गिरे वो सारा सारा खेत में ही रहे और खेत से बाहर बहके नहीं जाए।
1: बिल्कुल,
0: अब उससे क्या होगा कि सारा सारा पानी जमीन के अंदर जाएगा और आपके भूजल को पुनर्जीवित करेगा।
2: जी।
0: दूसरी तकनीक है कि आपके खेत में या आपके गांव में आपके क्षेत्रों में बहुत सारे पोखर होते हैं, जोहड़ होते हैं, जो हमारे बड़े ट्रेडिशनल या बिल्कुल ट्रेडिशनल जो पानी
2: पारंपरिक
0: रूप से जहां हम पानी को रोकते हैं या इकट्ठा करते हैं, उन जोहड़ों या पौंड जिसे कहा जाए
1: तालाबों में
0: हम देखें कि कहां से पानी आ रहा है, उनके रस्तों को उनकी नालियों को साफ कर दें और कोशिश करें कि आपके पोखर में जो मिट्टी जम जाती है एक साल बाद आप बारिश हो रही है तो वो मिट्टी को निकालने की कोशिश करें। उससे ना केवल उनकी क्षमता बढ़ेगी पोखरों की और ज्यादा से ज्यादा पानी उसमें स्टोर हो सकेगा। वो पानी आपके लिए आने वाले समय में ना केवल इस सिंचाई के लिए बल्कि आने वाले समय के लिए भी आपके लिए बहुत आवश्यक होगा, ना केवल खेती के लिए बल्कि पशुओं के लिए, हर कार्य के लिए वो पानी बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल, और ये भी देखा गया है कि आजकल जो किसान है वो खेत में तालाब बना करके पूरे वर्ष जो है वो सिंचाई के लिए तो उस पानी को उपलब्ध रखते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनकी आय या जो कहते हैं कि जो पैसा है वो बचाने में भी उनकी बहुत ज्यादा मदद करते हैं।
0: आपने बहुत सही विषय पकड़ा है कि जो अपने खेत में पौंड बनाना चाहते हैं, बहुत सारे किसानों के पास जमीन है और जहां पे खेती नहीं कर पा रहे हैं वहां पे वो ऐसी जगह चुने जहां पे लो लेवल है, वहां पे वो पौंड बना सकते हैं अपने लिए, और न केवल समुदाय अपने लिए बल्कि सामुदायिक रूप से अपने किसान भाई सारे इकट्ठे होके गांव में पंचायत में चर्चा करके कि जो गांव में एक नया पौंड बनाएं या पोखर बनाएं या जोहड़ बनाएं जिससे कि पानी वहां पर इकट्ठा हो सके। अब उसके लिए क्या संभव है, उसके लिए न केवल आपको भारत सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सुविधाएं देती है, तकनीकी ज्ञान देती है, बल्कि आर्थिक सहायता भी देती है। ये हमारे किसान भाइयों को जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो कोशिश करेंगे तो वो आर्थिक सहायता उन्हें भी मिल सकती है।
1: तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमारे किसान भाइयों को?
0: तुरंत हमारे किसान भाई अपने सामुदायिक रूप से बना रहे हैं तो वो पंचायत से बात करें और हमारे जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करें, जिनके अंतर्गत इस स्कीम के अंतर्गत पानी के जो भी आपको सब्सिडी या आर्थिक अनुदान मिल सकता है उसके कार्य पूरे पेपर कंप्लीट करें, उसमें आपके खेतों की जानकारी होगी, आपका आधार कार्ड, आपके खेत में क्या लगा रहे हैं, वो सारी जानकारी तुरंत दें और कोशिश करें कि वो आर्थिक सहायता आपको मिल सके और आप उसकी तैयारी कर सकें और आप उसको बना सकें।
2: तो डॉक्टर साहब, ये जो खेत के लिए पौंड की हमने बात की तो ये हमारे किसान व्यक्तिगत रूप से भी कर सकते हैं और सामूहिक रूप से भी कर सकते हैं?
0: हमारे व्यक्तिगत रूप से जिनके पास खेत बड़ा है, जिन क्षेत्रों में खेती नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्योंकि जमीन जाएगी तो उसके लिए उन क्षेत्रों में आप अपना पौंड बना सकते हैं, और पहाड़ी क्षेत्रों में तो ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में पानी बह के नीचे चला जाता है, उन क्षेत्रों में पौंड बनाकर आप अपने खेत में और अपनी जगह पे पानी स्टोर कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, और साथ ही में कुछ सरकारी सुविधाएं और भी हैं जो सरकार हमारे किसान भाइयों के लिए करती है, जैसे कि नहरें होती हैं, इसके अलावा सरकारी नलकूप होते हैं, और अगर कोई किसान अपना खुद का ट्यूबवेल लगाना चाहता है तो उसके लिए भी सरकार सब्सिडी देती है। तो ये बहुत सारी ऐसी सरकारी सुविधाएं हैं, सरकारी स्कीम्स हैं जिनके बारे में आपने बताया, जिनका फायदा हमारे किसान भाई उठा सकते हैं। इसी दिशा में एक सवाल डॉक्टर साहब ये भी उठता है कि आजकल हमारी सरकार कैच द रेन इस नाम से एक इनिशिएटिव चला रही है और आजकल बारिश का मौसम भी है, तो कुछ इस कैच द रेन अभियान के बारे में भी हमारे किसान भाइयों को बताइए।
0: हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छा आयोग चला रखा है, प्रोत्साहन अभियान चला रखा है कि कैच द रेन। इसका मतलब क्या है कि मतलब जो पानी गिर रहा है, जैसे मैंने पहले बताया, अपने खेत का पानी खेत में बचाओ, न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है या उतना ही आप पे लागू होता है, इसलिए आप तुरंत अपने खेतों में

0: ये तैयारी करें जहां पे आप पोखर बना सकते हैं, पोखर की सफाई कर सकते हैं और वो पानी को इकट्ठा करें। अब ये पानी जब इकट्ठा हो गया हमारे पास तो ये आपके एक सोने की तरह है। बैंक में आपने पानी इकट्ठा कर लिया, उस जैसे आप बैंक का पैसा बड़ा संभाल के इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से उस पानी का भी इस्तेमाल आप बहुत ही आधुनिक तरीके से करें, आधुनिक तकनीकें इस्तेमाल करें, खुला पानी ना दें, ऐसे कोशिश करें कि कम से कम पानी दें और कम से कम पर ड्रॉप मोर क्रॉप। बहुत सारी आधुनिक कृषि विधियाएं हैं सिंचाई की, जैसे टपक सिंचाई, अगर आप फलों की खेती कर रहे हैं, सब्जियों की खेती कर रहे हैं, उसमें आप ये विधि इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप अन्य फसलों की खेती कर रहे हैं तो उसमें फव्वारा सिंचाई यानी स्प्रिंकलर सिस्टम भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने बोला कि हम सिंचाई के अलग अलग तकनीक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हम पानी की बचत कर सकें या उसका सही इस्तेमाल कर सकें, लेकिन अब जैसे कि समय बदल रहा है और हमारे किसान तकनीक और वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण से है वो भी अपनी खेती करने लगे हैं, ना कि सिर्फ पारंपरिक तरीके से अपनी खेती करते हैं, तो आजकल कुछ ऐसी फसल भी आई है जो कि कम जल लेती हैं, कम जल की आवश्यकता उसमें होती है, और सरकार की तरफ से जैसे कि अभी पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि श्री अन्न का बहुत ज्यादा प्रमोशन किया जा रहा है जिसमें कम जल की आवश्यकता होती है, और अब जो समय है वो धान लगाने का समय है, तो धान की फसल में सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है हम जानते हैं, लेकिन हम किस तरीके से इस वर्षा जल का इस्तेमाल करें कि हमें कम जल की आवश्यकता पड़े उसमें और हम ज्यादा से ज्यादा जो जल है वो आने वाले भविष्य के लिए बचा कर रख सकें।
0: इसमें आपने दो सवाल पूछे कि जैसे वो फसलें को वो बुआई करें जिनमें कम जल की आवश्यकता होती है, जैसे बाजरा है, बाजरा हमारे श्री अन्न में काम आता है, दलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलों में कम पानी इस्तेमाल होता है, उससे न केवल आपका मिट्टी का स्तर भी अच्छा होता है, मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है। बाजरे की फसल है जिसका आजकल बहुत प्रचलन हो गया है, सब लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं तो उसकी डिमांड भी बहुत अच्छी हो गई है, उनकी बजाय जो उन फसलों को ना लगाएं जिनमें ज्यादा पानी का इस्तेमाल होता है, उन फसलों को ही लगाएं जिनमें कम पानी का इस्तेमाल करें। दूसरा आपका सवाल था धान की खेती के लिए, धान में सब जानते हैं कि हमें पानी बहुत रखना पड़ता है, भर के रखना पड़ता है, लेकिन धान की भी बहुत नई आधुनिक तकनीक आ गई है, सीधी बिजाई में आपको ट्रांसप्लांटिंग यानी कि आपको रुपाई नहीं करनी पड़ती, नर्सरी नहीं बनानी पड़ती, आप सीधी ही धान की सीधी बिजाई कर सकते हैं, उसमें करीब करीब आप समझ लीजिए 25-30% पानी कम लगता है और पानी की बचत होती है। तो हमारे किसान भाई इस नई तकनीकों को सीखें, अपनाएं, और बहुत सारी ऐसी वैरायटी हैं जो इनके लिए स्पेशली प्रचलित की गई हैं कि आप सीधी बिजाई करके उनमें धान में भी कर सकते हैं और उतना ही उत्पादन ले सकते हैं, उतनी ही इनकम बढ़ा सकते हैं जिससे कि आपकी आमदनी और उत्पादकता दोनों बढ़ते रहें।
1: जी कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात, और कार्यक्रम किसान की बात में यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा विराम, लौट करके आएंगे और फिर वापस से बातचीत जारी रखेंगे डॉक्टर साहब के साथ, जिसमें आज हमारा विषय है वर्षा आधारित क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन की तकनीकें। तो अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि आप कौन कौन से माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब
3: देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी

0: ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा,
1: परम तो सभी डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात। और आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है वर्षा आधारित क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन की तकनीकें। और इस पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनोज खन्ना, जो कि पूर्व प्रधान वैज्ञानिक हैं जल प्रौद्योगिकी केंद्र पूसा नई दिल्ली से। और एक बार फिर से मैं अपने सभी श्रोताओं के लिए फोन नंबर बता देता हूं, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है इस विषय से संबंधित तो आप हमें सीधे स्टूडियो में फोन कर सकते हैं। 011 दिल्ली का स्टडी कोड है और इसके बाद 2342108 और 2342108 3। आप सीधे हमें फोन करें और अपने सवाल का जवाब हमारे एक्सपर्ट से पाएं। तो डॉक्टर साहब, यहां हम बात कर रहे थे कि कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जहां पर बहुत अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, कम जल में भी वो अच्छा उत्पादन देती है, जैसे कि श्री अन्न में आपने बाजरा का बताया, मक्का का बताया। अब आजकल अगर देखा जाए तो हमारे यहां पर एक जल संरक्षण की दिशा में सरकारें बहुत काम कर रही हैं, हम सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो वाटर लेवल है वो लगातार डाउन होता जा रहा है। जैसे कि पुराने जमाने में कुएं होते थे और इसके अलावा तालाब होते थे, पोखरे होते थे, तो आजकल हम लोगों को एक सामान्य जो किसान हो या ना हो, जैसे कि हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, आप ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि हम जल संरक्षण की दिशा में सच में आगे बढ़ सकें और जो धरती के नीचे का वाटर लेवल डाउन होता जा रहा है वो थोड़ा सा अप हो सके?
4: इसमें दो चीजें हैं। देखिए, आपको किसी तरह भी आपका जो भी वर्षा का पानी आ रहा है उसे आप संचयित करिए। संचयित करिए मतलब कि उनको ऐसा करिए कि जो इकट्ठा हो सके वो वर्षा का जल बह के कहीं और ना चला जाए, वो कोशिश हो कि सारा सारा भूजल की तरफ जाए। उसके बहुत तरीके हैं, आप अपने क्षेत्र में प्लान करके चेक डैम बना सकते हैं, परकोलेशन टैंक जिसे कहते हैं, कि आपके पोखर बना लिया और उसमें पानी सारा सारा इकट्ठा हुआ और वो पानी तेजी से भी नहीं बहा और वो सारा इकट्ठा होके सारा सारा जमीन के स्तर को चला गया और जमीन के स्तर को बढ़ाया उसने। आपके जो पुराने ओपन वेल हैं, खुला कुआं हैं, वो भी पुनर्जीवित हो रहे हैं। किसी तरह भी आप कोशिश करिए कि जितना भी आपका ट्रेडिशनल या पारंपरिक तरीका है उसकी तरफ वापस जाएं और वो पानी को इकट्ठा करके आप किसी तरह भी भूजल का स्तर बढ़ाएं। अब बात करते हैं, आपने कहा कि बहुत सारी ऐसी फसलें हैं, मैंने जैसे बाजरा का जिक्र किया, बाजरा मक्का है और दलहनी फसलें हैं जो इस समय लगाई जाती हैं, उनमें आप पानी कम लगता है और पानी कम लगने की वजह से अच्छा सा अच्छा फसल रहता है वहां पर और उतना ही उत्पादन होता है। और इन फसलों का आजकल चयन बहुत ज्यादा है तो बाजार में आपको दाम भी अच्छा मिलता है, आपका इनकम भी ज्यादा बढ़ती है। तो ऐसी फसलों की तरफ जाएं, उन फसलों की तरफ ना जाएं जिनमें पानी की आवश्यकता, क्योंकि हमें ये मालूम है इस साल का मानसून इतना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि वर्षा कम हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। तो या बहुत ज्यादा कुछ क्षेत्रों में होगी या बिल्कुल ही कम हो जाएगी। तो हमें इस तरह से अपना प्लान करना है कि ऐसी फसलों का चयन करें जिनसे कि कम पानी में भी अधिक उत्पादन हो जैसा। और दूसरा मैंने बताया आपको कि ऐसी विधियां इस्तेमाल करें, टपक सिंचाई विधि इस्तेमाल करें, सब्जियों की खेती अगर करनी है तो फव्वारा लगाएं, मिनी स्प्रिंकलर आता है वो लगाएं। हमारे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में इन सारी तकनीकों पे आर्थिक अनुदान मिलता है, आर्थिक सहायता मिलती है और अपने नियर बाय आपके जो नियर में आपके जो पास में जिला कृषि अधिकारी है, जिला बागवानी अधिकारी है, उनसे संपर्क करें कि मैं अपने क्षेत्र में ये फसलों में टपक सिंचाई या फवारा सिंचाई।

0: कहीं लगाना चाहता हूं, मुझे सारी वो दी जाए, जो भी स्कीम भारत सरकार की चल रही हैं उसमें जो भी अनुदान मिलता है मुझे भी दिया जाए। और आजकल बहुत आसान हो गया है
1: जी।
0: आपको ये सब सुविधाएं लेना और आपको जानकारी मिलना बहुत आसान हो गया। नियर बाय आप कृषि विज्ञान केंद्र में भी जा सकते हैं,
1: जा सकते हैं जी।
0: और अपने क्षेत्र के जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके जो एक्सटेंशन काउंटर हैं वहां पर जा सकते हैं। वहां पर जाकर आप अपनी ये नई तकनीकों का ज्ञान लें और पानी को बचाएं। मुख्य रूप से हमारा ये उद्देश्य रहना चाहिए कि खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव
1: में हो, ताकि जल संरक्षण की दिशा में हम बहुत अच्छा कार्य कर सकें। और इसी बीच डॉक्टर साहब एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना नाम बताइए।
2: मेरा नाम लालू सिंह सर
1: जी। कहां से बात कर रहे हैं और क्या आपका सवाल है?
2: ग्राम पाठकपुर डिस्ट्रिक्ट संभल उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूं
1: जी। अपना सवाल पूछिए।
2: सर मैं ये जानना चाहता हूँ, इस पे आप प्रकाश डालिए कि जिस तरह से हमारे घरों का जो पानी होता है
1: जी,
2: हम घर में जो पानी इस्तेमाल करते हैं उस पानी को, चाहे वो नहाने का हो, कपड़े धोने का हो, घर में सफाई का बर्तन धोने का, ये पानी जब नाली में जाता है तो गर्मियों में बाष्प बन के उड़ जाता है
1: जी।
2: ठीक है, तो इसके लिए मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जिस तरह से अगर 4 इंच का बोर करके हम वो पानी और जमीन में थोड़ा सा गड्ढा बना के उसमें जाली डाल के, और ये पत्थर जो होता है हमारा बड़ा बड़ा पत्थर
1: जी जी,
2: 4-4, 5-5 इंच वाले जो टुकड़े होते हैं, वो पत्थरों के टुकड़े डाल के और वो पानी उसमें डायरेक्ट जमीन के अंदर डाला जाए, तो किस तरह का रहेगा ये पानी बचाने के मामले में
1: जी? डॉक्टर साहब
0: ये आपने बताया कि हमने घर का पानी, लेकिन एक बार ध्यान रखिए कि आपका जो भूजल है वो बिल्कुल साफ पानी है। घर का इस्तेमाल करा हुआ पानी, अगर वो गंदा पानी आप सीधे भूजल में डालेंगे तो आप सारे भूजल को खराब कर सकते हैं,
1: प्रदूषित हो जाएगा,
0: प्रदूषित कर सकते हैं। उसके लिए कोई ना कोई ऐसी तकनीक लगाएं, जैसे कोई आपने बताया तो फिल्टर इस्तेमाल करें, ये पत्थरों के हम फिल्टर लगा लें, और ऐसे सीधा अगर आप उसको अगर अपने कुएं में भेजेंगे पानी और वो सीधा भूजल

0: कुछ ऐसे फिल्टर लगाने पड़ेंगे, फिल्टर आपने बताया जैसे पत्थरों की आप वो बना दें, एक गड्ढा बनाएं और उसमें अलग अलग साइज के, मतलब आपको पहले थोड़े बड़े पत्थर, फिर छोटे पत्थर, फिर छोटे पत्थर, और पूरा करके उस पत्थरों के थ्रू अगर वो पानी जाएगा तो वो अपने आप फिल्टर होता हुआ जाएगा, उससे सारी गंदगी आपके भूजल में नहीं जाएगी, उससे आपका भूजल प्रदूषित नहीं होगा। ये आपको ख्याल रखना है। आपका विचार बड़ा उत्तम है कि आप ऐसा सोचते हैं और जो पानी को इस्तेमाल कर सकें वो उसको ट्रीट करके फिर आप इस्तेमाल करें या फिर आप उसको भूजल की तरफ भेजें तो ज़्यादा अच्छा होगा।
1: जी, उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हैं, आइए पूछ लेते हैं कि उनका क्या प्रश्न है। हेलो,
2: हेलो, नमस्कार कोमल जी, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब, हम लोग शहर के रहने वाले लोग हैं पर हमारे मन में एक जिज्ञासा है। एक हमने देखा पश्चिम बंगाल में हम गए, वहाँ 60-70% प्रत्येक किसानी के अपने अपने एक तालाब होता है, वहाँ हर जगह तालाब ही तालाब है, पूरा साल तो पानी ही मिलता है हमको। ऐसा क्यों नहीं करते हमारे और प्रदेश के किसान लोग, यूपी, एमपी और हरियाणा और पंजाब, कि अपने प्रत्येक किसान अपने खेत में आधे बीघे में या एक बीघे में अपना गड्ढा कराए और तालाब बनाए और उसमें मछली पालन भी करे और जब बरसात कम हो तो वहां से उसको पानी पूरा का पूरा मिलता रहे। ऐसा ही आपकी तरफ से उनको क्या कहना है? धन्यवाद।
0: धन्यवाद, आपका विचार बहुत उत्तम है। आपने हमने कहा जैसे हमने चर्चा में शुरू में बताया था कि हर किसान को अपने खेत में एक छोटा सा तालाब बनाना चाहिए या पौंड बनाना चाहिए, तो उससे उसका वो संचयन कर सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे क्षेत्र जो हैं बहुत छोटे छोटे होते जा रहे हैं, हमारे किसान बहुत छोटे छोटे हैं, उनके पास इतनी उपलब्ध जमीन नहीं होती। जैसा अगर ये जमीन ऐसी है और लो लाइंग एरिया में है जहाँ पे आप पौंड बना सकते हैं, तो मेरा तो ये सुझाव रहेगा कि हर किसान बनाए, जिसमें हमें न केवल हमें भारत सरकार आर्थिक सहायता देती है तो उसको बनाएं, उससे संचयन करें। उसमें आपने बहुत उत्तम विचार दिया कि मछली पालन भी करें, उससे पानी इकट्ठा रहेगा और वो आपके भूजल को भी वो करता रहेगा कि भूजल की तरफ पानी जाता रहेगा, आपका पानी बचा रहेगा और आपको रबी फसलों के लिए पानी उपलब्ध भी रहेगा आपके भूजल में। ये आपका विचार बड़ा उत्तम है, ये संभव है।
1: साथ आमदनी का भी एक नया
0: स्रोत जुड़ेगा।
1: जी, और ऐसे बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो जब हमसे जुड़ते हैं तो कई बार बातों में अपने सवाल के साथ साथ वो कुछ ऐसे सुझाव भी दे देते हैं जो कि बाकी जो किसानों के लिए या बाकी श्रोताओं के लिए जो बेहद लाभदायक सिद्ध होते हैं। तो ऐसे ही हम उम्मीद करते रहते हैं कि आप हमसे जुड़ते रहें ताकि आपके सवालों के साथ भी कई बार जो जवाब है दूसरे लोगों को भी मिल जाता है।
3: जी बिल्कुल सही कहा कोमल आपने। और इसी बीच देखिए हमारे श्रोता कितने जागरूक हैं, ऐसा नहीं है कि उनको जानकारी नहीं है, वो समझते हैं जल का महत्व है, क्योंकि जल है तो कल है, जल ही जीवन है। इसीलिए हमारे एक श्रोता ने बताया कि किस तरीके से घरों में जो पानी बर्बाद होता है उसको हम किस तरीके से संरक्षित कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी। इसके अलावा यहाँ पर एक बात यह है कि जो पारंपरिक सिंचाई विधियाँ हैं उनमें क्या कुछ नए एक तरीके से कहा जाए कि अपडेट किया जाए, कुछ नया तरीका उसमें जोड़ा जाए ताकि वो पारंपरिक तरीकों के साथ साथ वो आधुनिक तरीकों से मेल खाए और हमारे किसान भाइयों को वो फायदेमंद भी रहे।
0: बड़ा अच्छी बात है कि पारंपरिक सिंचाई विधि कैसे अच्छे से करें हम, क्योंकि कई बार हम ये कहते हैं आधुनिक ही करें, लेकिन पारंपरिक विधि में भी आप पानी का अच्छे से उचित इस्तेमाल कर सकते हैं।
3: जी।
0: जरूरत यह है कि आप तरीके से उसको डिजाइन करें, आपके क्षेत्र का जो स्लोप है यानी कि जो ढलाव है वो ठीक से मैनेज करें और आपके क्षेत्र में छोटी छोटी क्यारियां बना के आप सिंचाई करें जिससे कि पानी बर्बाद ना हो। और कोशिश करें जैसे अगर पानी आप छोड़ते हैं तो अगर कोई खेत है तो 70% क्षेत्र तक अगर पानी पहुंच गया वहीं पे पानी का सप्लाई बंद कर दें, उससे सारा पानी व्यवस्थित होके पूरा क्षेत्र को सिंचाई कर देगा। अधिक पानी ना लगाएं, ये मेरा एक अंतिम संदेश है और सबको एक एक अच्छा संदेश है कि नहीं लगाएंगे तो आपको ज्यादा पानी लगाने से फसल ज्यादा नहीं होगी।
3: ये बहुत बड़ा भ्रम है किसानों को, कई किसान भाइयों को लगता है कि हम बहुत ज्यादा अगर धान में पानी भर देंगे या और फसलों में तो उसका उत्पादन अच्छा होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं,
0: नहीं। उचित पानी उचित पानी लगाएं तो आप अपने आप ही पानी बचा सकते हैं, कम पानी में अधिक उत्पादन ले सकते हैं, अधिक उत्पादन, उत्पादकता और अल्टीमेटली आपकी इनकम का जरिया बनेगा, कम खर्चा होगा तो ज्यादा इनकम होगी आप
1: जी।

0: डॉक्टर मनोज खन्ना, आप स्टूडियो में आए, अपना इतना कीमती समय हमें दिया और इतनी ढेर सारी जानकारियां, कुछ मिथक भी तोड़े आपने हमारे और हमारे श्रोताओं के, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद बहुत बहुत जी।
0: और आज की चर्चा से हमने जाना श्रोताओं की वर्षा की हर बूंद जो है वो अनमोल होती है, इसलिए पानी का सही समय पर सही स्थान पर सहेज कर अगर उसे रख लिया जाए तो यही बूंदें खेतों को हरा भरा बनाती हैं, भूजल का स्तर बढ़ाती हैं और सिंचाई की लागत को कम करती हैं। और इसी संदेश के साथ आज हम कार्यक्रम किसान की बात से यही जो है आप सभी से इजाजत लेते हैं, अनुमति चाहते हैं। फिर मुलाकात होगी किसान की बात के एक और उपयोगी विषय में किसी एक और अंक में। नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और याद रखिए, जहां जल का सम्मान होता है वहीं समृद्धि का निर्माण होता है। इसी के साथ कोमल और
2: अरुणेश कुमार का नमस्कार।
0: और अगर आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं kkbongold@gmail.com पर।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर, संयोजक शिवनंदन लाल।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे अपने त्याग पत्र में श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिन की घटनाओं से उनका मन व्यथित था और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत की युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत है और युवाओं को भ्रम के कुचक्र में नहीं फंसने देंगे। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और देश में जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है उसका राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसीलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। में श्री प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, विश्वास और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। सरकार आज दोपहर नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता करेगी। इस बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा होगी। ये बैठक दोपहर 3:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित की जाएगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CJP प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने परीक्षा प्रश्न पत्र लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों को नामित किया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर इन मामलों का निपटारा किया जाए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर की जिला और अतिरिक्त सत्र अदालतों को लोक परीक्षा अधिनियम 2024 तथा भारतीय न्याय संहिता के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत विशेष अदालत घोषित किया है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये अदालतें राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा भेजे गए संबंधित मामलों की भी सुनवाई करेगी। इनका अधिकार क्षेत्र आसपास के जिलों तक भी विस्तारित रहेगा। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 1 लाख से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से संबंधित मामलों में 14 और लोगों की मौत हुई। इनमें चराईदेव में 7, शिवसागर में 6 और जोरहाट में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई। एक रिपोर्ट।
5: राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 61 हो गई है। प्रमुख नदियां दीखो, दिसंग और धनसरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे ऊपरी असम में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। आपदा मोचन बल, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियां राहत सामग्री उपलब्ध कराने, फंसे हुए लोगों को निकालने और बाढ़ प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने में लगी हुई है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित जिलों राहत उपायों को तेज कर दिया गया है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
4: वहीं गुजरात में राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार गुजरात में इस मानसून में अब तक औसत वर्षा से 52% से अधिक हुई है। पिछले 24 घंटे में पाटन जिले के संतालपुर तालुका में सबसे अधिक 15 इंच वर्षा दर्ज की गई। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: एसटीएफ की 32 प्लांटों और सेना की 6 टुकड़ियां भी विभिन्न जिलों में तैनात की गई है। लगातार हो रही बारिश से राज्य के जलाशय में जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध में जल भंडारण क्षमता का लगभग 69% पानी भर

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं देश की जानी मानी हॉकी खिलाड़ी और इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित सविता पुनिया के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही है ममता चोपड़ा।
2: नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, आपके साथ मैं हूँ ममता चोपड़ा। कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनके लिए आंकड़े भी फेल हो जाते हैं, मतलब इतने आंकड़े उनके रिकॉर्ड्स के खड़े हो जाते हैं कि सुनने वाले को लगता है वाकई कोई इतनी उपलब्धि भी हासिल कर सकता है। और हमारे देश की बेटियां इस तरह का काम कर भी रही हैं। आज हमारे साथ देश की ऐसी ही बेटी है जो लगभग 17-18 साल से हॉकी के क्षेत्र में अपना दमखम दिखा रही है। जैसे ही पदार्पण किया वहां से जो शुरुआत हुई तो आज भी वे सफलतम हॉकी प्लेयर्स में गिनी जाती हैं और हम आप सब उन्हें जानते हैं ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से, सविता पुनिया। तो आइए करते हैं मुलाकात सविता पुनिया से। सविता, बहुत बहुत स्वागत आपका।
3: थैंक यू मैम, थैंक यू।
2: जब मैं आपका डिटेल्स देख रही थी तो मुझे बहुत हैरानी हुई, मतलब 300 से ज्यादा मैचेस खेल चुकी हैं आप, मतलब 17-18 साल से आप उसी पेस को बनाए रख पा रही हैं खेल के मैदान में। मुझे लगता है अब तो आपको आदत पड़ गई होगी इस तेज रफ्तार जिंदगी की, हाई पिच।
3: या मैम, डेफिनेटली। जब मैं सबसे पहले इंडिया टीम में आई थी तो मेरे कोच आजाद सिंह मलिक ने बात बोली थी कि इंडिया टीम में आना आसान है बट उस जगह को मेंटेन रखने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और वो चीज मेरे माइंड में थी हमेशा कि मुझे खेलना है और ऐसा खेलना है कि मैं एक एग्जांपल सेट करूं अपनी टीम के लिए, अपने सभी लड़कियों के लिए, क्योंकि बहुत कम चांस मिलता था उस टाइम पे लड़कियों को घर से बाहर निकलने के लिए। तो बहुत ब्लेस्ड हूं क्योंकि उस चीज के लिए मैंने बहुत डेडिकेशन के साथ काम किया और हमेशा अपनी फैमिली को वो क्रेडिट देती हूं क्योंकि आज फैमिली की सपोर्ट है तो मुझे पता ही नहीं चला कि इतने साल कैसे निकल गए। तो हर एक बच्चे को मैं बोलती हूँ कि इंडिया टीम में आना आपको जरूर, अगर आपने मेहनत की है तो आपको एक मौका जरूर मिलेगा, वो प्लेटफॉर्म मिलेगा, बट उसको मेंटेन रखने के लिए आपको बाकियों से ज्यादा फोकस होना चाहिए, वो डेडिकेशन होना चाहिए, वो पैशन होना चाहिए। सो इट्स नॉट इजी।
2: हाँ, और इसीलिए हैरानी इसलिए होती है कि आप निरंतर उसको बनाए पा रही हैं, रखा हुआ है आपने उसको, अभी भी आप इसी होड़ में हैं। लेकिन जब आप जूनियर ही थी, जब आप सीनियर टीम में चली गई थी, आपने देश के लिए खेलना शुरू कर दिया था, तब तो जाहिर है कि आपने हॉकी खेलना, ड्रिबल करना शुरू किया होगा।
3: जी,
2: कैसे एक हॉकी के मैदान में गोलकीपर तक का सफर तय हुआ? अभी तो आप गोलकीपर के तौर पर ही लोग आपको जानते हैं।
3: जी, मुझे याद है जब मेरे घर पे सबसे पहले मेरे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर आए पापा के पास और 2003 में बोला गया कि आपकी बेटी और मेरी कजन की अगर खेलना चाहते हैं, स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं तो हम सिरसा में एक नर्सरी खुल रही है गवर्नमेंट की तरफ से और वहाँ पे हॉकी, बैडमिंटन और जूडो है। तो मैं और मेरी बहन काफी एक्साइटेड थे क्योंकि गाँव से शहर जाना ही हमारे लिए 2003 में एक बहुत बड़ी बात होती थी कि ओके हमें वहाँ जाना है। तो मेरे मम्मी जी को गठिया था उस टाइम पे और मैं सब घर के काम करती थी, जो भी घर का झाड़ू पोछा, गाय भैंस का जो काम होता है मैं, पापा और भाई मिलके करते थे। तो मेरे लिए ऐसे था कि मन में एक डर था कि मम्मी की तो तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कैसे जाऊंगी। बट फिर मैं दादाजी के पास गई और उनकी जो खुशी थी, दादाजी ने बोला कि बेटा मैं चाहता हूँ तू

0: हॉकी खेल, मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा क्योंकि मुझे हॉकी की नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे, सिर्फ क्रिकेट सुना था क्योंकि घर में टीवी भी नहीं था, न्यूज़पेपर भी नहीं आता था। तो मैंने बोला कि दादाजी हॉकी क्या होता है कैसे, तो बोलते बेटा एक बॉल होती है, 11 दो टीम में प्लेयर होते हैं, सब एक बॉल के पीछे भाग रहे होते हैं, पर बहुत डिफिकल्ट गेम है। उनकी जो वर्डिंग थी ये थी कि डिफिकल्ट गेम है, तो मैं चाहता हूँ मेरी पोती हॉकी खेले। और हम एक दादाजी का ऐसा था कि हमारे घर में पोतों से ज्यादा पोतियों को या बेटे से ज्यादा बेटियों को प्यार मिलता था, तो मैंने कहा दादाजी ने मेरे से कुछ बोला है तो मुझे खेलनी तो हॉकी है।
1: अच्छा
0: जी, फिर मैंने हॉकी की ट्रायल दी और वहां मेरी फिजिकल टेस्ट हुए थे क्योंकि हॉकी खेलनी तो आती नहीं थी, तो नॉर्मल टेस्ट, तो वहां पे मैं सेकंड आई थी। गई, मन नहीं लगा क्योंकि वो लाइफ बहुत एक
1: गवर्नमेंट होती है ना।
0: जी, डिसिप्लिन एंड मम्मी की हेल्थ का ऑलरेडी बताया, वो माइंड में था, तो काफी रोती थी। हफ्ते में सिर्फ एक बार फोन आना होता था फ्राइडे को घर से।
1: क्या उम्र थी आपकी उस समय?
0: 13 साल की थी।
1: अच्छा जी, 13 साल की सविता के लिए वो सब बहुत ज्यादा हो गया।
0: टू मच, टू। अभी भी याद करती हूँ तो सोचती हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पापा मम्मी ने मुझे छोड़ने नहीं दिया। अच्छा। इस वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मैंने अपनी तरफ से सब कोशिश की कि किसी भी तरह से मैं हॉकी छोड़ दूं और घर वापस चली जाऊं। काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी, मम्मी को बोला कि नहीं बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी, खाना भी छोड़ दिया था खाना। मेरे फ्रेंड्स बोलते थे पापा को कि ये ठीक से खा नहीं रही है, सो नहीं रही है, पूरा टाइम रोती है, आप लेके जाओ। तो पापा लेने आए और तब मेरे कोच थे सुंदर सिंह खरब, उन्होंने बोला कि इसकी हाइट अच्छी है और हम इसे गोलकीपर बना देते हैं, तो मे बी वन डे शी कैन प्ले फॉर इंडिया। वो वर्ड पापा के लिए, एक इंडिया खेल सकती है आपकी बेटी, मेरे लिए बहुत बड़ा सपना देख लिया था उन्होंने। मैं जो भी होगा अपनी बेटी के लिए फिर तो करूंगा, बट ये बात मुझे उस दिन नहीं पता थी। मैं खुशी खुशी घर गई हूँ कि मैं हॉकी छोड़ के आ चुकी हूँ, मम्मी के पास जाके बता रही हूँ, तो मम्मी ने बोला नहीं बेटा मंडे को तू वापस जा रही है। मैंने बोला नहीं, मैंने छोड़ दिया है सबको, मैं अपनी फ्रेंड्स को बाय बोल के आई हूँ। तो बोले कि नहीं बेटा, अब तू एज ए डिफेंडर नहीं खेलेगी, गोलकीपर खेलेगी, उससे पहले मैं एज ए डिफेंडर ट्रेनिंग करती थी। तो मैंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं है। बोल तो मम्मी ने बताया कि बेटा तेरे पापा ने 18,000 रुपए गोलकीपर किट के कोच को देके आए हैं, क्योंकि कोच ने बोला ऑलरेडी मेरे ग्राउंड पे दो गोलकीपर हैं, तो मेरे पास साल में दो ही किट आती है, या तो आपको
1: एक साल। पापा के पास तो पैसे नहीं थे ना?
0: जी, मेरे पापा जॉब करते थे, बट 8,500-9,000 रुपए सैलरी थी, और वो चीज मेरे को ऐसे हुआ कि 18,000 रुपए ऑलमोस्ट 2 महीने की सैलरी मेरे को मेरे किट पे पापा ने लगा दी, और मेरा मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं है मैं कुछ कर पाऊंगी। काफी रोई मैं, पर मम्मी ने बोला कि बेटा दुखी मत हो, कोशिश कर, क्या पता भगवान, तू मेहनत कर, क्या पता भगवान वो दिन ला दे और पापा के लिए एक रिटर्न गिफ्ट होगा। उसके बाद में मैं प्रैक्टिस किया, सिरसा में ही थी, और फिर मेरी सिलेक्शन आगे स्टेट में गई मैं वहां पे, और काफी अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि नॉर्मली हम शाहबाद की टीम से काफी गोल खाते थे, बट वो मेरा पहला टूर्नामेंट था जहां पे हमने बहुत कम मार्जिन से मैच को लूज किया।
1: आपने काफी गोल बचाए।
0: जी, तो वहां जो हमारे जो शाहबाद टीम के कोच थे उन्होंने मुझे आके 100 रुपए दिए कि आज तेरी वजह से टीम का परफॉर्मेंस अच्छा ऐसा रहा है, तो वो चीजें मुझे फिर मोटिवेट किया कि ठीक है मुझे।
1: लेकिन आपने जो शुरुआत की, जब उसके बाद आप साई अकेडमी गए, उसके बाद नेशनल टीम में आप 2008 में आ चुकी थी, 17 साल की उम्र में आप नेशनल टीम में आ गई थी, मतलब है ना, उस पर आपने एशिया कप खेला। ये जो आपने हॉकी के मैदान में गोल के आगे आप खड़ी हो जाती हैं कि ये बॉल को मैं पास नहीं होने दूंगी, उस वक्त सविता का क्या जज्बा होता है मन में?
0: मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम इंडिया कैंप में आई और हम गाँव में रहते हैं, तो पापा के पास फोन गया कि आपकी बेटी का नाम नेशनल कैंप में आ गया, तो पापा बोले कि जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई थी उस दिन मैंने लड्डू बांटे थे और एक आज लड्डू बांटूंगा। तो वो चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती है। कोच के पास मैसेज आया कि मेरा और एक मेरे साथ की प्लेयर थी कि दोनों का नाम इंडिया कैंप में आया, आजाद सर उस टाइम मेरे कोच थे, तो सर ने सेम जो मैंने आपको बोला वो बात बोल के भेजा कि एक बार तो कोई भी इंडिया खेल लेता है, बट उस जगह को मेंटेन करने के लिए आपको बाकियों से और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। गई कैंप में और मैं जूनियर थी उस टाइम पे, और अगले ही कैंप में मुझे बोला गया कि आप जूनियर से सीनियर में शिफ्ट हो रहे हो, तो भंगू सर हमारे कोच थे नेशनल टीम के उस टाइम, तो हर चीज पापा को बताती थी, तो बड़ी खुशी से कि पापा का सपना मैं भी पूरा होने वाला है, एक अच्छी फीलिंग आ रही थी। जो चीज ने मुझे मोटिवेट किया हॉकी खेलने के लिए वो ये था कि मैं घर गई और दादाजी मेरे पास आए और बोले कि बेटा एक पेपर में एक आर्टिकल आया हुआ है जहां नाम आया है कि रंजीत सिंह पुनिया की पोती सिरसा की पहली इंटरनेशनल प्लेयर है, और काफी खुशी थी उनकी आंखों में और बहुत इवन इमोशनल थे, और बट वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि बेटा आज मैं ये पेपर अपनी कबड़ में रखता हूँ, आज का दिन तू देख और आज से पूरा एक साल बाद मैं तुझे खुद से पढ़ के दिखाऊंगा।
1: अच्छा?
0: मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा।
1: क्या बात।
0: और आज वो हमारे साथ नहीं है, बट वो चीज सच हुई। एक साल बाद उन्होंने वो खुद से पेपर मुझे पढ़ के सुनाया। उस दिन मैंने सोच लिया कि अगर मैं 67 ईयर की एज में दादाजी को इंस्पायर कर सकती हूँ पढ़ने के लिए, तो फिर अब तो मैं हॉकी नहीं छोड़ूंगी, अब तो मैं गिव अप नहीं करूंगी, क्या पता और कितनी लड़कियों को मैं इंस्पायर कर सकती हूँ।
1: बिल्कुल ठीक। और उसके बाद सविता ने जो काम शुरू किया, इंस्पिरेशन बहुत बहुत ज्यादा लड़कियों को मिल पाई, क्योंकि ये एक वॉल की तरह जो

0: होती है गोल के आगे सविता, वो वाकई एक उदाहरण पेश करता है। लेकिन खासकर उन इंस्टांसेस की बात बताएं जब आपने जापान के गोल रोके, जब आपने ऑस्ट्रेलिया के इतने 9-9 गोल रोक डाले, उस समय किस तरीके का उत्साह था टीम के अंदर, उस समय किस तरीके का ऑडियंस का रिएक्शन था और आप उस समय क्या महसूस कर रहे थे?
1: सबसे बड़ी बात थी कि मुझे एज ए डिफेंडर से गोलकीपर आना, मैंने उस चीज को बहुत इंजॉय किया क्योंकि मुझे हेलमेट के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है। मुझे मैं कैमरे से या पब्लिक प्लेस से काफी दूर रहती थी बट ग्राउंड में मेरे को लगता था कि मैंने हेलमेट पहन रखा है, अब मैं किसी को नहीं दिख रही हूँ। तो वो चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती थी। और जापान के मैच की जो आप बात कर रहे हैं वो रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन था और हमारी टीम में एक ही बात होती थी उस टाइम पे कि हमारी टीम ने कभी भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किया है। 1980 में बुलाया था बट वो एक इन्विटेशन था, है ना, टीम ने क्वालिफाई नहीं किया। तो वो मुझे था कि मैं गोलकीपर हूँ और गोलकीपर के ऊपर बहुत गेम डिपेंड होता है, तो शायद मुझे कुछ उस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि मैं अपनी टीम को और कितना कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो काफी अच्छा मैच था वो, मुझे आज भी याद है। और उस 1.5 ईयर हुआ था उस टाइम मुझे बीइंग ए फर्स्ट गोलकीपर, प्रेशर सिचुएशन था बट जब एक सेव करते हैं और पता है कि एक स्टेप क्लोज जा रहे हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है और नेक्स्ट मोमेंट के लिए नर्वसनेस भी होती है कि अभी और गलती ना हो जाए, अभी और गलती ना हो जाए। तो जैसे ही पता चला कि हमने रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है और उसके बाद में रियो ओलंपिक्स में मेरी और मेरी टीम दोनों की ही परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, घर पे आई अगेन पापा के साथ सब कुछ डिस्कस किया कि मैं उतनी खुश नहीं हूँ अपनी परफॉर्मेंस से, तो पापा ने बोला बेटा पहला ओलंपिक्स था, कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस आएगा तो बाद में और अच्छा होगा। उसके बाद में मैंने सोचा कि मुझे हॉकी ने बहुत कुछ दिया है बट मुझे लगता है कि मुझे अपनी टीम के लिए और भी बहुत कुछ करना है, तो मैं डायरी लिखती हूँ नॉर्मली। तो मैंने फिर उस सारी चीजें उसमें लिखा कि मुझे नेक्स्ट ओलंपिक खेलना है और अपने आप को और डे बाय डे बेटर बनाना है ताकि मैं टीम की अच्छी परफॉर्मेंस में अपना और योगदान दे सकूं। बस मैम बहुत गोलकीपर की नॉर्मली लोगों को शायद लगता है कि गोलकीपर्स का सिर्फ मैच खेलना तो आसान है क्योंकि बाकी प्लेयर्स भागते हैं, गोलकीपर सिर्फ 60 मिनट खड़े रहते हैं। गोलकीपर्स के बहुत सेशंस एक्स्ट्रा होते हैं, बाकी टीम से ज्यादा एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करते हैं, हमें ड्रैग फ्लिक रोकना है, शूट आउट रोकना है और बाकी जो भी फुटवर्क की बहुत एक्सरसाइज करनी होती है, तो वो मैंने अपनी रूटीन में ज्यादा एक्स्ट्रा ऐड की और कोचेस से हेल्प लेती थी उस चीज में कि मुझे बताओ कि बेटर परफॉर्म करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक्स आता है और जब हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया का क्वार्टर फाइनल था, सभी को यही हमें जो मैसेज मिल रहे थे सभी यही था कि ऑस्ट्रेलिया ने तो अपने पूल में टॉप किया है और इंडिया अपने पूल में लास्ट आया। और एक अच्छी बात ऑस्ट्रेलिया के लिए ये था कि ओपोनेंट के ऊपर प्रेशर आने के लिए कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने पूल मैचेस में एक भी गोल कंसीड नहीं किया है। जैसे मैच से पहले वाले दिन पापा से बात होती है तो पापा बोल रहे कि बेटा ऑस्ट्रेलिया के साथ है, काफी टफ ओपोनेंट है बट कोई बात नहीं, तुम अपनी तरफ से, वो एक मैच खेलने के बाद रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। मैंने पापा को बोला पापा आप टेंशन मत लो, हम जीतेंगे। अच्छा। मेरे पापा भी अगर आप बात करोगे वो जरूर ये चीज को मेंशन करेंगे। अपने आप से ऐसे कॉन्फिडेंस था क्योंकि हम एज ए टीम हमने बहुत काम किया था। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था और काफी टीम अच्छा खेल रही थी, मेरा भी अच्छा चल रहा था और लास्ट क्वार्टर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि 1-0 वो डाउन थे बट उनको वो एक बॉडी लैंग्वेज जो देखते हैं ना, क्योंकि हाफ टाइम हुआ वो हंसते हुए आ रहे हैं, क्वार्टर टाइम हुआ हंसते हुए वापिस आ रहे हैं, अदरवाइज ओलंपिक्स का मैच है, हार रहे हैं, तो कोई भी उस टाइम पे उनको एक था कि शायद हम
0: साइकोलॉजिकल गेम्स भी खेली जाती हैं,
1: दैट आल्सो डेफिनेटली, बट थोड़ा ये उनको था कि हम निकाल लेंगे, गोल निकल जाएगा, हमें भी हमारी टीम पे कॉन्फिडेंस था। तो हमने यही बात किया कि आज के मैच में डू और डाई और एक एक मिनट एक एक सेकंड इम्पोर्टेंट है। और लास्ट क्वार्टर में उससे पहले 2 पेनल्टी कॉर्नर मिले थे, लास्ट क्वार्टर में 7 पेनल्टी कॉर्नर मिले और मेरे साथ साथ, ऐसा नहीं है कि मैंने अकेले ने रोका, मेरे साथ मेरे दूसरे डिफेंडर भी थे, तो एज ए टीम हमने वो मैच जीता।
0: आपके जैसे खिलाड़ी हैं जिनकी वजह से हॉकी लोगों के बीच में पॉपुलर हो पाई है और मतलब आप इकलौती ऐसी खिलाड़ी हैं अभी जिनको 3 बार लगातार FIH की ओर से बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, जो वाकई सराहनीय है। सविता आप तो कैप्टन भी रही है ना, आपने इतने सारे गोलकीपर के तौर पर जो हासिल किया, कैप्टन जब बनी थी तो कुछ प्रेशर महसूस होता था क्या?
1: डेफिनेटली क्योंकि वो गोलकीपर अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है बट उसके साथ बीइंग ए कैप्टन और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एड होती है, तो प्रेशर होता है क्योंकि वहां पे सिर्फ आप अपनी परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, पूरी टीम के लिए है, तो ऑफकोर्स कैप्टन इज
0: बहुत रिस्पॉन्सिबल और प्रेशर वाली जॉब तो है। अच्छा, हमने हमेशा आपको जैसे इस तरह के ट्रैक सूट्स में ही देखा है, खेलते हुए भी, अभी भी आप हमारे साथ इसी तरह से हैं। इन ट्रैक सूट के पीछे की सविता क्या ऐसी भी है जो बिंदी लगाती है, चूड़ियां पहनती है, आम लड़कियों की तरह सजती है, पसंद करती है?
1: नो मैम, मैं बहुत ही सिंपल रहना पसंद करती हूँ और बचपन में मुझे मम्मी बताते हैं कि मैं छोटी थी तब था मुझे, बट 5th-6th क्लास तक था कि कुछ गाँव में जाते थे, बैंगल्स लेते थे, और पायल लेते थे, बट मैंने सिर्फ लेके रखी है, पहना कभी भी नहीं है। और आज के टाइम पे ये है कि मुझे अगर कोई बोलता है कि मेकअप करना है तो इट्स मेक मी स्ट्रेस कि मुझे उतना पसंद नहीं, मुझे सिंपल रहना ज्यादा पसंद है।
0: ज्यादा पसंद करती हैं। लेकिन हेलमेट के पीछे जब छुपी होती हैं, उनके बाहर निकलकर जो सविता सामने आती है, उस सविता के बारे में ऐसी क्या बातें हैं जो एक हॉकी प्लेयर से हटकर लोगों को जाननी होती है?
1: हॉकी से बाहर ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं, बट हाँ कि हॉकी ने मुझे कॉन्फिडेंट बनाया है। बिना हेलमेट के भी आज मुझे वो कॉन्फिडेंस फील होता है। मैं उस दिन का शुक्रगुजार करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स की वजह से मैंने अपनी हॉकी जर्नी को कंटिन्यू रखा।
0: वैसे आप जब छोटी थी उस वक्त आपकी प्रैक्टिसेस के लिए जाना करना, और हरियाणा जैसे राज्य जहाँ पर हम देखते थे कि लड़कियों को लेकर उस वक्त तो आंकड़े और भी लैंगिक अनुपात के हिसाब से बहुत अच्छे नहीं थे, ऐसे में आपको जब ट्रेनिंग के लिए जाना होता था, करना होता था, तब क्या क्या मुश्किलें आती थी आप?
1: 2011 की बात है, उस टाइम हमें जो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती थी, ट्रांसपोर्ट की बहुत दिक्कत होती थी। तो मैं दिल्ली में ही थी, बेंगलोर से मैं दिल्ली आई थी और बस स्टैंड पे थी मैं, क्योंकि उस टाइम टैक्सी फ्लाइट ये सब उतना नहीं होता था, ट्रेन से आते थे और यहाँ से आगे रोडवेज से जाते थे। मिडिल क्लास फैमिली से थी, तो मैं बहुत बार ऐसा होता था कि पापा को मैं बताना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि अदरवाइज वो लेने आएंगे, फिर पैसा लगेगा, खर्चा होगा। मैं दिल्ली बस स्टैंड पे थी, मेरे पास गोलकीपर बैग था और मैं ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे खड़ी थी, कोई मुझे बस में चढ़ा नहीं रहा था क्योंकि इतना बड़ा बैग है, देखे सबकी बैग रखेगी उतनी जगह पे दो सवारी और बैठ जाएंगे। मेरा गला भराया था, मैंने कंडक्टर से रिक्वेस्ट किया कि मैं 2 घंटे से वेट कर रही हूँ, प्लीज मुझे बस में बिठाओ। तो उन्होंने बोला इतना बड़ा बैग और पास में जो लोग खड़े मजाक कर रहे थे, लग रहा है देश छोड़ के जा रही है। तो वो चीजें मुझे अंदर से वीक कर रही थी, इट्स नॉट कि मुझे गुस्सा आ रहा था, मुझे वीक कर रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं क्यों खेल रही हूँ। और उसके बाद में ज्यादा खराब तब हुआ जब मैंने कंडक्टर से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बोला कि नहीं हम आपको बस में नहीं बिठाएंगे, या तो आपको 2 पैसेंजर की टिकट खरीदनी पड़ेगी जी। और 250 मुझे याद है 250 रुपीज की एक टिकट होती थी, और मैंने कहा नहीं 500 रुपीज तो एक्स्ट्रा, वो पैसे तो मैं बचा सकती हूँ। मैंने कहा नहीं, तो फिर बोलते आप ऊपर रख दो बस के ऊपर, छत पे रख दो। मैंने बोला इतना बड़ा बैग लेके मैं अकेली कैसे जाऊंगी, आप बोल दो, आप किसी की हेल्प के लिए मुझे बोलो। तो मैं उस बस में नहीं चढ़ी और मैंने पापा को रोते हुए फोन किया कि पापा मुझे नहीं खेलना है, मुझे हॉकी छोड़नी है, क्योंकि ऐसे तो मैं नहीं खेल पाऊंगी, कि मुझे बहुत खराब लगा आज ऐसे ऐसे हुआ। तो पापा ने बोला कि बेटा आज का दिन कैसे भी निकाल ले, चाहे मुझे सेकंड हैंड गाड़ी लेनी पड़े, पर मैं तुझे इस वजह से तो हॉकी नहीं छोड़ने दूंगा। पेरेंट्स की सपोर्ट क्या होती है वो मेरे से ज्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि सब एक्सपेंसिव उठाना। और मैं इंडिया टीम में 2008 में आई थी और 18 तक मेरे पास जॉब नहीं थी। तो बट कभी भी पापा ने कभी रियलाइज नहीं होने दिया कि मेरी बेटी के पास जॉब नहीं है। मम्मा थोड़ी टेंशन लेती थी, क्योंकि मम्मी को थोड़ा सा ये था कि क्या पता कब इंजरी हो जाए। तो ये टाइम थे जहाँ पे लगता था कि मैं अपने माँ बाप को जो खुशी देना चाहती हूँ वो अभी भी अधूरी है, बट
0: और उनकी खुशी के लिए आप लगी रही हैं।
1: जी
0: लगी। ये जो आपने लोगों की बात की कि लोग ऐसे कमेंट करते थे, सब करते थे, जब आपने खेलना शुरू किया तब भी तो आपको कमेंट सुनने को खूब मिलते होंगे।
1: बिल्कुल, बट मैं इस चीज में बहुत लकी हूँ कि मेरे को ये चीजें बाद में, जब मैंने ऑलमोस्ट इंडिया टीम में आने के भी 3-4 साल हो चुके थे, तब मुझे मम्मी ने बताना स्टार्ट किया।
0: क्या बोलते थे मम्मा, क्या बताते थे?
1: यही कि मतलब हाइट लंबी है तो क्यों शॉर्ट्स पहनना, क्यों जींस पहनना, और घर से बाहर भेजना वो भी तो सेफ नहीं है, कल को अपनी मर्जी से शादी करवाएगी, ये सब चीजें थी जहाँ। और बट मेरे पापा ने बोला कि हमारा डिसीजन है, हमारी बच्ची है, हम देखेंगे क्या करना है। तो वो मुझे बहुत बाद में खुशी होती थी कि कितने अच्छी चीजें हैं कि वो चीजें मुझे पता नहीं चलने दी।
0: आपके मामा पापा का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा, जिसकी वजह से आप यहाँ पर आज पहुंची हैं। आई एम श्योर बहुत ऐसे हरियाणा के भी परिवार होंगे, बेटियां होंगी, जो आज आपको देखकर बहुत प्रेरणा ले रही है। चलिए यहाँ पर एक रैपिड फायर करेंगे सविता के साथ। पेनल्टी शूट आउट या पब्लिक स्पीकिंग, किससे ज्यादा नर्वस होती है आप?
1: पब्लिक स्पीकिंग।
0: अच्छा, एक स्ट्राइकर दुनिया का जिसको आपको लगता है कि सबसे ज्यादा अलर्ट रहती है आप उसके खिलाफ?
1: ड्रैग फ्लिकर है नीदरलैंड से, ये भी जेंसन।
0: ओके, अगर आप हॉकी प्लेयर नहीं होती तो क्या होती?
1: डॉक्टर।
0: डॉक्टर, आप डॉक्टर बनना चाहती थी?
1: पापा का सपना था, क्योंकि मेरे पापा फार्मासिस्ट हैं, तो उन्होंने किसी वजह से, क्योंकि पैसों की कमी की वजह से अपनी स्टडी को रोकना पड़ा। पापा ने बोला मेरी बेटी को मैं डॉक्टर बनाऊंगा।
0: एक टीममेट जो आपको कितना ही टेंस मोमेंट हो हंसा सकता है?
1: नेहा गोयल, शी इज वेरी फनी।
0: अच्छा, क्या मुश्किल है, पेनल्टी कॉर्नर बचाना या फिर अपने फेवरेट फूड को ना कहना?
1: पेनल्टी कॉर्नर बचाना।
0: अच्छा
1: जी,
0: खाने को ना करना आसान है।
1: हाँ, मेरे लिए, मैं आई एम नॉट रियली फूडी पर्सन।
0: ओके, अगर आपको किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन दुनिया के से एक स्किल सीखनी हो तो क्या होगी?
1: मैं मैरी कॉम की फिटनेस को बहुत इंस्पायर करती हूँ।
0: ये सेंटेंस पूरा करिए कि लोग मुझे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं क्योंकि
1: मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ।
0: अगर आपको मैच खेलते हुए अपनी एक पोजीशन किसी के साथ स्वैप करनी हो गोलकीपर के हटकर तो क्या होगी?
1: मैं हमेशा ग्रेस जो हमारी प्लेयर थी उनके साथ हमेशा मजाक करती थी कि मुझे एज ए डिफेंडर खेलना पसंद है, क्योंकि जैसे गोलकीपर का एक परमिशन

0: कोचिंग करना, वैसे एक डिफेंडर है जो पूरी गेम को खिला सकता है, सो इट्स सेंटर डिफेंडर आई ऑलवेज एंजॉय.
1: ऑलराइट सविता, इट वाज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. लेकिन अंत में देश की बेटियों के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे?
0: जी, मैं हर एक उस बेटी को बोलना चाहती हूँ कि आप अपना एक गोल सेट करें लाइफ में और बहुत फोकस और डेडिकेशन के साथ बहुत हार्डवर्क करें और अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाएं. उससे ज्यादा बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती.
1: बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको और उम्मीद करते हैं कि अब जब भी आप मैदान पर उतरेंगी, जो आप गोल बचाती आई हैं वैसा ही आप करिश्मा दिखाती रहेंगी. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए.
0: थैंक यू सो मच मैम.
1: सविता पुनिया, जाहिर है कि द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया ने जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं और जो प्रेरणा देश की बेटियों को दे रही है वही आगे भी लगातार जारी रहे. हमारी ओर से यही शुभकामनाएं हैं. आज बस इतना ही. नमस्कार.
2: हमारे विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे जानी मानी हॉकी खिलाड़ी और इस वर्ष पद्म श्री से सम्मानित सविता पुनिया के साथ खास बातचीत. संवाद का संचालन कर रही थी ममता चोपड़ा. ये कार्यक्रम DD News के सहयोग से प्रस्तुत किया गया.
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और आप इसे सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। 3:30 और ठीक 55 सेकेंड मन भावन लेकर देविका हाजिर है। मन भावन की ईमेल आईडी fmgoldaidelhi@gmail.com जहां आप अपनी ईमेल्स हम तक पहुंचा सकते हैं। और फिलहाल श्रोताओं की पसंद का गीत और मेरी पसंद का गीत।

जी हाँ, बिन बुलाए हम चले आए और मन भवन सुन रहे हैं आप। आपको बता दें आशा जी की आवाज़ में गीत आपने सुना, फिल्म थी आहिस्ता आहिस्ता। और बहुत सारी मेल्स आप लोगों के हम तक पहुंची हैं। तो पहली फरमाइश जो हम पूरी करने जा रहे हैं वो मेल हमें लिखी है अंबरगढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से, रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान, और इन्होंने फिल्म कालिया के इस गीत की फरमाइश की। आवाज़ आशा भोसले और किशोर कुमार की।

0: मन भवन से आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न आईटीआर 1 या आईटीआर 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पर्सनल लोन ऑफर
5: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
4: फ्री ट्रिप टू दुबई
5: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
6: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
5: तो क्या करूं?
6: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
5: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
6: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
7: तीन बज के 42 मिनट और ठीक 50 सेकेंड। जी हाँ, मन भवन सुन रहे हैं आप और बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने हमें मेल भेजी है, कुछ श्रोता हैं जिनके नाम हम जरूर पढ़ना चाहेंगे। सनाबाद से शेख मूसा मोहसिन है, वडी कखेड़ा से, पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, अभिजीत गवानकर, राही, श्रीमती सरिता गवानकर, प्रणीता, सिद्धांत गवानकर, लाडला टुकटुक गवानकर, एकांश, सुमित गवानकर, कुमारी, ध्वनि गवानकर, परी, गाँव खेड़ावाड़ी, हिंगोली महाराष्ट्र से, शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे हैं, और साथ ही साथ गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, अनु खान,

अनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश भट्टा, नीलम भट्टा, निहारिका वंश भट्टा। गणेशपुर उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, शेख उमा परवीन, साहिमा फारूक, सरफराज शेख, गुल फरहाज शेख, बेबी मुस्कान। गुजरात गांधीग्राम से परवीन सोनी, पूजा पायल, जगदीश जौहरी। और इसके साथ साथ एक मेल जो हम शामिल करने जा रहे हैं वो हमें भेजी है होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, और इन्होंने फिल्म आंधी के इस गीत की फरमाइश की है।

0: फिल्म आंधी का गीत आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार जी की आवाज़ में, और बहुत सारी मेल आप लोगों की हम तक पहुंची हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को पसंद करने के लिए और एफएम गोल्ड को इतना प्यार देने के लिए।
1: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन

0: मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न आईटीआर 1 या आईटीआर 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
3: कुछ होता है जिनके नाम हम शामिल कर सकते हैं और कर रहे हैं क्योंकि समय का अभाव है, लेकिन चलिए, बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जिन्होंने अपनी फरमाइश भी भेजी है और जिन्होंने सिर्फ प्यार भेजा है। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन गौड़, कविता कर्ण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन भाई चंडीगढ़ सिटी, सतीश अनेजा, बिमला अनेजा भेजते हैं वहाँ से, और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुलालकर, रतन माला सुलालकर, वाइल्ड फीड बेंगलुरु से भारत भूषण हैं, अंजू श्रीवास्तव हैं, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति पौरुष, हरजिंदर सिंह भाटिया, इंजुल भाटिया, पपी भाटिया, सोनू भाटिया हैं, मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर रमनदीप, कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बेटा बजाज। अगली फरमाइश जो हम पूरी कर रहे हैं वो है, हमें भेजी है सतीश अनेजा, बिमला अनेजा ने चंडीगढ़ सिटी से, और फिल्म पराया धन का ये गीत सुनना चाहते हैं।

अजी होगा क्या, हम जानते हैं कि आप इसी तरह एफएम गोल्ड को प्यार करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी श्रोताओं का जिन्होंने मेल हमें भेजा। और आखिरी फरमाइश जो हम पूरी करने जा रहे हैं वो हमें भेजी है जॉन ड्रिकोस्टो, रोजी ड्रिकोस्टो, पर्ल ड्रिकोस्टो, विलियंस ड्रिकोस्टो और जनकपुरी सहारनपुर से। और इस गीत की फरमाइश की है फिल्म कभी कभी का ये गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें और किसी भी छात्र का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। सरकार ने पुनर्परीक्षा की नई तिथि की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगले वर्ष से इस परीक्षा को कंप्यूटर आधारित परीक्षा मोड में आयोजित करने का निर्णय लिया है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल और सरकार के बीच आज नई दिल्ली में अब से थोड़ी देर में तीसरे दौर की वार्ता होगी। बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्नपत्र लीक घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा होगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने परीक्षा प्रश्नपत्र लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों को नामित किया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर इन मामलों का निपटारा किया जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रोमानिया में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया है। बुखारेस्ट में भारतीय समुदाय के लिए आयोजित स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विदेशों में रहने वाले भारतीय अपनी मातृभूमि से गहराई से जुड़े हुए हैं और अपनी उपलब्धियों तथा समर्पण से हर भारतीय को गौरवान्वित करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डैन और अन्य नेताओं के साथ उनकी बातचीत द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस वर्ष की शुरुआत में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इसके शीघ्र कार्यान्वयन से रोमानिया और यूरोपीय संघ के अन्य सदस्य देशों के साथ व्यापार और निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। राष्ट्रपति ने रोमानिया के विकास में भारतीय पेशेवरों, उद्यमियों, शोधकर्ताओं, स्वास्थ्यकर्मियों और विद्यार्थियों के बहुमूल्य योगदान की भी सराहना की। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 1 लाख से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से संबंधित मामलों में 14 और लोगों की मौत हो गई है। इनमें चराईदेव में 7, शिवसागर में 6 और जोरहाट में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। एक रिपोर्ट।
1: राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 61 हो गई है। प्रमुख नदियां दीखो, दिसंग और धनसरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे ऊपरी असम में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। आपदा मोचन बल, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियां राहत सामग्री उपलब्ध कराने, फंसे हुए लोगों को निकालने और बाढ़ प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने में लगी हुई है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित जिलों में राहत उपायों को तेज कर दिया गया है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: गुजरात में राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार गुजरात में इस मानसून में अब तक औसत वर्षा से 52% अधिक वर्षा हुई है। पिछले 24 घंटों में पाटन जिले के संतालपुर तालुका में

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 4:10 लीजिए 4:11 हुए हैं और आप सुन रहे हैं 100.1 MHz।

0: जी हाँ, आशा जी की आवाज में गीत आपने सुना, फिल्म थी ये वादा रहा।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
4: तो क्या करूं?
5: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
5: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
6: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
7: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
6: और लाइट बिल के
7: अब 0 रुपए कैसे दूं?
6: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
7: पक्का।
8: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
9: हर

0: Employment News. Detailed eligibility criteria, application procedure and interview updates are available on the official website. Kindly do refer to www.cmlre.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान आमंत्रित करता इन पदों के लिए आवेदन। एसोसिएट प्रोफेसर स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी और ऑडियोलॉजी, एसोसिएट प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशल एजुकेशन, लेक्चरर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, पुनर्वास अधिकारी, प्रोस्थेटिस्ट और ऑर्थोटिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, स्पीच पैथोलॉजिस्ट, सहायक लेखाकार और कार्यशाला पर्यवेक्षक सह स्टोर कीपर। इसके अतिरिक्त केवल गुवाहाटी और इम्फाल केंद्रों के लिए आवश्यकता है इन पदों को भरने की। व्यावसायिक चिकित्सक सलाहकार, प्रारंभिक हस्तक्षेपकर्ता सलाहकार, स्पेशल एजुकेटर मेंटल रिटार्डेशन, स्पेशल एजुकेटर दृष्टिबाधित सलाहकार, ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट तथा नर्स सलाहकार। जो उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को हर तरह से पूरा करते हैं वे अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। आवेदन का ऑनलाइन पंजीकरण आधिकारिक वेबसाइट पर किया जा सकता है जिसका पता है svnirtar.nic.in। इसके अलावा आप इस वेबसाइट पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं recruitments.svnirtar.in। राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान गुवाहाटी में एस्टेट एवं सुरक्षा अधिकारी का एक पद रिक्त है। इसे भरने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। आवेदन 31 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है, जबकि 7 अगस्त 2026 तक आप आवेदन की हार्ड कॉपी सभी संलग्नों सहित भेज सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र तथा अन्य महत्वपूर्ण विवरणों के लिए देखिए राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान गुवाहाटी की वेबसाइट www.niperguwahati.ac.in। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान नई दिल्ली इन पदों के लिए संविदागत आधार पर नियुक्ति हेतु पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। विधि अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी, संपदा अधिकारी और आंतरिक ऑडिटर। पात्रता मानदंड, नियम और शर्तें, निर्धारित आवेदन प्रारूप सहित विस्तृत विज्ञापन आप देख सकते हैं संस्थान की वेबसाइट www.niepa.ac.in पर। किसी भी पूछताछ के लिए आप संपर्क कर सकते हैं establishment@nipa.ac.in पर। भारतीय प्रेस परिषद, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, लोधी रोड, नई दिल्ली आमंत्रित करता है अवर सचिव और आशुलिपिक ग्रेड सी के पदों के लिए आवेदन। विस्तृत विवरण देखिए भारतीय प्रेस परिषद की वेबसाइट पर जिसका पता है www.presscouncil.nic.in। सैनिक स्कूल सोसाइटी रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में सैनिक स्कूल बालाचाड़ी, जामनगर, गुजरात आमंत्रित करता है इन शैक्षणिक पदों के लिए आवेदन। पीजीटी भौतिकी एक रिक्ति, पीजीटी रसायन विज्ञान एक रिक्ति, पीजीटी जीव विज्ञान एक रिक्ति, पीजीटी अंग्रेजी एक रिक्ति अस्थाई, टीजीटी अंग्रेजी एक रिक्ति नियमित, टीजीटी हिंदी, टीजीटी विज्ञान, टीजीटी गणित, कला शिक्षक, लोअर डिवीजन क्लर्क, सामान्य कर्मचारी, स्कूल चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग सिस्टर और शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक सह मैट्रन महिला। आवेदन प्रपत्र और अन्य विवरण के लिए देखिए सैनिक स्कूल बालाचाड़ी जामनगर की वेबसाइट www.ssbalachadi.org। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: आदमी बुलबुला है पानी का, और पानी की बहती सतह पर टूटता भी है, डूबता भी है, फिर उभरता है, फिर से बहता है। न समंदर निगल सका इसको, न तवारीख तोड़ पाई है। वक्त की मौज पर सदा बहता आदमी बुलबुला।

0: बिल्कुल, जिस तरह के ये विचार हैं उनसे बिल्कुल जो आदमी का जो जीवन है और जिस तरह से वो जीता है, जिंदा दिली है, सब कुछ इसमें नजर आती है।
1: एब्सोल्युटली मुकेश, एंड गुलजार की आवाज़ थी, जगजीत सिंह की मेलिफ्लुअस आवाज़ थी, और जब वो भी यही कहते हैं ना, आदमी बुलबुला है पानी का, ये डूबता भी है उभरता भी है, एंड ये लम्हा तो है इंसान से ही जिंदा है, हमसे और आपसे जिंदा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस तरह ये लम्हा हमसे जिंदा है, हम भी इस लम्हे को जिंदा रखें, और सिर्फ इसी लम्हे को जिंदा रखें, बिकॉज द फ्यूचर इज नॉट इन आर कंट्रोल, पास्ट हैज ऑलरेडी बिकम पास्ट, सो नो यूज वेस्टिंग टाइम ओवर द पास्ट एंड फ्रेटिंग ओवर द फ्यूचर, लिव in the present, and that's why every day exactly at 4:30 हम लोग इस लम्हे को भरपूर जीते हैं और अपने listeners को भी कहते हैं जीने का मौका देते हैं विद आवर शो परिक्रमा। और you know, ये जो गुलजार की बड़ी famous lines हैं, आदमी बुलबुला है पानी का, डूबता भी है उभरता भी है, और ये कितना मुझे आज, क्योंकि आज से एकादशी स्टार्ट
0: है, बिल्कुल आज जो है देव शयनी एकादशी है, और आज ही के दिन भगवान विष्णु जो है वो शयन के लिए चले आते हैं, और चार महीने तक वो शयन करते हैं, उसके बाद जब देवोत्थानी एकादशी आती है तब वो उठते हैं।
1: जो मुकेश जी, मतलब जो मेरे कह सकते हैं मेरे जहन में कई ख्याल आते हैं, बिकॉज गॉड्स रियली यू नो डोंट नीड एनी टाइम टू रेस्ट, लेकिन ये उनका एक इशारा है हम इंसानों के लिए कि देखो कि तुम इतना काम भी करते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हारे लिए भी जरूरी है कि ठहराव लाओ, क्योंकि भगवान तो भगवान ही है, उनको मेरे ख्याल से क्या ही रेस्ट की जरूरत, क्या ही नींद की जरूरत, बट इवन ही सेंड्स अ सिग्नल्स टू ऑल हिज डेविटीज दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस भागती दौड़ती जिंदगी में कहीं तुम अपने आप को ना खो दो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिंदगी में एक ठहराव लाओ।
0: बिल्कुल, तो आज के इस कार्यक्रम के साथ, परिक्रमा कार्यक्रम के साथ, मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ हैं सायरा मुज्तबा, आवाज से आप लोग पहचान ही गए होंगे। आज के कार्यक्रम में हमारी नजर रहेगी क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास, और उनके पास क्या जानकारी है उस पर बताएंगे अपने श्रोताओं को। इसके साथ ही खेल गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी, और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि या जयंती।
1: दैट्स राइट, सो वेल लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस फर्स्ट मुकेश
0: जी।
1: And the biggest news coming in is that Union Education Minister Dharmendra Pradhan has resigned and has tendered his resignation to Prime Minister Modi.
0: असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई, 1,00,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर, 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।
1: श्री अमरनाथ यात्रा एंड श्री माता वैष्णो देवी यात्रा इन जम्मू एंड कश्मीर रिज्यूम आफ्टर

0: सस्पेंडेड फॉर 6 डेज ड्यू टू इनक्लीमेंट वेदर।
1: सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत जारी।
0: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट डेजिग्नेट्स 4 स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फॉर ट्रायल ऑफ केसेस रिलेटिंग टू पेपर लीक एंड रिलेटेड इररेगुलरिटीज।
1: भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंची।
0: एंड इन मेंस क्रिकेट इंडिया टू टेक ऑन होस्ट जिम्बाब्वे इन सेकेंड T20 एट हरारे दिस आफ्टरनून। And as we had mentioned even in our intro that Devshayani Ekadashi is going to start. So our topic for Dateline India, the segment that throws open the show Parikrama, Mukesh, आज हमारा topic भी Devshayani Ekadashi है।
1: बिल्कुल। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हर वर्ष 4 महीने तक कई हिंदू परिवार विवाह, गृह प्रवेश और दूसरे बड़े समारोहों से बचते हैं? इतने सारे लोग शुभ तारीख तय करने से पहले इंतजार क्यों करते हैं? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरी कहानी है? इसका जवाब एक पवित्र दिन से शुरू होता है जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं।
0: That's right, Mukesh. Observed on the Ekadashi of the Shukla Paksh in the month of Ashad, this year Devshayani Ekadashi falls on 25th of July. It comes soon after the famous Jagannath Rath Yatra and marks the beginning of Chaturmas, which is a spiritually significant 4-month period in the Hindu calendar.
1: सोचिए, महीने तक लगातार काम करने के बाद आखिरकार आराम करने, सोचने समझने और नई ऊर्जा पाने के लिए एक जरूरी विश्राम लेना आवश्यक है। हम सभी को ऐसे विश्राम की आवश्यकता होती है ना? हिंदू परिवार इसी बात को प्रतीकों के जरिए बहुत खूबसूरती से सिखाती है।
0: Yes, the custom believes that on Devshayani Ekadashi, Lord Vishnu enters Yog Nidra, a divine cosmic sleep resting on the sacred Kshir Sagar or the ocean of milk. 4 months later, he awakens on Prabodhini Ekadashi, bringing this sacred period to an end. That is why this Ekadashi is also lovingly known as Harishayani Ekadashi, Ashadi Ekadashi and Padma Ekadashi in different parts of India.
1: और सारा अलग अलग इलाके, अलग अलग नाम, लेकिन भक्ति, धैर्य और आंतरिक बदलाव का एक ही सुंदर संदेश। और यही बात भारत की सांस्कृतिक विरासत को इतना खास बनाती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भले ही परंपराएं अलग दिखें, भाषाएं बदल जाएं और रीत रिवाज अलग अलग हों, लेकिन आस्था की भावना लाखों लोगों को खूबसूरती से आपस में जोड़ती है।
0: Well, Chaturmas literally means 4 months, and these 4 months are not seen as a pause in life. They are seen as an opportunity to grow within. In our busy lives, we are constantly chasing deadlines and promotions and marks and targets and achievements. But how often do we pause and ask ourselves, am I becoming a better human, a better person? That is exactly the spirit Chaturmas encourages.
1: बिल्कुल, सिर्फ उत्सव मनाने के बजाय यह आत्म अनुशासन, प्रार्थना, ध्यान, दान और आध्यात्मिक चिंतन के लिए प्रेरित करता है।
0: And this is one of the reasons, Mukesh, why, as we mentioned earlier, that many families traditionally avoid weddings and certain other auspicious ceremonies during these months. Rather than beginning something new externally, the focus shifts inwards, strengthening ourselves internally.
1: और इस दिन भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण या लड्डू गोपाल की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है। उन्हें तुलसी के पत्ते, पंचामृत, फल, सूखे मेवे और पीले फूल चढ़ाए जाते हैं और कई श्रद्धालु शक्तिशाली मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं और बहुत से लोग विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी करते हैं और आरती करते हैं, साथ ही शांति, समृद्धि और अपने परिवार की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं।
0: And then, of course, comes another beautiful aspect of this festival, that is charity. Because devotion is considered complete only when compassion accompanies it. Some donate food grains, others offer clothes or daily essentials. Even a small act of kindness performed with sincerity is believed to carry immense spiritual value. I think koi bhi mazhab ho, usme sabse zyada emphasis isiliye jo hai daan ko diya jata hai.
1: Ji.
0: Because that you enrich yourself. You are not giving to someone else, but you are giving your soul a lot in that transaction, you can say. Even a small act of kindness like smile, jise kaha jata hai. Even a smile from your heartfelt smile towards your neighbor, नेबर, टुवर्ड्स योर फ्रेंड, दैट इज चैरिटी।
1: बिल्कुल। और इस दिन से जुड़ी एक और दिलचस्प परंपरा व्रत रखना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एकादशी का व्रत हर जगह एक जैसा नहीं होता। कुछ परिवार बस अनाज और दाल नहीं खाते, वहीं कुछ लोग पूरे दिन कड़ा व्रत रखते हैं और अगले दिन तय पारण के समय व्रत खोलते हैं। रीति रिवाज भले ही अलग अलग हो, लेकिन लक्ष्य

0: एक ही है, आत्मनियंत्रण और भक्ति भाव को बढ़ाना।
1: That's right, Mukesh. And if you just think very rationally and logically also, because this is the time of the year जब हमारे मुल्क में खासतौर से मानसून चरम सीमा पे हैं, germs and infections सबसे ज्यादा हो रहे हैं। अगर हम लोग अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा नॉन वेज फूड खाएंगे या बहुत ज्यादा खाना खाएंगे, सो यू हैव मोर चांसेस ऑफ कैचिंग दोज इलनेसेस। सो कोई भी मतलब साइंटिफिक बात अगर हम समझाएंगे लोगों की नहीं समझ आएगी, बट अगर हम लोग वही यू नो भगवान की आस्था में कह के खाएंगे तभी लोगों की समझ में आती। सो दिस इज द टाइम टू प्रॉब्ली यू नो ईट लेस एंड हैव सम मॉडरेशन इन योर लाइफ।
0: कई चीजें वर्जित होती हैं इस जो चातुर्मास का समय है, चार महीने का समय है, इसमें कई चीजें वर्जित होती हैं जिनको नहीं खाना चाहिए, और शायद वो इस जो मौसम में जो कमियां होती हैं या अच्छाइयां होती हैं उसके अनुसार हमारा शरीर जो है उसको एब्जॉर्ब करता है।
1: दैट्स वेरी राइट मुकेश। एंड वेल अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर दिस ईयर द एकादशी तिथि बिगिन्स एट 2:44 AM ऑन 25th July एंड कंक्लूड्स एट 12:14 AM ऑन 26th July। Ancient scriptures such as the Bhavish Puran and Padma Puran describe this sacred period as the time when Lord Vishnu enters divine rest, reminding devotees that life isn't only about constant action, it is also about reflection, balance and renewal.
0: और इसी से जुड़ी एक कथा भी है कि भगवान विष्णु जब सो जाते हैं तो दुनिया को कौन चलाता है? दुनिया को चलाने के लिए ये जिम्मेदारी दूसरे देवताओं पर दे दी जाती है। जैसे सावन के महीने में शंकर भगवान को देते हैं, उनकी पूजा होती है, वो संभालते हैं। उसके बाद फिर आपका गणेश चतुर्थी आती है तो भगवान गणेश उस समय अपना पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। फिर देवी दुर्गा आ जाती हैं, नवरात आते हैं, इस तरह से विभिन्न जो हैं वो अपने अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। तो शायद यही वो शाश्वत ज्ञान है जो देवशयनी एकादशी में छिपा है। कभी कभी सबसे बड़ी प्रगति हमारे बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है, इसलिए चाहे आप व्रत रखें, प्रार्थना करें, दान पुण्य करें या बस कुछ पल कृतज्ञता और आत्मचिंतन में बिताएं, देवशयनी एकादशी हमें याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति की शुरुआत आंतरिक शांति से होती है।
1: And maybe that's one of the most beautiful gifts India's ancient traditions continue to offer the modern world. And now, हम लोगों ने एकादशी की तो बात कर ली मुकेश। Today, apart from the spiritual significance of Devshayani Ekadashi, the world is also observing four important international observances that highlight health, justice, equality and human dignity. The first is the International Day for Judicial Well-being, which is observed to recognize that mental health and well-being of judges is essential for a fair, impartial and effective judiciary.
0: बिल्कुल सायरा, न्यायिक अधिकारी अक्सर बहुत अधिक दबाव में काम करते हैं क्योंकि उन्हें जटिल मामलों को सुलझाना होता है और ऐसे निर्णय लेने होते हैं जो लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। यह दिन काम की बेहतर जगह बनाने और भावनात्मक सेहत को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है ताकि ईमानदारी और सहानुभूति के साथ न्याय किया जा सके।
1: That's you know some of my lawyer friends actually joke कि हम लोग अपनी जैसे क्लाइंट्स की हियरिंग होती ना तो कुछ लोग बहुत से लोग obviously शिद्दत से भगवान से दुआ कर रहे होते हैं, तो मेरे लॉयर फ्रेंड्स कहते हैं भगवान से दुआ सबसे ज्यादा ये करो कि जज का मूड सही हो।
0: बिल्कुल,
1: इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द पर्सन हु इज गोइंग टू गिव द जजमेंट
0: लेने के लिए आपका मनोभाव बहुत जरूरी है।
1: एग्जैक्टली, बिकॉज इवेंचुअली दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स बट हु कम विद अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसा कि हम लोगों ने जस्ट बताया, दे कैन एक्चुअली चेंज लाइव्स विद द जजमेंट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द यू नो मेंटल हेल्थ एंड द वेल बींग ऑफ द जजेस इज ऑल्सो ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। एंड वेल टूडे इज ऑल्सो वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे, विच इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन दिस डे, दैट इज 25th of July, following a United Nations resolution. Well, drowning claims hundreds and thousands of lives, you know, every year, with children and young people among the most vulnerable.
0: बिल्कुल, ये दिन तैरना सीखने, पानी के आसपास बड़ों की देखरेख सुनिश्चित करने, लाइफ जैकेट का इस्तेमाल करने और समुदाय आधारित जल सुरक्षा पहलों को मजबूत करने जैसे आसान लेकिन जान बचाने वाले उपायों के बारे में जागरूकता फैलाता है।
1: And well, another important observance is World Embryologist Day, which is also known as World IVF Day, marking the birth of the world's first IVF baby, Louise Brown, on 25th July 1978. The day celebrates the remarkable advancements in assisted reproductive technology and honors embryologists, fertility specialists and healthcare professionals whose work has brought hope and the joy of parenthood to millions of families across the world.
0: और अंत में, आज अफ्रीकी मूल की महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। ये दिन अफ्रीकी मूल की महिलाओं और लड़कियों के अमूल्य योगदान, नेतृत्व और उपलब्धियों को सम्मान देने के साथ साथ उनके साथ होने वाले

0: वरिष्ठ मिश्र जी ने 1941 में उड़ीसा के शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री का पद भी संभाला था। देश सेवा और सामाजिक बुराइयों को दूर करने की भावना गोदावरीष मिश्र के अंदर आरंभ से ही थी। बहुत सी रूढ़ियों का पालन न करने के कारण सामाजिक बहिष्कार की भी उन्होंने परवाह नहीं की और उनके सामने अध्ययन के लिए इंग्लैंड और अमरीका जाने का अवसर आया, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया।
1: That's right, Mukesh, and we are also remembering Edward James Corbett, or jinko hum log jante hain Jim Corbett ke naam se. It's his birth anniversary. We all know that he was an Anglo-Indian hunter and author. He gained fame through hunting and killing several man-eating tigers and leopards in northern India, and as detailed in his best-selling 1944 memoir, The Man-Eaters of Kumaon. In his later years, he became an outspoken advocate of the nascent conservation movement. And born in Nainital, Corbett explored and hunted in the jungles of India in childhood. He shot his first man-eater in 1907 and continued to hunt and kill such animals over the next four decades who had become man-eaters.
0: और आज ही पुण्यतिथि है प्रसिद्ध लेखक और फिल्म निर्देशक बाबूराम इशारा की। उन्होंने एक लंबा संघर्षशील जीवन जिया। वे हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में किसी पहाड़ी गांव के रहने वाले थे। किशोर उम्र में ही भागकर वो मुंबई आ गए थे और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने एक फिल्म स्टूडियो में चाय देने का भी काम किया था और उन्होंने एक फिल्म निर्देशित की थी जिसका नाम है नजर, एक नजर। उस फिल्म का हम अपने श्रोताओं को डायलॉग सुनवाते हैं।
2: आवाज और सूरत का इतना खूबसूरत संगम मैंने पहले कभी नहीं देखा। तुम्हें तो किसी हरे पत्ते के सीने पर होना चाहिए था शबनम। कहां तुम कमल बनकर इस कीचड़ में आ गई?
3: अगर मानते हैं मैं कमल हूं तो मुझे इस कीचड़ से निकाल लीजिए।
2: कमल हमेशा कीचड़ में नहीं रहता शबनम। तुम्हें जरूर कोई ना कोई इस कीचड़ से निकालेगा, मैं नहीं तो कोई और से।
3: मैं कीचड़ में रहूं या गंगा जल में, एक बात याद रखिएगा, मैं शबनम हूं। आकाश से गिरी हूं, आकाश में ही लीन हो जाऊंगी।
2: आकाश तुम्हें अपने आप में जज्ब कर लेगा।
0: और अमिताभ बच्चन की ये फिल्म जो एक नजर है, इसका एक गाना भी हमने आपके लिए निकाला है, उसे भी सुनवाते हैं।

कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके और किसी भी छात्र का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगले वर्ष से इस परीक्षा को कंप्यूटर आधारित परीक्षा मोड में आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस बीच सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता जारी है। इसमें परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा हो रही है। भाजपा ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात कही।
1: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
0: उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। उन्होंने श्री धर्मेंद्र प्रधान को उनके अथक सेवा, सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता और मजबूत देश के निर्माण में योगदान के लिए धन्यवाद दिया। श्री रिजिजू ने देश के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और लाखों युवा विद्यार्थियों को हर निर्णय के केंद्र में रखने के लिए श्री प्रधान के ईमानदार प्रयासों की सराहना की। दिल्ली पुलिस ने लोगों को नई दिल्ली क्षेत्र की ओर जाने से बचने की सलाह दी है, क्योंकि पूरे जिले में भारी भीड़ और यातायात जाम देखा जा रहा है। पुलिस ने यात्रियों को निर्देश दिया है कि वे देरी से बचने और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार खोल दिए हैं। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया है। श्री शेखावत ने कहा कि सारनाथ शांति, ज्ञान और करुणा का शाश्वत प्रतीक है। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग एससी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के कानूनी सहयोग को मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रोमानिया में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया। बुखारेस्ट में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीय अपनी मातृभूमि से गहराई से जुड़े हुए हैं और अपनी उपलब्धियों तथा समर्पण से हर भारतीय को गौरवान्वित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हरारे में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरे T20 क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7 ओवर में 2 विकेट पर 61 रन बना लिए हैं। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्कॉश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में अनाहत का सामना आज मिस्र की रुकैया सलेम से होगा। अनाहत जोशना चिनप्पा के बाद विश्व जूनियर स्कॉश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Union Education Minister Dharmendra Pradhan has resigned and tendered his resignation to Prime Minister Narendra Modi today. In a social media post, Mr. Pradhan said he was pained by the prevailing situation following students' protest during the past 10 days, saying it is not a matter of prestige for him. He said that considering the situation at Jantar Mantar in New Delhi and across the country with the aim of preventing anti-national forces from exploiting it, as well as ensuring that not a single student's future gets entangled in legal complexities, he decided to tender his resignation to the Prime Minister. Mr. Pradhan also expressed his gratitude to the Prime Minister for his guidance, trust and constant support. He said that service to the nation is the highest priority of his life and he will remain forever dedicated to it. Mr. Pradhan said that following the irregularities in the NEET-UG examination 2026, the government handed over the investigation to the CBI and cancelled the exam. The government also announced a fresh date for a re-examination. He added that the government decided to conduct the examination in computer-based test CBT mode from next year. The BJP has accused the Congress of shying away from the discussion on NEET paper leak issue in Parliament. Addressing media in New Delhi, BJP MP and spokesperson Sudhanshu Trivedi sought to know from leader of the opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, whether his party will take part in the discussion on the issue when the proceedings of the House resume on Monday. He alleged that there are some elements whose only intention is to take political mileage and not to address students' concerns. The third round of discussions between the government and CJP delegation is underway in New Delhi. Union Ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh are holding discussion with the delegation, focusing on CJP's demands for reforms in the examination system and measures to prevent paper leaks. Delhi Metro Rail Corporation has informed that entry gates for Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat Metro stations are now open. President Draupadi Murmu has lauded the contribution of the Indian community in Romania, describing them as a vital pillar of the growing partnership between the two countries. Addressing a reception hosted for the Indian community in Bucharest on the concluding day of her state visit to Romania, the president said that Indians living abroad continue to remain deeply connected to their motherland and make every Indian proud through their achievements and dedication.
3: भारत रोमानिया संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण आधार है हमारे लोगों के बीच आत्मीय संबंध। ये देखकर मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय आईटी इंजीनियरिंग स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
2: Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashvani tomorrow at 11 a.m. It will be the 136th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. The ancient Buddhist site of Sarnath has been inscribed on the UNESCO World Heritage List. Culture and Tourism Minister Gajendra Singh Shekhawat has called it a defining moment for India's cultural heritage. In a social media post, Mr. Shekhawat said that Sarnath is a timeless beacon of peace, wisdom and compassion. In men's cricket, India was 74 for 2 in 8.2 overs against hosts Zimbabwe in the second T20 international in Harare when reports last came in. Zimbabwe have won the toss and opted to field first. Fast bowler Yash Thakur has made his debut after replacing

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम। करगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर आज सुनते हैं करगिल युद्ध में अपने शौर्य का प्रदर्शन करने वाले पूर्व सैनिक और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: नमस्कार। एक ऐसे योद्धा की कहानी हम आज आपको बताने जा रहे हैं जिनके जीवन में 15 जुलाई 1999 का दिन पुनर्जन्म दिवस या अमृत दिवस के रूप में आता है। करगिल की दुर्गम और बर्फीली चोटियों पर जब मौत मोर्टार बनकर गिरी, शरीर पर दर्जनों चोटें लगी, लेकिन उसके बावजूद हौसला नहीं टूटा। लगभग मुर्दा घर से वापस लौटकर भारत के पहले ब्लेड रनर बने, करगिल और लद्दाख जैसे दुर्गम इलाकों में मैराथन दौड़ी, कई पदक जीते और आसमान से छलांग लगाकर पहले सोलो स्काई डाइवर होने का गौरव भी हासिल किया। हजारों दिव्यांगों के प्रेरणा स्रोत भी बने। स्वागत कीजिए करगिल वॉर के हीरो, भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह जी का। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जय हिंद, सबको नमस्कार, राम राम।
1: कहानी को थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब आपका बचपन था, जब आप स्कूल में पढ़ा करते थे या फिर उससे आगे बढ़कर जब आप कॉलेज में गए, तो पहली बार कब एहसास हुआ या कब विचार आया कि आपको सेना में जाना चाहिए? क्या परिवार के किसी लोग ने आपको प्रेरित किया या दोस्तों के बीच ऐसा माहौल था कि दोस्त कह रहे थे कि आपको सेना में जाना चाहिए? वो कहानी थोड़ी सी बताइए।
2: मेरा जन्म हरियाणा में हुआ है, जगाधरी के पास, और मेरी सारी स्कूलिंग जो हुई है वो अब जिसको उत्तराखंड बोलते हैं, रुड़की, जो IIT रुड़की के लिए मशहूर है, वहां पे हुई है। कॉलेज में प्राइवेट किया है। और रही बात प्रेरणा स्रोत, तो मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास, मेरे जो दादाजी थे वो वहां पर आर्मी का एक सेंटर है उसमें सेवा करते थे, वो अकाउंट्स में थे CDA में, उनके साथ मैंने बचपन बिताया अपना, क्योंकि मेरे पिताजी दुर्गम क्षेत्रों में रहते थे, वो बॉर्डर रोड्स में सेवा कर रहे थे। तो दादा दादी के पास रहते हुए जो एक जीवन था वो बड़ा डिसिप्लिन वाला और सख्त था, लेकिन नाना नानी के पास जब हम छुट्टियों में जाया करते थे तो बड़ी मस्ती होती थी। तो वो जो बच्चा दूसरी क्लास में उनके पास रहता था उसको थोड़ा सा अटपटा लगता था, और डिसिप्लिन में किसको रहना पसंद है। तो एक दिन मैं ये सोच के कि यार नानी के पास ज्यादा मस्ती होती है, घर से भाग गया। और जब मैं घर से भागा तो रुड़की की सीमा से बाहर पहुंचा ही था कि किसी जानने वाले ने मुझे पकड़ा, साइकिल पे बिठाया और वापस अपने घर के बाहर छोड़ दी। तो जिंदगी का मेरा वो पहला यूटर्न था, और उस पहले यूटर्न में मैंने सबक लिया था कि भाई डीपी सिंह, जिंदगी में आप अपनी सच्चाइयों से भाग नहीं सकते। जहां हो जैसे हो वहां पर आपको अपने परिश्रम से, अपने बल से ऊपर उठ के जीना पड़ेगा और कुछ करके दिखाना पड़ेगा। ये जो पहला यूटर्न था, इसने मुझे बाद में जब मैं युद्ध में घायल हुआ, जीने के लिए जो एक फाउंडेशन थी वो ऑलरेडी बना दी थी, सेट कर दी थी। तो जब मैं वापस आया घर तो मैंने सोचा कि यहीं पे रहना है, ठीक है, अब डिसिप्लिन है तो डिसिप्लिन वाले एंगल से ही चलेंगे। और मेरे दादा दादी ने मुझे जोड़ दिया था गुरुद्वारे से, वहां से मुझे प्रेरणा मिली और मैंने फौज में ऑफिसर बनने की 8वीं क्लास में ही ठान लिया था, जब मैं भाग के गया था और घर में जो वापस लाके छोड़ दिया गया था। तो एक क्लैरिटी आ गई थी तभी कि भैया जिंदगी जीनी है तो फौज में अफसर बन के जीना है।
1: मेजर साहब, कहानी को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। 7 डोगरा रेजिमेंट में कमीशन होना और भारतीय सेना की वर्दी पहनना, कितना गर्व का पल था, क्या इमोशंस आपके जहन में चल रहे थे उस समय?
2: बिल्कुल, बहुत गर्व का पल था, क्योंकि आप ये सोचिए कि जिस बच्चे ने बचपन से सिर्फ एक ही सपना देखा हो और उस सपने को पाने तक उसको बहुत सारे फेलियर्स के थ्रू गुजरना पड़ा हो, पहले NDA में फेल हुए, उससे पहले 11वीं में फेल हुए, NDA में 3 बार अटेम्प्ट किया फेल हो गए, फिर ग्रेजुएशन प्राइवेट किया तो उसमें भी एक बार ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि पिताजी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी शारीरिक रूप से, और घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं था, तो लग रहा था कि अब बस जीवन डार्क हो गया। लेकिन वहां पर भी हौसला अफजाई माता जी ने करी कि तुम पढ़ते रहो और

0: क्योंकि उन दिनों में सिचुएशन ऐसी थी घर की फाइनेंशियल की, मैंने बैंक में एक प्राइवेट नौकरी कर ली थी कि मैं पढ़ सकूं और साथ में CDS की तैयारी कर सकूं, क्योंकि जाना तो अल्टीमेट फौज में ही है। फिर CDS में फेल हुए 2-3 बार, फिर इंटरव्यू में फेल हुए, तो कम से कम 5-6 फेलियर देखने के बाद जब आप कमीशन होते हो, अपने ड्रीम को पाते हो, तो एक अलग ही तरीके का जुनून जो सिर में होता है वो मतलब देखने को मिलता है, वो खुशी जाहिर होती है। और उससे भी बड़ी खुशी थी कि कुछ ही दिनों में उसके बाद युद्ध आ गया था, तो बैप्टाइजिंग बाई फायर वाली जो बात, हर सोल्जर जो एक तरीके से तैयार रहता है कि फौज में आए इसलिए कि भारत माँ के लिए कुछ करके दिखाएं।
1: मेजर साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि 1999 में जब करगिल युद्ध शुरू हुआ और आपको पहली बार पता चला कि आपको करगिल में युद्ध के लिए जाना है, उस समय क्या आपके जहन में चल रहा था और आपको वो सौभाग्य मिला, गौरव मिला? क्या परिवार से थोड़ी बातचीत हुई, परिवार के लोगों का क्या कहना था, या फिर सेना के अंदर का क्या माहौल था? थोड़ा बताएं उसके बारे में।
0: देखिए, उन दिनों इंटरनेट या फोन की सुविधा नहीं हुआ करती थी कि हम कनेक्टेड रहे, सिर्फ चिट्ठी लिखा करते थे कभी कभार। और जैसे मैंने बताया, 97 दिसंबर में मैं कमीशन हुआ था और साल भर के अंदर ही लड़ाई लग गई थी। तो वो जो एक साल बीता था वो कोर्सेज, यंग ऑफिसर्स को फिर कमांडो कोर्स करने में बीत गया था। और सिर्फ 2 महीने की छुट्टी लेने के बाद जब मैं वापस पहुंचा, तो तब तक मेरी पलटन ऑलरेडी लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिप्लॉय हो चुकी थी। तो आजकल की परिस्थितियों के हिसाब से कि आप हमेशा कनेक्टेड हो और पता चल रहा है कि परिवार वाला क्या सोच रहा है, भाई बहन क्या सोच रहे हैं, तो ये वो उस समय सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो हमें मालूम नहीं था कि कौन क्या सोच रहा है। और हमें खुद भी सिर्फ रेडियो से पता चलता था कि लड़ाई लग रही है, या टीवी भी नहीं होते थे। और क्योंकि हम दुर्गम क्षेत्रों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिप्लॉयड थे, तो वहां पे समाचार पत्र भी जो 3-4 दिन के बाद आया करता था, जैसे राशन आता था 3-4 दिन के बाद। तो ये जीवन उस प्रकार का था जो आज आप शायद यंगस्टर खासकर इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलग मजे थे। और हम जो थे वो यंगस्टर थे बिल्कुल ही, उन दिनों 24 साल की मेरी उम्र थी और युद्ध शुरू हो चुका था, तो जुनून था कि अब कुछ करके दिखाने का वक्त आ गया है। हम तो तैयार थे सब के सब।
1: मेजर साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जहां पर आपको डिप्लॉय किया गया, कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं थी, -20 डिग्री का तापमान, रणनीतिक चुनौतियां थीं और आपको अपने बटालियन के साथ मुंहतोड़ जवाब देना था। थोड़े आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए विस्तार से आप वो ग्राउंड बैटल सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकें कि वहां की क्या स्थिति थी, आप लोग जब वहां पहुंचे तो कैसे बंकर बने हुए थे, या आप लोगों ने क्या व्यवस्था की कि दुश्मनों को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देंगे?
0: जो क्षेत्र बुरी तरीके से युद्ध में था वो था कारगिल द्रास मशको। उस क्षेत्र में आके उन्होंने अपने सैनिकों को बिठाया हुआ था सर्दियों में। वो बहुत दुर्गम क्षेत्र था, उनकी तरफ से जो चढ़ाई थी वो चढ़ाई आसान थी। तो सर्दियों के दिनों में जब हम वो पोस्ट छोड़ देते थे अक्सर, उन दिनों में वो आराम से आके धीरे धीरे वहां पे उन्होंने अपना राशन पानी जमा करके बैठ चुके थे। हमारी तरफ से जो चढ़ाई थी वो बड़ी दुर्गम थी, लेकिन मैं इखनूर वाले इलाके में पोस्टेड था, वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल थी। और वहां पर जो दुर्गम क्षेत्र था वो था पानी और पहाड़ के मिलाप के कारण, नदी के बीच में हमारा पोस्ट थी। और जैसे आजकल आपने देखा यही वाला टाइम था, तो बारिशों के दिनों में नदी नाले सब भर जाते हैं, बाढ़ तक की सिचुएशन आ जाती है। तो हमारी पोस्ट भी जो थी वो काफी इस तरीके से कट ऑफ हो रखी थी, पीछे से सप्लाई बड़ा मुश्किल से मिलता था। लेकिन फिर भी सामने जो दुश्मन था वो कोई 80 मीटर पे पोस्ट पे बैठा था, कोई 100 मीटर की पोस्ट पे बैठा था, तो फायरिंग और इन्फिल्ट्रेशन तो चलती रहती थी। तो दोनों क्षेत्रों का मिलाप नहीं कर सकते। उस क्षेत्र में हैंड टू हैंड बैटल बहुत ज्यादा हुई है, क्योंकि कबायलियों के साथ, टेररिस्ट के साथ, उनके जो रेगुलर फौजी थे वो भी घुसे थे। हमारे वाले क्षेत्र में रेगुलर फौजी ज्यादा थे, टेररिस्ट कभी कभार इन्फिल्ट्रेट करते थे। लेकिन दुर्गम था जरूर, क्योंकि सरकंडों के बीच में से हमारे वाले क्षेत्र में घुसना बड़ा आसान था। और खासकर हमारे साथ साथ जो सीमा से लगते गांव थे और जो सिविलियन थे, उनकी उनका जीना बड़ा आराम हो रखा था, क्योंकि सबके घरों पे लगातार फायरिंग की दुर्घटनाएं होती रहती थी। और उन दिनों में भी मैंने देखा कि सिविलियन जो गांव छोड़ के बाकी पीछे चले गए थे, जम्मू की तरफ आ चुके थे। तो जीवन जो था वो सबका क्षतिग्रस्त था, सबका हिला हुआ था, भले ही वो सैनिक हो भले वो सिविलियन हो, लेकिन हम डटे हुए थे, क्योंकि मातृभूमि की रक्षा करने के लिए चाहे जैसी मर्जी सिचुएशन हो, यही सिखलाई फौज ने हमें दी है, उसी सिखलाई पे हम चल रहे थे।
1: मेजर साहब, जब जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो आपको दिशा निर्देश दिए गए थे उसी

0: स्थिति से चल रहे थे। 15 जुलाई 1999 का जिक्र बरबस ही आपके साथ बातचीत में आएगा। हाँ, उसकी सुबह कैसी हुई थी? हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि वो 1.5 मीटर दूर जब मोर्टार गिरा, उस समय आपके जहन में पहला रिएक्शन क्या आया था?
1: मेरी जो पोस्ट थी उसमें मेरे साथ एक जेसू साहब और 29 जवान डिप्लॉयड थे, और हमारी पोस्ट से तकरीबन 80 मीटर दूर जो थी वो दुश्मन की पोस्ट थी। तो क्योंकि हमारी लगातार फायरिंग होती रहती थी, और मैं क्योंकि यंगस्टर था और हम भी तैयार रहते थे, तो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते जिसके कारण जो हमारा पड़ोसी है वो परेशान रहता था। तो उस परेशानी को ध्यान में रखते हुए उसने 15 जुलाई से 2 दिन पहले एकदम फायरिंग बंद कर दी। तो शुरू में तो मुझे लगा 13 तारीख को कि यार फायरिंग बंद हुई है, चलो थोड़ा सा आराम मिलेगा हमारे सैनिकों को भी। लेकिन जब वो लगातार बंद रही 13 की पूरा दिन, और 14 को भी मैंने देखा बंद हो रही, तो चिंतित हुआ मैं। और इसका जैसा मुझे डर था वही हुआ कि वो लल बिफोर द स्टॉर्म था, बिकॉज बाद में पता चला शायद वो मेरे से परेशान होकर मेरी पोस्ट की ही रेकी कर रहे थे 13-14 को। मेरे उठने पर बैठने पर नजर रख रहे थे कि क्या करता है सारा दिन, कहाँ कहाँ जाता है। 15 जुलाई को जब दिन शुरू हुआ, तो दिन शुरू हुआ शुरुआत ही दिन की गोले से हुई। दिन के पौ फटने से पहले गोला फट चुका था, और मुझे पता चला वो गोला पीछे जाके गिरेगा, क्योंकि उस जो गोला नजदीक गिरता है उसकी आवाज नहीं आती, लेकिन जो गोला ऊपर से निकल जाता है उस आप युद्ध क्षेत्र में पहचान जाते हो कि ये पीछे गिरेगा, आगे गिरेगा, कहाँ गिरेगा। तो पहला गोला तो बहुत पीछे गिरा, दूसरा गोला इससे पहले कि कुछ रिएक्शन होते हैं उनका दूसरा गोला आ चुका था और उसकी आवाज नहीं आई। वो मेरे बगल में गिरा 1.5 मीटर दूर। 1.5 मीटर दूर जो था वो किलिंग जोन था उस गोले का, क्योंकि सिखलाई के हिसाब से 8 मीटर का दायरा किलिंग जोन होता है। तो उन्होंने तो पूरी अपनी तरीके से प्रिपरेशन के साथ मुझे मारने का पूरा हिसाब किताब फिट किया हुआ था, तो मारने की तो पूरी कोशिश करी, लहूलुहान किया भी, गंभीर भी हुआ मैं बहुत बुरी तरीके से। फिर मेरे सिपाहियों ने उठा के अपनी जान पे खेल के जब मुझे पीछे पहुंचाया 7 डोगरा के सिपाहियों ने, तो रास्ते में खून के साथ साथ हार्ट अटैक भी हुआ, लेकिन फिर भी हम बच गए। बचना था क्योंकि बहुत सारे कीर्तिमान ऐसे भगवान ने शायद मेरी जिंदगी में लिखे हुए थे जो उसके बाद करने जरूरी थे। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि युद्ध क्षेत्र में घायल होना मेरा बहुत जरूरी था, क्योंकि उसके बाद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर पे शायद भगवान ने ऑलरेडी मेरी जिंदगी की स्क्रिप्ट में लिख के भेजी थी, उसके लिए टांग कटना, एक बार मृत घोषित करना, लहूलुहान होना बहुत जरूरी था। क्योंकि वहां से जब फिर कहानी शुरू हुई तो हमने उन दुश्मनों को फेस किया जो सोच से घायल थे। तो वो जो युद्ध लड़ा उसके बाद आज तक जो लड़ रहा हूँ, उसमें जो झंडे गाड़ने को मिले, उसमें जो तिरंगा लहराने को मिला, उसमें सेना की जो सिखलाई है वो बहुत काम आई, आज भी आ रही है।
0: इस बातचीत को आगे बढ़ाएं मेजर साहब, बीच की एक छोटी सी कहानी और भी है। जब आप घायल हुए और उसके बाद आपके जो साथी सैनिक थे आपको रेस्क्यू करके अस्पताल की तरफ लेकर जा रहे थे, बगल में एक नदी भी बहती थी और आपके जो साथी थे उसमें एक को तैरना भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में आपका साथ दिया, थोड़ा उसके बारे में भी बताएं।
1: बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और मैं शायद ना सिर्फ उन 4 सैनिकों का, 7 डोगरा पलटन का, और उसके बाद अनगिनत फौजी और सिविलियन जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से सेना के अस्पताल से जुड़े हुए थे, उनका हमेशा तहे दिल से शुक्रिया अदा करूं भी अगर सारी उम्र, तब भी वो कम रहेगा। क्योंकि सैनिकों में वो 4 जो मेरे स्ट्रेचर को उठा के ला रहे थे, एक जो था वो नॉन स्विमर था, उसको मतलब तैरना अच्छे तरीके से नहीं आता था, लेकिन अपनी जान पे खेलते हुए उसने फिर भी अपनी सेना की सिखलाई को सर्वोपरि रखते हुए कि अपने सिपाही को, साथी को, भले ही मैं उनका ऑफिसर था लेकिन एक तरीके से मैं उनका साथी था, उसको युद्ध क्षेत्र से निकालना बहुत जरूरी है, उसका हमेशा साथ अंतिम पल तक देते हैं। तो अपने प्राणों पे खेलते हुए उसने मुझे वहां से बचाया, रास्ते में वो स्लिप भी हुआ लेकिन फिर भी उसने मेरे स्ट्रेचर को नहीं छोड़ा। और इसी प्रकार से जब मैं एम्बुलेंस में आया तो डॉक्टर साहिबान जो थे हमारे RMO, उन्होंने फर्स्ट एड देने के बाद 2.5 घंटे जो मुझे लगे हॉस्पिटल तक पहुंचने में, जो बातें मुझसे करने की कोशिश करी ताकि वो मुझे जगा के रखे, वो आज तो मुझको वो बड़ी अच्छी लगती है जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ, लेकिन उस समय मुझे वो इरिटेट कर रही थी कि मेरी तो हालत बहुत खराब है और ये पूछ रहा है कि भैया तुम्हारा पता क्या है, तुम्हारा पोस्टल एड्रेस क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, वो मुझे बेहोश होने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो बात और है कि उसके बावजूद भी मैं कार्डियक

0: हुआ, बेहोश हुआ, और जब पहुंचा तो एक बार कि भैया इसकी फोटो पे तो माला टंगे के ले जाओ इसे बोला गया। लेकिन हम भारतीय सेना के सिपाही हैं, मरने वालों में से नहीं थे, बचे, आज भी जिंदा है।
1: 15 जुलाई 1999 की कहानी आप बयां कर रहे हैं। आप अस्पताल पहुंचते हैं, अस्पताल में डॉक्टर आपको मृत घोषित कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फरिश्ते के रूप में आते हैं कर्नल राजिंदर सिंह, जो डॉक्टर थे। वो कैसे आपको मिले? क्या उस समय आप होश में थे मेजर साहब? क्या जब वो विजिट कर रहे थे और वो आपके स्ट्रेचर तक आए, तब आपको कुछ अंदाजा था?
0: मुझे कुछ नहीं मालूम क्योंकि मैं तो बेहोश था। सर्जन ने तो बोल दिया था कि डेड बॉडी है, ले जाइए मॉर्चरी में, लेकिन वो एमएच में, एमएच अखनूर में उस समय, उस दिन थे, ये बाद में मुझे पता चला वो थे। तभी उन्होंने इंटरवीन किया, मेरी सिचुएशन को समझा और मुझे कहाँ से वो कैसे बचा के ले आए वापिस, क्योंकि वो स्पेशलाइज थे, अनिस्थिसियोलॉजिस्ट थे, उनको बेहोश करना और होश में लाना आता था। तो उन्होंने मुझे बचाया और बचा के तीसरे दिन जब मुझे होश आया, ये जो पांव कटा है वो गैंग्रीन के कारण बाद में कटा है, उस समय नहीं कटा था, क्योंकि चोटें बहुत हैं, 73 छर्रे अगर ऑलरेडी मौजूद हैं, उससे ज्यादा मेरे को काटते हुए चले गए तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी चोटें लगेंगी। तो बच तो गया था वो कर्नल राजिंदर सिंह, उसके बाद मेरी जिंदगी में कभी नहीं आए बहुत सालों तक। 2019 में फेसबुक के कारण मैं उनके साथ कनेक्ट हुआ, तब तक मेरी जो किताब थी ग्रिट द मेजर स्टोरी वो छप चुकी थी, मैंने वो किताब उनको उन तक पहुंचाई। वो कैलिफोर्निया में एज ए वेटरन, एज ए रिटायर्ड पर्सन अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। और फिर जब 2023 में मैं यूएस में हवाई जहाज उड़ाना सीखने के लिए जाने का मुझे मौका मिला, तो स्पेशली मैं उनसे जाके वहां पे मिला और जाके मैंने उनके पांव छुए, गले मिला, और तब मैं इतने सालों के बाद इन पर्सन उनको थैंक यू कर पाया मुझे बचाने के लिए। ये है एक सैनिक का सैनिक से मिलाप।
1: अभी अभी आपने बातचीत के दौरान एक बात कही कि 70 से ज्यादा छर्रे आज भी आपके शरीर में मौजूद हैं। परेशान करते होंगे आज भी?
0: मेड इन पाकिस्तान वाले छर्रे अंदर अभी भी बम के टुकड़े पड़े हुए हैं, 73 ऐसे टुकड़े हैं। उसमें कुछ टुकड़े ऐसे हैं जो ऐसी जगहों पे फंसे हुए हैं जहां पे तंग करना आसान है, जैसे जो ज्वाइंट्स हैं, हिप ज्वाइंट हो गया, एल्बो ज्वाइंट हो गया, या चेस्ट हो गया, या दो तीन और ऐसे जगह हैं, और एक लिवर में भी है। डॉक्टर बोलते हैं कि लिवर में वो चुपचाप लेटा हुआ है किसी तरीके से, क्योंकि अगर वो मिलीमीटर से कम भी कहीं हिल गया और कोई अंदर से नस फट गई तो पता भी नहीं चलेगा कि थैंक यू कब हुआ। लेकिन वो तंग करने में काफी देर तक तो उन्होंने मेरे को तंग करते रहने के लिए, मतलब उनको उसमें सक्सेस मिलती रही, मगर वो सक्सेस मिली तब उन्हें बंद हुई जब मैंने उन वो तो तंग करने से नहीं हटे, लेकिन मैं तंग होने से हट गया। मैंने कहा ठीक है भैया, जो मैंने लेसन 8वीं में सीखा था कि आप अपनी परिस्थितियों से नहीं भाग सकते, तो उन्हीं परिस्थितियों में रह के आपको अव्वल उठना पड़ेगा मेहनत करके, अपने अंदर उन्हीं शक्ति को बढ़ा के। वो लेसन फिर से यहाँ काम आया कि अगर आप छर्रों को निकाल नहीं सकते तो उनको अपना लीजिए, उस दर्द को अपना लीजिए, वो दर्द जिस दिन आप अपना लोगे तो दर्द अपने आप कम हो जाएगा, और रोने के बजाय उस दर्द पे हंसना शुरू कर दीजिए। उस दिन के बाद आज तक वो तंग तो करने की कोशिश करते हैं लेकिन मैं तंग होता नहीं हूं।
1: तंग तो आप उस दिन भी नहीं हुए जब डॉक्टर ने कहा था कि आपका पैर काटना पड़ेगा। 24-25 साल का एक युवा देश के लिए युद्ध लड़ रहा था, पूरा भविष्य सामने खड़ा था, और आपने एक सेकंड का भी समय नहीं लगाया जब डॉक्टर ने कहा कि गैंग्रीन के कारण आपका पैर काटना पड़ेगा। उस समय क्या चला था आपके जहन में? भविष्य नजर आ रहा था कि बहुत मुश्किल होने वाला है, या फिर उस समय कुछ चीजें ऐसी ट्रिगर कर रही थी कि नहीं, सब कुछ बेहतर कर सकता हूं?
0: ये बहुत अहम सवाल है और मैं कहूंगा कि ये एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट था मेरी जिंदगी का, क्योंकि जब डॉक्टर साहबान कर्नल अशोक, जो बाद में ब्रिगेडियर अशोक, आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर के कमांडेंट बनने के बाद रिटायर हुए हैं, वो मेरे बिस्तर के चारों तरफ पट्टी खोलने के बाद डिसीजन लेने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि मैं इस बच्चे को कैसे बताऊं कि तुम्हारी टांग काट दी जाएगी। उनके बोलने से पहले ही मुझे ये पता चल गया था पट्टी खोलने के बाद टांग को देख के कि ये कटेगी। तो मेरे दिमाग में दो विचार आए थे, उन विचारों को मैं आपसे शेयर करता हूं कि पहला जो विचार था उसकी मैं उसकी ओनरशिप मैं नहीं लेता हूं, क्योंकि वो बड़ा ही स्पिरिचुअल और बहुत ही एक तरीके का पॉयस विचार था, क्योंकि मेरे दिमाग में अचानक आया कि अब देखते हैं कि एम्पुटी की लाइफ, डिसेबल वाली लाइफ कैसे होती है, ये एक चैलेंज है, शायद एक दिन मैं इस जिंदगी में इस चैलेंज को इस प्रकार से निभा पाऊंगा कि कि ना सिर्फ

0: सिर्फ मैं बल्कि लोग भी प्रेरित होंगे। और दूसरा जो विचार था वो विचार था कि मैंने अपनी जिंदगी से खुद को प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी उसके क्वालिटी और स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं जीऊंगा तो खुल के जीऊंगा। अब इस दूसरे विचार को तो मैं मानता हूं कि मेरा था, लेकिन पहला विचार, 24 साल का जो व्यक्ति इतना स्पिरिचुअल थॉट कैसे सोच सकता है, ये मुझे अभी भी हैरानी होती है। तो शायद भगवान की दी हुई सोच थी और उस सोच को भगवान ने एक्चुअल में रियलाइज भी कराया, वो पूरे तरीके से खरी उतरी भी, क्योंकि जो दूसरा विचार था उस विचार ने उस सोच को खरी उतरने में बड़ा हेल्प करी। हर मौके पे जहां पे मैं कुछ अचीव कर पाया हूँ डिसेबल होने के बाद, उसके पीछे वो मेरी प्रॉमिस थी मेरे साथ कि मैं अपनी क्वालिटी और स्टैंडर्ड, लाइफ की क्वालिटी और स्टैंडर्ड को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। कॉम्प्रोमाइज ना करने का मतलब है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को अंदरूनी तरीके से मजबूत बनाना पड़ेगा, अपने आज के लेवल से ऊपर उठना पड़ेगा, और ऊपर उठने के लिए आज के लेवल से अपने आप को अगर उठाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, खुद के कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा। और भगवान की दया से बार बार वो कंफर्ट जोन मैंने तोड़ा है, चाहे वो नकली टांग से भागना हो, चाहे वो ब्लेड से भागना हो, चाहे वो हवाई जहाज उड़ाना हो, चाहे वो हवाई जहाज से कूदना हो, वो कंफर्ट जोन टूटा है, क्वालिटी और स्टैंडर्ड रखा है।
1: पॉडकास्ट के दूसरे हिस्से में चलते हैं मेजर साहब। जब आप 1 साल से ज़्यादा समय तक अस्पताल में रहे, कई सर्जरियां हुई, उसके बाद घर वापस आए, जब व्यक्ति का शरीर थोड़ा सा प्रभावित हो जाता है, आपने एक टांग गंवा दी, आसपास के लोगों का क्या रिएक्शन रहा? आप देश के लिए लड़े।
0: तकरीबन 1 साल मैं हॉस्पिटल में रहा, और हॉस्पिटल में मैं अकेला नहीं था, हॉस्पिटल में मेरे जैसे 5 जने थे। हम किसी की टांग नहीं थी, किसी की आंख नहीं था, किसी का हाथ नहीं था, किसी की आंख और हाथ दोनों नहीं थे, लेकिन सब में जुनून था और सबके सब युद्ध क्षेत्र में घायल वाले थे। और उस जुनून ने, उस कमरेडरी ने एक दूसरे का सहारा बन के कभी भी हमारे को ये नहीं फील होने दिया कि हम किसी चीज में कम हैं। इनफैक्ट हमने वो करके दिखाया जो शायद उस समय लोग सोच भी नहीं पाते। कभी हम एक ही टांग पे क्लब में नाचते हुए नजर आते थे, कभी एक ही टांग में हम सड़कों पे स्लिप होके गिर रहे हैं, फिर भी उठ के चल पड़े हैं क्रच के साथ। तो जिंदगी खुल के जी रहे थे और खुद का देखभाल भी करने की पूरी कोशिश रख पा रहे। लेकिन जब दोबारा से जीवन में वापसी आई, जब दुनिया में वापसी आई और आम जीवन दोबारा शुरुआत करने का वक्त आया, तब हमें पता चला कि लोगों का जो नजरिया है वो डिसेबल की तरफ थोड़ा नकारात्मक है। और मेरे लिए खासकर वो एक चैलेंज था, क्योंकि मेरा जो पास था, मैं कमांडो ट्रेंड हाईली सुपरफिट टाइप का बंदा हुआ करता था, लेकिन रियलिटी ये थी कि मैं 4 कदम भी बगैर किसी सहारे के आज की डेट में चल नहीं पा रहा था। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट था दिमाग में, इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण इरिटेशन होती थी, इरिटेशन के कारण गुस्सा आता था, गुस्से के कारण लोगों को लगता था कि ये तो पागल हो गया है। लेटर ऑन आज भी मैं स्टेज पे जाता हूं तो मेंटल हेल्थ और पीटीएसडी के बारे में जरूर बात करता हूं, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जिसके पता ना होने के कारण मुझे बहुत कुछ सफर करना पड़ा। इन माई केस मेरे को स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी जो बचपन में गुरुद्वारे जाने से जो मिली थी, उसके कारण मैं रिवाइव कर पाया और उसी के कारण मैं अचीव भी कर पाया चीजों को। तो वो मेंटल हेल्थ की जो सिचुएशन थी और जो वो इरिटेशन थी, जो अपना द्वंद था मेरा, मेरे पास की रियलिटी का और आज की रियलिटी का, उसको ओवरकम करने में जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ने मेरा सहारा दिया, उस सहारे के साथ आगे बढ़ते बढ़ते और उन अनअचीवेबल अनथिंकेबल चीजों को, चाहे वो पहला व्यक्ति हो भारत का जिसने नकली टांग से मैराथन भागी, इसके बावजूद कि मैं जब पूरा कंप्लीट था तो मुझे लंबी दौड़ लगाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुआ करती थी, उसके बावजूद ना टांग कटने के बाद किस किलोमीटर भाग के आया। तो ये सब ये पता चलता है कि दिमागी सोच अगर आपकी सही है तो आप एक एबल इंसान हो।
1: जी
0: ये जो एग्जाम्पल फिर मेरे को सेना की सिखलाई और अपने हिस्ट्री की मजबूती, सिखिज्म की मजबूती के कारण जो मैं एग्जाम्पल ऑन ग्राउंड सेट कर पाया अपने एज ए डिसेबल सोल्जर होने के बावजूद अचीवमेंट्स के साथ, उस एग्जाम्पल ने लोगों के नजरिए में बदलाव लाया और आज की डेट में जो मेरा ग्रुप है, एनजीओ है, द चैलेंजिंग वन, जिसको 2011 में मैंने शुरू किया था, जिसमें तकरीबन आज की डेट में

0: 3,000 एम्पुटीज कनेक्टेड है,
1: जी
0: उसमें उस नकारात्मक सोच से तोड़ के उन एम्पुटीज ने जीना सीखा। जीना सीखने के साथ साथ अचीवमेंट करनी सीखी। आज उनमें से बहुत सारे जो है कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं, ना सिर्फ खेलों में बल्कि एडवेंचर में। और एक नाम मैं खास कर लेना चाहूंगा, उस लड़की का आप लोग जानते भी होंगे, मानसी जोशी,
1: जी
0: जो कि वर्ल्ड पैरा बैडमिंटन चैंपियन रह चुकी हैं, जिन्होंने अर्जुन अवार्ड तक अचीव कर लिया है। तो ये विचारों का जो तो बदलाव आया, और जिसमें मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि भगवान ने मुझे चुना, उसमें उस पाकिस्तानी का बम फेंकने की रिक्वायरमेंट उतनी इंपॉर्टेंट थी जितनी बाकी चीजों की रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट थी। ना वो बम फेंकता, चोटिल होता, ना मेरी टांग कटती, ना ये हिस्ट्री लिखी जाती।
1: बहुत ज़्यादा समय नहीं है कार्यक्रम में, दो छोटे छोटे सवाल आपसे बहुत संक्षेप में समझना चाहेंगे। पहला कि मैराथन आपने दौड़ना शुरू कर दिया था, ब्लेड रनर, भारत का पहला ब्लेड रनर बनने की क्या कहानी थी, और फिर सोलो स्काई डाइविंग भी आपने शुरू की, बहुत संक्षेप में उसके बारे में भी थोड़ा बताइए।
0: 3 बार जब मैं नकली टांग से हाफ मैराथन भाग चुका था, तो जो एडजुटेंट जनरल हुआ करते थे उस समय, लेफ्टिनेंट जनरल मुकेश अग्रवाल, उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने मेरे को काफी शाबाशी दी और पूछा कि बताओ डीपी, तुम एक सेवानिवृत्त सिपाही हो, तुम्हारे को मैं और क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर अगर ब्लेड मिल जाए तो शायद भागना और नॉर्मल हो जाए। तो मेरे को 2011 में एजी ने भारत का पहला ब्लेड इंपोर्ट करके 2011 में मेजर डीपी सिंह सेवानिवृत्त को दिया गया, और वहां से मेरे को ब्लेड रनर का नाम, फर्स्ट ब्लेड रनर ऑफ इंडिया का नाम मिला। उसके बाद 2018 में जनरल बिपिन रावत जब चीफ थे, तो 2018 को सेना ने ईयर ऑफ डिसेबल्ड इन लाइन ऑफ ड्यूटी उस सोल्जर को डेडिकेट किया था, और जनरल बिपिन रावत मेरा एग्जाम्पल जगह जगह पे जाके दिया करते थे अबाउट एबिलिटी ऑफ दिस सोल्जर, जो कि 100% डिसेबल है, उसके बावजूद उसकी एबिलिटी। तो उनकी उनकी ब्लेसिंग्स के साथ मैंने, क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो साल है इसको हम किसी हाई नोट पे कंप्लीट करें, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मेरे को स्काई डाइविंग करने की अनुमति दी जाए। तो उनकी अनुमति के साथ फिर जो आर्मी एडवेंचर विंग है, उन्होंने मुझे 1 महीने की सिखलाई करी दी 2019 में मार्च नासिक में, और 29 मार्च को 2019 को पहला स्काई डाइवर एशिया का डिसेबल्ड होने का मुझे गर्व प्राप्त हुआ।
1: अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे, देश के करोड़ों युवाओं के नाम आपका क्या संदेश होगा जो कई बार हताश और निराश होकर बैठ जाते हैं, उन्हें लगता है कि भविष्य काफी अंधकारमय है, वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, और उन युवाओं को भी आप क्या कहना चाहेंगे जो देश की सेवा के लिए सेना में आने के बारे में सोच रहे हैं?
0: देखिए, मैं भी युवा था और मैं आज भी अपने आप को युवा समझता हूं, समझने में तो कोई गलत नहीं है, चाहे भले बूढ़े हो गए। तो मेरा ये कहना है कि बैठना या रुकना में कोई दिक्कत नहीं है, थकते सभी हैं, लेकिन उसके बाद फिर उठो और चलते रहो। चलना तब खत्म करना है जब तुम्हारे को तुम्हारा एम, तुम्हारा मकसद मिल जाए, उससे पहले नहीं। उससे पहले सिर्फ ब्रेक ले सकते हो।
1: कहते हैं मुश्किलों में मुस्कुराना और हौसले को आजमाना चाहिए। जब भी आपके जीवन में ऐसा लगे कि आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, संभावनाओं को संभव नहीं बना पा रहे हैं आप, तो हमारे इस पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा, क्योंकि मेजर डीपी सिंह की कहानी अपने आप में सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक संस्थान बन चुके हैं, और वो बताने के लिए काफी हैं कि कितनी विकट परिस्थितियां जीवन में क्यों ना आ जाए, लेकिन आगे बढ़ने की चाह हमेशा बनी रहती है। जरूरत होती है कदम बढ़ाने की, जरूरत होती है अपने लक्ष्य को और बड़ा करने की। थोड़ा सा हौसला रखिए, दृढ़ इच्छा शक्ति बनाए रखिए, आगे बढ़ते रहिए, और एक न एक दिन आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेंगे। पर्सन बिहाइंड द स्टोरी पॉडकास्ट में हमसे जुड़ने के लिए और अपने विचार, अपने जीवन के बारे में, करगिल युद्ध के बारे में आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ विस्तार से बात करने के लिए मेजर डीपी सिंह जी, आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद। जय हिंद। सबको राम राम।
2: अभी आप सुन रहे थे करगिल विजय दिवस के अवसर पर पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत करगिल युद्ध में अपने शौर्य का प्रदर्शन करने वाले पूर्व सैनिक और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह के साथ खास बातचीत। संवाद का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.earnews@gmail.com

5:40 और ठीक 40 सेकेंड आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल में और आप इसे सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रोग्राम है गाते गुनगुनाते और देविका है आपके साथ। शाम का वक्त है, ढलते हुए सूरज की किरण दूर उस बाग में लेती है बसेरा अपना। धुंध के बीच थके से शहर की आंखों में आ रही रात है अजनाती अंधेरा अपना। व्योम पे पहला सितारा अभी ही चमका है, धूप ने फूल का अंचल अभी ही छोड़ा है। बाग में सोई है मुस्का की अभी ही कलिया और अभी नाव का पतवार ने रुख मोड़ा है। अभी लिखा जाता नहीं, गर्म हो गया है लहू और कागज पे कलम कांप कांप जाती है। रोशनी जितनी ही देता हूँ इन सवालों को, शाम उतनी ही और स्याह नजर आती है।

0: हम पंच थे मस्ताने। जी हाँ, देख कबीरा रोया फिल्म का गीत आपने सुना, राजेंद्र किशन जी के बोल, मदन मोहन का संगीत और आवाज़ लता मंगेशकर और गीता दत्त की। गाते गुनगुनाते सुन रहे हैं आप सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
3: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
2: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
3: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें, ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
2: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता, आयकर विभाग, भारत सरकार।
4: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

0: जी हाँ, पुराने गीतों में आज भी ऐसा जादू है कि जब आप उसे सुनते हैं या तो आप साथ में गुनगुनाने लगते हैं या तो आप खो से जाते हैं, है ना। फिलहाल आपको बताएं कि अदालत का गीत आपने सुना, राजेंद्र किशन जी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत और आवाज़ आशा भोसले और मोहम्मद रफी की, गाते गुनगुनाते सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे

0: आशा भोसले और मनाली ने इस गीत को गाया, शैलेंद्र साहब के बोल, शंकर जयकिशन जी का संगीत, और दिनकर फिलहाल विदा लेती हैं। आपको बताती चाहती हूँ ठीक 6 बजे होंगे समाचार।
1: दुनिया के साथ जो बदलता जाए, जो इसके सांचे में ही ढलता जाए, दुनिया

0: मान ली गई हैं, इसलिए अब जंतर मंतर से लोग शांतिपूर्वक वापस लौट जाएं। नई दिल्ली में सरकार और सीजीपी के प्रतिनिधिमंडल के बीच तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजीपी प्रवक्ता सौरभ दास ने इसकी घोषणा की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि सरकार प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी मामले वापस लेगी।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए दिए गए सीजीपी के सुझावों पर विचार किया जाएगा।
2: हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलिब्रेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे।
0: इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात कही।
3: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए हैं जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
0: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। दिल्ली पुलिस ने लोगों को नई दिल्ली क्षेत्र की ओर जाने से बचने की सलाह दी है क्योंकि पूरे जिले में भारी भीड़ और यातायात जाम देखा जा रहा है। पुलिस ने यात्रियों को निर्देश दिया है कि वे देरी से बचने और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने राजीव चौक, मंडी हाउस, जनपथ और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार खोल दिए हैं। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया है। श्री शेखावत ने कहा कि सारनाथ शांति, ज्ञान और करुणा का शाश्वत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग एससी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के कानूनी सहयोग को मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हरारे में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरे T20 क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The CJP has withdrawn its agitation after the government agreed to its demands. Union

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने तत्काल प्रभाव से आंदोलन वापस लेने की घोषणा की है। सीजेपी ने कहा कि हमारी सभी तीन मांगें

0: की मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा का विश्लेषण करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 से 25 जुलाई तक इन तीन यूरोपीय देशों की यात्रा की। मोल्दोवा और उत्तर मैसेडोनिया की यह किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा थी, जबकि लगभग 3 दशकों बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति ने रोमानिया का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की, प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ताओं का नेतृत्व किया, व्यापार मंचों को संबोधित किया तथा संसदों और विश्वविद्यालयों में भारत की वैश्विक दृष्टि को प्रस्तुत किया। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे इन तीन देशों की यात्रा की प्रमुख उपलब्धियाँ क्या रही, भारत ने पूर्वी और दक्षिण पूर्वी यूरोप में अपनी साझेदारी को किस प्रकार नई दिशा दी और विकसित भारत 2047, वैश्विक दक्षिण, डिजिटल सहयोग तथा भारत यूरोप संबंधों के संदर्भ में यह यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है। श्रोताओं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तीन देशों की यात्रा का पहला पड़ाव था मोल्दोवा। किसी भारतीय राष्ट्रपति की यह पहली राजकीय यात्रा थी जिसने दोनों देशों के संबंधों में नया अध्याय जोड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राष्ट्रपति माया सैंडू के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में आर्थिक सहयोग, डिजिटल परिवर्तन, कृषि, स्वास्थ्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवीकरणीय ऊर्जा और नवाचार जैसे अनेक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। भारत ने मोल्दोवा के राजनयिकों को विदेश सेवा संस्थान में AI और साइबर डिप्लोमेसी के विशेष प्रशिक्षण के लिए भी आमंत्रित किया। आइए जानते हैं इस यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर यह विस्तृत रिपोर्ट।
1: श्रोताओं, मोल्दोवा यात्रा ने स्पष्ट किया है कि भारत अब यूरोप के उभरते हुए देशों के साथ केवल राजनीतिक संबंध ही नहीं बल्कि प्रौद्योगिकी आधारित आर्थिक साझेदारी भी विकसित करना चाहता है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने व्यापार और निवेश बढ़ाने, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, कृषि आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य सेवाओं और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया। भारत ने तकनीकी सहयोग के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार किया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा साइबर कूटनीति जैसे भविष्य के क्षेत्रों में सहयोग की नई पहल की। भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम ने दोनों देशों के उद्योग जगत को पहली बार इतने व्यापक स्तर पर एक मंच उपलब्ध कराया। मोल्दोवा के साथ भारत की बढ़ती साझेदारी और इस ऐतिहासिक यात्रा के रणनीतिक महत्व पर आकाशवाणी ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी से बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: मोल्दोवा और भारत के संबंधों की बात की जाए तो कूटनीतिक और सामरिक स्तर पर बहुत अच्छा सहयोग है दोनों देशों के बीच में। और मोल्दोवा की यदि बात की जाए तो छोटा देश है यूरोप का, लेकिन ये सामरिक दृष्टिकोण से अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से बड़ा महत्वपूर्ण है पूरे विश्व के लिए। यदि हम पूर्वी यूरोप की बात करें तो इसके द्वार के रूप में मोल्दोवा को जाना जाता है। यूरोपियन यूनियन का एक महत्वपूर्ण सदस्य देश है, तो यूरोपियन यूनियन के साथ हमने हाल ही में एक ऐतिहासिक FTA साइन किया, हिस्टोरिक डिफेंस डील साइन की। तो सामरिक दृष्टिकोण से, व्यापार के दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से मोल्दोवा भारत का एक महत्वपूर्ण सहयोगी अब नजर आता है। और जब भारत ग्लोबल साउथ की बात वैश्विक स्तर पर करता है, ग्लोबल साउथ को नेतृत्व देने की बात करता है।
1: इन सभी पहलों से स्पष्ट है कि भारत और मोल्दोवा की साझेदारी अब पारंपरिक कूटनीति से आगे बढ़कर डिजिटल अर्थव्यवस्था, नवाचार और हरित विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है।
0: श्रोताओं, राष्ट्रपति की यात्रा का दूसरा चरण था उत्तर मैसेडोनिया। यह भी किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राष्ट्रपति गोडाना सिलझानोवास्का दावकोवा के बीच हुई वार्ता में दोनों देशों ने लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक सहयोग तथा लोगों के बीच संपर्क को संबंधों का मजबूत आधार बताया। भारत ने उत्तर मैसेडोनिया के लिए भी ITEC प्रशिक्षण कार्यक्रम की सीटें दोगुनी करने की घोषणा की। दोनों देशों ने IT, कृषि, फार्मास्यूटिकल, जैव प्रौद्योगिकी, पर्यटन, फिल्म निर्माण और आतिथ्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। राष्ट्रपति ने उत्तर मैसेडोनिया की संसद को संबोधित करते हुए लोकतंत्र, संसदीय कूटनीति और वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय अवधारणा को वैश्विक सहयोग का आधार बताया।
3: No nation can prosper in isolation. India's ancient civilizational philosophy is rooted in the ancient dictum Vasudeva Kutumbakam. The world is one family. When the global landscape is fractured by conflict and economic division, this philosophy calls for building bridges, not walls. Let us look beyond the horizon of the immediate future. Let us transform our historical and cultural ties into tangible economic milestones. Together, as two democratic nations anchored in history and driven by a vision for tomorrow, let us chart a course that brings peace and prosperity to our peoples.
0: उन्होंने दक्षिण पूर्वी यूरोप को भारत के लिए विकास और नवाचार का नया क्षेत्र बताते हुए क्षेत्रीय सहयोग को नई गति देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत उत्तर मैसिडोनिया व्यापार मंच में राष्ट्रपति ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल नवाचार, ग्रीन एनर्जी, कृषि प्रसंस्करण, स्वास्थ्य सेवाओं तथा स्टार्टअप सहयोग को भविष्य के लिए प्रमुख क्षेत्र बताया। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने स्कोपिये में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया तथा मदर टेरेसा स्मारक का भी दौरा किया। श्रोताओं, राष्ट्रपति की यात्रा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था रोमानिया। लगभग 3 दशकों बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति ने रोमानिया का दौरा किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राष्ट्रपति निकुसोर डैन के बीच हुई वार्ता में दोनों देशों ने अगले 3 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया। आइए जानते हैं इस यात्रा पर यह रिपोर्ट।
4: रोमानिया यात्रा ने स्पष्ट किया कि भारत यूरोपीय संघ के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को नई गति देना चाहता है। द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य, शिक्षा और अनुसंधान सहयोग, भारतीय अध्ययन पीठ की स्थापना तथा नवाचार वर्ष मनाने का निर्णय भविष्य की साझेदारी का मजबूत आधार बनेगा। भारत और रोमानिया ने शिक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क से जुड़े 3 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत ने रोमानिया के लिए ITEC प्रशिक्षण कार्यक्रम की सीटें दोगुनी करने की घोषणा की तथा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के सहयोग से बुखारेस्ट विश्वविद्यालय में भारतीय अध्ययन पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। दोनों देशों ने वर्ष 2028 में राजनयिक संबंधों के 80 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत रोमानिया नवाचार वर्ष मनाने का भी निर्णय लिया। भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते की संभावनाओं के संदर्भ में रोमानिया को भारत ने यूरोप के प्रवेश द्वार के रूप में प्रस्तुत किया। भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता दोनों पक्षों के उद्योगों, स्टार्टअप, MSME तथा कुशल पेशेवरों के लिए नए अवसर खोलेगा। उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा, हरित संक्रमण, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, साइबर सुरक्षा, परिवहन, लॉजिस्टिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और कृषि प्रसंस्करण में व्यापक सहयोग की संभावनाओं पर बल दिया। रोमानिया यात्रा के रणनीतिक और आर्थिक महत्व तथा यूरोप में भारत की बढ़ती भूमिका पर आकाशवाणी ने पूर्व राजदूत प्रभु दयाल से बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने इस यात्रा के बारे में क्या कहा।
5: हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनका वहां जाना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे दोनों देशों के जो एक ब्रॉड स्ट्रेटेजिक आउटरीच है उसमें हमारा सम्मेलन हो रहा है। देखिए, भारत की आउटरीच सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है इकोनॉमिक और सेक्टरल कॉप। इससे जो भारत के यूरोपियन यूनियन के साथ जो संबंध है इंडिया EU ट्रेड एग्रीमेंट के तहत, इनमें बहुत बढ़ाव होगा, इसको बहुत ज्यादा अच्छे एक संस्करण मिलेंगे। इसके अलावा देखिए, कल्चरल टाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है और मेरे विचार में ये जो कल्चरल टाइज को बढ़ावा मिलेगा ये बहुत महत्वपूर्ण।
4: यात्रा के दौरान बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया।
0: श्रोताओं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मोल्दोवा, उत्तर मैसिडोनिया और रोमानिया की यह राजकीय यात्रा भारत की यूरोप नीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जा रही है। यह यात्रा इस बात का भी संकेत है कि भारत केवल बड़े वैश्विक साझेदारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यूरोप के उभरते देशों के साथ भी दीर्घकालिक, बहुआयामी और भविष्य उन्मुख साझेदारियां विकसित कर रहा है। राष्ट्रपति की इन 3 देशों की यात्रा ने भारत की विश्वसनीय, लोकतांत्रिक और विकास उन्मुख वैश्विक साझेदार के रूप में छवि को और अधिक सुदृढ़ किया है। इसी के साथ आज के विश्लेषण में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने। तकनीकी सहयोग दानिश। नमस्कार।
6: इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रिणा धर्मेन्द्र प्रधानेन

0: Namaskar and welcome to Market Mantra. Friends, today being a Saturday, we shall be taking your calls on your market related queries. But please do remember that we do not address stock or company specific queries. And you may call us on the numbers, and they are 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And if you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. Well, I'm your anchor Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor Manoj Pathak.
1: नमस्कार. मार्केट मंत्र के ताजंक में आपका स्वागत है. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताज़ा खबरों को लेकर हाजिर हैं. आज शनिवार है और आज के दिन अपने कार्यक्रम में हम आपको आमंत्रित किया करते हैं सवाल पूछने के लिए. आप भी अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं. बस ये ध्यान रखिएगा कि हम किसी कंपनी या शेयर के बारे में कोई खास जानकारी आपको नहीं दे पाएंगे. हमसे सवाल कीजने करने के लिए आप डायल कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 या फिर 2371-7106. हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं देश के जाने माने आर्थिक मामलों के विश्लेषक शरद कोहली. शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: नमस्कार मनोज, नमस्कार लालिमा और मार्केट मंत्रा की सभी टीम और श्रोताओं को मेरा अभिवादन.
0: वेलकम.
1: आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं लालिमा अनेजा डैंक.
0: थैंक यू मनोज. लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस रजिस्टर्ड स्टीप वीकली लॉसेस अमिड जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स. यूएस स्टॉक मार्केट लॉग वीकली डिक्लाइन. And global crude oil prices extend rising streak this week.
1: भू राजनीतिक तनावों के बीच कारोबारी सप्ताह में घरेलू शेयर बाजार घाटे के साथ हुए बंद. अमरीकी शेयर बाजार भी साप्ताहिक आधार पर नुकसान में रहे और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम इस सप्ताह भी बढ़त में रहे.

0: Well, before we move any further, here's a disclaimer for all our listener friends. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. And we further advise all our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Right.
1: आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले घरेलू शेयर बाजार। दुनिया भर में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल के दाम बढ़ने से अपने घरेलू शेयर बाजार में इस सप्ताह कुल मिलाकर अच्छी खासी गिरावट हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबारी सप्ताह के अंत में साप्ताहिक आधार पर ये 2091 अंक यानी 2.7% नुकसान के साथ 76,060 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 567 अंक यानी 2.3% नीचे आकर 23,767 दर्ज हुआ। इस दौरान निजी क्षेत्र के बैंक और रियल्टी सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को अधिक नुकसान उठाना पड़ा, जबकि लाभ उठाने वाली कंपनियों में एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर ने बेहतर प्रदर्शन किया। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मिड कैप 100 इंडेक्स 1.3% नीचे आकर बंद हुआ। उधर निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में लगभग 2.2% की गिरावट हुई। रुपए की स्थिति पर ध्यान दें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में साप्ताहिक आधार पर $1 की तुलना में रुपया 28 पैसे कमजोर हुआ और 96.56 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। यहां पर हम कारोबारी हालात पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे और कुल मिलाकर घरेलू शेयर बाजार का प्रदर्शन किस रूप में रहा, क्या बयान करते या आंकड़े?
2: मनोज, बहुत कठिन है डगर पनघट की। मुझे पुरानी एक लाइन याद आ रही है क्योंकि बार बार जब जब बाजार निफ्टी की बात करते हैं 24,000 से ऊपर जाने की टिकने की कोशिश करता है तभी भू राजनीतिक तौर पर कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है और अमेरिका और ईरान का युद्ध

0: क्रूड ऑयल मैं समझता हूँ विलेन रहा है इसमें, $100 छुआ, उसके बाद थोड़ी सी करेक्शन कल शाम को देखी गई $95। तो मुझे लग रहा है कि और इसको हम कॉरोबरेट कैसे करते हैं कि आप देखें कि जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं बीच में जुलाई में वो थोड़े पॉजिटिव हुए थे, पर जैसे ही कच्चे तेल के दाम ऊपर जाते हैं तो वो फिर से बिकवाली पर आ जाते हैं। तो मुझे लग रहा है ये जो कच्चा तेल इस बाजार को और ऊपर जाने के बीच में एक दीवार की तरह खड़ा हुआ है, क्योंकि उससे कॉर्पोरेट कॉस्ट पड़ती है।
1: यानी कुल मिलाकर यदि हम सेक्टर वाइज देखना शुरू करें और यदि हर सेक्टर पर ध्यान दें तो इस कह लें नुकसान के बीच भी ऑटो सेक्टर का अपेक्षाकृत थोड़ा बेहतर प्रदर्शन रहा है क्या? हाँ, ऑटो सेक्टर का भविष्य कैसा लग रहा है?
0: कह सकते हैं, हालांकि सेक्टर रोटेशन मनोज लगातार मार्केट में होता रहता है, अभी आपने आईटी सेक्टर में काफी उथल पुथल देखा
1: जी।
0: ऑटो सेक्टर का अगर भविष्य पूछे तो मुझे लगता है वो कंपनियां जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे थोड़ा ज्यादा स्ट्रेटेजिकली फोकस कर रही है उनका भविष्य मुझे उज्ज्वल दिखता है, क्योंकि यहां से पेट्रोल डीजल के दाम मुझे लगता है लोगों को इस समय परेशान कर सकते हैं आने वाले, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमत यदि बहुत बढ़ गई और अभी पेट्रोलियम माननीय मंत्री जी का बयान आया था कि फिर एक बार पेट्रोल में डीजल में गैस में बहुत बड़ा लॉस शुरू हो गया है, तो जब ज्यादा दिन तक टिका रहा तो फिर कोई कठिन निर्णय लेना पड़ सकता है, ये नहीं कि लेंगे। तो मुझे लग रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले कंपनी पे ऑटो सेक्टर की बात करें तो ज्यादा फोकस रखना चाहूंगा।
2: And FMCG, sometimes they, for some time, they were not doing well, but now our weekly report says they are doing fine.
0: I think, Lalima, FMCG in any crisis situation is always a good bet in the long run, because we saw during COVID, and anytime when the world sees a crisis, it's like, I call it as a safe haven sector, because that is something which people tend to buy, and although the inflation also hits you when the crude oil prices go, but then you cannot do without FMCG. I mean, those are the goods which you need on an everyday basis. So I feel that FMCG is a go-to sector in the times of crisis.
2: And a safe bet.
0: Absolutely.
2: All right. We are now joined by Ram Kishan from Ghaziabad, and let's see what he has to ask. Ji, Ram Kishan ji, apna sawal poochiye.
3: नमस्ते जी, मैं गाजियाबाद से राम किशन बोल रहा हूँ
2: जी। जी,
3: मैंने पैंट नंबर लिया हुआ है, रिटर्न में भरता नहीं है, मेरी जो इनकम है इंटरेस्ट है 2,90,000 होती है हर साल, तो आयकर की सीमा जो है 3,00,000 है 4,00,000 है।
0: अच्छा, चलिए, आपका राम किशन जी जो शुरू का हिस्सा था वो तो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था, आप हमारे बहुत वरिष्ठ और आदरणीय नागरिक आवाज से लग रहे हैं। जो नए रजीम में जो सीमा है वो 4,00,000 की है, और पुराने रजीम में सीमा जो है वो 2,50,000 की, आयकर सीमा का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का ये जानना चाहते हैं। तो अभी जो नया बजट आया था आपको याद होगा उसमें 4,00,000 से अब शुरू होता है, और जो पुराने रजीम में अभी भी वो 2,50,000 ही है, तो मैं उम्मीद करता हूँ उसी के अनुसार आप कैलकुलेट करेंगे। पर सीनियर सिटीजन के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई अतिरिक्त बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है, ये भी मैं रामकिशन जी को बताना चाहूंगा।
1: श्रोताओं, आइए आपको लिए चलें बेंगलुरु, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं एनआर प्रसाद। प्रसाद साहब, स्वागत आपका, सवाल पूछिए।
4: Hi, good evening, Market Mantra. This is N.R. Prasad from Bangalore.
2: Yeah.
4: Hello, Lalima ji. Hello, Manoj ji.
2: Hello, Prasad ji. Ji. Ji.
4: Hello, Sharad ji. Two questions.
0: Hello, Mr. Prasad. Yes. Yes, please.
4: Two questions. I filed my ITR. I just want to ask you, Finance Minister announced that any error in filing, or is it system error?
0: Yeah.
4: Actually, I could not get it properly.
0: Mm-hmm.
4: What is that we can refile it once again? The second question is, sir, there's again a tariff war, and now this time on the generic medicine, sir.
0: All right.
4: My question is it the right time to invest in a pharma or health sectors? And before that, I just want to say thank you to you. Your advice, maybe a couple of months back, on manual SIP on stock when it comes down buying and when it goes up selling, really turned out to be very profitable for me. For that, a separate thank you to you. Thank you. The other two questions,
0: I'm waiting for an answer. I'm glad, first of all, that the advice given by Market Mantra turned out to be good. And I wish, you know, there was a facility, Lalima and Manoj, to send a laddu through the radio, which is unfortunately not there at this point of time. But we are very happy that itself is a laddu for us. Hmm. Your first question is regarding the ITR error. So you have a provision, Mr. Prasad, to revise your return. If there is an error which happens either on your part or it happens because of the system or something which you observe, which is clearly visible, you can always go and revise the return. So, and you can revise it any number of times, by the way. And you must be aware now you can revise up to 31st December without a fee. You can even revise by 31st of March. There is a small fee, a 1,000, 5,000, which is now under the new provisions. So if there is an error, please do not, because then otherwise your return becomes defective.

0: And your second question was regarding the tariff announcement by President Trump on the generic drugs coming from India. Now, you have to appreciate the fact that as far as America is concerned, I think after 2 years, he says we're going to levy 100% tariffs. So 2 years for me, as far as President Trump is concerned, is a very long time because we find decisions being switched to two to three times a day sometimes. And moreover, I think Trump regime in 2028 will be almost at its fag end. And the American Constitution says that you can't have a president for more than two terms. So Mr. Prasad, I really don't think there should be any matter of concern. So you, the bullish view on pharma sector basically remains there. I think the order book of the pharma companies which are supplying generic drugs to America, those order books need to be seen that if they are doing well. I don't see any concern for these announcements after 2 years because we've seen decisions being, you know, turned over by evening or next morning. I'm sure you too must have observed. So I continue to remain bullish on Indian pharma sector. India is global world's pharmacy, I would say. So I think India is going to continue domination in that particular area, which should keep the investors excited.
1: All right, we are now joined by Kavita Arya from Noida. Yes, Kavita ji, please ask your question. Yeah.
2: Yes, sir, namaste.
0: Namaste.
2: Sir, मेरे को जानना था कि मैं मार्केट में काम करती हूँ तो मुझे कौन सा ITR भरना चाहिए और क्या जो भी इंट्राडे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी जानकारी है वो कहाँ से प्राप्त होगी.
0: बहुत अच्छा सवाल है और हम लालिमा और मनोज अभी आज 25 जुलाई है 31 जुलाई आखिरी तारीख है आयकर विवरणी दाखिल करने की. कविता, अगर आप मार्केट में काम करते हैं और अगर आप F&O में काम करते हैं, ध्यान से सुनिएगा इसको, तो फिर आप ये बिजनेस इनकम इसको दिखाया जाता है. आपको पता होगा इनकम के 5 स्रोत होते हैं, सैलरी, बिजनेस, अदर सोर्सेज, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स. तो फिर आपको बिजनेस रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, बकायदा खाते भी रखने पड़ते हैं, डिपेंड करता है आपकी टर्नओवर कितनी, उसमें फिर टैक्स ऑडिट का प्रोविजन भी होता है. और अगर आप मार्केट में डिलीवरी बेसिस पे काम करते हैं, यानी कि आप एक निवेशक की तरह काम करते हैं, आप डिलीवरी लेते हैं, तो आपको फिर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है. तो जो पहला वाला मैंने बताया, अगर आप बिजनेस में काम करते हैं तो आपको ITR 3 आपके लिए लगेगा. अगर आप कैपिटल गेन यानी कि डिलीवरी लेके काम करते हैं, और एक इसमें इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के काम की होगी कि मान लीजिए आप उसको एज ए बिजनेस दिखाते हैं और कल को आप उसको स्विच कर देते हैं, नहीं मैं तो बिजनेस नहीं, मैं तो इसको डिलीवरी की तरह. पहले F&O की तो बात अलग है, पर अगर आप डिलीवरी में भी, दो तरीके से किया जा सकता है, कैपिटल गेन में या बिजनेस की तरह. एक दफे आपने जो सिलेक्ट कर लिया उसको फिर आप स्विच नहीं कर सकते हैं. ये कविता, इस पे ध्यान दीजिएगा. तो आप अगर इसको कैपिटल गेन में ले रहे हैं तो ITR 2 होगा, अगर बिजनेस की तरह ले रहे हैं तो ITR 3 होगा. अब ये कविता डिपेंड करेगा कि आपका जो मार्केट में जो काम है वो किस प्रकार का है, उसकी वॉल्यूम कितनी है और आपका इंटेंशन क्या है. आपका इंटेंशन एज एन इन्वेस्टर है या आपका इंटेंशन एज ए ट्रेडर है.
3: दिल्ली से हमारे साथ जगन लाल जी हैं, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए.
4: सर फोन मत काटना, मेरा लाइव रेडियो पे नहीं है, फोन पे ही हूँ.
3: जी
0: हाँ जी हाँ जी.
4: सर मेरा एक्सपर्ट से ये सवाल है, मैंने अभी ITR 2 भरी थी
0: जी,
4: तो उसमें कैपिटल गेन फ्रॉम लैंड हाउस प्रॉपर्टी
0: जी,
4: मैंने 2013-14 में एक प्लॉट लिया था
0: जी,
4: और अभी 2025 में अक्टूबर में बेचा
0: जी.
4: तो जब मैंने लिया था 46 लाख का
0: जी,
4: बैंक से कुछ लोन के अगेंस्ट डिफॉल्टर का ऑप्शन में
0: जी,
4: और अभी बिका है वो 38,25,000 का
0: जी.
4: मतलब वो 2013 में लिया था, उस टाइम प्रॉपर्टी के रेट चढ़े हुए थे, अब वो होलो हो गया
0: जी.
4: अच्छा, एनी हाउ जब मैंने उसमें फिगर डाली तो उसने इंडेक्सेशन से उसको 46 लाख का तो 76 लाख दिखाया.
0: जी जी जी.
4: लेकिन जब मैं लॉस कैलकुलेट लॉस का कॉलम आया तो उसने ओनली 46 में से वो 38 माइनस करके और वो 8 लाख के करीब जो है वो दिखाया
0: जी.
4: कोई क्लोज कोई चेंज कर दिया है या क्या है या
1: आपका सवाल?
0: हाँ मैं समझ गया इनका सवाल लालिमा. देखिए इनका नाम जगनाल जी है. तो जगनाल जी देखिए, इसमें दो ऑप्शन होते हैं जो लोग प्रॉपर्टी बेचते हैं कैपिटल गेन में. एक आपके पास इंडेक्सेशन का एडवांटेज होता है. तो आपने जो क्या किया, जब आपने कैलकुलेट किया तो आपने इंडेक्सेशन चूज कर लिया. और उसने जब कैलकुलेशन करके बताया तो उसने विदाउट इंडेक्सेशन लेके आपका सीधा सीधा 46 लाख या इनका जो भी था उसमें से 38 लेस करके 7 लाख कर दिया। तो आप कृपया इसको एक बार और ITR 2 में चेक करिए कि जो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं आप इंडेक्सेशन ऑप्शन सेलेक्ट करिए और उसको जिसमें आप लॉस भर रहे हैं वो भी इंडेक्सेशन में ही भरिए। ये दो आइटम मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके भरते टाइम मिक्स हो गया है, तो इसको आप एक दफे चेक करिए। लॉस तो आपका दोनों ही हालात में आ रहा है, उसमें ये है कि उसमें, और मैं आपको ये बता दूं इंडेक्सेशन में आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो बढ़ा सकते हैं पर इंडेक्सेशन के माध्यम से आप लॉस क्लेम करना चाहते हैं तो इस पे जो कैलकुलेशन है वो उसको ध्यान से फॉलो करिए। मैं बताना चाहूंगा सभी श्रोताओं को मनोज और लालिमा कि जो आयकर की विवरणी है जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसमें बड़े सिस्टमैटिक तरीके से कैलकुलेशन दी हुई है। तो जगनाल जी चेक करिए, अगर आपको फिर भी कठिनाई आ रही है तो मैं सलाह दूंगा आपके इर्द गिर्द अगर कोई एक्सपर्ट है, क्योंकि हम रेडियो पर आई विश के हम सॉल्व कर सकते पर रेडियो पर क्योंकि कैलकुलेशन हम तो दिखा नहीं सकते, तो कोई इर्द गिर्द आपके एक्सपर्ट है आप उसकी सहायता ले सकते हैं। पर मुझे उम्मीद है जो मैंने बताया उससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा।
1: Alright, let's take a look at the US markets now. US indices displayed mixed trend yesterday. The Dow Jones Industrial Average rose nearly 0.5%. S&P 500 closed marginally higher, while the Nasdaq Composite Index shed over 0.6%. All three major indices posted weekly losses as investors sold chip stocks on worries about massive spending on artificial intelligence. For the week, the Nasdaq slid 2.2% and the S&P 500 declined 0.6%, with both indices posting their second straight weekly losses. Meanwhile, the Dow fell 0.4%, marking its third consecutive weekly decline. And now we are joined by Vishal from Delhi. Yes, Vishal, please ask your question. Ji, Vishal ji.
5: Good evening, dear Mahesh. जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे मैंने IT share का कोई stock ले रखा है, उसका अभी result नहीं आया, तो इसका result तक मेरे को wait करना चाहिए या sell कर दूँ?
0: अच्छा, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि आईटी में काफ़ी रोलर कोस्टर राइड एक तरह से हो रही है, कभी उथल कभी ऊपर कभी नीचे। कुछ आईटी कंपनीज के नतीजे अच्छे आए हैं, कुछ के तसल्ली बख्श आए हैं, सैटिस्फैक्ट्री आए हैं, और कुछ एक के बहुत अच्छे नहीं भी आए। अब देखिए विशाल जी, ये तो निर्भर करता है कि कौन सी कंपनी, क्योंकि हम यहाँ कंपनी स्पेसिफिक तो बात करते नहीं है, तो अब बड़ी दुविधा है कि आप पूछ रहे हैं कि उसके रिजल्ट आए नहीं, अब मालूम नहीं उसके रिजल्ट कैसे आए, जब तक हम कंपनी का नाम ना जाने, और कंपनी का नाम हम आपको लेने नहीं देंगे ना हम उस पर चर्चा करेंगे। तो इसलिए मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप कंपनी के जो पिछला रिकॉर्ड है उसके आधार पर आप एक एक डिसीजन ले सकते हैं कि आएगा। और मैं एक मजेदार बताऊं शेयर्स के बारे में बताऊं कि कई दफे क्या होता है कि कंपनी के रिजल्ट अच्छा आया उसके बाद उसमें एकदम बिकवाली आती है और उसके रेट नीचे चले जाते हैं, तो ऐसा भी होता है। तो इसलिए विशाल जी, अब ये तो क्योंकि मामला यहां सस्पेंस का है, तो इसमें आप इस कंपनी के पिछले रिकॉर्ड देखें और कोशिश करें ये जो क्वार्टरली अपने रिजल्ट फाइल करते थे स्टॉक एक्सचेंज में वो रिजल्ट कैसे रहे हैं, ये भी आप देखने की कोशिश करें। हो सकता है उससे आपका कुछ दिशा मिल जाए, बाकी कंपनी के बिना लिए तो हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा ये बताना।
3: आइए आपको लिए चलें गाजियाबाद, हमारे साथ फोन लाइन पर है अमित। अमित जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
6: या गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा, तो गुड इवनिंग कोहली सर।
0: गुड इवनिंग।
6: आई टू फाइंड वन अपॉर्चुनिटी टू क्लियर माय वन कंफ्यूजन रिगार्डिंग फाइलिंग ऑन ITR। तो क्वेश्चन इज कि सर मैंने मेरे जो कुछ शेयर्स हैं तो वो बाईबैक कर लिए थे कंपनी ने, तो आफ्टर बाईबैक आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वेदर आई हैव दिस इज रिलेटेड टू कैपिटल गेन और नॉन कैपिटल गेन, क्योंकि AIS में वो जो AIS स्टेटमेंट है उसमें वो एज अ डिविडेंड इनकम दिखा रहा है जो कंपनी ने बाईबैक करा, बट लेकिन मेरे जो ब्रोकर साइट है उसमें वो दिखा रहा है इट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विदाउट एनी सेल वैल्यू, सेल वैल्यू इसका मीनिंग है जीरो, बट लेकिन परचेज वैल्यू वो दिखा रहा है। तो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये मेरा कैपिटल गेन होगा या सिंपल डिविडेंड इनकम होगी, सो दैट अकॉर्डिंगली आई कैन फाइल ITR 1 और ITR 2।
0: सो अमित, एज पर द न्यू प्रोविजंस दिस इज बायबैक इज कंसीडर्ड एज डिविडेंड्स नाउ, और जो कैपिटल वैल्यू है यू कैन रिड्यूस योर परचेज प्राइस फ्रॉम दैट। सो आई थिंक यू विल हैव टू रिलाई मोर ऑन AIS, व्हाट AIS इज शोइंग इज करेक्ट, जो ब्रोकर्स नोट दिखा रहा है हो सकता है ब्रोकर्स नोट माइट बी शोइंग एज पर द ओल्ड प्रोविजंस, एज पर द न्यू प्रोविजन बायबैक इज ट्रीटेड एज डिविडेंड एंड यू कैन रिड्यूस द कैपिटल वैल्यू फॉर द कैपिटल गेन लॉस और देयर इज एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपनिंग। सो प्लीज प्लीज फॉलो योर AIS, बिकॉज AIS में टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज लालिमा एंड मनोज इट हैज बीन अपडेटेड नाउ, सो द अपडेटेड प्रोविजंस आर देयर एज the amendments made by the budget and all that. So I think you follow AIS and you can also inform this to your broker ke aapke usme aisa aa raha hai to usko aap theek kariye. Ji
3: aaiye khabron ka silsila aage badhate hain. एनटीपीसी लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के वित्तीय नतीजे जारी कर दिए हैं। कल जारी वक्तव्य में कहा गया है कि संचालन से कंपनी का समेकित राजस्व वार्षिक आधार पर 7.8% बढ़कर 50,741 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इस दौरान एनटीपीसी का समेकित शुद्ध लाभ 12.9% बढ़कर 6,896 करोड़ रुपए दर्ज हुआ। और अब हमारे साथ फोन लाइन पर धैर्य के साथ बने हुए हैं दिल्ली से अमित झा। अमित जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए।
7: नमस्कार सभी को।

0: हेलो सर
1: जी नमस्ते।
0: हाँ सर कोहली सर से मेरा प्रश्न ये है सर
2: जी
0: कि सरकार जो हो रिन्यूएबल एनर्जी पे जैसे मान लो बढ़ावा देने के लिए बात कर रही है सर, लेकिन जो सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा या हाइड्रो पावर जो भी नवीकरणीय ऊर्जा है उसमें एक सर दिक्कत ये आती है जो उसकी इक्विपमेंट होती है ना जो सेटअप बैठाने के लिए सर
2: जी,
0: उसकी जो क्या कहते हैं मशीनरी है वो महंगी पड़ती है, वो अभी भी हम उसको हम आयात ही करते हैं, यानी कि जो ढांचा बैठाने के लिए हमें चाहिए होता है सर वो हम अभी भी विदेश से मंगाते हैं। और दूसरी चीज सर, कभी किसी कंपनी का अगर ए नाम की कोई कंपनी है बी नाम की कंपनी का ए में अगर मर्ज हो जाता है तो किस हिसाब से ये ए नाम की कंपनी को फायदा करेगा, मर्ज होने के मतलब क्या वजह है, क्या इसके फायदे नुकसान है? धन्यवाद सर।
2: अमित मुझे याद है अमित ने कुछ पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते भी ग्रीन एनर्जी से काफी कंसर्न रहते हैं, इनके अक्सर सवाल ग्रीन एनर्जी से संबंधित होते हैं। हाँ। तो इम्पोर्टेड इक्विपमेंट उसमें अमित जा है, पर अमित देखिए, पर धीरे धीरे कर ये सस्ता हो रहा है, इस पर टेक्नोलॉजी में काफी काम हो रहा है, रिसर्च हो रही है। हम सोलर सेल्स की बात करें, हम विंड एनर्जी की बात करें, हम बायोफ्यूल्स की बात करें, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, तो धीरे धीरे करके हम इवॉल्व कर रहे हैं अमित। पहले के मुकाबले अब बहुत सस्ता है, कुछ इक्विपमेंट अभी भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, पर भरसक प्रयास चल रहे हैं इसको भारत में ही लाने का और भारत में ही करने का। दूसरा, आपने कंपनी मर्ज करने के बहुत सारे कारण होते हैं, कई बार इसको हम अंग्रेजी में सिनर्जिस्टिक एडवांटेजेस कहते हैं, जैसे एक कंपनी के पास कुछ एक स्ट्रेंथ है, दूसरी कंपनी के पास दूसरी स्ट्रेंथ है, और दोनों मिल जाए तो एक और एक 11 हो जाते हैं, तो एक और एक 11 के कॉन्सेप्ट पे मर्जर किया जाता है और एक दूसरे के रिसोर्सेस को एक कर और आगे बढ़ने की मुहिम होती है। उसमें फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा दिखाई देती है। बहुत सारे कारण होते हैं मर्जर के अमित। अब कोई मर्जर अब की बार आएगा तो फिर हम आपसे उसको स्पेसिफिकली बात करेंगे जी।
3: ऑलराइट, वी नाउ जॉइन बाय प्रेमजीत फ्रॉम दिल्ली। यस प्रेमजीत जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
4: नमस्कार पूरे एंटायर टीम को। कोहली साहब, मैं आपका बहुत बड़ा शिष्य हूँ, आपको प्रणाम।
2: मेरा भी प्रणाम सर।
4: सर मेरा सवाल है, मैं सी फेयर हूँ सर, मैं नाविक हूँ जो विदेशों में जहाजों पे काम करता हूँ, जिन पे आजकल डिस्प्यूटेड डिस्ट्रक्शन चल रहा है
2: जी, जी।
4: सर मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग को सर अलॉटमेंट होता है सर यूएसडी में या यूरो में एनआरई अकाउंट में, तो हम जो पैसा कमाते हैं उस पर क्या यहाँ की इंडियन टैक्स रिजिम में कोई प्रोविजन है, कोई अलग सा क्लाउज है? क्योंकि हम लोग तो एग्जेम्प्टेड है सर, एज पर लॉ आप बेहतर जानते हैं, आपसे बेहतर कौन जान सकता है
2: जी। चलिए जी, प्रेमजीत आपका सवाल समझ में आ गया। देखिए, आप सी फेयरर हैं और अगर आप भारत से बाहर रहते हैं 180 दिन, तो ऐसे हालात में फिर आप एनआरआई हो जाते हैं, तो एनआरआई की जो टैक्सेबल इनकम भारत में जो इनकम है वही टैक्सेबल है, विदेश में जो इनकम हो रही है वो भारत में टैक्सेबल नहीं है। इस पैसे को निवेश करके जब आप भारत से कमाते हैं, मान लीजिए आपने कोई फिक्स डिपॉजिट किया, म्यूचुअल फंड्स में कुछ लिया, कुछ भी आपने निवेश किया, वो फिर प्रेमजीत जी टैक्सेबल हो जाती है। तो जो आपकी डॉलर्स में इनकम आ रही है, विदेशी मुद्रा में आ रही है, उस दौरान जब आप भारत से बाहर हैं, तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि आप एनआरआई है कि नहीं। उसके लिए प्रोविजंस हैं आयकर अधिनियम के अंदर, जिसको हम नॉन रेजिडेंट इंडियन जब बोलते हैं, तो 180 दिन अगर आप भारत से बाहर रहे हैं तो आप उस साल में एनआरआई हो जाते हैं, उसमें भारत में आपकी सिर्फ भारतीय इनकम टैक्सेबल होगी, विदेशी इनकम टैक्सेबल नहीं होगा। अगर आपका दोनों जगह टैक्स लग गया है, मान लीजिए आप जिस देश में है उस देश में लग गया, सी फेयरर्स को ये बड़ी प्रॉब्लम आती है, मनोज बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि आप जब पानी पर हैं तो कुछ पीरियड के लिए आप किसी और पानी में चले गए, फिर किसी और देश के, अच्छा मरीन रूल्स भी होते हैं कि आप किस देश का ये पानी है, तो बड़ी ही कठिन परिस्थिति कई बार हो जाती है। तो आसान भाषा में आप ऐसे रखिए कि अगर आप एनआरआई हैं बाय इनकम टैक्स लॉ, तो उसमें आपकी वो इनकम भारत में टैक्सेबल नहीं होगी, केवल भारत में निवेश किया हुआ पैसा या भारत में कोई बिजनेस है, भारत में कोई पार्ट टाइम जॉब है, वही सिर्फ टैक्सेबल होगा।
1: दिल्ली से ही हमारे साथ फोन लाइन पर है प्रकाश। प्रकाश जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
5: जी मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार।
1: जी नमस्ते।
5: कोहली साहब को भी नमस्कार।
2: नमस्कार प्रकाश जी।
5: सर मेरा क्वेश्चन आईटीआर के बारे में ही है, ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का तो आईटीआर 1 में है प्रोविजन है, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस होता है क्या वो भी हम आईटीआर 1 में कोई उसमें कोई उल्लेख है नहीं उसमें उसका, तो उसके लिए क्या आईटीआर 2 भरना पड़ता है अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉस हो?
2: जी उसके लिए फिर आपको आईटीआर 2, बिल्कुल प्रकाश जी आपने ठीक पकड़ा है, अगर आपका सैलरी इनकम है और थोड़ा सा कैपिटल गेन है और आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, तो फिर आप आईटीआर 1 थोड़ा सा सरल है, उसका नाम भी सरल होता है, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। पर अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉस है, जिसको आप सेट ऑफ करना चाहते हैं, कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बिल्कुल प्रकाश जी आईटीआर 2 का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत अच्छी आपने रिसर्च और जानकारी हासिल करी है, आपकी जानकारी बहुत दुरुस्त है, इस बात को

0: consider additional duties such as general pharmaceuticals, smartphones and certain other specified products continue to remain outside the scope of the additional 10% duty. Further, products already covered under Section 232 measures, including steel, aluminium and auto parts, are also not subject to the additional 10% duty.
1: यहाँ पर समझना चाहेंगे कुल मिलाकर ये आंकड़े क्या कह रहे हैं सरल लोगों की भाषा में, ये हमारे लिए अच्छी खबर है या थोड़ी चिंता?
2: कुछ मिली जुली सी मैं कहूंगा, क्योंकि सेक्शन 301B है यूएस ट्रेड एक्ट 1974 का, जिसके अंतर्गत हमारे ऊपर ये ड्यूटी लगाई गई है. और मुझे लगता है कि और जिस कारण से लगाई गई है वो कारण की वजह से मैंने बोला मिला जुला है, क्योंकि जबरन मजदूरी वगैरह इस प्रकार के भारत कुछ ऐसा रॉ मटेरियल चीन से मंगाता है जिसमें जबरन मजदूरी होती है. अब मिला जुला सा मैं कहूंगा, हालांकि बाकी कुछ देशों के मुकाबले थोड़ा सा हमारे ऊपर कम लगा है, बाकी देशों पर 12.5% लगा है. और 70% तो हमारे वैसे ही 70% इसमें कवर होते हैं, बाकी तो हमारे वैसे ही एग्जेम्प्ट कैटेगरी, जैसा कि अभी लालिमा ने पढ़ा उसमें मोबाइल फोन्स हैं, जेनरिक ड्रग्स वगैरह हैं, जिन पे 0% है. मिला जुला सा मैं इसको कहूंगा.
1: आइए चले कोलकाता, हमारे साथ हैं डीआर आचार्य, स्वागत आपका, सवाल पूछिए.
3: नमस्कार सर.
1: नमस्ते
3: सर. हम एनपीएस में आउट थोड़ा पैसा लगाना चाहता है, अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है लगाना ठीक होगा कि नहीं?
2: आप शेयर्स में लगाना चाहते हैं तो अभी एनपीएस में लगाना नहीं, एनपीएस में तो बहुत अच्छा विचार है आचार्य जी, आप उसमें लगा सकते हैं, आप अकाउंट को ऑनलाइन खुलवा सकते हैं. और एनपीएस में जो लगाते हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि एनपीएस, बहुत सारे लोग नहीं जानते कि एनपीएस का जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर है वो आप चूज कर सकते हैं, आप सेलेक्ट खुद ही सेलेक्ट कर सकते हैं कि एनपीएस में आप इक्विटी का ज्यादा कंपोनेंट चाहते हैं कि आप डेट का ज्यादा चाहते हैं, आप फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट का ज्यादा चाहते हैं. तो जिस हिसाब से आपकी आचार्य जी रिस्क एपेटाइट है, उसको हिंदी में हम कहेंगे जोखिम उठाने की क्षमता है, उसके अनुसार आप उस मिक्स को चूज कर सकते हैं. एनपीएस बहुत अच्छा है और लंबे वक्त के लिए आप नजरिया रखिए और मुझे लगता है आपको आगे कारगर सिद्ध होगा.
0: All right, now let's take a look at the oil prices. Well, global crude oil prices continued their upward momentum this week amid supply risks linked to West Asia conflict and disruptions to Red Sea shipping routes. During the week at the Intercontinental Exchange, Brent crude September futures surged more than 9.8% to settle at $96.78 per barrel. West Texas Intermediate crude September futures jumped 9.2% to end at $89.31 per barrel.
1: श्रोताओं, आपने बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया, इसके लिए अपनी टीम की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे. और शरद जी, आपने हमारे साथ चर्चा में और श्रोताओं के सवालों का जितना बढ़िया जवाब दिया उसके लिए श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे.
2: It was my pleasure. Thank you so much.
0: Thank you, Sharad ji, once again. And friends, before we close, here's a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices register steep weekly losses amid geopolitical concerns. U.S. stock markets log weekly decline. And global crude oil prices extend rising streak this week. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor, Manoj Pathak, signing off. So, from all of us here, Namaskar.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। कॉकरोच जनता पार्टी CJP ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ CJP प्रतिनिधिमंडल की तीसरे दौर की वार्ता के बाद पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने ये घोषणा की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो।

0: और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
1: श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए दिए गए CGPA के सुझावों पर विचार किया जाएगा।
0: हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलीबरेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे।
1: आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार को पूरी सहानुभूति है और सरकार नियमों के अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी। इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिन से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया। श्री प्रधान ने कहा कि नीट UG परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच CBI को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। दिल्ली पुलिस ने भारी भीड़ और यातायात जाम के कारण लोगों को नई दिल्ली क्षेत्र की ओर जाने से बचने की सलाह दी है। पुलिस ने यात्रियों को निर्देश दिया है कि वे देरी से बचने और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सभी 18 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार यात्रियों के लिए खोल दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। श्री मोदी ने कहा कि सारनाथ का भगवान बुद्ध से गहरा संबंध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया भर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। प्रधानमंत्री कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसियर डैन के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक चर्चा की। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 220 रन का लक्ष्य दिया है। ईशान किशन ने 81 और तिलक वर्मा ने नाबाद 60 रन की शानदार पारी खेली। ताजा समाचार मिलने तक जिम्बाब्वे ने 7वें ओवर में 4 विकेट पर 49 रन बना लिए थे। अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। फाइनल में उनका सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय हैं। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The CGP has withdrawn its agitation after the government agreed to its demands. Union Ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh today held the third round of discussion with the CGP delegation, focusing on its demands for reforms in the examination system and measures to prevent paper leaks. Later, in a joint press conference with the CGP delegation in New Delhi, Mr. Nadda said that during the meeting, the government agreed to the demands of CJP that no action should be taken against the protesters and no FIRs should be filed against them.
0: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है। जो

0: सुर्खियों में
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, परीक्षा संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के ठोस कदमों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
2: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज पाठक और आज इस अंक में हम चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। ध्यान देने वाली बात है कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट कहा कि इन परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं और आने वाले दिनों में इसे अमली ढांचा पहनाने के लिए विधि सम्मत उपाय भी किए जाएंगे।

0: यानी संभव है आने वाले दिनों में हम एक नया कानून इसकी शुचिता बनाए रखने के लिए अस्तित्व में आता हुआ दिखें। इस विषय पर चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है स्टूडियो में राजनीतिक मामलों की वरिष्ठ विश्लेषक अदिति टंडन जी को। अदिति जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि जो राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाएं हुआ करती हैं उसमें कई में हमने देखा कि कुछ लापरवाहियां रही या उचित कदमों में कहीं तालमेल का अभाव दिखा और प्रश्न पत्र लीक हो गए, इसका अंजाम अच्छा नहीं निकला और अंततः सरकार ने कड़े कदम उठाने के आश्वासन दिए हैं। किन रूप में देख रहे हैं इन्हें?
1: देखिए, जैसा कि आपने कहा खुद ही अपने रिमार्क्स में कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस हैं और इवन राज्य के स्तर पर जो एग्जामिनेशंस हैं, ऐसा नहीं है कि वो आज के लीक हो रहे हैं। सिस्टम में लीकेज ऑफ एग्जामिनेशन पेपर्स होते रहे हैं, बहुत सारे हुए हैं, हर स्तर पर, राज्य के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर हुए हैं और सिस्टम्स को इम्प्रूव करने की जो कवायद है वो रही है, बहुत सालों से चल रही है। मैं खुद ही बहुत पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री पर लिखा करती थी, तब से ये कोशिश चल रही है। मुझे आज भी याद है कि AIEEE का एग्जाम लीक हुआ था 2011 में, जिसके बाद सबसे पहले एक संजीदा मसौदा तैयार करने की बात हुई थी कि किस तरीके से आप अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को फुल प्रूफ बना सकते हैं। तो ये जो चैलेंज है मनोज जी, हर सरकार के टाइम पर आया है और हर सरकार ने अपने तरीके से इसको प्लग करने की कोशिश की है, पर हम सब जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड माफिया है जो इससे लाभान्वित होता है और इंडिविजुअल्स हैं जो बहुत वेल एंट्रेंच हो चुके हैं सिस्टम में। जो लोग एजुकेशन को फॉलो कर रहे हैं, पेपर लीक के डायनामिक्स को समझते हैं, वो ये जानते हैं कि ये कोई मामूली अपराध नहीं है, इसके जो तार हैं बहुत दूर तक जुड़े हुए हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण घटना जो कल मैंने देखी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के 47 ऑफिशियल्स को सैक किया गया है और ये भी वक्तव्य आया है सरकारी सोर्सेज के हवाले से कि उनमें से बहुत लोगों पे अब मुकदमा भी चलने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये जो लेटेस्ट नीट UG जो मेडिकल अंडर ग्रेजुएट MBBS एग्जाम का पेपर लीक हुआ था, May 3 को पेपर कैंसिल हुआ था, उसमें ऑब्वियस सी बात है कि ना सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स इन्वॉल्व हैं, अंदर के भी लोग कुछ इन्वॉल्व हैं। तो उसके लिए एक इस सिस्टम में ट्रस्ट को रीबिल्ड करने के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम कल उठाया गया है। और आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री ने दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें अपने वक्तव्य में कही हैं सिस्टम को फुल प्रूफ बनाने के लिए। एक तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ऐसा नहीं कि देश में है नहीं, लेकिन जो प्रधानमंत्री का मतलब है वो ये है कि डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे जो सिर्फ इस लॉ के तहत जो केसेस दर्ज होंगे उनको डे टू डे बेसिस पर सुनने के बाद 3 महीने में उनका ट्रायल खत्म करेंगे, चार्जशीट फाइल होने के बाद। और हम और आप आज बात कर रहे हैं, बल्कि कुछ ही घंटों पहले जो बिल का मसौदा है, जो बिल प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था अपने वक्तव्य में परसों रात को, जब उन्होंने एक वीडियो सेल्फी बना के देश के युवाओं से संपर्क करने की कोशिश की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हम कैबिनेट में एक बिल लेके आने वाले हैं। जो पुराना बिल 2024 में सरकार ने पास किया है उसी को इम्प्रूव किया गया है और उसमें स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस किए गए हैं। और जो महत्वपूर्ण बात उसमें ऐड की गई है वो ये की गई है कि स्टैट्यूटरी बैकिंग दी जाएगी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को, जो प्रधानमंत्री ने घोषित किया परसों रात को अपने संदेश में, और कल कैबिनेट ने उसको पास कर दिया। आज बिल का मसौदा भी हम सबके सामने आ गया है और पार्लियामेंट में ये बिल मंडे को पेश भी होने जा रहा है।
0: यहाँ पर थोड़ा हम श्रोताओं के हित में समझना चाहेंगे कि ये जो मसौदा बिल आया है उसमें क्या सब बातें रखी गई हैं और कैसे ये आने वाले दिनों में सुधार के कारक बनकर सामने आएंगे।
1: इस बिल का जो नाम है वो है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024। मैंने जैसे कहा कि ये नया बिल नहीं है, 2024 का बिल है, उसमें संशोधन लाएगी सरकार। संशोधन के माध्यम से नई पनिशमेंट्स घोषित करेगी और जो नए मसौदा तैयार किया है उसको स्टैट्यूटरी बैकिंग देगी। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगती है, वो ये है कि पनिशमेंट बढ़ा दी गई है। जो पुराना बिल था 2024 का, उसमें ये कहा गया था कि जब कोई इंडिविजुअल पेपर लीक के मामले में लिप्त पाया जाएगा तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी 3 से 5 वर्ष की और उस पे जो फाइन होगा वो 10 लाख का होगा। अब उसको बदल के कहा गया है कि मिनिमम पनिशमेंट 5 साल की होगी और जो फाइन होगा वो 10 लाख से बढ़कर 1 करोड़ तक ले गए हैं। और सिमिलरली अगर यही क्राइम ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कोई कर रहा है, ऑर्गेनाइज्ड नेक्सस इन्वॉल्व्ड है, तो उसके लिए सजा के प्रावधान और भी कड़े किए गए हैं। उस केस में कहा गया है कि मिनिमम पनिशमेंट अब 7 साल होगी और मैक्सिमम जो फाइन होगा वो 10 करोड़ होगा। तो ये मेन इस बिल की प्रावधान है। ये तो हो गया कि

0: आपने पनिशमेंट बढ़ा दी, लेकिन सिर्फ पनिशमेंट बढ़ाने से कुछ नहीं होता। हमें पता है कि केसेस लंबित रहते हैं लंबे लंबे समय तक। उसको ठीक करने के लिए इस बिल में एक इम्पॉर्टेंट प्रावधान जो मुझे लगता है वो ये है कि तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज को ये पावर्स दे दी गई हैं कि वो किसी भी कोर्ट ऑफ सेशंस को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट घोषित कर सकते हैं इस कानून के तहत दर्ज मामलों को निपटाने के लिए। और ये भी कहा गया है कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स इन मामलों में होंगी वो हर दिन होंगी, डे टू डे बेसिस पर चलेगा ट्रायल, और ट्रायल 3 महीने में कंप्लीट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है, उन्होंने ये भी कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एम्पावर कर दिया गया है कि जब जब ऐसा कोई बड़ा मामला आए नजर में तो इमिजिएटली स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करके उस एसटीएफ को ये मैंडेट होगा कि आपने 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी है। अभी क्या हो रहा है ना, सिस्टम में मिसट्रस्ट इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि लंबित बहुत हैं केस। आप कानून लाकर सिस्टम को परिवर्तित नहीं कर सकते, आपको कानून को अमली जामा पहनाने के लिए जो सिस्टम्स चाहिए वो भी क्रिएट करने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से बड़ा चैलेंज जो सरकार के सामने आएगा वो फाइनेंसिस का आएगा।
1: अच्छी बात कही है कि पिछले कानून से किस तरह ये कानून बदला हुआ होगा, अधिक सख्त होगा। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि एक मामला शुरू हुआ और आमतौर पर ये मामले दम तोड़ देते जब पुख्ता सबूत नहीं रखे जाते, वहां पर कैसे कह लें कि उस प्रक्रिया का ध्यान रखा जाएगा, यानी अदालतें बन गई। जैसे अभी यदि हाल का एक मामला लें तो उसमें जिस व्यक्ति को आरोपी ठहराया गया उसके विरुद्ध फिलहाल कोई सबूत नहीं मिलने से वह छूट गया, तो वहां पर क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए?
0: इसमें मुझे लगता है कि प्रोसिक्यूशन की बहुत बड़ी भूमिका है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो अपॉइंट होता है ऐसे केसेस में वो कितना लायक है, वो कितनी अच्छी तरीके से आर्ग्यू कर सकता है मैटर, और जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वो कितनी क्विकली फॉरेंसिक एविडेंस गैदर कर सकती है, कितनी जल्दी डिजिटल इम्प्रिंट्स को देख सकती है, क्योंकि लीकेजेस तो अब डिजिटल माध्यम से हो रहे हैं। हम सब जानते हैं कि सारा का सारा एग्जाम ऑनलाइन है, तो उससे क्या है, साइबर सिक्योरिटी चैलेंज है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को ये सोचना होगा कि जो स्पेशल टास्क फोर्स गठित किया जाएगा ऐसे क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसमें आपको एक्सपर्ट्स भी कोऑप्ट करने पड़ेंगे। अब ये जो वक्त है, ये जो जमाना है, उसमें कन्वेंशनल पुलिसिंग मेथड से आप क्रिमिनल गैंग्स को नहीं हैंडल कर सकते, आपको बहुत हाई लेवल की एक्सपर्टीज हर सेक्टर में चाहिए।
1: यहाँ पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इस दिशा में एनटीए क्या कर रही है और किस रूप में अपने आप को पेशेवर बनाने के लिए पेशेवर लोगों की सलाह लेने की योजना बना रही है।
0: इनफैक्ट परसों हमने देखा कि सरकार ने एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से नए पोस्ट्स घोषित किए हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में। उन्होंने ये कहा है कि नियुक्ति के लिए अब 4 जनरल मैनेजर्स बुलाए जाएंगे। अभी क्या है, अभी जो स्ट्रक्चर है बहुत सेंट्रलाइज्ड है, जैसे सबसे ऊपर एक चेयरमैन है, उसके नीचे सीईओ है, तो लेकिन अब डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाने की बात हो रही है। इसके साथ ही संघ लोक सेवा आयोग के जो प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों को भी भर्ती में शामिल किया जाएगा, उनकी भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। एनटीए ने एक बयान में ये भी कहा है कि ये उपाय एजेंसी के जो संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा है उसके लिए हेल्प करेंगे।
1: यदि श्रोताओं, कुल मिलाकर सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है कि हमारी जो राष्ट्रीय परीक्षाएं हैं या राज्य स्तर की परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित की जाए, और इसके लिए जिस तरह तकनीक बदल रही है, तकनीक हावी हो रही है, उसके निदान के लिए जो हमारा वैधानिक ढांचा है उसमें वैसे ही दक्ष पेशेवरों की नियुक्ति की जाए। यहाँ पर अदिति जी, आपने कहा कि इसे वैधानिक स्वरूप दिया जाएगा, ढांचा तैयार किया जाएगा, किस रूप में परिवर्तन होता देख रही हैं आप वहाँ उस स्तर पर?
0: देखिए, परिवर्तन कितना हो पाएगा वो वक्त बताएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट और पॉजिटिव सिग्नल इस वक्त है वो ये है कि परिवर्तन की दिशा में सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ये जो लड़ाई है मनोज जी, ये बहुत लंबी है, और ये जो पेपर लीक का मामला है, ये सिर्फ पेपर लीक का मामला चीटिंग से लिंक करके नहीं आप देख सकते। इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है स्टूडेंट्स के माइंड पे, बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट होता है। आप सब जानते हैं कि मिडिल क्लासेस बच्चा पैदा होते ही पैसा जमा करना शुरू कर देती हैं कि देश में अच्छे एजुकेशन में या अच्छे कॉलेज में अगर बच्चे की भर्ती करानी है तो उसे अच्छे स्कूल में भेजना है, उसकी एक कॉस्ट है, अच्छी कोचिंग दिलानी है, वो कितनी एक्सपेंसिव है हम सब जानते हैं। उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि बच्चे को सीट मिलेगी। यही वजह होती है कि बच्चों की इमोशनल और साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी पर ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स फीड करते हैं।
1: थोड़ा इसे और विस्तार देकर बताएं कि सिस्टम में बदलाव किस तरह का

0: और उसका इम्प्लीमेंटेशन किस रूप में।
1: मेरा जो व्यक्तिगत मानना है वो ये है कि एग्जामिनेशन सिस्टम तब फूल प्रूफ हो सकता है जब उसमें ग्रेडिंग हो, ये प्रामाणिक है। आप देखिए कौन कौन से एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हमारे देश में हैं, जिनमें या तो आप बिल्कुल नहीं सुनेंगे कि लीक हुए हैं या बहुत नेग्लिजिबल हुए हैं। जैसे आप यूपीएससी का एग्जाम देखिए, वो कभी क्यों नहीं लीक होता।
0: बिल्कुल,
1: आप उस मसौदे को समझिए,
0: आर्म फोर्स हैं उनके
1: आर्म फोर्सेस के लीक नहीं होते। आप और भी समझिए, जब से आपने आईआईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को ग्रेडेड बना दिया है, जैसे पहले क्या होता था कि एक ही एंट्रेंस एग्जाम होता था AIEEE, मुझे आज भी याद है 2011 में एक बहुत बड़ा पेपर लीक हुआ था जिससे बहुत सारे बच्चे बहुत त्रस्त हुए थे। उसके बाद ये सिस्टम शुरू हुआ कि किस तरीके से एग्जामिनेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जाएगा। आप जानते हैं पहले JEE मेन कंडक्ट होता है, उसमें एक पर्टिकुलर लेवल के बच्चे जो टॉप 25% आते हैं उनको मौका मिलता है IIT में जाने का। उससे होता क्या है, जब आप ग्रेडेड एग्जामिनेशन सिस्टम बनाते हैं कंपटीशन के लेवल पे, आप डिसइंसेंटिवाइज करते हैं कि बच्चे पैसा देके पेपर खरीदें। क्यों? क्योंकि पहले लेवल पर आप निकल जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। जब कोई गारंटी नहीं है तो कोई इंसेंटिव नहीं है पैसा देने का, तो आप डिमांड और सप्लाई के साइकिल को तोड़ सकते हैं ग्रेडेड सिस्टम में। सिमिलरली यूपीएससी में 3 लेवल्स हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि प्रिलिमिनरीज होते हैं, उसके बाद मेंस होते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है। किस किस लेवल पर कोई लीकेज के लिए पैसे देगा। सो ये एक सिंपल इजिली डूएबल एक फॉर्मूला है। जो AIPMT का एग्जाम भी पहले ग्रेडेड होता था, उस वक्त लीकेजेस मुझे लगता है कम होते थे। जब से आपने सिंगल एग्जाम बनाया है, ये जो NEET UG है, आपने जब से इसको सिंगल एग्जाम बनाया, 22 लाख बच्चे बैठते हैं, 500 सिटीज में होता है, जिसको कहते हैं बहुत बड़े स्केल पर ये एग्जाम होता है। 22 लाख बच्चों को एक साथ टेस्ट करना और उनको एक ही विंडो में MBBS की सीट देना, थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर हम ग्रेडेड एग्जाम करेंगे NEET UG को जैसा कि पहले होता था, 2 लेवल्स पर, पहले स्क्रीनिंग और फिर सिलेक्शन, तो शायद ये लीकेजेस का इंटेंसिटी कम होगा। ये प्रामाणिकता से मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है।
0: अच्छा, कुछ राज्यों की ओर से इस नीट परीक्षा प्रणाली को ही लेकर विरोध जताए जा रहे हैं, उस दिशा में कुछ सुधार की या एक रूपता लाने की कोई भूमिका बनती नजर आ रही है आपको?
1: बिल्कुल, देखिए तमिलनाडु ने शुरुआत से NEET UG का विरोध किया है। उनका ये कहना था कि 12वीं कक्षा के एग्जामिनेशन के बेसिस पे हमारी स्टेट में एक MBBS की एडमिशन होती थी और वो चलती रहनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन मॉडल स्टडी करेंगे, उसमें JEE मेन और JEE एडवांस्ड का मॉडल बहुत अच्छा है। IITs के टॉप डायरेक्टर्स ने मिलकर उसे बनाया है, उसमें बहुत लेवल हुई थी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन की, और उसमें 12वीं के रिजल्ट्स का भी एक पोर्शन काउंट होता है। फिर वही मैं कहूंगी कि NEET UG बहुत बार लीक हुआ है, 3 बार तो रिसेंट हिस्ट्री में हुआ है। तमाम मॉडल्स को स्टडी करने के बाद आप ये भी देखिए कि क्या कहीं NEET UG के स्ट्रक्चर को ही चेंज करने की जरूरत तो नहीं है।
0: यानी श्रोताओं, एक आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता परीक्षा प्रणाली को है, ऐसा लग रहा। बस यहीं पर हम श्रोताओं आपकी ओर से अदिति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे परीक्षा संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के ठोस कदमों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: सुर्खियों में

7:26 हो गए हैं और FM गोल्ड पर यह समय है कार्यक्रम सांझ ढले का। आज की शाम सांझ ढले में मैं हूं आपके साथ रेशमा और आपको सुनवा रही हूं कुछ मधुर से गीत। सुनते हैं फिल्म काला पानी से आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज़ में, SD बर्मन के संगीत से सजा ये चुलबुला सा गीत पहले।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि

0: जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
3: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
2: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
3: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
2: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
4: जी हाँ, आकाशवाणी के FM गोल चैनल पर सांझ ढले कार्यक्रम सुन रहे हैं आप। और अब सुनवाती हूँ मैं आपको फिल्म जंगली से मोहम्मद रफी की आवाज में गीत, संगीत शंकर जयकिशन का।
5: इस

0: पर्सनल लोन ऑफर।
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई,
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार।
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म।

0: नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
0: कॉल उठाओ, फिर ट्राई D&D ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
0: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई D&D ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
2: जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 MHz पर। शाम के 7:36 हो गए हैं और 7:45 पर FM गोल्ड पर समय हो जाएगा, कार्यक्रम नहीं होगा, कोई प्रादेशिक समाचार सुनेंगे आप FM गोल्ड पर। इसलिए अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है, आपको एक और गीत सुनवाती हूँ मैं, फिल्म कश्मीर की गली से। इसमें भी आवाज़ है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की और संगीत है OP नैयर का। तो आज जो मैंने आपको गीत सुनवाए हैं सांझ ढले में, इसमें तीनों में मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, अलग अलग संगीतकारों के साथ उनकी परफॉर्मेंस है। पहला गीत SD बर्मन का संगीत था उसमें, दूसरे गीत में शंकर जयकिशन का संगीत था और तीसरे गीत में संगीत है OP नैयर का। पहला गीत थोड़ा चुलबुला था, दूसरा और ये जो अगला गीत भी आप सुनेंगे ये थोड़ा रोमांटिक मूड का गीत है। आइए लुत्फ लेते हैं इस अगले गीत का, फिल्म कश्मीर की गली से।
3: भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ieefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।

जी, तो ये रहा आज का सांझ ढले का सफ़र। अब तक 7:44 हो चुके हैं, 44 मिनट, और बस एक मिनट में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार यहीं एफएम गोल्ड पर, और उसके बाद 8 बजे से आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वर धरोहर, और आज का सांझ ढले का सफ़र यहीं तक। आप सुनते रहिए एफएम गोल्ड, और रेशमा को दीजिए इजाज़त।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। कॉकरोच जनता पार्टी ने तत्काल प्रभाव से आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की, कहा तीनों मांगे मानी गईं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना त्यागपत्र सौंपा। दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशन खोले गए। दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने 27वें करगिल विजय दिवस पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों की हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत का पहला पदक जीतने पर बधाई दी। सरकार के साथ बातचीत के बाद कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने तत्काल प्रभाव से आंदोलन वापस लेने की घोषणा की है। सीजेपी ने कहा कि हमारी सभी तीन मांगे मान ली गई हैं, इसलिए अब जंतर बंतर से लोग शांतिपूर्वक वापस लौट जाएं। नई दिल्ली में सरकार के साथ वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने इसकी घोषणा की।
5: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
4: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि सरकार प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी मामले वापस लेगी।
6: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
4: श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए दिए गए सीजीपी के सुझावों पर विचार किया जाएगा।
6: हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलीबरेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे।
4: इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना त्यागपत्र सौंप दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिन से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें और किसी भी छात्र का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना त्यागपत्र सौंपने का निर्णय लिया। श्री प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र सेवा उनके जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे इसके प्रति सदा समर्पित रहेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कहा कि उनका 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। उन्होंने श्री धर्मेंद्र प्रधान को उनकी अथक सेवा, सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता और मजबूत भारत के निर्माण में योगदान के लिए धन्यवाद दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पद से त्यागपत्र देने पर कहा कि यह निर्णय सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों, मर्यादा और सिद्धांतों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता दर्शाता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि श्री प्रधान ने अपने सार्वजनिक जीवन में हर दायित्व को निष्ठा, ईमानदारी और पूर्ण समर्पण के साथ निभाया। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब में कथित पेपर लीक मामलों को लेकर पंजाब सरकार की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के बावजूद अब तक स्पष्ट जवाबदेही तय नहीं की गई है।
7: श्री सिरसा ने कहा कि यदि छात्रों के भविष्य की चिंता है तो ये केवल दिल्ली तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि पंजाब के युवाओं के साथ भी समान न्याय होना चाहिए। उन्होंने पंजाब सरकार से सभी कथित पेपर लीक मामलों की समयबद्ध और निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य के मुद्दों पर दोहरे मानदंड नहीं अपनाए जाने चाहिए। आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से हमीशा।
4: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में कड़ा कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
8: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
4: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।

0: दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खोल दिए गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से 18 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग, शिवाजी स्टेडियम, झंडेवालान और नई दिल्ली स्टेशन शामिल थे। नागर विमानन मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि कुछ फर्जी वेबसाइट एयर सुविधा 2.0 के नाम पर यात्रियों को गुमराह कर रहे हैं। प्रेस विज्ञप्ति ने मंत्रालय ने बताया कि एयर सुविधा 2.0 की सेवाएं पूरी तरह से निशुल्क हैं और स्वघोषणा पत्र जमा करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। मंत्रालय ने कहा कि एकमात्र आधिकारिक एयर सुविधा 2.0 पोर्टल airsuvidha.civilaviation.gov.in है। भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी ने निर्बाध रूप से 1200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। इससे 3000 लीटर से अधिक डीजल की बचत हुई है और इससे केवल जल वाष्प उत्सर्जित हुआ है। इस हाइड्रोजन रेलगाड़ी को इस महीने की 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद और सोनीपत के बीच झंडी दिखाकर रवाना किया था। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलगाड़ी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से बिजली उत्पन्न करती है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक रिपोर्ट।
1: पुलिस ने इस दौरान लगभग 12 किलोग्राम से अधिक मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया है। इसके अलावा 28,800 रुपए और 13 मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में एक नाइजीरियाई महिला भी शामिल है। वहीं एक अन्य मामले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लगभग 19,70,000 की नशीली गोलियां बरामद की हैं, जिनका कुल वजन लगभग 470 किलोग्राम है। पुलिस ने बताया कि यह गिरोह दिल्ली, नोएडा और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ तक फैला हुआ है। दोनों मामलों में जांच जारी है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
0: दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध शराब तस्करी मामले में एक आरोपी को द्वारका क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 150 क्वार्टर अवैध शराब और तस्करी में इस्तेमाल होने वाली एक दोपहिया वाहन बरामद किया है। मामले की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर साफ तौर पर उन वायरल सोशल मीडिया अफवाहों को खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली जिले में ऐप आधारित फूड डिलीवरी सेवाओं पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। पुलिस ने कहा कि ये जानकारी तथ्यों के आधार पर गलत और गुमराह करने वाली है। वहीं दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली जिले में भारी भीड़ और अत्यधिक यातायात जाम को देखते हुए नागरिकों को नई दिल्ली क्षेत्र की ओर से यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने 27वें करगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों के वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक रिपोर्ट।
2: इस अवसर पर आज बेगमपुल नमो भारत स्टेशन पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली विद्यार्थियों के साथ NCRTC के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर स्कूली छात्रों के लिए गार्डिंग द बॉर्डर्स विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने सैनिकों के साहस को चित्रों के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। NCRTC ने कहा कि नमो भारत स्टेशनों को सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र बनाया जा रहा है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: कल करगिल विजय दिवस है। इसी संदर्भ में हमारी पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत आगामी कड़ी में हम करगिल युद्ध के वयोवृद्ध और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह से बातचीत करेंगे। दिल्ली नगर निगम ने भारत मंडपम में आयोजित दिल्ली सरकार अचीवमेंट एंड स्कीम एक्सपो 2026 में अपने समर्पित स्टॉल के माध्यम से नागरिक केंद्रित पहलों, जन कल्याणकारी योजनाओं, नवाचारों और विभिन्न नागरिक सेवाओं का प्रदर्शन किया है। निगम के स्टॉल पर बड़ी संख्या में विद्यार्थियों, नागरिकों और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भ्रमण किया तथा निगम की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं और नागरिक सेवाओं की जानकारी प्राप्त की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय राजधानी में कई पहलों के माध्यम से जुलाई महीने को बाल संरक्षण माह के रूप में मना रही है। कार्यक्रम के अंतर्गत

बढ़ रहा है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू के लोक निवास में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने बताया कि इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी से जुड़े प्रमुख नीतिगत विषयों और विकासात्मक पहलों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 136वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों की हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग स्पर्धा में भारत का पहला पदक जीतने वाले झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उपलब्धि देश के युवाओं और खिलाड़ियों को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने की प्रेरणा देती है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली की पूर्व महापौर शकुंतला आर्य के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के विकास, जनसेवा और संगठन के प्रति उनका समर्पण सदैव याद रखा जाएगा। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में आज सवेरे हल्की वर्षा हुई, वहीं दिन भर लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल आमतौर पर बादल छाए रहने के साथ साथ कई जगहों पर सवेरे और दोपहर के समय हल्की हवा चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 33 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने आज राजधानी में कांवड़ यात्रा को सुचारू, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से संबंधित अधिकारियों तथा उच्च स्तरीय कांवड़ समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज देवशयनी एकादशी पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने भगवान विष्णु के सभी के स्वस्थ, सुखी, समृद्ध और मंगलमय जीवन की कामना करते हुए कहा कि प्रभु की कृपा सदैव सभी पर बनी रहे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कॉकरोच जनता पार्टी ने तत्काल प्रभाव से आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की, कहा तीनों मांगे मानी गईं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना त्याग पत्र सौंपा। दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशन खोले गए। दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने 27वें करगिल विजय दिवस पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों के हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत का पहला पदक जीतने पर बधाई दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का ये पहला सप्ताह था और इस दौरान दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा और कोई अहम विधायी कामकाज नहीं हो सका। हंगामे की वजह से दोनों सदनों में शून्यकाल और प्रश्नकाल भी नहीं चल सके। सत्र के पहले दिन यानी सोमवार को लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तथा राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर प्रश्नकाल में हंगामा किया, जिसके कारण कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी सदस्य हाथ में तख्तियां लेकर आसन के पास आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही ओम बिरला ने सदस्यों से कहा कि लोकसभा सर्वोच्च संस्था है और यहां चुनकर भेजे गए सांसदों से लोगों की अपेक्षाएं हैं, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। सदन में हंगामा नहीं थमते देख उन्होंने कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा और कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और

कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के बाद 2:30 बजे जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे। हंगामा देखते हुए सदन की कार्यवाही पहले 3 बजे तक और फिर दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्षी सदस्यों ने परीक्षाओं में कथित अनियमितता, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण राज्यसभा की बैठक 5 बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सत्र के प्रारंभ में अपनी संक्षिप्त टिप्पणी में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। किंतु उनकी इस अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सदन में हंगामा जारी रहा। इससे पहले पूर्वाह्न 11 बजे सत्र के पहले दिन राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सभापति ने नवनिर्वाचित 9 सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। इसके बाद सदन में 4 दिवंगत पूर्व सदस्यों बलबीर पुंज, स्वप्न साधन बोस, रंगासाई रामकृष्ण और एच हनुमंथप्पा के साथ ही कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। खड़गे जब अपनी बात रख रहे थे तभी विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। 1 बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में वही नजारा था। सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा रुकते न देख सभापति ने बैठक 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12:30 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्षी सदस्य जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी करने लगे। वे अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर भी नारे लगा रहे थे। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12:50 तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक के दोपहर 12:50 पर फिर शुरू होने पर सदन में वही नजारा देखने को मिला। हंगामे के कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि संसद चर्चा करने के लिए है और यहां चर्चा एवं संवाद होना चाहिए। अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने बैठक को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही जब दोपहर 2:30 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सदस्यों ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया और बैठक 1 मिनट के भीतर ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। मंगलवार को भी नीट पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वान्न 11 बजे अध्यक्ष बिरला ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की, विपक्षी दलों के सदस्य नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगे। बिरला ने हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक फिर शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य तख्तियां और बैनर लेकर आसन के पास आ गए और नारेबाजी की। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने हंगामे के बीच आवश्यक विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से शून्यकाल चलने देने की अपील की। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अपराह्न 2 बजे भी सदन में वही नजारा दिखा और कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज का मुद्दा छाया रहा। इसे लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण उच्च सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वाह्न 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन पर उन्हें सदन की ओर से शुभकामनाएं दी। इसके कुछ देर बाद ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। सदन में हंगामे को देखते हुए सभापति राधाकृष्णन ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक शुरू होने पर भी शोरगुल जारी रहा और उन्होंने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद 2 बजे भी हंगामा नहीं थमा और उपसभापति हरिवंश ने 1 ही मिनट के भीतर बैठक को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को भी संसद में हंगामा जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देश के युवाओं के लिए सार्थक चर्चा हो, इसके लिए सरकार तैयार है। हंगामे के कारण कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू होते ही विपक्षी दल फिर हंगामा करने लगे और कुछ सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। कई विपक्षी सदस्य तख्तियां लिए हुए थे। कांग्रेस सदस्य विरोध स्वरूप काले कपड़े पहने थे। सदन में हंगामा देखते हुए कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। 2 बार के स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद तेन्नेटी ने हंगामे के बीच जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी के खिलाफ महिला सांसदों के बारे में अभद्र टिप्पणी किए जाने की लिखित शिकायत मिली है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्ताव किया कि महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के आरोप में कल्याण बनर्जी को सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया जाए, जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। तेन्नेटी ने प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद कल्याण बनर्जी को सदन से बाहर जाने का आग्रह किया और सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में बुधवार को भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले और छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गतिरोध जारी रहा। हंगामे के बीच सरकार ने कहा कि वो नीट प्रश्न पत्र लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। वहीं विपक्ष इस चर्चा को नियम 267 के तहत कराने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष ने यह भी कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही इस विषय पर चर्चा हो सकती है। इस मुद्दे पर हंगामे के बीच उच्च सदन की कार्यवाही 3 बार बाधित होने के बाद अपराह्न 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वान्न 11 बजे जब सदन की बैठक शुरू हुई तो सदस्यों ने सिक्किम में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए हादसे में मारे गए 20 लोगों के सम्मान में कुछ क्षण का मौन रखा। बाद में विपक्षी सदस्यों ने अपने अपने मुद्दे उठाने चाहे। विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उनकी बात शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। इसके जवाब में विपक्षी सदस्यों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के अधिकतर सांसद काली शर्ट और काला कुर्ता पहनकर सदन पहुंचे। खड़गे की बाह में काले रंग की पट्टी बंधी थी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने कार्रवाई को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर हंगामा करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक सहित हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले तो चर्चा की मांग करती है और फिर नारेबाजी करके सदन को बाधित करती है, जो ठीक नहीं है। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्षी सदस्यों के आचरण की निंदा करते हुए कहा कि ये जो इंडी गठबंधन है, इसका व्यवहार प्रजातंत्र विरोधी है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चर्चा तब तक संभव नहीं है जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते। इस दौरान सदन में हंगामा तेज हो गया और हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और उपसभापति ने सदन में व्यवस्था न बनते देख बैठक को पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। बृहस्पतिवार को भी संसद में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष ने नीट मुद्दे पर हंगामा किया। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस तरह शोरगुल करने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सरकार पेपर लीक पर सदन में चर्चा कराने को तैयार है। शोरगुल थमता न देख उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू हुई तब भी विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक करने वालों और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ त्वरित अदालतों के जरिए सख्त कार्रवाई करने की पहले ही घोषणा कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष हंगामा कर चर्चा से भागना चाहता है। राज्यसभा में भी मानसून सत्र के 4th दिन गतिरोध कायम रहा। उच्च सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि जून और जुलाई के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान चली गई। सदस्यों ने इन प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ क्षण मौन रखा। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार आज ही नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को बहस के लिए कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज ही कहा है कि पेपर लीक मामले के दोषियों को शीघ्र दंड दिलाने के लिए त्वरित अदालतों की स्थापना की जाए। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन ने कहा कि इस विषय पर चर्चा शुरू होने से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, तभी चर्चा शुरू हो सकेगी। सत्ता पक्ष ने इस पर कड़ा विरोध जताया। दोनों पक्षों की नारेबाजी जारी रहने पर सभापति राधा

कृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। तीन बार के स्थगन के बाद शाम करीब 3 बजे सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। शुक्रवार को भी संसद में गतिरोध बना रहा। लोकसभा की बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को करगिल दिवस के बारे में सूचित करते हुए कहा कि करगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से इस संबंध में सदन को आज ही अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। इसके बाद उन्होंने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बाद भी हंगामा नहीं थमा, तब कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जैसे ही दोबारा शुरू हुई, विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच ही पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो विपक्षी दलों को चर्चा के लिए तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहा और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण गतिरोध बना रहा। पूर्वाह्न 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने 26 जुलाई को मनाए जाने वाले करगिल विजय दिवस का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर यह सदन उन वीर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आसन की अनुमति से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। उपसभापति ने विधेयक पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

0: नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। आज के स्पोर्ट्स कैन के इस एडिशन में मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सिद्धार्थ सिंह, और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट प्रशांत कुमार। आप सभी को हमारा नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: अगले 15 मिनट में हम आपको रूबरू कराएंगे दिन भर की तमाम खेल खबरों से और जानेंगे क्या कुछ चल रहा है खेलों की दुनिया में खास। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन के साथ खेल की हर बात। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की खेल सुर्खियों पर।
1: भारत ने दूसरे 2020 मुकाबले में जिम्बाब्वे को हराकर श्रृंखला में अजय बढ़त बना लिए सिद्धार्थ।
0: राष्ट्रमंडल खेलों में झंडू कुमार ने हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को पहला पद दिलाया।
1: उधर मुक्केबाज जादूमणि ने राष्ट्रमंडल खेलों में किया दमदार आगाज, राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई।
0: रूपा रानी टिर्की और पिंकी सिंह की भारतीय जोड़ी ने लॉन बॉल्स प्रतियोगिता में टोंगा को हराया। पुरुष सिंगल्स में पुतुल सोनोवाल का मुकाबला मलेशियाई खिलाड़ी से जारी।
1: उधर विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में अनाहत सिंह ने किया ऐतिहासिक प्रदर्शन, बनाई फाइनल में जगह।
0: और यूथ हॉकी एशियन चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम ने ओमान और पाकिस्तान को शिकस्त दी।
1: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से, जहां भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जिम्बाब्वे को हराकर श्रृंखला में बढ़त बना ली है। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हराकर श्रृंखला 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। ईशान किशन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, उसके दम पर उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सिद्धार्थ,
0: बिल्कुल, और अगर हम इस पर नजर डालें तो टॉस हारने के बाद भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 219 रन बनाए। भारत से शानदार प्रदर्शन करते हुए विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने 2 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 44 गेंद पर 81 रन की धमाकेदार पारी खेली,
1: और उनका बखूबी साथ दिया है उपकप्तान तिलक वर्मा ने, जिसने 200 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 29 गेंद पर नाबाद 60 रन बनाए। इस पारी के दौरान तिलक ने 3 छक्के और 5 चौके भी लगाए। सिद्धार्थ,
0: कप्तान शिया सैयद ने 25, युवा वैभव सूर्यवंशी ने 20 रन की पारी खेली। इसके बाद अभिषेक शर्मा ने 8, रिंकी सिंह ने 12 और शिवम दुबे ने नाबाद 6 रन बनाए।
1: अगर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की बात की जाए तो ब्लेसिंग मुजरबानी, रिचर्ड अंगारावा, ब्रेड इवेंस, न्यूमैन न्यानहोरी और ब्रायन बेनेट ने एक एक विकेट अपने नाम कर लिए,
0: और 220 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की शुरुआत निराशाजनक रही और उसने 50 रन के अंदर ही 4 विकेट गंवा दिए। ब्रायन बेनेट ने 19 गेंदों में 32 रन, वहीं रायन बर्ल ने 20 रन की पारी खेली। फिलहाल 3 मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है। और अगर हम एक नजर भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन पर अगर हम डालें तो क्या कुछ है इनका प्रदर्शन।
1: सिद्धार्थ, अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी तो करते ही हैं, वो
0: जी प्रशांत
1: शीर्ष बल्लेबाज हैं T20 में, लेकिन आज उन्होंने गेंद से अच्छा प्रदर्शन किया। 3 ओवर में 17 रन देकर उन्होंने 3 विकेट झटके हैं। साथ ही साथ यश ठाकुर, जिनको आज इस मौका मिला है इस मुकाबले, उन्होंने 2 विकेट लिया है। प्रिंस यादव ने भी लगातार IPL से अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे थे सिद्धार्थ, और आज के मुकाबले में भी उन्होंने 2 विकेट अपने नाम किए। वहीं रवि बिश्नोई की बात कर ले, शिवम दुबे की बात कर ले, तिलक वर्मा की बात कर ले, सबने एक एक विकेट अपने झोली में डाले।
0: बिल्कुल, और यहां पर खास बात करनी होगी प्रशांत अभिषेक शर्मा की, जिन्होंने इकोनॉमी जो है 6 की उनकी रही और 17 रन देकर उन्होंने 2 ओवर और 5 गेंदों में 3 विकेट हासिल किए। तो अभिषेक शर्मा की जो शानदार गेंदबाजी थी उसने भी भारत की जीत में एक अहम भूमिका निभाई है,
1: और इसी के दम पे सिद्धार्थ जिम्बाब्वे की टीम जो है वो 13 गेंद शेष रहते ही 129 रन पर सिमट गई, और जिसके कारण भारत को 3 मैचों के श्रृंखला में 2-0 की बढ़त मिल गई है।
0: बिल्कुल, और भारत का जो शानदार प्रदर्शन था, जिस तरह से पहले मैच में भारत ने प्रदर्शन किया फिर दूसरे मैच में, तो ये जो लगातार कंसेक्यूटिव जीत है इसने खिलाड़ियों के मनोबल को काफी बढ़ा दिया है, और एक बार फिर भारतीय टीम जो है वो अपने पूरे दमखम के साथ तैयार है और अगले मैच के लिए। तो ऐसा अब सबकी नजर ये है, एक्सपेक्टेशन प्रशांत ये है कि भारतीय टीम कहीं क्लीन स्वीप ना कर दे जिम्बाब्वे को, तो उस पर पूरी नजर है खिलाड़ियों की।
1: बिल्कुल, जिस प्रकार से श्रेयस अय्यर को कप्तानी मिली है, पहले आयरलैंड से वो हार गए, फिर उसके बाद इंग्लैंड से हार मिली है, लेकिन उसके बाद इस सीरीज में भारत बैक ऑन ट्रैक दिखती नजर आ रही है। और आपने जैसा बताया कि उम्मीद की जाए कि भारत अगला मुकाबला जीत कर क्लीन स्वीप करेगी और एक बार फिर अपना परचम लहराएगी।
0: बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो भारतीय फैंस हैं उनका भी, उनकी भी नजर तीसरे मुकाबले पर रहेगी और खिलाड़ियों के भी जो हौसले हैं वो पूरी तरह से बुलंद हैं। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि तीसरे मैच में किस तरह से जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो अपना दमखम दिखाते हैं, वो अपना वर्चस्व कायम रखते हैं। और अगर हम देखें प्रशांत, तो जीत जो भारत की हो रही है वो बड़े अंतर से हो रही है, मतलब इस तरह से जो जीत हासिल हो रही है, क्योंकि पिछला जो प्रदर्शन था पीछे के, जैसा कि अभी आपने बताया कि भारत का पिछले दिनों जो प्रदर्शन रहा है वो उतना अच्छा नहीं था, तो कहीं ना कहीं भारत ने एक तरीके से कमबैक किया है और बहुत ही अटैकिंग जो खेल होता है उसको दिखाने की कोशिश करी है।
1: बिल्कुल, और जैसे हम क्रिकेट में बात भी करते हैं, तीनों प्रारूप जो है हमारे, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, तीनों में अच्छा प्रदर्शन किया गेंदबाजी से लगातार। अभिषेक शर्मा ने आज 3 विकेट लिया, ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी जैसे बल्लेबाज, और क्षेत्र रक्षण में भी अच्छी हो रही है वापसी। तो लगातार जो इंग्लैंड में जो कमी रह गई थी, आयरलैंड में जो कमी रह गई थी, इस सीरीज में भारत दमखम के साथ वापसी की है और उम्मीद करेंगे कि तीसरा मुकाबला

0: में जीतेगी।
1: बिल्कुल, तो इसी उम्मीद के साथ कि हमारे खिलाड़ी इस श्रृंखला में क्लीन स्वीप करेंगे, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कॉमनवेल्थ गेम्स में झंडू कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को पहला पदक दिलाया। पैरा पावर लिफ्टर ने पुरुषों के हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग इवेंट में कांस्य पदक देश के नाम किया। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झंडू को देश के लिए पहला पदक जीतने पर बधाई दी है।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि झंडू कुमार की ये उपलब्धि उनकी जबरदस्त ताकत, अटूट संकल्प और वर्षों की अनुशासित मेहनत का बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने हर चुनौती का सामना करते हुए और इंटरनेशनल मंच पर शानदार प्रदर्शन करके उन्होंने पूरे देश का मान बढ़ाया और अनगिनत भारतीयों को प्रेरित किया है।
1: और इस बीच खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी झंडू को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग में 190 किलोग्राम का जबरदस्त लिफ्ट करके भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पहला मेडल जीता। पूरे देश को उन पर गर्व है। झंडू कुमार ने अपनी इस जीत पर क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं।
3: बहुत अच्छा लग रहा है, पहला मेडल है हमारा। हमारे पीछे कोच हैं राजेंद्र सिंह और हमारा जेपी सर हैं, वो भी बहुत सहयोग किए हैं। आज इन्हीं सब बदौलत हमें आज मेडल प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम पे आज इतना प्रैक्टिस करवाए, प्यार दिए और भी आगे हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे।
1: और प्रशांत, झंडू की इस जीत पर हम और तुम और इसके साथ ही पूरा देश उनसे क्या कुछ कह रहा है।

0: और प्रशांत क्यों ना कहें कि क्या खेला रे शाबाश, क्योंकि अगर हम बैकग्राउंड पर झंडू का के नजर डालें तो वो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि ब्रॉन्ज मेडल जीतने तक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। उनकी घर की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफी खराब थी। एक समय पर उन्होंने ई रिक्शा चलाकर और सब्जी बेचकर घर का गुजारा किया था। इन संघर्षों के बावजूद झंडू ने पदक जीतकर देश के भावी खिलाड़ियों के लिए मिसाल कायम किया। क्या कुछ कहोगे प्रशांत?
1: बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया और इस प्रतियोगिता में लगातार अच्छा प्रदर्शन खिलाड़ियों से होता आ रहा है, लेकिन पहला पदक तो पहला ही पदक होता है। इस वर्ष भारत को पहला पदक दिलाना एक वर्चस्व स्थापित करने की तरह है।
0: बिल्कुल, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्लासगो में भारतीय मुक्केबाज जादूमणि सिंह मंडेनगमाम ने राष्ट्रमंडल खेलों में दमदार प्रदर्शन करते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। राउंड ऑफ 32 मुकाबले में जादूमणि ने पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में स्कॉटलैंड के एरन कलन को 5-0 से हराया। तो प्रशांत क्यों ना सुन लेते हैं की रिपोर्ट।
1: बिल्कुल,
2: ग्लासगो के SEC हॉल में खेले गए इस मुकाबले में जादूमणि शुरू से ही आखिर तक विपक्षी मुक्केबाज पर पूरी तरह हावी रहे। उन्होंने तेज पंच, सटीक निशाने और मजबूत डिफेंस के दम पर अपने प्रतिद्वंदी को पूरे मैच में वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया। सभी 5 जजों ने हर राउंड में जादूमणि को विजेता माना। घरेलू दर्शकों के समर्थन के बावजूद स्कॉटलैंड के एरन कलन भारतीय खिलाड़ी की गति और रणनीति के आगे बेबस नजर आए। भारतीय मुक्केबाज के एक के बाद एक पंचों का एरन कलन के पास कोई जवाब नहीं था। इसी जीत के साथ जादूमणि राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए हैं। अब 26 जुलाई को उनका मुकाबला पाकिस्तान के रहमान से होगा। जादूमणि अगर पाकिस्तानी मुक्केबाज के खिलाफ जीत दर्ज करने में सफल रहते हैं तो वह क्वार्टर फाइनल का टिकट हासिल कर लेंगे। जादूमणि को भारत की ओर से पदक का बड़ा उम्मीदवार माना जा रहा है। जादूमणि की इस जीत से भारतीय बॉक्सिंग टीम ने प्रतियोगिता में मजबूत शुरुआत की है।
0: जी हाँ, जादूमणि ने अपना जो जादू दिखाया है प्रशांत, वो तो इस समय सबके सिर चढ़कर बोल रहा है, और क्यों ना बोले, इतना शानदार प्रदर्शन जो किया है।
1: और सिद्धार्थ, उधर भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने आज स्कॉटिश इवेंट कैंपस में हुए कड़े मुकाबले में कनाडा के क्योमा अल हमदीह को हराकर पुरुषों के 60 किलोग्राम इवेंट की प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। 26 साल के पूर्व कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स चैंपियन ने 4-1 से जीत हासिल की।
0: जी हाँ, सचिन सिवाच और क्योमा अल अहमदी के बीच हुए मुकाबले की शुरुआत बेहद रोचक रही। दोनों बाएं हाथ के मुक्केबाजों ने रिंग के बीच

0: में एक दूसरे पर जमकर मुक्के बरसाए। सचिन की 23 टाइमिंग और साफ कनेक्शन शुरुआती राउंड में अहम साबित हुआ। उन्हें थोड़ी बढ़त मिली क्योंकि 5 में से 3 जजों ने इसे 10-9 से उनके पक्ष में स्कोर किया। लेकिन फाइनल जिस तरह से आज हुआ और जिस तरह से उन्होंने 60 किलोग्राम इवेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, उनको हम स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम का सलाम।
1: और बात लॉन बॉल्स की भी कर लेते हैं सिद्धार्थ। रूपारानी तिर्की और पिंकी सिंह की भारतीय जोड़ी ने आज राष्ट्रमंडल खेलों की लॉन बॉल्स प्रतियोगिता में अपना दबदबा बनाते हुए महिला पेयर्स के सेक्शन बी में टोंगा को टाई ब्रेकर में 1-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाने की अपनी उम्मीदों को कायम रखा है। रूपा और पिंकी ने टोंगा के पेरिस बेकर और मिलिका नाथन के खिलाफ पहला सेट 5-2 से जीता था सिद्धार्थ।
0: क्या बात है, ये शानदार जो जोड़ी का प्रदर्शन है वो बहुत अच्छा है क्योंकि अगर हम देखें तो इनका जो पूरा सफर रहा है काफी अच्छा रहा है। रूपर पिंकी दोनों ने 2022 के बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला फोर टीम का वो हिस्सा थी, तो उनसे हम सभी को बेहद उम्मीद है। और दूसरी ओर पुरुष सिंगल्स के सेक्शन डी के मैच में भारत के शीर्ष लॉन बॉल्स खिलाड़ी पुतुल सोनोवाल का सामना मलेशिया के इज्जत शमीर से जारी है। फिलहाल वो 4-8 और 4-9 के स्कोर से पीछे चल रहे हैं।
1: बात अब स्क्वाश पर भी कर लेते हैं। अनाज सिंह ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में आज रात उनका सामना मिस्र की रुकिया सलीम से होगा।
0: जी हाँ, और हम सब की नजर आज रात उस मैच पर लगी होगी। और आपको बता दें कि अनाहत सिंह जोशाना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं और आज पूरे देश को फाइनल में उनकी जीत का इंतजार रहने वाला है। और इन्होंने जिस तरीके से हम ये देखें कि सेमीफाइनल मुकाबलों में बारब को 11-3, 8-11, 11-4 और 11-6 से जिस तरीके से हराया वो अपने आप में काबिले तारीफ है।
1: बात हॉकी पर भी कर लेते हैं सिद्धार्थ। मस्कट में FIH यूथ हॉकी एशियन चैंपियनशिप में भारतीय सब जूनियर्स पुरुष टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। टीम ने मेजबान ओमान को 10-1 से हराने के बाद पाकिस्तान को 7-3 से शिकस्त दी। हालांकि महिला टीम को इसमें प्रतियोगिता में हार का सामना करना पड़ा।
0: और चलते चलते नजर डाल लेते हैं निशानेबाजी पर। हांगझोउ में भारत की सोनम उत्तर मस्कर ओलंपियन इला वेनिल वलारविन ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। और समय हमें अब अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। और प्रशांत, जिस तरह से आज का दिन स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा रहा, जिस तरफ एक तरफ क्रिकेट में हमने जो सफलता हासिल करी है वो अपने आप में बहुत उम्दा रही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सिद्धार्थ, और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी भारतीय खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन जारी है।
0: तो अब इसी के साथ हम दोनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया।

0: अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। श्री रिजिजू ने देश के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और लाखों युवा विद्यार्थियों को हर निर्णय के केंद्र में रखने के लिए श्री प्रधान के ईमानदार प्रयासों की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहलों के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों तथा विनियमों के अनुरूप अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात कही।
3: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
0: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार से देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। नई दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों की जीत बताया। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता और उसके सहयोगी इंद्रजीत विनय कुमार सिंह को भिवंडी की एक अदालत ने 30 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दोनों को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि पेपर लीक माफिया इन्हीं पार्टियों की देन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून ला रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में

0: आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशो डान के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक चर्चा की। बुखारेस्ट में उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया।
1: भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय IT इंजीनियरिंग स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
0: विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग SC के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के बीच कानूनी सहयोग मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सरकार नियमित संवाद और रचनात्मक परामर्श के माध्यम से कर्मचारी संगठनों के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय डाक कर्मचारी संघ के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। डॉक्टर सिंह ने बताया कि लगभग 3 दशकों से लंबित कई पुरानी सेवा संबंधी शिकायतों का समाधान पारदर्शी और कर्मचारी केंद्रित संचालन के माध्यम से किया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्री JP नड्डा ने आज नई दिल्ली में लघु उद्योग भारती फार्मा कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किया। श्री नड्डा ने कहा कि भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ है, जो नवाचार को बढ़ावा देता है, रोजगार सृजित करता है और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सारनाथ भारत की शाश्वत आध्यात्मिक और दार्शनिक विरासत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया भर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सारनाथ मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। ओडिशा के पवित्र नगर पुरी में ग्रैंड रोड पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुरी में ग्रैंड रोड पर अपने शानदार रथों पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा आज पवित्र सोना वेश, स्वर्ण वेश में बेहद भव्य लग रहे हैं। उन्होंने बेहद खूबसूरती से बने मुकुट, हार, बाजूबंद, झुमके और अन्य पारंपरिक आभूषण पहने हैं। सालाना रथ यात्रा की सबसे भव्य रस्मों में से एक इस पवित्र स्वर्ण वेश के दर्शन के लिए आम लोगों को आधी रात तक का समय मिलने का उम्मीद है, जिससे लाखों भक्त इन तीनों पवित्र देव रूपियों की दिव्य भव्यता के दर्शन कर सकेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: लद्दाख में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह का पहला दिन आज शाम द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित शौर्य संध्या समारोह के साथ संपन्न हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास पहुंचे और समारोह में शामिल हुए। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री ने करगिल शहीदों के परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित कर ऑपरेशन विजय के वीर योद्धाओं के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। आकाशवाणी कल करगिल विजय दिवस के अवसर पर पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत करगिल युद्ध के वयोवृद्ध और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर DP सिंह से बातचीत प्रसारित करेगा। कार्यक्रम का प्रसारण कल दोपहर 12:30 बजे 100.1

विदेशी सोना जब्त किया है और 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सप्ताह देश भर में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए गए। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कल अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में भी अगले दो दिन के दौरान तेज बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कल तेज वर्षा होने की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में सोमवार तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में बाढ़ से हुई जानमाल की हानि और तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों की सुरक्षा और बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों में लगे सभी कर्मियों के कुशल मंगल की कामना की। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरा देश असम के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। और अब बात खेलों की। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। ईशान किशन ने शानदार 81 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है। अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज रात मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: दोस्तों विज्ञान भारती के आज के अंक में मैं संकल्प मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ। विज्ञान जगत की बात करें तो ये महीना भारत के लिए उपलब्धियों से भरा रहा है। इन्हीं उपलब्धियों को कार्यक्रम में पिरोते हुए आज की पहली भेंट वार्ता में हम प्रोफेसर विनीत विश्नोई से जानेंगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में। आज ही के कार्यक्रम में रेयर अर्थ मटेरियल के रहस्य को सुलझाएंगे डॉक्टर नवनीत कुमार कर्ण। दोस्तों 25 जुलाई को विश्व IVF दिवस मनाए जाने के अवसर पर IVF विशेषज्ञ डॉक्टर आकृति गुप्ता बताएंगी क्या होती है IVF तकनीक। इसी कार्यक्रम में आगे बाघों के संरक्षण के महत्व और नवीन तकनीकों की जानकारी देंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक डॉक्टर साकेत बड़ोला। कार्यक्रम के आखिरी छोर पर जानेंगे उत्तराखंड की नई विज्ञान तकनीक और नवाचार नीति के बारे में यूकॉस्ट के निदेशक डॉक्टर दुर्गेश पंत से। और फिर अंत में जुलाई माह से जुड़े प्रमुख वैज्ञानिक और वैज्ञानिक घटनाओं की जानकारी देंगी रितिका बिंजोला। कार्यक्रम में ये सब कुछ होगा, लेकिन आइए पहले सुनते हैं रितिका बिंजोला से ताजा विज्ञान समाचार।
1: जुलाई 2026 को भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। हैदराबाद स्थित निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने आधुनिक विक्रम 1 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया। मिशन आगमन के तहत श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 12 बजे उड़ान भरने वाले इस रॉकेट ने पेलोड्रस को सफलतापूर्वक 450 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर दिया है। इस ऐतिहासिक लॉन्च के साथ भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसके पास ऑर्बिटल क्षमता वाले रॉकेट लॉन्च करने वाली अपनी खुद की निजी कंपनी मौजूद है। 17 जुलाई 2026 को भारत ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन नमो ग्रीन रेल की शुरुआत की। हरियाणा के जींद से सोनीपत रूट पर रवाना की गई ये स्वदेशी ट्रेन पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है क्योंकि ये पारंपरिक डीजल के बजाय हाइड्रोजन से चलती है और इसके इंजन से धुएं की जगह केवल जल वाष्प

0: यानी वाटर वेपर निकलता है। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज मिशन के तहत शुरू की गई इस तकनीक से भारत अब जर्मनी और चीन जैसे चुनिंदा देशों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है, जो देश के नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल करने में मददगार साबित होगा। अब चलते हैं चीन की ओर। 17 जुलाई से शंघाई में आयोजित वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2026 में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया। यहां 400 से अधिक ह्यूमनॉइड यानी इंसानों जैसे रोबोट एक साथ प्रदर्शित किए गए। कोई लोगों का स्वागत कर रहा था, कोई सामान उठा रहा था तो कोई बातचीत कर रहा था। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में ऐसे रोबोट अस्पतालों, कारखानों, घरों और बुजुर्गों की देखभाल जैसे कई क्षेत्रों में हमारी मदद कर सकते हैं। 14 जुलाई 2026 को भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर अनिल मेनन कजाकिस्तान से बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से रूसी सोयुज M29 अंतरिक्ष यान के जरिए सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए रवाना हुए। पेशे से आपातकालीन चिकित्सक डॉक्टर मेनन का ये पहला अंतरिक्ष मिशन है, जिसके तहत वे करीब 8 महीनों तक ISS पर रहकर अंतरिक्ष में मानव स्वास्थ्य सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में चिकित्सा तकनीकों और वैज्ञानिक प्रयोगों पर शोध करेंगे। उनकी ये ऐतिहासिक उपलब्धि दुनिया भर के उन करोड़ों युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है जो विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। 15 जुलाई 2026 को भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक बड़ी तकनीकी क्रांति हुई, जहां घरेलू स्टार्टअप वेमेग लैब्स ने देश की पहली वर्चुअल मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर का सफल अनावरण किया। इस अत्याधुनिक मोटर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बिना किसी महंगे रेयर अर्थ मैग्नेट दुर्लभ पृथ्वी चुंबकीय तत्वों के काम करती है, जिससे विदेशों पर निर्भरता खत्म होती है। इसके बजाय ये स्वदेशी तकनीकी जैसे तांबे की कुंडलियां, कॉपर कॉइल जिसे हम कहते हैं, और एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है जो चुंबकीय प्रभाव को पैदा करता है, जिससे ईवी उत्पादन लागत में भारी कमी आएगी। चलिए अब सीधे रुख करते हैं गहरे और अनसुलझे ब्रह्मांड की ओर। 21 जुलाई 2026 को खगोलविदों ने एक ऐसी खोज की है जिससे पता चला है कि अंतरिक्ष में एक विशाल जुपिटर यानी बृहस्पति के द्रव्यमान जितने बड़े ऑब्जेक्ट की खोज हुई है, जिसे एक एक्सोसैटेलाइट या अनोखा चांद कहा जा रहा है। ये खोज ब्रह्मांड में ग्रहों, चंद्रमाओं और हमारी पुरानी परिभाषाओं को चुनौती दे रही है। 21 जुलाई 2026 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक अभूतपूर्व खोज करते हुए एक मामूली सिलिकॉन चिप को DNA राइटिंग मशीन में बदल दिया। ये आधुनिक चिप पानी और बिजली की मदद से एक साथ कई जटिल DNA सीक्वेंस लिख सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तकनीक से भविष्य में डेटा स्टोरेज की दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी, जहां कंप्यूटर का डेटा किसी पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क के बजाय सुरक्षित जैविक DNA में स्टोर किया जा सकेगा। वहीं 22 जुलाई 2026 को सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के डॉक्टर रॉबर्ट नोबल और उनकी टीम ने कैंसर के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव लाते हुए इवोल्यूशनरी थ्योरी और मैथमेटिकल मॉडलिंग पर आधारित एक नई रणनीति विकसित की है, जिसमें एडिटिव थेरेपी का उपयोग कर ट्यूमर को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। ये नई पद्धति पारंपरिक उपचार के विपरीत कैंसर कोशिकाओं में दवा प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस विकसित होने से पहले ही दवाओं को तेजी से बदलकर ट्यूमर को लाचार बना देती है, जिससे प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती ट्रायल में ही बेहद सकारात्मक परिणाम इनके सामने आए हैं। डॉक्टर नोबल की टीम ने यह साबित किया है कि अगर ट्यूमर को संभालने का मौका दिए बिना सही समय पर यानी थेरेपी के खिलाफ रेजिस्टेंस विकसित होने से पहले ही दवाओं को तेजी से बदल दिया जाए तो कैंसर कोशिकाएं पूरी तरह लाचार हो जाती हैं और हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं।
1: 18 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस उद्घोष के साथ भारत ने आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाई है।
2: आज ही हरियाणा के जिंद से सोनीपत के लिए देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी शुरू हुई है। क्लीन फ्यूल पर चलने वाली ये ट्रेन एक बहुत बड़ी शुरुआत है।
1: भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ये ट्रेन न सिर्फ ईंधन आयात की मुक्ति के सपने की ओर एक कदम है, बल्कि विज्ञान जगत में भारत की ओर से एक नए कीर्तिमान का भी प्रतीक है। आइए जानते हैं DAVPG कॉलेज देहरादून में रसायन विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विनीत विश्नोई से आसान भाषा में, आखिर ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल है क्या।
3: हाइड्रोजन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हाइड्रोजन फ्यूल सेल में, वो एक बेसिक केमिकल रिएक्शन पर आधारित है, जिसमें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बनता है। तो ये रिएक्शन सामान्य रासायनिक क्रिया है जिसका उपयोग हम करते हैं विद्युत ऊर्जा को बनाने में। अब यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर में दो इलेक्ट्रोड्स हैं, या कह लीजिए आप दो सिरे हैं। एक सिरे पे हम हाइड्रोजन देते हैं और दूसरे सिरे पे हम वातावरण से ऑक्सीजन लाकर देते हैं। दोनों का जब रिएक्शन होगा तो पानी बनेगा। कार्य करने का तरीका इसमें ऐसा है कि हाइड्रोजन को पहले जो है जिस इलेक्ट्रोड पर वो पहुंचती है वहां पे एक कैटलिस्ट दिया हुआ है प्लेटिनम, और जब प्लेटिनम के संपर्क में वो हाइड्रोजन गैस आती है तो उसका विखंडन होता है, वो मॉलिक्यूलर रूप से आयनिक रूप में प्रवेश करती है और इस प्रक्रिया में उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद प्रोटॉन बन जाती है वो गैस, और प्रोटॉन जो है वो दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर चलना शुरू कर देती है। यहां बीच में एक झिल्ली होती है जो विशेष रूप से इस क्रिया के लिए बनाई गई है जिससे पार होकर प्रोटॉन जा सकते हैं, मतलब इट इज सेलेक्टिवली फॉर द प्रोटॉन ट्रांसफर। तो प्रोटॉन इधर से निकलकर दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाते हैं और वहां पर जाकर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन छोड़कर प्रोटॉन निकल के गया था वो इलेक्ट्रॉन बाहरी तार से, जो दो इलेक्ट्रोड को जोड़ने के लिए हमने बाहर तार लगा रखा है जो हम सर्किट कहते हैं, उसमें हम कोई भी उपकरण लगा सकते हैं, उस तार में वो इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं और ये विद्युत का स्वरूप है और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो एक प्रकार से कह लीजिए एक छोटा सा एक इलेक्ट्रिक जनरेटर है जिसमें हम हाइड्रोजन का उपयोग करके बिजली पैदा कर रहे हैं।
1: इस ट्रेन को ग्रीन हाइड्रोजन से चलाया जा रहा है। कैसे बनता है ये ग्रीन हाइड्रोजन, इस पर प्रोफेसर विनीत कहते हैं,
3: जब हम किसी भी चीज को बनाते हैं तो उसमें हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ऊर्जा को पाने के लिए हम कोयला भी जला सकते हैं, ऊर्जा को पाने के लिए हम जैसा कि कच्चा तेल जलाते थे वो भी जला सकते हैं, किंतु अगर हम प्राकृतिक स्रोतों का इस्तेमाल करने लगे, जो ऊर्जा हमको सीधे मिल रही है उसका इस्तेमाल करने लगे और उससे डायनेमो चलाने लगे, बिजली उत्पन्न करने लगे, दैट इज कॉल्ड ग्रीन एनर्जी। यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि सोलर एनर्जी को टैप कर रहे हैं, विंड एनर्जी को टैप कर रहे हैं और उस एनर्जी का उपयोग करके, जैसे कि जिंद में जब ये ट्रेन चली सोनीपत के लिए तो वहां पर हमारे हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स जो हैं ट्रेन में लगे हैं, पर रिचार्जिंग स्टेशंस भी तो चाहिए। उसके लिए जिंद में ही साइड में ही रेलवे स्टेशन के बगल में ही वहां पे स्टोरेज कंटेनर डेवलप किया गया है, टैंक्स डेवलप किए गए हैं हाइड्रोजन के लिए, 3000 kg उसकी क्षमता है और वहां पे हाइड्रोजन को हाई प्रेशर में टैंक्स में भरकर रखा गया है और उस हाइड्रोजन को बनाने के लिए हमने क्या किया है, पानी का उपयोग किया है और पानी को इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसमें से हाइड्रोजन अलग करने के लिए हमने जिस बिजली का इस्तेमाल किया है वो सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा के माध्यम से हमने पानी को तोड़ा और पानी में से हाइड्रोजन को निकाला और उसको हाइड्रोजन टैंक्स में एकत्रित कर लिया, वो हमारा हो गया सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। इसमें कहीं पर भी जो है हमने उत्सर्जन नहीं किया और प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत इस्तेमाल किया है जो कि सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा है, और फिर इस हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स ट्रेन में उनको रिफ्यूल करने में इस्तेमाल किया और जब इसका उपयोग आगे चला तो इसमें एमिशंस भी जो है 100% कार्बन फ्री है, कहीं पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं और वापस वो जो पानी विखंडित करके आपने हाइड्रोजन तैयार किया और यहां पर उपयोग कर लिया इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, विद्युत बनाने में, तो बाद में वही हाइड्रोजन वापस प्रोटॉन के रूप में जब आ गए थे वो ऑक्सीजन से मिलके वापस वो पानी बना गए, यानी पानी से आप शुरू हुए और पानी ही उत्सर्जित कर दिया और जो ऊर्जा का उपयोग किया आपने उस हाइड्रोजन को उत्पन्न करने में वो है सौर ऊर्जा। एमिशंस कहीं इसके अलावा और कुछ हुए नहीं, ना कार्बन डाइऑक्साइड निकली, ना ग्लोबल वार्मिंग का खतरा, हम अपने वातावरण को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस स्वरूप में अगर देखा जाए तो इट इज 100% एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल और ये ग्रीन ईंधन के रूप में आप समझ सकते हैं।
1: दोस्तों, भारत में हाल फिलहाल में ही वर्चुअल मैग्नेट मोटर्स का आविष्कार हुआ है और इस आविष्कार ने एक बार फिर से रेयर अर्थ मटेरियल्स को चर्चा में ला दिया है। IIT कानपुर में इसी क्षेत्र में पोस्ट डॉक कर रहे डॉक्टर नवनीत कुमार कर्ण समझाते हैं कि रेयर अर्थ मटेरियल्स आखिर है क्या और ये इतने खास क्यों हैं।
4: रेयर अर्थ मतलब दुर्लभ धातु है जो कि हम धरती पे बहुत कम पाए जाते हैं, कम इस सेंस में है कि ये हैं धरती में बहुत सारे बट इनको एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। 15-20 धातु ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं और ये स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि इनके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। ये मैग्नेटिक होते हैं जनरली और इनका परमानेंट मैग्नेट के तौर पे बहुत इस्तेमाल होता है। तो आजकल जितने भी ड्रोन्स देखते हैं या रोबोट्स देखते हैं उसमें मोटर्स का बहुत फंडामेंटल यूज है, जहां भी मूवमेंट है तो मोटर से कंट्रोल होता है। तो मोटर जो चलता है वो बस मैग्नेट के बेसिस पे चलता है, तो आपका जितना अच्छा मैग्नेट होगा उतना बढ़िया एनर्जी कन्वर्जन होगा। तो उच्च क्वालिटी के जो मैग्नेट होते हैं वो इन रेयर अर्थ मटेरियल से बनता है।
1: आजकल मोटरों में इस्तेमाल होने वाली चुंबक यानी मैग्नेट्स का रेयर अर्थ खनिजों से क्या संबंध है, इस बारे में डॉक्टर नवनीत कहते हैं।
4: परमानेंट मैग्नेट जनरली फेरोमैग्नेटिक होते हैं। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में उस मैग्नेटिक मटेरियल को डालेंगे जो परमानेंट मैग्नेट हैं, तो उनका एक हिस्टेरेसिस लूप बनता है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को पॉजिटिव, जीरो से पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से वापस जीरो लाएंगे, तो एक हिस्टेरेसिस लूप बनता है उनके मैग्नेटाइजेशन का कि उनमें कितना मैग्नेटिक इंड्यूस हो रहा है। तो उसके अंदर एक एरिया बनता है, तो वो एरिया जो है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो वो एरिया जितना बड़ा होगा, जितना ब्रॉड होगा, तो वो एनर्जी उतना एफिशिएंटली कन्वर्ट करने का, यूज करने का मैग्नेट बनता है। परमानेंट मैग्नेट्स अकेले एलिमेंट रेयर अर्थ एलिमेंट से नहीं बनते हैं, उनके रेयर अर्थ एलिमेंट्स और कुछ एक जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं उन्हें, उनके मिश्रण के साथ बनाए जाते हैं। जैसे एनडी एफईबी बोरोन करके एक परमानेंट मैग्नेट है, बहुत फेमस कॉमन मैग्नेट है, तो एनडी जो है इसमें वो रेयर अर्थ एलिमेंट है। तो इस तरह से जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो एनडी की वजह से काफी ज्यादा होती है। परमानेंट मैग्नेट आप आयरन से भी बना सकते हैं लेकिन उसकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा अधिक नहीं होगी, बजाय कि ये जब हम एनडी और एफई को मिला के बना। तो इस तरह से हमारे पास जो रेयर अर्थ वाले हैं वो हम एनर्जी एफिशिएंटली काम करते हैं।

0: सकते हैं। इनका एक और एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, जो हमारे हवाई जहाज के वो होते हैं ना मटेरियल जिनसे बनाया जाता है, तो उनके एलॉय में भी ये रेयर अर्थ वाले यूज होते हैं। स्कैंडियम और ये ट्रियम करके दो है रेयर अर्थ, उनके यूजेस होते हैं। तो वो एल्यूमिनियम के साथ एक ऐसा एलॉय बनाते हैं जो काफी मजबूत होते हैं।
1: डॉक्टर नवनीत बताते हैं कि आखिर रेयर अर्थ मटेरियल्स इतने रेयर क्यों होते हैं।
0: रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं वो जनरली मतलब रिएक्टिव होते हैं काफी, कुछ एक हैं बहुत कम रिएक्टिव होते हैं और मोस्टली जो है वो काफी रिएक्टिव होते हैं। तो वो किसी न किसी फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब किसी न किसी कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो जैसे आयरन आपको मिल जाता है और उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सिंपली, जितना आसानी से उतनी आसानी से आप रेयर अर्थ को निकाल सकते हैं, क्योंकि वो उन कंपाउंड में फॉर्म होते हैं तो उनको एक्सट्रैक्ट करना केमिकली थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो वो प्रोसेस अपने आप में एक बड़ा प्रोसेस है उनको एक्सट्रैक्ट करना, तो इस तरह से वो थोड़े डिफिकल्ट है। और साथ में उनकी अबंडेंस है लेकिन वो बहुत स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे मतलब एक होता है ना कि आपके पास एक कोई खनिज है तो एक जगह काफी इकट्ठे हैं, तो वहां से आप कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वहां से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसमें आपको कॉस्ट भी कम पड़ेगा। अमाउंट है उनका ठीक ठाक लेकिन स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उनको फिर एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पास ज्यादा बड़ा अमाउंट है उसमें से आपको थोड़ा कम अमाउंट का पदार्थ निकालना है, तो इस वजह से भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो इंडिया में ऐसा है, एक मोनाजाइट करके खनिज है जो कि आप केरल का बीच है, वो कोंकण वाला बीच जो है उसके अराउंड पाया जाता है, बहुत सारे खनिज हैं उसमें। फिर इंडिया में देखें तो गुजरात के साइड भी है।
1: भारत में हालिया वर्चुअल मैग्नेट मोटर्स के आविष्कार से बदले हुए समीकरणों पर डॉक्टर नवनीत कहते हैं,
0: तो भविष्य में ये है कि इंडिया ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। अगर हम टेक्नोलॉजिकली देखें तो जो मोटर डिस्कवर हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, और ये एक तरीके से सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस सा दे रहा है, क्योंकि जो आज दुनिया में पूरे ग्लोबल लेवल पे रेयर अर्थ का जो सप्लाई है वो चाइना के पास है, तो वो इन चीजों को बहुत अच्छे से ग्लोबली कंट्रोल करता है। तो अगर हम इस संदर्भ में देखें इंडिया की डिस्कवरी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि आप एक सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट मोटर बना रहे हैं जहां पे इस मटेरियल की बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो आप इससे इंडिपेंडेंस ले रहे हैं।
1: दोस्तों, स्टेम सेल और IVF तकनीक का विकास मानव इतिहास के सबसे बड़े अध्यायों में से तो एक माना ही जाता है, लेकिन इस तकनीक ने धरती पर मानवों को सबसे शक्तिशाली जीव के रूप में भी स्थापित किया है। 25 जुलाई को विश्व IVF दिवस के अवसर पर आइए जानते हैं IVF विशेषज्ञ डॉक्टर आकृति गुप्ता से सरल नजरिए से IVF तकनीक क्या है।
2: तो बेसिकली जो IVF है उसका साइंटिफिक ये है कि कोई महिला बचपन से जूझ रही होती है तो उसमें रीजंस ढूंढे जाते हैं पहले, तो कि क्या रीजन है जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो रहा। तो ओव्यूलेशन फैक्टर होता है, ट्यूबल फैक्टर होता है, फिर उसके बाद ये दो मेजर फैक्टर्स होते हैं जो 60% का एक चंक बनाते हैं फीमेल्स में। उसी तरह मेल्स में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे कि क्वांटिटी, उनकी मोटिलिटी स्पर्म की, उसकी शक्ल अपीयरेंस। तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि देखा गया कि वो हेल्प नहीं हो पा रही है विद मेडिसिन या इंजेक्टेबल्स कि कंसीव नहीं कर पा रहे हैं कपल्स नेचुरली, या विद स्मॉल प्रोसीजर्स लाइक IUI इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन जो कि एक हेल्प होती है नेचुरल प्रोसेस में। उसके लिए फिर IVF का एक माध्यम डेवलप हुआ और इंडिया में वेस्ट बंगाल में फर्स्ट टाइम जो डेवलप हुआ था, एंड ही वॉज अ साइंटिस्ट बेसिकली। तो जब उन्होंने दुर्गा के लिए, मतलब जो फर्स्ट बॉर्न बेबी इंडिया की है वो दुर्गा है, तो उनको लैब में ही उन्होंने क्यूरेट किया था। उस टाइम पे इसे अनएथिकल कहा गया, तो उस टाइम का कॉन्सेप्ट उनका विजन कोई समझ नहीं पाया। फिर प्रॉपरली जाके डॉक्टर हिंदुजा के बॉम्बे में एक ICMR की स्टडी हुई, रिक्रूट हुए पेशेंट्स, एंड देन आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ऐसे करके प्लान हुआ। तो जो चीज उस टाइम पे अनएथिकल थी, अननेचुरल मानी जा रही थी, आज आप देखिए कितनी आम हो रही है और इसे एक बूंद माना जा रहा है उन लोगों के लिए जो कि बच्चा नहीं कर पा रहे नॉर्मल तरीके से। तो इसलिए ये एक टेक्निक थी जो लैब में डेवलप हुई थी हेल्प करने के लिए, जिसमें कि एग और स्पर्म यानी कि गेमीट, एक फीमेल और मेल गेमीट को हम फर्टिलाइज करते हैं, नीडल्स होती हैं, सुइयां होती हैं जो डॉक्टर्स मैन्युपुलेट करते हैं, उन्हें एम्ब्रियोलॉजिस्ट कहते हैं, वो उसको आपस में जोड़ते हैं। एक डिश है, डिश के अंदर हमने स्पर्म छोड़ दिए, तो उस प्रोसेस को IVF कहते हैं। लेकिन अगर हम नीडल द्वारा स्पर्म को इंजेक्ट कर रहे हैं एग के अंदर तो उसे हम ICSI कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ये एक उसका एडवांस्ड प्रोसेस है। तो ये दो मेन टेक्निक्स हैं जो यूज होती हैं कॉमनली। तो ये साइंटिफिक इसका है कि अल्टीमेटली जब वो फर्टिलाइज होता है फिर उसके बाद डे वन पे जाके 24 आवर्स के बाद हम फर्टिलाइजेशन चेक करते हैं, फिर उसके बाद दो दिन बाद डे टू एम्ब्रियो चेक करते हैं, फिर डे थ्री होता है, फिर डे फोर होता है, फिर डे फाइव होता है जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो ये साइंटिफिकली जैसे हम पढ़ते हैं कि बच्चा जब बनता है फेलोपियन ट्यूब में तब जीरो डे है और फिर स्लोली स्लोली पांचवे दिन तक एंडोमेट्रियम यानी जो आपकी बच्चेदानी होती है पहुंचता है और फिर चिपकता है जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो हम जो बच्चा डालते हैं यानी कि ट्रांसफर करते हैं पांचवे दिन पे करते हैं मोस्टली, तो वो ब्लास्टोसिस बच्चे के चिपकने का चांस बढ़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है उसे ही हम यूज कर रहे हैं।
1: दोस्तों, IVF तकनीक को आए अब सालों हो चुके हैं, ऐसे में इस तकनीक के सुधारों पर और भविष्य की संभावनाओं पर डॉक्टर आकृति कहती हैं,
2: तो बहुत सी चीजें डेवलप हो चुकी हैं। आप देखिए टाइम लैप्स इमेजिंग डेवलप हो गई है, जहां कि पहले हम एम्ब्रियोस को देखते थे पांच दिन में दो बार, अभी एक मशीन आ गई है जो मशीन के अंदर हम उन्हें डालते हैं डिश के अंदर ही,

0: सेम एनवायरनमेंट है बट वो कैमरा लगे हैं छोटे छोटे, वो फोटोज लेते हैं उसकी, तो फोटोज खींचते रहते हैं उनकी डेवलपमेंट्स की एट कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, एंड वो इमेजेस फिर स्टडी की जाती है, देखा जाता है कि ऐसी कौन सी डेवलपमेंट है, क्योंकि सब बच्चे चिपक नहीं पाते ना, सब एम्ब्रियोज अच्छी सक्सेस नहीं दे पाते, तो ये देखने के लिए कि ऐसी क्या चीजें हैं जो हम देख सकें इस माध्यम से और हम ये पता लगा सकें कि अच्छा अगर ये चीज दिख रही है तो इसका चांस ज्यादा है चिपकने का बच्चे का, तो यही डालते हैं रादर देन जिसमें वो चीज एब्सेंट है, तो फिर वो निगेट हो जाता है, नेगेटिवली आउट हो जाता है, एग्जिट हो जाता है बच्चा, तो इस सेंस में जो चांसेस हैं अटेम्प्ट्स हैं आईवीएफ के वो कम हो जाएंगे, पैसा का खर्चा कम हो जाएगा एंड सक्सेस का चांस बढ़ जाएगा। देन एआई सिस्टम ऑफ विटनेसिंग आ गया है, तो मतलब आजकल लैब्स में एआई विटनेसिंग हो गई है, ये याद करने की जरूरत नहीं, अगर चार मरीज हैं आज तो भाई ये इसका सैंपल है, वो एआई के माध्यम से ही है कि ये इसका सैंपल इस नंबर वाले उसमें पड़ा है ये निकालिए, ताकि मिक्सिंग ना हो, कन्फ्यूजन ना हो, पेशेंट सेफ रहे, डॉक्टर सेफ रहे।
1: दोस्तों 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है और भारत की बात करें तो बाघों के संरक्षण और उनकी बढ़ती संख्या में भारत सबसे अग्रणी देश है, लेकिन बाघों का संरक्षण इतना महत्वपूर्ण है क्यों और विश्व बाघ दिवस की कहानी क्या है, आइए जानते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला से।
2: बाघ एक ग्लोबल स्पीसीज है, इनफैक्ट इसको सबसे ज्यादा आइकॉनिक वाइल्ड लाइफ स्पीसीज के रूप में भी सामने आया है, जिस एरिया में बाघ पाए जाते थे उसमें बहुत कमी आई, इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक ग्लोबल टाइगर समिट सेंट पीटर्सबर्ग वहां पर आयोजित की गई 2010 में, जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था उसमें ये लिया गया कि हमको अगले 12 सालों में बाघों की संख्या को डबल करने और साथ में एक और चीज डिसाइड की गई कि 29 जुलाई को हर साल ग्लोबल टाइगर डे के रूप में मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य ये था कि इस दिन हम जो इसके बारे में अवेयरनेस जो जनरल पब्लिक है उनको बताया जाए, अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो उसमें भारत का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, जहां तक कि बाघों के संरक्षण की बात, यानी ऐसे टाइगर जो कि जंगलों में पाए जाते हैं उनकी अगर संख्या देखें तो उसका करीब 70% भाग जो है वो भारत में पाया जाता है, तो भारत उन गिने चुने देशों में से एक है, उसने अपने जो टाइगर नंबर थे जो कि हमारे 2006 में 1411 हो गए थे उनको डबल कर लिया, आज हमारे पास करीब 3,500 से 4,000 तक बाघ विचरित करते हुए पाए जाते हैं। इसमें से भी जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है वो अपने आप में सिरमौर है बाघ संरक्षण, इस साल हम इसके 90 साल पूरे हो रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान के, और 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई इसमें 9 टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया, आज 58 टाइगर रिजर्व्स ऐसे हैं पूरे देश में जो कि इस परियोजना के अंतर्गत आते हैं, इसका शुरुआत थी वो भी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से ही हुई, तो इसीलिए कॉर्बेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाघों की संख्या की बात करें तो आज कॉर्बेट में सबसे ज्यादा बाघ हैं, 260 से लेकर 270 बाघ आज यहां पर है।
1: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में तकनीक का बाघों के संरक्षण में क्या योगदान है, इसके बारे में डॉक्टर साकेत कहते हैं।
2: आज अगर हम देखें तो तकनीक का उपयोग जो वो बाघ संरक्षण या वन्यजीव संरक्षण के लगभग हर पहलू में किया जा रहा है, प्रोटेक्शन की बात करें सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी क्षेत्र में जो हमारी गश्त सुनिश्चित करना, इसके लिए हमने भारत सरकार ने और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और जो NTCA है जो कि पूरे देश में बाघ संरक्षण को देखता है, उन्होंने एक एम स्ट्राइप ऐप बनाया है, अगर हमारे कर्मचारियों ने कहीं पे उनको कोई भी घटना दिखती है वो एम स्ट्राइप ऐप में एंटर कर सकते। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो इसका रोल है, हम स्पेशल कैमरा ट्रैप लगाते हैं जिनमें की फोटोग्राफ ऑटोमेटिकली जब बाघ उनके सामने से गुजरता है उसकी फोटोग्राफ कैप्चर कर ली जाती है, और हमें पता है कि जो बाघों की जो धारियां होती हैं जिनको हम स्ट्राइप पैटर्न कहते हैं वो हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह होती है, यानी हर बाघ की जो धारी का जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग होगा, यूनिक होगा। जब हमारे पास पूरे क्षेत्र से स्वचालित जो कैमरा ट्रैप है उनसे फोटोग्राफ प्राप्त हो जाते हैं तो उसके बाद हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा टेक्नोलॉजी का प्रयोग आता है मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए, कि जैसे हमने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ऐसी बाउंड्री जहां पर गांव से लगती है, आबादी वाले क्षेत्र से लगती है, वहां पर हमने बहुत पावरफुल कैमराज लगाए हुए या वहाँ पर ऐसे हमारे सेंसर्स लगे हैं जो कि जब जानवर बाहर जाता है तो उसकी जानकारी हमको मिल जाती है। साथ में अगर मैं पूरे क्षेत्र पे निगाह रखने की बात करूं तो हमको ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है उसका भी भरपूर प्रयोग किया जा रहा है पूरे क्षेत्र में जानकारी प्राप्त कर।
1: दोस्तों जुलाई 2026 में उत्तराखंड सरकार के अंतर्गत उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी यूकॉस ने राज्य की विज्ञान तकनीक और नवाचार नीति जारी की है। क्या है इस नीति का आधार, आइए जानते हैं यूकॉस के निदेशक डॉक्टर दुर्गेश पंत से।
3: देखिए जब हम साइंस की बात करते हैं तो कोई हमारे दिमाग में एक चित्र आता है कि ये कहीं संस्थान है, ये कोई लैब है जहां कुछ लोग काम में लगे हुए हैं जिसके बारे में हमको नहीं मालूम होता क्या है, हम भी सोचते हैं क्या कर रहे हैं, वो भी सोचते हैं कि उसको आगे कैसे ले जाए। ऐसी टेक्नोलॉजी तो जानने लगे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी चाहे मोबाइल की हो चाहे कुछ भी जो भी हम करते हैं वो सब टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन पार्ट है। नवाचार इसलिए जरूरी है क्योंकि नवाचार हैं, फ्रुगल नवाचार हैं, इसीलिए दुनिया में सारी की सारी चीजें चलती हैं। अब ये समझिए कि एक पॉलिसी के तहत ये साइंस टेक्नोलॉजी और इसको

0: लैब से लैंड को ले जाने की यात्रा और उसमें नवाचार जोड़ना, एंटरप्रेन्योरशिप जोड़ना, आमजन से जोड़ना, जनता से जोड़ना, काश्तकार से जोड़ना, महिला से जोड़ना, गांवों से जोड़ना, ये एसटीआई है। क्योंकि ये उन्हीं से पूछ के कि वो क्या चाहते हैं, वो पानी की बात हो, कृषि की बात हो, हॉर्टिकल्चर की बात हो, मैन एनिमल कंफ्लिक्ट की बात हो, टूरिज्म की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, वो सब में शोध होना चाहिए या शोध आधारित समाधान अगर हो तो स्थायी समाधान होते हैं, एडहॉक नहीं होते। इसलिए एसटीआई इंपॉर्टेंट है और विभिन्न विभागों के सहयोग से बनाइए कि आप इसको विकसित करिए। और एक साइंस टेक्नोलॉजी का विभाग अगर बनाएगा तो इसकी महत्ता भी होगी, समझ में भी आएगा। इसलिए इसको करीब 3 वर्ष की इसमें समय लगा बनाने में और अब ये बाहर आई है, इसलिए महत्वपूर्ण है।
1: लैब टू लैंड और साइंस फॉर सोसाइटी पर आधारित विज्ञान नीति क्यों जरूरी है, इस बारे में डॉक्टर पंत कहते हैं।
0: आप ये देखिए ना, अगर जो काश्तकार है या जो हमारे एग्रीकल्चर से जुड़ा है, अगर वो मिट्टी से ही नहीं जुड़ा, उसने मिट्टी से ही नहीं खेला, देखा, बात की, तो उस एग्रीकल्चर साइंस का क्या लाभ होगा जो लैब में हो रही है। इसी तरह से जो प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाएंगे तो गलतियां भी होंगी, फेल्योर्स होंगे, उससे सीखेगा व्यक्ति, वो थ्योरेटिकली नहीं होगी। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती है, विज्ञान लगातार कर करके सीखने का नाम होता है कि हम कई चीजें करते हैं उसके बाद चीज निकल के आती है, तो वो एविडेंस बनती है। ये हमारे वहाँ का एक बेसिक गैप है जो हमारी विज्ञान की शिक्षा रही है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम कह रहे हैं कि इसको स्किल बेस्ड, इसलिए हमने स्टेम की बात करी है इस पॉलिसी में, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में थोड़ी साइंटिफिक एटीट्यूड टेम्पर की बात कर रहे हैं कि इससे लोग जुड़े, बात करें, समझें, देखें, विचारें, सूंघें, ये महत्वपूर्ण है, तब इससे समझा जा सकता है। इसलिए जो आप कह रही है बिल्कुल स्किल बेस्ड होना चाहिए, वही देश को बदलेगा, मेरी बात आप समझ, तभी देश में बदलाव आएगा जब वो काम करेगा हाथ से। जिसने बल्ब नहीं बदला है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी की बात करे कैसे होगा, जिसने कभी इस पूरे के पूरे जो हमारे पास कैमरा है उसी पे काम नहीं कर रहा, वो कैसे बदलेगा, सोलर की जिसने लाइट नहीं बदली वो सोलर के। तो इस समय आवश्यकता है देश में फिटर का, ट्रेनर का, इनका, ये तमाम सारी चीजों की आवश्यकता है, जिसकी हमने इसमें बात करी है कि विज्ञान ऐसा हो जिसको हाथ से किया हो, जिसको देखा हुआ हो, जिसको समझ के कर रहे हैं, ये हमारी जनरेशन को बदलेगा, देश को बदलेगा, हम और आपको बदलेगा।
1: दोस्तों, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आप रीतिका बिंजोला से सुनते हैं जुलाई माह के प्रमुख वैज्ञानिक और वैज्ञानिक घटनाओं के बारे में।
2: जुलाई का ये महीना सिर्फ मॉनसून की फुहारें लेकर नहीं आता, बल्कि ये महीना गवाह है इतिहास के उन महान वैज्ञानिकों के जन्म का जिन्होंने अपनी सोच से पूरी दुनिया की तकदीर बदल दी। शुरुआत करते हैं एक ऐसे इंसान से जिसने अंधेरी दुनिया को रोशनी से भर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 10 जुलाई 1856 को जन्मे महान आविष्कारक निकोला टेस्ला। आज हमारे घरों, स्कूलों, अस्पतालों और कारखानों तक जो बिजली पहुँचती है वो मुख्य रूप से इसी प्रणाली के कारण संभव हो पाती है। अगर केवल पुराने डीसी प्रणाली होती तो बिजली को इतनी दूर तक पहुंचना बहुत कठिन पड़ता और महंगा होता। टेस्ला ने इंडक्शन मोटर भी बनाई जो आज पंखों, वॉशिंग मशीन, पानी की मोटर और उद्योगों की कई मशीनों में इस्तेमाल होती है। वायरलेस संचार और रेडियो से जुड़े उनके विचार भी अपने समय से बहुत आगे थे। अब बात करते हैं ग्रिगोर मेंडल की, जिनका जन्म 20 जुलाई 1822 को हुआ था। उन्होंने मटर के पौधों पर लगभग 8 वर्षों तक प्रयोग किए। इन प्रयोगों से उन्होंने बताया कि माता पिता के गुण बच्चों तक कैसे पहुंचते हैं। आज इसे हम अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। मेंडल की खोज की बदौलत आज वैज्ञानिक नई और अधिक उपज देने वाली फसलें विकसित कर रहे हैं, कई अनुवांशिक बीमारियों का अध्ययन कर रहे हैं और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी लगातार आगे बढ़ रही है। इसीलिए उन्हें अनुवांशिकी का जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अब बात करते हैं 25 जुलाई 1920 को लंदन में जन्मी रोजलिन फ्रैंकलिन के बारे में, जिन्होंने महज 15 साल की उम्र में वैज्ञानिक बनने का फैसला कर लिया था। उनके द्वारा खींची गई ऐतिहासिक डीएनए की तस्वीर फोटो 51 और उनके रिसर्च डेटा की मदद से ही आगे चलकर जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का मशहूर डबल हेलिकल यानी घुमावदार सीडी जैसा मॉडल तैयार किया था। डीएनए के अलावा रोजलिन ने कोयले और कार्बन की आंतरिक संरचना को समझने का काम भी किया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बेहतर गैस मास्क बने। और आज जो हम वाटर फिल्टर या हवा साफ करने वाले एयर प्योरिफायर इस्तेमाल करते हैं, उनमें एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर होता है। इसकी शुरुआत रोजलिन की रिसर्च से ही शुरू हुई थी। तंबाकू व पोलियो जैसे वायरस के सटीक आकार को खोजने में भी रोजलिन ने क्रांतिकारी योगदान दिया, जिससे आगे चलकर वैक्सीन और दवाइयां बनाने में मदद मिली।

श्रोताओ, इसी के साथ विज्ञान भारती के आज के अंक को मुझे यानी संकल्प मिश्रा को संपन्न करने की अब दीजिए अनुमति। अगले अंक में विज्ञान जगत की नई हलचल के साथ एक बार फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठा सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को त्यागपत्र सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी और सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। श्री रिजिजू ने देश के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाने और लाखों युवा विद्यार्थियों को हर निर्णय के केंद्र में रखने के लिए श्री प्रधान के ईमानदार प्रयासों की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहल द्वारा भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने की मांग स्वीकार कर ली है। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमानुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।

0: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
1: परीक्षा सुधारों पर सीजीपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सदन के सोमवार के कामकाज सूची में शामिल है। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक पेश करेंगे। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए ऐतिहासिक पल बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि सारनाथ शांति, ज्ञान और करुणा का शाश्वत प्रतीक है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज रात मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर ही सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has resigned today and tendered his resignation to Prime Minister Narendra Modi. In a social media post, Mr. Pradhan said he was pained by the prevailing situation following students' protest during the past 10 days, saying it is not a matter of prestige for him. He said he had taken into account the situation at Jantar Mantar in New Delhi as well as the situation across the country. Mr. Pradhan also expressed his gratitude to the Prime Minister for his guidance, trust and constant support. He said that service to the nation is the highest priority of his life and he will remain forever dedicated to it. Mr. Pradhan said from day one he took full responsibility and never turned away from the situation. He said the NEET-UG results declared on July 16th were satisfactory, with many meritorious students from underprivileged backgrounds achieving success. He said, however, even during this time, individuals holding responsible positions attempted to create obstacles and misled students, calling it an act that caused him deep anguish. The CJP has withdrawn its protest after the government agreed to its demands. Union Ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh today held the third round of discussion with the CJP delegation, focusing on its demands for reforms in the examination system and measures to prevent paper leaks. Later, at a joint press conference with the CJP delegation in New Delhi, Mr. Nadda said, during the meeting, the government agreed to the demands of the CJP that no action should be taken against the protesters and no FIRs should be filed against them.
0: तो वो FIR की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस केस इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
2: On the five-point charter given by the CJP for reforms in examinations, Mr. Nadda said the government will think deeply about the charter and will do whatever is possible after holding deliberations with the CJP. CJP's chief spokesperson, Saurav Das, announced to withdraw the agitation in good faith, expressing hope that the agreed-upon terms will be executed within the agreed-upon timelines. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 a.m. tomorrow. It will be the 136th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR News website and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. President Draupadi Murmu has concluded her state visit to Romania and departed for New Delhi this afternoon. Romania was the final leg of the president's three-nation state visit, which also included Moldova and North Macedonia. On the final leg of her visit to Romania, the president held wide-ranging discussions with her Romanian counterpart, President Nicușor Dan, aimed at strengthening bilateral cooperation across trade, investment, defence, digital technology, education, renewable energy and culture. She noted that cooperation between India and Romania has expanded across a wide range of sectors. President Murmu also met Romania's Prime Minister and parliamentary leaders, addressed the India-Romania Business Forum and interacted with members of the Indian community. The ancient Buddhist site of Sarnath in Uttar Pradesh has been inscribed on the UNESCO World Heritage List. It was officially inscribed during the 48th session of the World Heritage Committee at Busan in South Korea today. It marks India's 45th property to join the prestigious Global Heritage List. In men's cricket, India defeated host Zimbabwe by 90 runs in the second T20 international of the three-match series in Harare. With this win, the men in blue have registered an unassailable 2-0 lead in the series. This also marks the first series win under the captaincy of new T20 skipper Shreyas Iyer. And with that, we end this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रशांत कुमार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना। सीरिया में दो बसों की टक्कर में 35 लोगों की मौत। ईरान ने लगातार 13 रात अमरीकी हमलों के बाद सैन्य कार्रवाई में विराम की घोषणा की। दक्षिणी चीन में तूफान नोल का अलर्ट जारी, हांगकांग ने दर्जनों उड़ानें रद्द की। उत्तर प्रदेश में सारनाथ स्थित प्राचीन बौद्ध स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए दूसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रनों से हराया। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशोर दान के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रोमानिया के प्रधानमंत्री और संसदीय नेताओं से भी मुलाकात की। उन्होंने भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय कंपनी रोमानिया के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।
3: डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, रिसर्च, हेल्थ केयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एआई, इनोवेशन तथा एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे एक नया नया क्षेत्र में आर्थिक सहयोग के व्यापक अवसर उपलब्ध है। मुझे ये देखकर प्रसन्नता है कि भारतीय कंपनीज और भारतीय प्रोफेशनल्स रोमानिया के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।
1: बुखारेस्ट में उन्होंने भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया है।
3: भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय आईटी इंजीनियरिंग स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया

0: को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
1: सीरिया में आज राजधानी दमिश्क को पूर्वी प्रांत दीर अलजोर से जोड़ने वाले राजमार्ग पर दो बसों की टक्कर में 35 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रेगिस्तानी राजमार्ग पर एक नागरिक बस और गृह मंत्रालय की बस के बीच हुई टक्कर में लगभग 30 लोग घायल हुए। सेना के हेलीकॉप्टर घटनास्थल पर बचाव अभियान में लगे हुए हैं। घटना के कारणों की जांच जारी है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका की ओर से आज रात भर तीव्र सैन्य कार्रवाई नहीं की गई है। ये लगातार 13 रातों से जारी अमेरिकी हमलों में विराम का संकेत है। हालांकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास तनाव बढ़ने के बाद क्षेत्रीय अस्थिरता अब भी गंभीर बनी हुई है। ईरानी स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता हुसैन करमानपुर ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से सैन्य कार्रवाई में विराम की पुष्टि करते हुए कहा कि ईरान में शांतिपूर्ण रात गुजरी। इस बीच अमरीकी केंद्रीय कमान ने तत्काल परिचालन विराम की घोषणा नहीं की, जिससे पिछले 13 दिनों से चल रही उसकी नियमित आक्रामक कार्रवाई की घोषणा का क्रम टूट गया। इस बीच ईरानी क्षेत्र में रात भर शांति रहने के बावजूद पड़ोसी खाड़ी देशों में सुरक्षा संबंधी चेतावनी जारी रही। सऊदी अरब के अधिकारियों ने लाल सागर के यानबू और जिजान प्रांतों में चेतावनी सायरन सक्रिय कर दिए, जो तेल अवसंरचना के लिए महत्वपूर्ण केंद्र हैं। ईरान ने कथित मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों के मुद्दे पर उसके अधिकारियों पर यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए नवीनतम प्रतिबंधों की आलोचना की। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बखाई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ये टिप्पणी की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। तूफान नोल दक्षिणी चीन और हांगकांग में तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के साथ दस्तक दे रहा है। इसके चलते पूरा क्षेत्र हाई अलर्ट पर है और दर्जनों उड़ानें रद्द कर दी गईं। हांगकांग मौसम कार्यालय के अनुसार नोल 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ दक्षिणी चीन सागर के आगे बढ़ रहा है और पूर्वी ग्वांगडोंग के तट के करीब पहुंच रहा है। मानवाधिकार समूह बलूच वुमेन फोरम ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जबरन गुमशुदगी की घटनाएं चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है। फोरम ने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना द्वारा कथित तौर पर की जा रही महिलाओं और बच्चों सहित नागरिकों की बढ़ती जबरन गुमशुदगी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
2: मानवाधिकार समूह ने चेतावनी दी है कि ये प्रथा 21वीं सदी के सबसे चिंताजनक मानवाधिकार मुद्दों में से एक बन गई है। ये टिप्पणी 21 जुलाई को बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले के किल्ली कोंगर इलाके में हुई घटना के बाद आई है, जहां सुरक्षा बलों के जवानों ने एक मकान पर छापा मारा और परिवार के 6 सदस्यों का अपहरण कर लिया। फोरम ने प्रांत भर में जबरन गुमशुदगी की बढ़ती घटनाओं की निंदा करते हुए कहा कि कई परिवार वर्षों से अपने प्रियजनों की वापसी का इंतजार कर रहे हैं और कई पीड़ित अपने प्रियजनों की प्रतीक्षा करते करते जान गंवा चुके हैं। फोरम ने इस बात पर जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून स्पष्ट रूप से महिलाओं और बच्चों को विशेष सुरक्षा के योग्य वर्ग के रूप में मान्यता देता है। विश्व दर्पण के लिए विशाल शर्मा।
1: यमन के हुती विद्रोहियों ने आज कहा कि उसने दक्षिण पश्चिम सऊदी अरब के जिजान में औद्योगिक सुविधाएं पर मिसाइल हमले किए हैं। समूह का कहना है कि कार्रवाई सऊदी अरब द्वारा यमन के बंदरगाह शहर अल हुदैदा पर किए गए हमलों के जवाब में की गई थी। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। श्री शेखावत ने कहा कि सारनाथ शांति, ज्ञान और करुणा का शाश्वत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सारनाथ शांति, ज्ञान और करुणा का एक चिरस्थायी प्रेरक है, जो भारत की शाश्वत आध्यात्मिक और दार्शनिक विरासत का प्रतीक है। ओडिशा के पवित्र नगर पुरी में ग्रैंड रोड पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।

0: ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पुरी में ग्रांड रोड पर अपने शानदार रथों पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा आज पवित्र सुना वे स्वर्ण वेश में बेहद भव्य लग रहे हैं। उन्होंने बेहद खूबसूरती से बने मुकुट, हार, बाजूबंद, झुमके और अन्य पारंपरिक आभूषण पहने हैं। सालाना रथ यात्रा की सबसे भव्य रस्मों में से एक इस पवित्र स्वर्ण वेश के दर्शन के लिए आम लोगों को आधी रात तक का समय मिलने का उम्मीद है, जिससे लाखों भक्त इन तीनों पवित्र देव रूपियों की दिव्य भव्यता के दर्शन कर सकेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। ईशान किशन ने शानदार 81 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 2-0 से आगे है। अनहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्कॉश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज रात मिस्र की रुकेया सलेम से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना। सीरिया में दो बसों की टक्कर में 35 लोगों की मौत। ईरान ने लगातार 13 रात अमरीकी हमलों के बाद सैन्य कार्रवाई में विराम की घोषणा की। दक्षिणी चीन में तूफान नोल का अलर्ट जारी। हांगकांग ने दर्जनों उड़ाने रद्द की। उत्तर प्रदेश में सारनाथ स्थित प्राचीन बौद्ध स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए दूसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रनों से हराया। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Amrit Bhushan with the World News. The headlines. President Draupadi Murmu concludes her three-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania. At least 35 people killed after two buses collide in Syria. Iran reports a pause in military action after 13 consecutive nights of American strikes. Southern China on alert for Typhoon Naul. Hong Kong cancels dozens of flights. Ancient Buddhist site of Sarnath in Uttar Pradesh added to UNESCO World Heritage List. And in cricket, India beat host Zimbabwe in second T20 international by 90 runs in Harare, take unassailable 2-0 lead in three-match series. President Draupadi Murmu has concluded her state visit to Romania and departed for New Delhi this afternoon. Romania was the final leg of the president's three-nation state visit, which also included Moldova and North Macedonia. On the final leg of her visit to Romania, the president held wide-ranging discussions with her Romanian counterpart, President Nicușor Dan, aimed at strengthening bilateral cooperation across trade, investment, defense, digital technology, education, renewable energy and culture. President Murmu also met Romania's Prime Minister and parliamentary leaders, addressed the India-Romania Business Forum and interacted with members of the Indian community. President Draupadi Murmu lauded the contribution of Indian community in Romania, describing them as a vital pillar of the growing partnership between the two countries. Addressing a reception hosted for the Indian community in Bucharest on the concluding day of her state visit to Romania, the president said that Indians living abroad continue to remain deeply connected to their motherland and make every Indian proud through their achievements and dedication.
3: भारत रोमानिया संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण आधार है हमारे लोगों के बीच आत्मीय संबंध। ये देखकर मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय आईटी इंजीनियरिंग स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

10:31 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर स्वागत है आप सबका। प्रोग्राम हर सिंगार आपके साथ, मैं विकास।

लता जी की आवाज थी और फिल्म का नाम था आरती। संस्कार लक्ष्मी नाम का एक गुजराती प्ले जिस पर यह फिल्म बेस्ड है। जिस कहानी को उसी नाटक से लिया गया और राजश्री फिल्म्स ने अपनी इनिंग्स इसी फिल्म से शुरुआत की थी, यानी पहली फिल्म राजश्री प्रोडक्शन की यही रही, यानी आरती। इस फिल्म में पहले कहते हैं कि संजीव कुमार को बतौर लीड एक्टर के तौर पर लेने की कोशिश की गई, लेकिन क्योंकि संजीव कुमार काफ़ी नए थे और न्यू कमर थे, इसलिए ताराचंद बड़जातिया साहब ने उन्हें चांस देने से थोड़ा सा गुरेज किया। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि संजीव कुमार कई फिल्मों में हमें दिल छूते हुए नज़र आए, फिर चाहे वो आंधी हो या कोई और फिल्म जहां पर उन्होंने अपनी अदाकारी से हम सबका दिल जीता।

जी, हम तो अपना वादा निभाते ही हैं और उस वादे को निभाने के लिए हम ये प्यारे प्यारे गीत आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यही गीत जो आपने अब तक सुना और जिसे गुनगुनाया भी, फिल्म थी ताजमहल 1963 की ये फिल्म थी और इसी गीत के लिए मिला था बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड हमारे अपने साहिर लुधियानवी साहब को। वही साहिर जो मोहब्बत से लेकर माँ की ममता तक उन तमाम जज्बात को बखूबी बयां करते। प्रोग्राम है हर सिंगार और हर सिंगार में मैं आपके साथ विकास।

अभी जब इस गीत को सुन रहा था तो गीत जैसे जैसे ख़त्म हो रहा था तो अचानक से इसमें फीमेल सिंगर अचानक हमिंग करने लग जाती हैं और मेरे जहन में आया कि कितनी खूबसूरत से उस दौर को हम याद कर लेते हैं जहां पर एक गायक जो होता है उस गीत के साथ न सिर्फ यूडलिंग करता है, हमिंग भी करता है और इन्हीं चीज़ों को हम शायद नए गानों में कभी कभी मिस करते हैं। ऐसा नहीं है कि नए गानों में ये सब चीज़ें होती ना होंगी, लेकिन इन गीतों के साथ शायद हमारा और अपना एक अलग ही रिश्ता है।

तेलुगु फिल्म की ये रीमेक थी और इस फिल्म का नाम था हमराही और फिल्म का ये गीत लिखा हसरत जयपुरी साहब ने। संगीत इस फिल्म में शंकर जयकिशन का और राजेंद्र कुमार और जमुना नजर आते हैं पर्दे पर। फिल्म की ज्यादातर जो शूटिंग थी वो हुई बेंगलोर में। प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना पसंदीदा हरसिंगार, हरसिंगार में मैं आपके साथ विकास।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ जुड़े हुए हैं आप, और बस घड़ी बता रही है कि थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे समाचार, लेकिन आप जुड़े रहिएगा हमारे ही साथ यानी आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ, क्योंकि यहीं पर आपको मिलते हैं प्यारे प्यारे से वो गोल्डन एरा के गाने जो आप और हम बेहद प्यार करते हैं जिनसे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठा सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को त्याग पत्र सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी और सरकार ने जाँच सीबीआई को सौंप दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहल के द्वारा भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने की मांग स्वीकार कर ली है। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर सीजीपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सदन के सोमवार के कामकाज सूची में शामिल है। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम

2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये विधेयक पेश करेंगे। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए ऐतिहासिक पल बताया है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने से देश का सांस्कृतिक गौरव और बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Namaskar and welcome to Market Mantra. Friends, today being a Saturday, we shall be taking your calls on your market related queries. But please do remember that we do not address stock or company specific queries. And you may call us on the numbers, and they are 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And if you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. Well, I'm your anchor Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor Manoj Pathak.
1: नमस्कार. मार्केट मंत्र के ताजंक में आपका स्वागत है. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं. आज शनिवार है और आज के दिन अपने कार्यक्रम में हम आपको आमंत्रित किया करते हैं सवाल पूछने के लिए. आप भी अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं. बस ये ध्यान रखिएगा कि हम किसी कंपनी या शेयर के बारे में कोई खास जानकारी आपको नहीं दे पाएंगे. हमसे सवाल कीजने करने के लिए आप डायल कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 या फिर 2371-7106. हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं देश के जाने माने आर्थिक मामलों के विश्लेषक शरद कोहली. शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: नमस्कार मनोज, नमस्कार लालिमा और मार्केट मंत्रा की सभी टीम और श्रोताओं को मेरा अभिवादन.
0: वेलकम.
1: आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं लालिमा अनेजा डैंक.
0: थैंक यू मनोज. लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस रजिस्टर्ड स्टीप वीकली लॉसेस अमिड जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स. यूएस स्टॉक मार्केट लॉग weekly decline, and global crude oil prices extend rising streak this week.
1: भू राजनीतिक तनावों के बीच कारोबारी सप्ताह में घरेलू शेयर बाजार घाटे के साथ हुए बंद. अमरीकी शेयर बाजार भी साप्ताहिक आधार पर नुकसान में रहे और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम इस सप्ताह भी बढ़त में रहे.

0: not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. And we further advise all our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Right.
1: आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं. सबसे पहले घरेलू शेयर बाजार. दुनिया भर में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल के दाम बढ़ने से अपने घरेलू शेयर बाजार में इस सप्ताह कुल मिलाकर अच्छी खासी गिरावट हुई. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबारी सप्ताह के अंत में साप्ताहिक आधार पर ये 2091 अंक यानी 2.7% नुकसान के साथ 76,060 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 567 अंक यानी 2.3% नीचे आकर 23,767 दर्ज हुआ. इस दौरान निजी क्षेत्र के बैंक और रियल्टी सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को अधिक नुकसान उठाना पड़ा, जबकि लाभ उठाने वाली कंपनियों में एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर ने बेहतर प्रदर्शन किया. विस्तारित बाजार की ओर चलें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मिड कैप 100 इंडेक्स 1.3% नीचे आकर बंद हुआ. उधर निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में लगभग 2.2% की गिरावट हुई. रुपए की स्थिति पर ध्यान दें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में साप्ताहिक आधार पर $1 की तुलना में रुपया 28 पैसे कमजोर हुआ और 96.56 के स्तर पर बंद हुआ. यहां पर हम कारोबारी हालात पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे और कुल मिलाकर घरेलू शेयर बाजार का प्रदर्शन किस रूप में रहा, क्या बयान करते या खड़े.
2: मनोज, बहुत कठिन है डगर पनघट की. मुझे पुरानी एक लाइन याद आ रही है क्योंकि बार बार जब जब बाजार निफ्टी की बात करते हैं 24,000 से ऊपर जाने की टिकने की कोशिश करता है तभी भू राजनीतिक तौर पर कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है और अमेरिका और ईरान का युद्ध, क्रूड ऑयल मैं समझता हूं विलेन रहा है इसमें, $100 छुआ, उसके बाद थोड़ी सी करेक्शन कल शाम को देखी गई $95. तो मुझे लग रहा है कि और इसको हम कॉरोबरेट कैसे करते हैं कि आप देखें कि जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं बीच में जुलाई में वो थोड़े पॉजिटिव हुए थे, पर जैसे ही कच्चे तेल के दाम ऊपर जाते हैं तो वो फिर से बिकवाली पर आ जाते हैं. तो मुझे लग रहा है ये जो कच्चा तेल इस बाजार को और ऊपर जाने के बीच में एक दीवार की तरह खड़ा हुआ है क्योंकि उससे कॉर्पोरेट कॉस्ट बढ़ती है.
1: यानी कुल मिलाकर यदि हम सेक्टर वाइज देखना शुरू करें और यदि हर सेक्टर पर ध्यान दें तो इस कह लें नुकसान के बीच भी ऑटो सेक्टर का अपेक्षाकृत थोड़ा बेहतर प्रदर्शन रहा है. हाँ, ऑटो सेक्टर का भविष्य कैसा लग रहा है?
2: कह सकते हैं, हालांकि सेक्टर रोटेशन मनोज लगातार मार्केट में होता रहता है. अभी आपने आईटी सेक्टर में काफी उथल पुथल देखा. ऑटो सेक्टर का अगर भविष्य पूछे तो मुझे लगता है वो कंपनियां जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे थोड़ा ज्यादा स्ट्रेटेजिकली फोकस कर रही है उनका भविष्य मुझे उज्ज्वल दिखता है क्योंकि यहां से पेट्रोल डीजल के दाम मुझे लगता है लोगों को इस समय परेशान कर सकते हैं आने वाले, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमत यदि बहुत बढ़ गई और अभी पेट्रोलियम माननीय मंत्री जी का बयान आया था कि फिर एक बार पेट्रोल में डीजल में गैस में बहुत बड़ा लॉस शुरू हो गया है. तो ज्यादा दिन तक टिका रहा तो फिर कोई कठिन निर्णय लेना पड़ सकता है, ये नहीं कि लेंगे. तो मुझे लग रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली कंपनी पे ऑटो सेक्टर की बात करें तो ज्यादा फोकस रखना चाहूंगा.
0: And FMCG, sometimes they, for some time, they were not doing well, but now our weekly report says they are doing fine.
2: I think, Lalima, FMCG in any crisis situation is always a good bet in the long run, because we saw during COVID, and anytime when the world sees a crisis, it's like, I call it as a safe haven sector, because that is something which people tend to buy, and although the inflation also hits you when the crude oil prices go, but then you cannot do without FMCG. I mean, those are the goods which you need on an everyday basis. So I feel that FMCG is a go-to sector in the times of crisis.
0: And a safe bet.
2: Absolutely.
0: All right. We are now joined by Ram Kishan from Ghaziabad and let's see what he has to ask. Ji, Ram Kishan ji, apna sawal poochiye.
3: Namaste ji, main Ghaziabad se Ram Kishan bol raha hu.
0: Ji ji.
3: मैंने पहले नंबर लिया हुआ है, रिटेल में भरता नहीं है. मेरी जो इनकम है इंटरेस्ट है 2,90,000 होती है साल, तो आइडल की सीमा जो है 3,00,000 से 4,00,000 है.
2: अच्छा, चलिए, आपका रामकिशन जी जो शुरू का हिस्सा था वो तो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था. आप हमारे बहुत वरिष्ठ और आदरणीय नागरिक आवाज से लग रहे हैं. जो नए रिजीम में जो सीमा है वो 4,00,000 की है और पुराने रजीम में सीमा जो है वो 2.5 लाख की आयकर सीमा का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का ये जानना चाहते हैं। तो अभी जो नया बजट आया था आपको याद होगा उसमें 4 लाख से अब शुरू होता है और जो पुराने रजीम में अभी भी वो 2.5 लाख ही है। तो मैं उम्मीद करता हूं उसी के अनुसार

0: आप कैलकुलेट करेंगे, पर सीनियर सिटीजन के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई अतिरिक्त बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है, ये भी मैं रामकिशन जी को बताना चाहूंगा।
1: श्रोतो आइए आपको लिए चलें बेंगलुरु, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं एनआर प्रसाद। प्रसाद साहब स्वागत आपका, सवाल पूछिए।
2: हाय गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा, दिस इज एनआर प्रसाद फ्रॉम बेंगलोर। हेलो लालिमा जी, हेलो मनोज जी,
3: हेलो प्रसाद जी, जी जी,
2: हेलो शरद जी, टू क्वेश्चन।
0: हेलो मिस्टर प्रसाद, यस यस प्लीज,
2: टू क्वेश्चन सर। I filed my ITR. I just want to ask you, Finance Minister announced that any error in filing, or is it system error?
0: Yeah.
2: Actually, I could not get it properly.
0: Mm-hmm.
2: What is that we can refile it once again? My second question is, sir, there's again a tariff war and now this time on the generic medicine, sir.
0: All right.
2: My question is it right time to invest in a pharma or health sectors? And before that, I just want to say thank you to you. Your advice maybe a couple of months back on manual SIP on stock, when it comes down buying and when it goes up selling, really turned out to be very profitable for me. For that, separate thank you to you. Thank you. The other two questions.
0: I'm glad, first of all, that the advice given by Market Mantra turned out to be good, and I wish, you know, there was a facility, Lalima and Manoj, to send a laddu through the radio, which is unfortunately not there at this point of time, but we are very happy that itself is a laddu for us. Your first question is regarding the ITR error. So you have a provision, Mr. Prasad, to revise your return if there is an error which happens either on your part or it happens because of the system or something in which you observe which is clearly visible. You can always go and revise the return. So, and you can revise it any number of times, by the way, and you must be aware now you can revise up to 31st December without a fee. You can even revise by 31st of March. There is a small fee, 1,000, 5,000, which is now under the new provisions. So if there is an error, please do not, because then otherwise your return becomes defective. And your second question was regarding the tariff announcement by President Trump on the generic drugs coming from India. Now, you have to appreciate the fact that as far as America is concerned, I think after 2 years, he says we're going to levy 100% tariffs. So 2 years for me, as far as President Trump is concerned, is a very long time, because we find decisions being switched to two to three times a day sometimes. And moreover, I think Trump regime in 2028 will be almost at its fag end. And the American Constitution says that you can't have a president for more than two terms. So Mr. Prasad, I really don't think there should be any matter of concern. So the bullish view on pharma sector basically remains there. I think the order book of the pharma companies which are supplying generic drugs to America, those order books need to be seen, that if they are doing well. I don't see any concern for these announcements after 2 years, because we've seen decisions being you know turned over by evening or next morning. I'm sure you too must have observed. So I continue to remain bullish on Indian pharma sector. India is world's pharmacy, I would say. So I think India is going to continue domination in that particular area, which should keep the investors excited.
3: All right, we are now joined by Kavita Arya from Noida. Yes, Kavita ji, please ask your question. Yeah.
4: Sir, namaste.
0: Namaste.
4: Sir, मेरे को जानना था कि मैं मार्केट में काम करती हूँ, तो मुझे कौन सा ITR भरना चाहिए और क्या जो भी इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म जो भी जानकारी है वो कहाँ से प्राप्त होगी?
0: बहुत अच्छा सवाल है, और हम लालिमा और मनोज, अभी आज 25 जुलाई है, 31 जुलाई आखिरी तारीख है आयकर विवरणी दाखिल करने की। कविता, अगर आप मार्केट में काम करते हैं और अगर आप F&O में काम करते हैं, ध्यान से सुनिएगा इसको, तो फिर आप ये बिजनेस इनकम, इसको दिखाया जाता है। आपको पता होगा इनकम के 5 स्रोत होते हैं, सैलरी, बिजनेस, अदर सोर्सेज, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स। तो फिर आपको बिजनेस रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, बकायदा खाते भी रखने पड़ते हैं, डिपेंड करता है आपकी टर्नओवर कितनी, उसमें फिर टैक्स ऑडिट का प्रोविजन भी होता है। और अगर आप मार्केट में डिलीवरी बेसिस पे काम करते हैं, यानी कि आप एक निवेशक की तरह काम करते हैं, आप डिलीवरी लेते हैं, तो आपको फिर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। तो जो पहला वाला मैंने बताया, अगर आप बिजनेस में काम करते हैं तो आपको ITR 3 आपके लिए लगेगा। अगर आप कैपिटल गेन यानी कि डिलीवरी लेके काम करते हैं, और एक इसमें इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के काम की होगी, कि मान लीजिए आप उसको एज अ बिजनेस दिखाते हैं और कल को को आप उसको स्विच कर देते, नहीं नहीं मैं तो बिजनेस नहीं, मैं तो इसको डिलीवरी की तरह, पहले एफ एंड ओ की तो बात अलग है, पर अगर आप डिलीवरी में भी दो तरीके से किया जा सकता है, कैपिटल गेन में या बिजनेस की तरह, एक दफे आपने जो सिलेक्ट कर लिया उसको फिर आप स्विच नहीं कर सकते हैं। ये कविता इस पे ध्यान दीजिएगा। तो आप अगर इसको कैपिटल गेन में ले रहे हैं तो आईटीआर 2 होगा, अगर बिजनेस की तरह ले रहे हैं तो आईटीआर 3 होगा। अब ये कविता डिपेंड करेगा कि आपका जो मार्केट में जो काम है वो किस प्रकार का है, उसकी वॉल्यूम कितनी है और आपका इंटेंशन क्या है, आपका इंटेंशन एज एन इन्वेस्टर।

0: है या आपका इंटेंशन एज अ ट्रेडर है? जी,
1: दिल्ली से हमारे साथ जगनलाल जी हैं, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
2: सर फोन मत काटना, मेरा लाइव रेडियो पे नहीं है, फोन पे ही हूँ।
1: जी
0: हाँ जी, हाँ जी
2: सर, मेरा एक्सपर्ट से ये सवाल है। मैंने अभी आईटीआर 2 भरी थी
0: जी,
2: तो उसमें कैपिटल गेन फ्रॉम लैंड हाउस प्रॉपर्टी
0: जी,
2: मैंने 2013-14 में एक प्लॉट लिया था
0: जी,
2: और अभी 2025 में अक्टूबर में बेचा
0: जी।
2: तो जब मैंने लिया था 46 लाख का
0: जी,
2: बैंक से कुछ लोन के अगेंस्ट डिफॉल्टर का ऑप्शन में
0: जी,
2: और अभी बिका है वो 38,25,000 का
0: जी।
2: मतलब वो 2013 में लिया था, उस टाइम प्रॉपर्टी के रेट चढ़े हुए थे, अब वो होलो हो गया
0: जी।
2: अच्छा, एनी हाउ जब मैंने उसमें फिगर डाली तो उसने इंडेक्सेशन से उसको 46 लाख का तो 76 लाख दिखाया
0: जी जी जी,
2: लेकिन जब मैं लॉस कैलकुलेट लॉस का कॉलम आया तो उसने ओनली 46 में से वो 38 माइनस करके और वो 8 लाख के करीब जो है वो दिखाया
0: जी।
2: कोई क्लोज कोई चेंज कर दिया है या क्या है
3: आपका सवाल?
0: हाँ मैं समझ गया इनका सवाल लाले, देखिए इनका नाम जगनाल जी है। तो जगनाल जी देखिए, इसमें दो ऑप्शन होते हैं जो लोग प्रॉपर्टी बेचते हैं कैपिटल गेन में। एक आपके पास इंडेक्सेशन का एडवांटेज होता है, तो आपने जो क्या किया, जब आपने कैलकुलेट किया तो आपने इंडेक्सेशन चूज कर लिया, और उसने जब कैलकुलेशन करके बताया तो उसने विदाउट इंडेक्सेशन लेके आपका सीधा सीधा 46 लाख या इनका जो भी था उसमें से 38 लेस करके 7 लाख कर दिया। तो आप कृपया इसको एक बार और आईटीआर 2 में चेक करिए कि जो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, आप इंडेक्सेशन ऑप्शन सेलेक्ट करिए, और उसको जिसमें आप लॉस भर रहे हैं वो भी इंडेक्सेशन में ही भरिए। ये दो आइटम मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके भरते टाइम मिक्स हो गया है, तो इसको आप एक दफे चेक करिए। लॉस तो आपका दोनों ही हालात में आ रहा है, उसमें यह है कि उसमें, और मैं आपको ये बता दूं, इंडेक्सेशन में आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो बढ़ा सकते हैं, पर इंडेक्सेशन के माध्यम से आप लॉस क्लेम करना चाहते हैं तो इस पे जो कैलकुलेशन है वो उसको ध्यान से फॉलो करिए। मैं बताना चाहूंगा सभी श्रोताओं को मनोज और लालिमा के जो आयकर की विवरणी है, जो इनकम टैक्स रिटर्न है, उसमें बड़े सिस्टमैटिक तरीके से कैलकुलेशन दी हुई है। तो जगनाल जी चेक करिए, अगर आपको फिर भी कठिनाई आ रही है तो मैं सलाह दूंगा आपके इर्द गिर्द अगर कोई एक्सपर्ट है, क्योंकि हम रेडियो पर, आई विश के हम सॉल्व कर सकते पर रेडियो पर क्योंकि कैलकुलेशन हम तो दिखा नहीं सकते, तो कोई इर्द गिर्द आपके एक्सपर्ट है आप उसकी सहायता ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है जो मैंने बताया उससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा।
3: Alright, let's take a look at the US markets now. US indices displayed mixed trend yesterday. The Dow Jones Industrial Average rose nearly 0.5%. S&P 500 closed marginally higher, while the Nasdaq Composite Index shed over 0.6%. All three major indices posted weekly losses as investors sold chip stocks on worries about massive spending on artificial intelligence. For the week, the Nasdaq slid 2.2% and the S&P 500 declined 0.6%, with both indices posting their second straight weekly losses. Meanwhile, the Dow fell 0.4%, marking its third consecutive weekly decline. And now we are joined by Vishal from Delhi. Yes, Vishal, please ask your question. जी, Vishal जी।
4: जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने आईटी शेयर का कोई स्टॉक ले रखा है, उसका अभी रिजल्ट नहीं आया, तो उसका रिजल्ट तक मेरे को वेट करना चाहिए या सेल कर दूं?
0: अच्छा, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि आईटी में काफी रोलर कोस्टर राइड एक तरह से हो रही है, कभी उथल कभी ऊपर कभी नीचे। कुछ आईटी कंपनीज के नतीजे अच्छे आए हैं, कुछ के तसल्ली बख्श आए हैं, सैटिस्फैक्ट्री आए हैं, और कुछ एक के बहुत अच्छे नहीं भी आए। अब देखिए विशाल जी, ये तो निर्भर करता है कि कौन सी कंपनी, क्योंकि हम यहाँ कंपनी स्पेसिफिक तो बात करते नहीं है, तो अब बड़ी दुविधा है कि आप पूछ रहे हैं कि उसके रिजल्ट आए नहीं, मालूम नहीं उसके रिजल्ट कैसे आए, और जब तक हम कंपनी का नाम ना जाने, और कंपनी का नाम हम आपको लेने नहीं देंगे ना हम उस पर चर्चा करेंगे। तो इसलिए मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप कंपनी के जो पिछला रिकॉर्ड है उसके आधार पर आप एक एक डिसीजन ले सकते हैं कि आएगा। और मैं एक मजेदार बताऊं शेयर्स के बारे में बताऊं कि कई दफे क्या होता है कि कंपनी के रिजल्ट अच्छा आया, उसके बाद उसमें एकदम बिकवाली आती है और उसके रेट नीचे चले जाते हैं, तो ऐसा भी होता है। तो इसलिए विशाल जी, अब ये तो क्योंकि मामला यहां सस्पेंस का है, तो इसमें आप इस कंपनी के पिछले रिकॉर्ड देखें और कोशिश करें ये जो क्वार्टरली अपने रिजल्ट्स फाइल करते थे स्टॉक एक्सचेंज में वो रिजल्ट्स कैसे रहे हैं, ये भी आप देखने की कोशिश करें, हो सकता है उससे आपका कुछ दिशा मिल जाए। बाकी कंपनी के बिना लिए तो हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा ये बताना। जी
1: आइए आपको लिए चलें गाजियाबाद, हमारे साथ फोन लाइन पर है अमित। अमित जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
5: सर मेरा या गुड इवनिंग मार्केट।

0: So good evening, Kohli sir.
1: Good evening.
0: So I should also find one opportunity to clear my one confusion regarding filing on ITR.
1: Yeah.
0: तो क्वेश्चन इज कि सर मैंने मेरे जो कुछ शेयर्स हैं तो वो बायबैक कर लिए थे कंपनी ने. तो आफ्टर बायबैक इट इज आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वेदर दिस इज वेदर आई हैव दिस इज रिलेटेड टू कैपिटल गेन और नॉन कैपिटल गेन. क्योंकि एआईएस में वो जो एआई स्टेटमेंट है उसमें वो एज अ डिविडेंड इनकम दिखा रहा है जो कंपनी ने बायबैक करा. बट लेकिन मेरे जो ब्रोकर साइट है उसमें वो दिखा रहा है इट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विदाउट एनी सेल वैल्यू. सेल वैल्यू इसका मीनिंग है जीरो बट लेकिन परचेज वैल्यू वो दिखा रहा है. तो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये मेरा कैपिटल गेन होगा या सिंपल डिविडेंड इनकम होगी सो दैट अकॉर्डिंगली आई कैन फाइल एन आईटीआर 1 और आईटीआर 2.
2: सो अमित एज पर द न्यू प्रोविजंस दिस इज बायबैक इज कंसीडर्ड एज डिविडेंड्स नाउ और जो कैपिटल वैल्यू है यू कैन रिड्यूस योर परचेज प्राइस फ्रॉम दैट. सो आई थिंक यू विल हैव टू रिलाई मोर ऑन एआईएस. व्हाट एआईएस इज शोइंग इज करेक्ट. जो ब्रोकर्स नोट दिखा रहा है हो सकता है ब्रोकर्स नोट माइट बी शोइंग एज पर द ओल्ड प्रोविजंस. एज पर द न्यू प्रोविजन बायबैक इज ट्रीटेड एज डिविडेंड एंड यू कैन रिड्यूस द कैपिटल वैल्यू फॉर द कैपिटल गेन लॉस और देयर इज एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपनिंग. सो प्लीज प्लीज फॉलो योर एआईएस बिकॉज एआईएस में टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज लालिमा एंड मनोज इट हैज बीन अपडेटेड नाउ. सो द अपडेटेड प्रोविजंस आर देयर एज the amendments made by the budget and all that. So I think you follow AIS and you can also inform this to your broker ke aapke usme aisa aa raha hai to usko aap theek kariye. Ji
3: haan, ye khabron ka silsila aage badhate hain. NTPC Limited ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के वित्तीय नतीजे जारी कर दिए हैं. कल जारी वक्तव्य में कहा गया है कि संचालन से कंपनी का समेकित राजस्व वार्षिक आधार पर 7.8% बढ़कर 50,741 करोड़ रुपए पर पहुंच गया. इस दौरान एनटीपीसी का समेकित शुद्ध लाभ 12.9% बढ़कर 6,896 करोड़ रुपए दर्ज हुआ. और अब हमारे साथ फोन लाइन पर धैर्य के साथ बने हुए हैं दिल्ली से अमित झा. अमित जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए.
4: नमस्कार सभी को. हेलो सर.
3: जी नमस्ते.
4: सर कोहली सर से मेरा प्रश्न ये है सर
2: जी
4: कि सरकार जो हो रिन्यूएबल एनर्जी पे जैसे मान लो बढ़ावा देने के लिए बात कर रहे हैं सर, लेकिन जो सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा या हाइड्रो पावर जो भी नवीकरणीय ऊर्जा है उसमें एक सर दिक्कत ये आती है जो उसकी इक्विपमेंट होती है ना जो सेटअप बैठाने के लिए सर
2: जी.
4: उसकी जो क्या कहते हैं मशीनरी है वो महंगी पड़ती है. वो अभी भी हम उसको हम आयात ही करते हैं यानी कि जो ढांचा बैठाने के लिए हमें चाहिए होता है सर वो हम अभी भी विदेश से मंगाते हैं. और दूसरी चीज सर कभी किसी कंपनी का अगर ए नाम की कोई कंपनी है बी नाम की कंपनी का ए में अगर मर्ज हो जाता है तो किस हिसाब से ये ए नाम की कंपनी को फायदा करेगा. मर्ज होने के मतलब क्या वजह है क्या इसके फायदे नुकसान है. धन्यवाद सर.
2: अमित मुझे याद है अमित ने कुछ पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते भी ग्रीन एनर्जी से काफी कंसर्न रहते हैं. इनके अक्सर सवाल ग्रीन एनर्जी से संबंधित होते हैं. तो इंपोर्टेड इक्विपमेंट उसमें अमित जहा है पर अमित देखिए पर धीरे धीरे कर ये सस्ता हो रहा है. इस पर टेक्नोलॉजी में काफी काम हो रहा है, रिसर्च हो रही है. हम सोलर सेल्स की बात करें, हम विंड एनर्जी की बात करें, हम बायोफ्यूल्स की बात करें, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, तो धीरे धीरे करके हम इवॉल्व कर रहे हैं. अमित पहले के मुकाबले अब बहुत सस्ता है. कुछ इक्विपमेंट अभी भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं पर भरसक प्रयास चल रहे हैं इसको भारत में ही लाने का और भारत में ही करने का. दूसरा आपने कंपनी मर्ज करने के बहुत सारे कारण होते हैं. कई बार इसको हम अंग्रेजी में सिनर्जिस्टिक एडवांटेजेस कहते हैं. जैसे एक कंपनी के पास कुछ एक स्ट्रेंथ है, दूसरी कंपनी के पास दूसरी स्ट्रेंथ है और दोनों मिल जाए तो एक और एक 11 हो जाते हैं. तो एक और एक 11 के कॉन्सेप्ट पे मर्जर किया जाता है और एक दूसरे के रिसोर्सेस को एक करकर और आगे बढ़ने की मुहिम होती है. उसमें फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती है, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा दिखाई देती है. बहुत सारे कारण होते हैं मर्जर के अमित. अब कोई मर्जर अब की बार आएगा तो फिर हम आपसे उसको स्पेसिफिकली बात करेंगे. जी
5: ऑलराइट, वी आर जॉइंड बाय प्रेमजीत फ्रॉम दिल्ली. यस प्रेमजीत जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.
6: नमस्कार पूरे एंटायर टीम को. कोहली साहब मैं आपका बहुत बड़ा शिष्य हूँ, आपको प्रणाम.
2: मेरा भी प्रणाम सर.
6: सर मेरा सवाल है, मैं सी फेरर हूँ सर, मैं नाविक हूँ जो विदेशों में जहाजों पे काम करता हूँ जिन पे आजकल डिस्प्यूटेड रिस्ट्रक्शन चल रहा है.
2: जी, जी.
6: सर मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग को सर अलॉटमेंट होता है सर यूएसडी में या यूरो में एनआरई अकाउंट में. तो हम जो पैसा कमाते हैं उस पर क्या यहाँ की इंडियन टैक्स रिजिम में कोई प्रोविजन है, कोई अलग सा क्लाउज है? क्योंकि हम लोग तो एग्जेम्प्टेड है सर,
2: एज
6: पर लॉ बेहतर जानते हैं, आपसे बेहतर कौन जान सकता है.
2: चलिए जी प्रेमजीत आपका सवाल समझ में आ गया. देखिए आप सी फेरर हैं और अगर आप भारत से बाहर रहते हैं 180 दिन तो ऐसे हालात में फिर आप एनआरआई हो जाते हैं. तो एनआरआई की जो टैक्स

0: इनकम भारत में जो इनकम है वही टैक्सेबल है, विदेश में जो इनकम हो रही है वो भारत में टैक्सेबल नहीं है। इस पैसे को निवेश करके जब आप भारत से कमाते हैं, मान लीजिए आपने को फिक्स डिपॉजिट किया, म्यूचुअल फंड्स में कुछ लिया, कुछ भी आपने निवेश किया, वो फिर प्रेमजीत जी टैक्सेबल हो जाती है। तो जो आपकी डॉलर्स में इनकम आ रही है, विदेशी मुद्रा में आ रही है, उस दौरान जब आप भारत से बाहर हैं, तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि आप एनआरआई है कि नहीं। उसके लिए प्रोविजंस हैं आयकर अधिनियम के अंदर, जिसको हम नॉन रेजिडेंट इंडियन जब बोलते हैं, तो 180 दिन अगर आप भारत से बाहर रहे हैं तो आप उस साल में एनआरआई हो जाते हैं। उसमें भारत में आपकी सिर्फ भारतीय इनकम टैक्सेबल होगी, विदेशी इनकम टैक्सेबल नहीं होगा। अगर आपका दोनों जगह टैक्स लग गया है, मान लीजिए आप जिस देश में है उस देश में लग गया, सी फेयरर्स को ये बड़ी प्रॉब्लम आती है, बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि आप जब पानी पर हैं तो कुछ पीरियड के लिए आप किसी और पानी में चले गए, फिर किसी और देश के। अच्छा, मरीन रूल्स भी होते हैं कि आप किस देश का ये पानी है, तो बड़ी ही कठिन परिस्थिति कई बार हो जाती है। तो आसान भाषा में आप ऐसे रखिए कि अगर आप एनआरआई हैं बाय इनकम टैक्स लॉ, तो उसमें आपकी वो इनकम भारत में टैक्सेबल नहीं होगी। केवल भारत में निवेश किया हुआ पैसा या भारत में कोई बिजनेस है, भारत में कोई पार्ट टाइम जॉब है, वही सिर्फ टैक्सेबल होगा।
1: दिल्ली से ही हमारे साथ फोन लाइन पर है प्रकाश। प्रकाश जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
2: जी, मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार।
1: जी नमस्ते।
2: कोहली साहब को भी नमस्कार।
0: नमस्कार प्रकाश जी।
2: मेरा क्वेश्चन आईटीआर के बारे में ही है। ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का तो आईटीआर 1 में है प्रोविजन है, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस होता है क्या वो भी हम आईटीआर 1 में कोई उसमें कोई उल्लेख है नहीं उसमें उसका, तो उसके लिए क्या आईटीआर 2 भरना पड़ता है अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉस हो?
0: जी, उसके लिए फिर आपको आईटीआर 2, बिल्कुल प्रकाश जी आपने ठीक पकड़ा है, अगर आपका सैलरी इनकम है और थोड़ा सा कैपिटल गेन है और आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, तो फिर आप आईटीआर 1 थोड़ा सा सरल है, उसका नाम भी सरल होता है, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। पर अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉस है जिसको आप सेट ऑफ करना चाहते हैं, कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बिल्कुल प्रकाश जी आईटीआर 2 का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत अच्छी आपने रिसर्च जानकारी हासिल करी है, आपकी जानकारी बहुत दुरुस्त है, इस बात को मैं सत्यापित कर सकता हूं।
3: Alright, let's take a look at another story. Now, India has been placed in the lower tier of additional tariffs under the final measures under Section 301 of the US Trade Act, providing a relative advantage to Indian exports in key sectors. The Commerce and Industry Ministry today informed that the United States Trade Representative has imposed an additional 10% duty on imports from India, which is a reduction from the 12.5% duty initially proposed on the 2nd of June this year. The ministry noted that India's exports to the United States, which currently attract zero additional duties such as general pharmaceuticals, smartphones and certain other specified products, continue to remain outside the scope of the additional 10% duty. Further, products already covered under Section 232 measures, including steel, aluminium and auto parts, are also not subject to the additional 10% duty.
1: यहाँ पर समझना चाहेंगे कुल मिलाकर ये आंकड़े क्या कह रहे हैं, सरल लोगों की भाषा में ये हमारे लिए अच्छी खबर है या थोड़ी चिंता?
0: कुछ मिली जुली सी मैं कहूंगा, क्योंकि सेक्शन 301B है यूएस ट्रेड एक्ट 1974 का, जिसके अंतर्गत हमारे ऊपर ये ड्यूटी लगाई गई है, और मुझे लगता है कि और जिस कारण से लगाई गई है वो कारण की वजह से मैंने बोला मिला जुला है, क्योंकि जबरन मजदूरी वगैरह इस प्रकार के भारत कुछ ऐसा रॉ मटेरियल चीन से मंगाता है जिसमें जबरन मजदूरी होती है। अब मिला जुला सा मैं कहूंगा, हालांकि बाकी कुछ देशों के मुकाबले थोड़ा सा हमारे ऊपर कम लगा है, बाकी देशों पर 12.5% लगा है, और 70% तो हमारे वैसे ही 70% इसमें कवर होते हैं, बाकी तो हमारे वैसे ही एग्जेम्प्ट कैटेगरी, जैसा कि अभी लालिमा ने पढ़ा उसमें मोबाइल फोन हैं, जेनरिक ड्रग्स वगैरह हैं, जिन पे 0% है। मिला जुला सा मैं इसको कहूंगा।
1: आइए चलें कोलकाता, हमारे साथ हैं डीआर आचार्य, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
4: नमस्कार सर।
1: नमस्ते
4: सर, हम एनपीएस में और थोड़ा पैसा लगाना चाहता है, अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है लगाना ठीक होगा कि नहीं?
0: आप शेयर्स में लगाना चाहते हैं तो
4: एनपीएस
0: में लगाना? नहीं, एनपीएस में तो बहुत अच्छा विचार है आचार्य जी, आप उसमें लगा सकते हैं, आप अकाउंट को ऑनलाइन खुलवा सकते हैं। और एनपीएस में जो लगाते हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि एनपीएस, बहुत सारे लोग नहीं जानते कि एनपीएस का जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर है वो आप चूज कर सकते हैं, आप सेलेक्ट खुद ही सेलेक्ट कर सकते हैं कि एनपीएस में आप इक्विटी का ज्यादा कंपोनेंट चाहते हैं कि आप डेट का ज्यादा चाहते हैं, आप फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट का ज्यादा चाहते हैं। तो जिस हिसाब से आपकी आचार्य जी रिस्क एपेटाइट है, उसको हिंदी में हम कहेंगे जोखिम उठाने की क्षमता है, उसके अनुसार आप उस मिक्स को चूज कर सकते हैं। एनपीएस बहुत अच्छा है और लंबे वक्त के लिए आप नजरिया रखिए, और मुझे लगता है आपको आगे कारगर सिद्ध होगा।
3: All right, now let's take a look at the oil prices. Well, global crude oil prices continued their upward momentum this week amid supply risks linked to West Asia conflict.

0: Conflict and disruptions to Red Sea shipping routes. During the week at the Intercontinental Exchange, Brent crude September futures surged more than 9.8% to settle at $96.78 per barrel. West Texas Intermediate crude September futures jumped 9.2% to end at $89.31 per barrel.
1: श्रोताओं, आपने बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया. इसके लिए अपनी टीम की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे. और शरद जी, आपने हमारे साथ चर्चा में और श्रोताओं के सवालों का जितना बढ़िया जवाब दिया, उसके लिए श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे.
2: It was my pleasure. Thank you so much.
0: Thank you, Sharad ji, once again. And friends, before we close, here's a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices register steep weekly losses amid geopolitical concerns. U.S. stock markets log weekly decline. And global crude oil prices extend rising streak this week. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor, Manoj Pathak, signing off. So, from all of us here, Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर. इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से. तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

11:41 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ आप जुड़े हैं प्रोग्राम गीत मेरे मन मीत। आपके साथ मैं विकास, स्वागत है आप सबका।

0: हाँ
1: क्या चुप रहूं
0: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
0: क्या है

किशोरदा की आवाज़ और फिल्म का नाम खेल खेल में 1975 की यह फिल्म है और इसी के साथ इसी आखिरी गीत के साथ विकास आपसे चाहता है इजाज़त, लेकिन तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, उनका ख्याल, जो रखते हैं आपका ख्याल। आज के लिए बस इतना ही।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना त्याग पत्र सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ उठा न सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को त्याग पत्र सौंपने का निर्णय लिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहल के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रंका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने की मांग स्वीकार कर ली है। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियम अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सदन के सोमवार के कामकाज सूची में शामिल है। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक पेश करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का काम 46 लाख का आंकड़ा पार कर गया है। घर घर जाकर फॉर्म वितरण का काम भी लगभग पूरा हो गया है और तकरीबन सभी मतदाताओं को फॉर्म मिल गए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 46,06,924 प्रपत्र डिजिटाइज किए गए हैं, जो दिल्ली के कुल 1,45,10,298 मतदाताओं का 45.53% हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम

का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रियों का पांचवा जत्था माउंट कैलाश और मानसरोवर झील की पवित्र यात्रा पूरी कर गैंगटोक सुरक्षित लौट आया है। यात्रा के सफल समापन के उपलक्ष्य में सिक्किम पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने गैंगटोक में सम्मान समारोह आयोजित किया। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर पानी पर लिखी कहानी। आज के दिन आप इस कार्यक्रम में सुनते हैं एक कहानी जिसमें घुले होते हैं गीतों के रंग। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी, वो मासूम लड़की, वो बारिश की रात।

0: वो एक अजीब शाम थी। अजीब इसलिए क्योंकि बारिशों के पानी से सारी सड़कें भर चुकी थीं और बरसात फिर भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। दिल्ली की सड़कों पर चारों ओर बस पानी ही पानी नजर आ रहा था। एक तो शाम को ऑफिस से छुट्टी का टाइम और उस पर ये बारिश, ऐसा लगता था कि जैसे सारा शहर ही रोड पर आ गया हो। मैं देर तक किसी कैब या बस का इंतजार करती रही, लेकिन जाम की वजह से कोई भी दिल्ली से मेरठ जाने को तैयार ही नहीं हो रहा था। गोद में अपनी नन्ही गुड़िया को उठाए आखिरकार हार कर थक कर मैं एम्स हॉस्पिटल के पास एक बस स्टैंड पर बैठ गई। जैसे जैसे रात गहरा रही थी वैसे वैसे एक अनजाने डर से मेरा कलेजा मुंह को आने लगा। तभी अचानक मेरी नजर मेरे बगल की बेंच पे गई। वहां एक लड़की घुटने में मुंह छिपाए बैठी थी। इतनी रात को बस स्टैंड पर एक और महिला को पाकर मुझे थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन अगले ही पल हजारों सवाल मन में कौंध गए। इतनी रात में ये कौन है और यहाँ क्या कर रही है? अब इन सवालों और डर से निपटने के लिए मैंने ईयरफोन कान से लगाया और मोबाइल पर रेडियो सुनने लगी।
1: ये रातें नहीं पूरी।

वो कोई रात के 11 बजे का वक्त रहा होगा जब एक कैब वाला किसी तरह मुंह मांगे किराए पर मेरठ जाने को तैयार हुआ। मैं जैसे ही कैब में बैठने को हुई तो नजर फिर से वहां बैठी उस लड़की पर गई और फिर दिल में सवाल कौन था, ये इतनी रात को यहाँ क्यों है, कहाँ जाना होगा इसे। खैर, मैंने इस ख्याल को झटका और गोद में सो चुकी गुड़िया को संभाला और कैब में बैठने लगी। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, सुनिए। मैं रुक गई, पीछे मुड़कर देखा तो आवाज उस लड़की ने ही दी थी। मैंने कहा, जी कहिए, आप कहाँ जा रही हैं? उस लड़की ने मानो डरते डरते पूछा था। मैं मेरठ जा रही हूं। क्यों, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूं? वो लड़की बोली। मन में फिर एक अनजाना सा डर उठा। पता नहीं ये किस तरह की लड़की है, कुछ जानती भी नहीं हूं इसके बारे में। ऐसे में इतनी रात को इसे अपने साथ बैठाना ठीक रहेगा या नहीं? ये सोचते सोचते जैसे ही कदम आगे बढ़ने को हुए, गोद में सोई मेरी गुड़िया गुनगुना उठी। एक नजर उसके मासूम चेहरे को देखा, फिर उस लड़की को। मन के अंदर एक ममता की चिंगारी उठी जो सारे आशंकाओं के बादल को चीर गई। मैंने कहा, आ जाओ। वो लड़की आकर कैब में मेरे बगल बैठ गई। कैब चल पड़ी और रेडियो पर गीत बजने लगा।

वास्तव में हर राह हर सफर अपने पीछे यादों के निशान छोड़ते जाते हैं। गीत बंद हुआ तो मेरी नजर बगल में बैठी उस लड़की पर गई। मैंने गौर से देखा तो वो कोई 17 या 18 साल की कमसिन लड़की थी। मैंने उससे पूछा, कहाँ जाना है तुम्हें? बस रास्ते में ही उतरना है, वो घबरा कर बोली थी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जी गरिमा। गरिमा बहुत प्यारा नाम है, किसने रखा? मुझे लगा कि वो थोड़ी घबरा रही है तो मैंने बातें बढ़ाने की कोशिश की। वो थोड़ा सोचकर बोली, शायद पापा ने। अच्छा वाह, वैसे क्या मतलब है तुम्हारे इस नाम का? मैंने सवाल किया। नहीं, कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। आप बताइए। शायद मान सम्मान, मुझे ऐसा लगता है यही मतलब होना चाहिए। फिर बात को बदलते हुए मैंने कहा, गरिमा तुम्हारे घर में कौन कौन है? माँ, एक छोटी बहन, एक छोटा भाई, पापा बचपन में ही गुजर गए, उसने धीरे से जवाब दिया। ओह, फिर तो तुम्हारी माँ बहुत फिक्र कर रही होंगी तुम्हारे, कितनी रात हो गई है ना? वो चुप रही, इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने बात बदल दी, गरिमा देखो ना कितनी बारिश हो रही है, तुम्हें बारिश का मौसम कैसा लगता है? वो बच्चों की तरह चहक उठी, बहुत अच्छा लगता है। तभी बारिश के मौसम का ये गीत बज उठा और हम दोनों हंस पड़े।

गाने में खोई उस लड़की को अचानक जैसे कुछ याद आया। उसने मुझसे पूछा, आपके पास मोबाइल है? मुझे कॉल करनी है। मैंने मोबाइल उसे दे दिया और वो कोई नंबर मिलाकर सीट के एक कोने में सिमट कर धीरे धीरे जाने क्या बातें करने लगी। मुझे उसकी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो लड़की बहुत अजीब लग रही थी। मोबाइल पर बात करने के बाद वो थोड़ी खुश नजर आने लगी। उसे खुश देखकर मैंने उससे फिर पूछा, गरिमा कहाँ जाना है तुम्हें, तुमने बताया नहीं। जवाब में वो मेरा चेहरा देखने लगी, मानो कोई जगह तलाश रही हो। मैंने फिर पूछा, घर कहाँ है तुम्हारा? घर छोड़ दिया है मैंने, भाग आई हूं घर से। वो अचानक थोड़ी आक्रोशित हो उठी। अच्छा, क्यों? मैंने पूछा। रोज रोज की रोक टोक, यहां मत जाओ वहां मत जाओ, बस पढ़ाई करो, दम घुटने लगा था मेरा घर में। अब वो बहुत अलग सी लड़की दिखाई दे रही थी। घर छोड़ दिया, लेकिन अब जाओगी कहां? कुछ तो सोचा होगा ना? हाँ, अपने बॉयफ्रेंड के पास, अब वही मेरा सब कुछ है, बहुत प्यार करता है मुझे। कहां मिलेगा तुम्हारा बॉयफ्रेंड? कहीं रास्ते में, उसने कोई फिक्स जगह नहीं बताई। अच्छा, कहां रहता है वो? मैंने फिर पूछा तो उसने कहा, पता नहीं। तुम्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं, फिर भी उसने तुम्हें आने के लिए कहा और तुम घर छोड़कर चली आई? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। तो वो बोली, प्यार करती हूं मैं उससे, तो भरोसा तो करना ही पड़ेगा ना। मैं सोच में पड़ गई, ये नादान लड़की इतना भी नहीं समझ रही कि जिसे ये भरोसा कह रही है वो केवल नासमझी है, और जिसे ये प्रेमी कह रही है वो केवल एक धोखा है, छलावा है। ये अल्हड़ मासूम लड़की अभी नहीं जानती इस रंग बिरंगे

मैं उसे समझाना चाहती थी, लेकिन ये भी डर था कि कहीं ये बुरा मान गई और इतनी रात को रास्ते में कहीं उतर गई तो क्या होगा फिर इसके साथ। ये सोचकर मेरी रूह कांप उठी। मैंने बात को बदलते हुए कहा, गरिमा देखो बारिश अभी भी हो रही है। कुछ लोग इस बारिश को खराब मौसम कह रहे होंगे और कुछ बहुत प्यारा। मुझे लगता है कि प्रेमियों को ये सावन का मौसम बहुत हसीन लगता है ना? हाँ बिल्कुल, वो चहक पड़ी। जब ये काली घटाएं घिरती है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये मुझे ही भिगोने आ रही हैं, और मेरा मन करता है कि बस मैं बारिश में भीगती रहूं। और अगर वो होता तुम्हारे साथ तो? मैंने जानबूझकर मजाक किया। तो इस मौसम में चार चांद लग जाते, उसने उसी चहक के साथ जवाब दिया। वैसे वो अभी मिलेगा कहाँ, मेरा मतलब है अगर वो भी साथ होता हमारे तो अच्छा लगता। मैंने बहुत संभल कर बात आगे बढ़ाई। पता नहीं कहाँ होगा, पूछ लो फिर। मोबाइल नहीं है मेरे पास, उसने मुझे मोबाइल लाने से मना किया था। क्यों मना किया था, मैंने पूछा। उसे डर है कि कोई हमें ढूंढ ना ले, बहुत टैलेंटेड है वो, उसने मुस्कुराकर कहा। बहुत चालाक है वो, मैं धीरे से फुसफुसाई। अच्छा तो बात कैसे करती हो उससे? ऐसे ही, जैसे अभी आपसे मांग कर किया।

जवाब दिया, तो ये बहुत गहरे प्यार का मामला है। मैंने मुस्कुराकर उसे देखा। जी, उसने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। वैसे क्या उम्र है तुम्हारी? वो बोली, 18 की हो गई हूँ। मतलब भाग कर शादी करने की कानूनी उम्र हो गई है तुम्हारी, मैंने शरारत से कहा। तो वो हंसकर रह गई। मैंने उसकी मासूम आंखों में झांका, वहां रंग बिरंगे सपने तैर रहे थे और मुझे एक गीत याद आया।

0: कैब धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बारिश की वजह से जगह जगह जाम मिल रहा था। अचानक मेरी गोद में सोई गुड़िया रोने लगी। मैंने कैब एक जगह साइड में रुकवाई, गुड़िया को फीड कराया, दवा दी और फिर उसे बहलाने लगी। गरिमा भी गाड़ी से नीचे उतर आई। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ पूछना चाह रही हो। थोड़ी देर खामोश रहकर वो बोली, कितने साल की है आपकी गुड़िया?
1: 1.5 साल की।
0: क्या हुआ इसे? कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट है इसे, दिल की बीमारी। एम्स से इलाज चल रहा है, आज भी वहीं गई थी।
1: इसके पापा कहाँ हैं? मेरा मतलब आपके हस्बैंड।
0: गरिमा कुछ सोचते हुए बोली, बेंगलोर में रहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, मैंने उसे बताया। मैं भी पहले इसी जॉब में थी, लेकिन अब जॉब छोड़ चुकी हूं।
1: आपने जॉब क्यों छोड़ी? उसने पूछा।
0: मेरी गुड़िया मेरी दुनिया है और इसका भविष्य मेरे लिए किसी भी चीज से अनमोल है गरिमा। मैं अपनी बच्ची को बढ़ते हुए, मुस्कुराते हुए, खेलते हुए देखना चाहती थी।
1: लेकिन आप ये बेंगलोर में अपने हस्बैंड के साथ रहते हुए भी कर सकती थी, फिर आप यहां कैसे?
0: उसने सवाल किया। वहां मेरी गुड़िया का इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं यहां मेरठ में अपने भाई के पास आ गई, ताकि एम्स में मेरी बेटी का अच्छे से इलाज हो सके।
1: आप अपनी गुड़िया से बहुत प्यार करती हैं? गरिमा ने धीरे से पूछा।
0: जी, अपनी जान से भी ज्यादा। और मैं ही क्या, हर माँ बाप अपनी औलाद से बहुत प्यार करते हैं गरिमा। काश कि मैं अपनी जान देकर भी अपनी बच्ची को ठीक करा पाती। ये कहते कहते मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। कैब फिर से चल पड़ी थी और मैं गुड़िया को निहारते हुए गुनगुनाने लगी।

गीत गुनगुना रही थी और गरिमा कुछ सोच रही थी। अचानक उसने पूछा, आपने कभी प्यार किया है? हाँ किया है, बहुत प्यार किया है ना, अपनी इस बच्ची से, मैंने जवाब दिया। नहीं, मैं तो किसी और प्यार के बारे में पूछ रही थी, मेरा मतलब प्रेमी या पति से। अच्छा वो, हाँ किया है। तो फिर आपकी लव मैरिज हुई होगी है ना? हाँ, मैंने उसे जवाब दिया। भाग कर की? उसने पूछा। नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने कहा। मतलब आपके पेरेंट्स मान गए थे शादी के लिए? नहीं। वो इन बातों में बहुत इंटरेस्ट दिखा रही थी। गरिमा, भाग कर शादी करना ना तो मुझे मंजूर था और ना ही उसे जिसे मैं प्यार करती थी, मैंने उसे जवाब दिया। क्यों, जब माँ बाप को हमारे प्यार की परवाह नहीं तो फिर ऐसे माँ बाप को छोड़ देने में हर्जी क्या है? उसके हर सवाल और हर जवाब से मुझे लग रहा था कि वो लड़की अपने लड़कपन के शिखर पर है, बिल्कुल नासमझ और मासूम। मैंने उससे कहा, गरिमा मैं अपने पेरेंट्स से भी बहुत प्यार करती हूँ। मैंने एक नज़र गोद में सोई गुड़िया पर डाली और फिर बोली, मुझे विश्वास था गरिमा कि मेरे माता पिता मेरे बारे में बेहतर सोचेंगे, इसलिए उनके फैसले मुझे मंजूर थे। एक सच ये भी है कि भागने वाले जोड़े में लड़के की इज्जत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जबकि लड़की अगर मिडिल क्लास की है तो आज भी उसके पूरे कुल की इज्जत धूल में मिल जाती है। भगाने वाला लड़का अपने दोस्तों में हीरो समझा जाता है, उसके विपरीत जो लड़की भाग रही है उसे जिंदगी भर समाज में अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, लोग उसका और उसके माँ बाप का मजाक उड़ाते हैं। हालांकि लड़का और लड़की के बारे में ये दोहरा मापदंड गलत है, लेकिन हमारे समाज का यही नजरिया है जिसे इतनी जल्दी

बदल पाना संभव नहीं। सोचो गरिमा, अगर मैं और साहिल सिर्फ अपने बारे में ही सोचकर घर से भाग जाते तो मेरे वो माता पिता जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, क्या वो सुकून से जी पाते? फिर मेरी नज़र मेरी गोद में सोई बच्ची पर पड़ी, और ये बच्ची जिसके लिए आज मैंने अपने करियर, अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया है, अगर ये बड़ी होकर मुझे एक दिन छोड़कर किसी के साथ भाग जाए तो? गरिमा चुप रही, सिर झुकाकर कुछ सोचने लगी थी, शायद अपने हालात के बारे में, उसकी अपनी भटकती जिंदगी के बारे में।

फिर उसने धीरे से सिर उठाया और पानी की बोतल से एक घूंट पानी पिया। कुछ सोचते हुए धीरे से बोले, तो ये जो प्यार है इसकी कोई अहमियत नहीं? प्यार गरिमा, प्यार क्या होता है पहले ये समझ लेना जरूरी है। क्या होता है प्यार और इसका सही मतलब, उसने पूछा। तुम प्यार में हो और प्यार की खातिर अपना सब कुछ छोड़कर चली आई। तुमने अपना फायदा नुकसान नहीं सोचा। ये प्यार हो सकता है, लेकिन जिनसे तुमने प्यार किया और तुम जिनके साथ भाग रही हो, क्या वो भी तुमसे इतना ही प्यार करता है? शायद नहीं। वो अगर तुमसे प्यार करता होता गरिमा, तो वो तुमसे इस तरह अकेली घर छोड़कर आने के लिए नहीं कहता। प्यार तो खुद समर्पण करता है। प्यार किसी के बारे में अच्छा सोचना, उसका भला चाहना होता है। कोई अच्छा लग गया तो उसके साथ भाग जाओ या भगा कर ले जाओ, ये प्यार नहीं, स्वार्थ है। अगर किसी दिन उसके साथ नहीं निभी तो फिर कहाँ जाएंगे? कौन सा ठिकाना होगा? माता पिता को तो पहले ही छोड़ दिया, अब? गरिमा अपने होठों को दांतों से चबाने लगी थी। मैं बोलती जा रही थी, गरिमा प्यार तुम्हारी माँ तुमसे करती हैं। वो तुम्हारे बिना कई दिनों तक खाना नहीं खाएंगी। पति को खोकर उन्होंने किसी तरह तुम बच्चों के सहारे खुद को संभाला होगा। अब उनकी बेटी घर छोड़कर भाग गई है, इस सोच से उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। और तुम्हारे पापा, जिन्होंने प्यार से तुम्हारा नाम गरिमा रखा, तुम उनके नाम की गरिमा रख पाओगी? वो लड़की सिर झुकाए बस चुपचाप सुन रही थी। मैं जानती थी कि मैं ज्यादा बोल रही हूं, लेकिन फिर भी मैंने बोलना जारी रखा। गरिमा, मैं जानती हूं कि प्यार, शादी, जीवन साथी, ये सब भी जरूरी है, लेकिन एक सही समय पर, जब हम दुनिया में अपना एक मकाम हासिल कर लेते हैं, जब हम सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं, तब, उसके पहले नहीं। और अगर उसके पहले कोई अच्छा लगने लगे तो? उसने सवाल किया। तो अगर वो वास्तव में मुझे प्यार करता है तो वो मेरी भावनाओं का और मेरे पेरेंट्स का भी सम्मान करेगा। मुझे ऊंचा उठने में मेरी हिम्मत और ताकत बनेगा। जी हाँ, साहिल यानी मेरे प्रेमी ने मेरी भावनाओं का और मेरे पेरेंट्स के मान सम्मान

का ख्याल रखा। वो स्वार्थी नहीं था, उसने इंतजार किया जब तक कि मैं अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो गई, जब तक कि वो खुद सक्षम नहीं हो गया और जब तक कि मेरे पेरेंट्स मान नहीं गए। वो धैर्य से बस इंतजार करता रहा और मुझे लगता है कि हर प्यार करने वाला प्रेमी ऐसा ही करेगा।

वो लड़की खामोश थी। ऐसा लगता था जैसे कहीं गुम हो गई हो। कैब चलती रही। थोड़ी देर में मेरठ आ गया। रोड के किनारे मेरा भाई मुझे लेने आया था। कैब से उतरने से पहले मैंने किराया चुकाया और ड्राइवर से कहा, भैया इन्हें कुछ आगे तक जहां ये कहें पहुंचा दो और प्लीज मुझे कॉल करके बता देना। इतना कहकर जब मैं उतरने लगी तो उसने मुझे पीछे से आवाज दी, सुनिए मुझे एक कॉल करनी है। मैंने मोबाइल उसे दे दिया। उसने नंबर डायल कर कहा, सॉरी मम्मी, और सिसक कर रोने लगी। मम्मी मैं बारिश में रास्ता भूल गई थी, अब घर आ रही हूं। फिर कैब ड्राइवर से बोली, भैया मुझे गुड़गांव तक ड्रॉप कर दोगे? मेरी मम्मी मेरा इंतजार कर रही हैं। मुझे जल्दी घर पहुंचना है।

तो ये थी आज की कहानी, वो मासूम लड़की वो बारिश की रात। इस कहानी की प्रस्तुति, परिकल्पना और निर्देशन रश्मि कुकरेती का। और अब मुझे यानी कुसुम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: हाँ इसकी लगती है।
1: तो हमने तो देखा ना, मेरे सामने ये असाइनमेंट पे काम करता था मैम, ये जर्नलिस्ट वाला काम नहीं करता था, ही वाज ऑन असाइनमेंट कि हाँ ये कैमरा यहाँ गया कि नहीं, ये यूनिट यहाँ गई कि नहीं, ये फुटेज आई कि नहीं, ये स्क्रिप्ट आई कि नहीं, ये गेस्ट को बुलाओ वो उसको बस।
0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना त्यागपत्र सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को त्यागपत्र सौंपने का निर्णय लिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहल द्वारा के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कांग्रेस जनता पार्टी CJP ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता के बाद CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है। नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियम अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर CJP के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सदन के सोमवार के कामकाज सूची में शामिल है। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रियों का 5वां जत्था माउंट कैलाश और मानसरोवर झील की पवित्र यात्रा पूरी कर गंगटोक सुरक्षित लौट आया है। यात्रा के सफल समापन के उपलक्ष्य में सिक्किम पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने शनिवार को गंगटोक में सम्मान समारोह आयोजित किया। आंध्र प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विवेक यादव ने बताया है कि मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण में 15,22,000 मृत मतदाताओं और 14,43,000 ऐसे मतदाताओं की पहचान की गई है जो स्थायी रूप से दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में चले गए हैं। इसके अलावा 7,37,000 ऐसे मतदाता पाए गए हैं जिनका नाम एक से अधिक जगह दर्ज है। आज जारी प्रेस विज्ञप्ति में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 3,71,00,000 मतदाताओं के गणना प्रपत्र प्राप्त हुए हैं

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। रात के अंधियारे, रात के गलियारे, यादें मानो तेजी से दौड़ी आ रही हैं, एक के बाद एक, थमने का नाम ही नहीं लेती। ऐसे में आप अकेले हैं तो ये यादें बहुत सताती हैं आपको, जिनसे कभी आप आबाद थे यथार्थ में। आबाद तो हैं अभी भी ख्यालों में, ख्वाबों में, यादों में, बातों में, जहन में, दिलो दिमाग में। खैर, जब जब रातें होंगी, ये मन का अंधियारा फैलेगा तो दुखती रगों को जरूर छुएगा। ये दुखन, ये घुटन, ये चुभन, कसक तो बहुत उठेगी। दुखती रगों को छूती ये यादें टीस तो बहुत देंगी। यहां ये बात जरूर कहनी होगी कि दुख निकल जाए, बह जाए, बंट जाए, यही इसका बढ़िया मरहम है। तो चलिए यादों की इन गांठों को खोलते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ बांटते हैं और सहला लेते हैं इन दिल के जख्मों को सुहाने गीतों के जरिए। गीत सुहाने, आकाशवाणी गोल्ड 100.1, अंजलि है आपके साथ।

सोचा ही नहीं था कि जिंदगी में कभी ऐसे भी फसाने होंगे, रोना भी जरूरी होगा और आंसू भी छुपाने होंगे।

रिश्तों को निभाते निभाते, बहुत दूर आ गए रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को मिटा दिया अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं कि हम हंसते बहुत हैं, मगर हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते।

शिकायत कुछ नहीं तुझसे, शिकायत कुछ नहीं तुझसे कि तेरा साथ नहीं, बस तू खुश रहना, अपनी तो कोई बात नहीं।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज इस वक्त गीत सुहाने साथ हूं मैं आपकी अंजलि। तेरी चाहत में रुस्वा यूं सर बाजार हो गए, तेरी चाहत में रुस्वा यूं सर बाजार हो गए, हमने ही दिल खोया और हम ही गुनहगार हो गए। लेकिन इस रुसवाई में भी, इस खोने में भी, इस नुकसान में भी मीठी सी कसक है जो कभी कभी सहला जाती है और दिल के जख्मों का मरहम बन जाती है।

रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं दोस्तों, अपना दिल भी दुखाना पड़ता है किसी और की खुशी के लिए। दर्द बनकर ही रह जाओ हमारे पास, दर्द बनकर ही रह जाओ हमारे पास, सुना है दर्द बहुत दूर तक साथ देता है।

बड़े शौक से उतरे थे हम समंदरे इश्क में, एक लहर ने ऐसा डुबोया कि अब तक किनारा ना मिला।

2:10 पर एक और नए सफर पर होंगे मैं और आप साथ साथ ही आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 पर। तब तक इस गीत के बाद सुनेगा समाचार।

0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना त्याग पत्र सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को त्याग पत्र सौंपने का निर्णय लिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहल के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कांग्रेस जनता पार्टी CJP ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता के बाद CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है। नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियम अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
1: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर CJP के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सदन के सोमवार के कामकाज सूची में शामिल है। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में अधिकारियों द्वारा संचार सेवाएं लगातार ठप करने, मनमाने ढंग से लोगों को गिरफ्तार करने और उनकी आवाजाही पर कड़ी पाबंदी लगाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। चीन में ग्वांगडोंग प्रांत में शक्तिशाली तूफान नोल के तट के समीप पहुंचने पर शनिवार शाम 4 बजे तक 3,40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इसकी तीव्रता सामान्य से लेकर भीषण हो सकती है। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रियों का 5वां जत्था माउंट कैलाश और मानसरोवर झील की पवित्र यात्रा पूरी कर गैंगटोक सुरक्षित लौट आया है। यात्रा के सफल समापन के उपलक्ष्य में सिक्किम पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने शनिवार को गैंगटोक में सम्मान समारोह आयोजित किया। दिल्ली में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का काम 46 लाख का आंकड़ा पार कर गया। घर घर जाकर फॉर्म वितरण का काम भी लगभग पूरा हो गया है और तकरीबन सभी मतदाताओं को फॉर्म मिल गए हैं। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18 ओवर में 129 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज़ रेड बाय हरप्रीत कौर।

एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यहाँ पर आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz। रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। बस गीतों की कुछ ऐसी ही बयार इस वक्त बहेगी जो सुकून और शीतलता दोनों महसूस कराएगी। गीतों की मिठास, गीतों की खुशबू जब चारों तरफ फैली हो तो क्यों ना मन मदमस्त हो उठे। नदी का किनारा, प्रकृति का सहारा, चांद तारों की छांव, सभी कुछ महसूस कर पाएंगे आप यहाँ। तन स्वस्थ हो, मन खुश हो तो चारों तरफ खुशनुमा माहौल नजर आता है और ऐसे ही नजारों के बीच मधुर मीठा दिल में उतरता संगीत खामोशियों में खामोशियों से कुछ कहता। यही कहना सुनना मीठी और प्यारी यादें हमारे जहन में बसा देता है। चलिए बहुत सारी न्यारी प्यारी अजीज यादों को यहाँ बटोरते हैं, इकट्ठा करते हैं ताकि रात की तन्हाइयों में इनका साथ भी मरहम बने, दवा बने सूने अकेले दिनों का। रात सुहानी, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1। अंजलि है आपके साथ एक बार फिर से।

आज सुरमई इस वक्त ये सफर तय हो रहा है यहाँ पर आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1। अंजलि है आपके साथ। तेरे चेहरे की मुस्कान मेरी राहत बन गई है, तेरी चाहत ही मेरी सबसे खूबसूरत इबादत बन गई है। मेरी सांसों की डोर बस दो ही ख्वाहिशों पर टिकी है, सांस चले तो तुम साथ हो, सांस रुके तो तुम पास हो।

मुस्कुराने की वजह तुम हो, मेरी इन आंखों में बसी हर सुबह तुम हो। तेरी मोहब्बत में जीना सीखा, तेरे बिना इस जिंदगी का मतलब ही बदल गया।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज रात सुरमई का यह सुहाना सा सफर यहाँ पर तय कर रहे हैं। आप और मैं अंजलि है आपके साथ, और उम्मीद है कि ये गीतों की बयार जो है, कुछ ना कुछ ठंडक, कुछ ना कुछ सुकून, कुछ ना कुछ दिल की गहराइयों में ज़रूर उतर रही होगी। अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हूँ।

रात सुरमई का ये सफर आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, मैं और आप, हम दोनों मिलकर यानी कि हम सब मिलकर इस सफर को तय कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि कुछ इस रात सुरमई में शायद ऐसा तो महसूस हो ही रहा है हमें भी कि अजीब सी बेताबी है तेरे बिना, रह भी लेते हैं और रहा भी नहीं जाता।

दिल की किताब में गुलाब उनका था, दिल की किताब में गुलाब उनका था, रात की नींद में ख्वाब उनका था। कितना प्यार करते हो जब हमने पूछा, मर जाएंगे तुम्हारे बिना, ये जवाब उनका था।

इसी के साथ अंजलि आपसे ले रही है इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। FM गोल्ड का म्यूजिकल सफर जारी रहेगा ऐसे ही, और आगे के सफर में आपके हम सफर रहेंगे रूपा धवन। इस गीत के बाद सुनिएगा अंग्रेजी और हिंदी में समाचार।

0: प्रमाण है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहल के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कांग्रेस जनता पार्टी CJP ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता के बाद CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है। NEET UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियम अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
1: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर CJP के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सदन के सोमवार के कामकाज सूची में शामिल हैं। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रियों का 5वां जत्था माउंट कैलाश और मानसरोवर झील की पवित्र यात्रा पूरी कर गैंगटोक सुरक्षित लौट आया है। इस यात्रा के सफल समापन के उपलक्ष्य में सिक्किम पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने शनिवार को गैंगटोक में सम्मान समारोह आयोजित किया। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में अधिकारियों द्वारा संचार सेवाएं लगातार ठप करने, मनमाने ढंग से लोगों को गिरफ्तार करने और उनकी आवाजाही पर कड़ी पाबंदी लगाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। चीन में ग्वांगडोंग प्रांत में शक्तिशाली तूफान नोल के तट के समीप पहुंचने पर आज शाम 4 बजे तक 3,40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रनों पर सिमट गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

संगीत और संगीत की ताकत, इनसे हम सभी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। हमारे दिल की धड़कनों में बसने वाले गीत दशकों तक हमारे दिल में बसे रहते हैं, पर उनकी ताजगी आज भी वैसी है जैसी पहले के समय में थी। जी हाँ, हमराही कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 पर MHz पर। हमराही कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमराही में आज हम सुनेंगे कुछ चुनिंदा युगल गीतों को। आपकी दोस्त रूपा इस सफ़र में आपके साथ है, तो चलिए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

सफर पर अपने दिल की बातों को सुनकर सुनाकर दिल का बोझ भी हल्का हो जाता है और साथ ही साथ सफर का आनंद भी दोगुना हो जाता है। आप सुन रहे हैं हमराही कार्यक्रम, और हमराही कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन।

0: साथियों, कुछ पल की मुलाकातों से ही जिंदगी को किस तरह से खूबसूरत बनाकर किसी को जीना सिखाया जा सकता है, ये रचनाएं जब गूंजती हैं तो सहज ही जीना सिखा देती हैं। ये रचनाएं याद दिलाती हैं अनेकों शामों की, रातों की। सुरीले मधुर गीतों को साथ में हर सफर को और भी खूबसूरत बनाया जा सकता है इन गीतों के जरिए। और वो यादें जो हमारे दिल में जुड़ी हुई हैं, इन गीतों के जरिए हम उन गीतों को साथ में लेकर उन यादों को भी तरोताजा कर सकते हैं।
1: तू भी आ जा के आ गई रुत

ध्वनि तरंगों के साथ सुरीले नगमों का आनंद ले रहे हैं आप अपने मनपसंद कार्यक्रम हमराही में। हमराही में आप सुन रहे हैं कुछ चुनिंदा युगल गीतों को। तो जनाब, हाथ थाम लीजिए अपने हमराही का और खो जाइए सुरों के इस महकते गुलशन में आपकी दोस्त रूपा धवन के साथ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और जनाब हम बातें कर रहे हैं आपसे हमराही कार्यक्रम में। हमराही कार्यक्रम जहां हम सुन रहे हैं कुछ चुनिंदा युगल गीतों को और अपने दिल की बातों को एक दूसरे से बयां करते हैं, जब तो दो दिलों की मुश्किल हल हो जाती है, क्योंकि दुनिया भी उनके बारे में धीरे धीरे जान जाती है कि ये दिल के मतवाले हैं।

साथियों, गीतों में बातों का सिलसिला और सवाल जवाब का सिलसिला अगर गीत के माध्यम से ही मिल जाए तो कैसा लगता है, सोचिए तो। और सोचिए तो मत, आपको हम ये गीत सुना ही देते हैं जो अगला गीत हम शामिल कर रहे हैं। बेशकीमती गीत और जिसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी साहब ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। फिल्म है कर्ज। कर्ज फिल्म का ये गीत आप सभी के लिए किशोर साहब और लता जी की आवाज़ में।

तो देखा आपने और सुना भी, इतने प्यारे से सवाल जवाब हों तो गीत के माध्यम से वो भी, तो हर कोई क्यों ना गुनगुनाएगा। तभी तो हम कहते हैं ये गीत सदा से हमारे दिल पर रचे बसे हैं, हमारे जहन में रचे बसे हुए हैं। तो जब हमें दिल की कोई भावनाएं हिलोरे लेती हैं तो अपने आप एक अलग गीत हमारे दिमाग में गूंजता है और हम उन गीतों को लेकर साथ में चलते हैं। ऐसे ही अगर दिल की पुकार की बात की जाए तो दिल की पुकार पर आपके हम सफ़र का आना तय है और अपनी आवाज़ को आपकी आवाज़ के साथ मिलाना भी तय है।

तो दोस्तों, घड़ी की सुइयां जो कि हमारे स्टूडियो की घड़ी है, उसकी सुइयां बता रही हैं, दस्तक दे रही हैं कि आपसे विदा लेने का समय भी हो चला है। लेकिन फिलहाल हम बात करें अगर उन गीतों की, उन अनमोल और सदाबहार बेमिसाल गीतों की, जो गीत आज भी हमारे जहन में हैं। उनके शब्द रचना इतनी खूबसूरती से लिखी जाती थी, संगीत इतना बेमिसाल होता था, तभी तो वो गीत आज भी हमारे दिलो दिमाग पर बसे हुए हैं। हमराही में उन्हीं युगल गीतों को आज हमने सुना आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और आज इस सफर पर आपके साथ रही मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन। फिलहाल आपसे विदा लेने का समय आ गया है। आपसे कुछ ही देर में आप सुन पाएंगे पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में समाचार, और उसके बाद फिर से आपके साथ मुलाकात होगी कार्यक्रम अरुणिमा में। तब तक के लिए विदा दीजिए रूपा को, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सदन के सोमवार के कामकाज सूची में शामिल है। इस विधेयक का उद्देश्य

0: मांग स्वीकार कर ली है। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियम अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
1: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उन्हें धर्मेंद्र प्रधान की जगह शिक्षा मंत्री का कार्यभार सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इससे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रोमानिया की अपनी राजकीय यात्रा पूरी करने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के दौरान उन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक चर्चा की। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रियों का 5वां जत्था माउंट कैलाश और मानसरोवर झील की पवित्र यात्रा पूरी कर गैंगटोक सुरक्षित लौट आया है। यात्रा के सफल समापन के उपलक्ष्य में सिक्किम पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने शनिवार को गैंगटोक में सम्मान समारोह आयोजित किया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में अधिकारियों द्वारा संचार सेवाएं लगातार ठप करने, मनमाने ढंग से लोगों को गिरफ्तार करने और उनकी आवाजाही पर कड़ी पाबंदी लगाने पर गहरी चिंता जताई है। फ्रांस और स्पेन के जंगलों में कई दिनों से लगी आग से 2.5 लाख से अधिक लोगों को पलायन करना पड़ा है। तेज हवा और अधिक ताप से आग पर काबू पाने के प्रयासों में बाधा आ रही है। जंगल में लगी आग के कारण स्पेन में आपात स्थिति घोषित कर दी गई है। मौसम में बदलाव से राजधानी मैड्रिड के बाहर आग बुझाने में कर्मचारियों को मदद मिली है। मैड्रिड समुदाय की अध्यक्ष इसाबेल डियाज आयुसो ने इसे क्षेत्र में इतिहास की सबसे भयावह अग्नि घटना बताया है। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रनों से हरा दिया है। जीत के लिए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने मस्कट में आयोजित FTH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 1 के मुकाबले 3 गोल से हराकर चैंपियनशिप जीत ली है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Union Education Minister Dharmendra Pradhan has resigned and tendered his resignation to Prime Minister Narendra Modi. In a social media post, Mr. Pradhan said that he was pained by the prevailing situation following students' protests during the past 10 days, saying that it is not a matter of prestige for him. He said he had taken into account the situation at Jantar Mantar in New Delhi, as well as the situation across the country. Mr. Pradhan also expressed his gratitude to the Prime Minister for his guidance, trust and constant support. He said the service to the nation is the highest priority of his life and he will remain forever dedicated to it. Mr. Pradhan said, from day one he took full responsibility and never turned away from the situation. He said the NEET UG results declared on July 16 were satisfactory, with many meritorious students from underprivileged backgrounds achieving success. He also said, however, even during this time, individuals holding responsible positions attempted to create obstacles and misled students, calling it an act that caused him deep anguish. Union Minister Prahlad Joshi will be the new Education Minister following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi has been assigned the charge of the Ministry of Education in

तो लीजिए जनाब, अपने वादे के मुताबिक हम फिर से आपके साथ जुड़ चुके हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां आप सुन रहे हैं इस वक्त कार्यक्रम अरुणिमा और

अरुणिमा में आपके साथ हूँ मैं आप ही की दोस्त रूपा धवन। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार और आइए सुनते हैं पहला गीत आज की अरुणिमा का।

जी हाँ, जब मुलाकात होने पर दिल में बेकरारी सी छा जाती है तो दिल कुछ ना कुछ तो कहने के लिए तड़प ही उठता है। जी हाँ, जो हमारे दिल में बात होती है उसे जबान पर लाना भी ज़रूरी हो जाता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है 4:17 और 47 सेकेंड। आप हैं रूपा के साथ। और साथियों, जब कोई साथ में नहीं होता ना, तो हमें इंतज़ार होता है कि कोई तो शायद आने वाला है या अभी रास्ते में है, उससे मुलाकात तो ज़रूर हो जाएगी। लेकिन कभी कभी ये हमारा भ्रम भी साबित होता है। पत्थर की सनम का यह खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए लता जी की आवाज़ में

कभी कभी ये इंतज़ार की घड़ियाँ बहुत लंबी हो जाती हैं और इस इंतज़ार में दिल संभाले संभलता नहीं और भावनाओं का एक गहरा समंदर जो होता है वो दिल में हिलोरे लेने लगता है।

तो जनाब, जब इंतज़ार की घड़ियां लंबी हो जाती हैं तब हमारे दिल में कई भावनाएं हिलोरे लेने लगती हैं और ज़िंदगी का उतार चढ़ाव जो है ना, वो अक्सर हमारे दिमाग में आता और जाता रहता है कि हमारी ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं हुआ, कौन से सुख के दिन थे, कौन से दुख के दिन थे। क्योंकि ये ज़िंदगी जो है ना जनाब, ये कई रंग दिखाती है, कभी रुलाती है तो कभी हंसाती है। जो खामोशी से सह गया वो निखर गया, जो भावनाओं में बह गया वो बिखर गया।

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आप हैं अरुणिमा कार्यक्रम में अपने ही दोस्त रूपा के साथ और हम बात कर रहे थे जिंदगी के रंगों की। तो जिंदगी कभी हंसने का नाम है, कभी गाने का नाम है, तो कभी हमारे ऊपर गम के बादल भी छा जाते हैं। जिंदगी में सुख और दुख का होना तो लाजमी है, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम जिंदगी को किस तरीके से निभाते हैं,

साथियों, कभी कभी हम मुश्किल हालातों के संभलने या किसी अपने का इंतजार करते हैं कि उन हालातों में हमारा वो साथ देंगे, और बस यही इंतजार काफी लंबा हो जाता है। कभी कभी अपनी राहें जो होती हैं ना, वो खुद बनानी पड़ती हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी की उलझनों को खुद ही समझाना होगा, जिंदगी की उलझनों को खुद ही समझाना होगा, बंद दरवाजों पर अपना ही मुक्का आजमाना होगा। असली नकली फिल्म का ये गीत आप सभी के लिए लता जी के स्वर में।

दूसरों के इशारों पर चलने से अच्छा है अगर अपनी पहचान बनानी है तो हमें अपना रास्ता भी, बल्कि नया रास्ता खुद से ही बनाना होगा। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अपनी दोस्त रूपा के साथ। कार्यक्रम है अरुणिमा और इस वक्त समय हुआ है हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 4:43 और 36 सेकंड। आप हैं अपनी दोस्त रूपा के साथ।

चाहे इंसान का मन हो या लोहे का ढांचा, या फिर मशीनों के सीखने का कोई सांचा, जो हिम्मत को बढ़ाए, जो गिरकर उठना सिखाए, पुनर्बलन ही जीवन को सही दिशा मिलाए। क्योंकि कहते हैं ना, जिसने जिंदगी को देख लिया उसने सब कुछ देख लिया।

साथियों, सुख की नींद और सपने ये दोनों ही जरूरी हैं। जी हाँ, जरूरी हैं सबके लिए, पर अपने सपनों को सच करना है तो इन पंक्तियों को हमें सार्थक करना होगा। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं।

0: गुजर रही है उम्र पर जीना भी बाकी है, जिन हालातों ने पटका है जमीन पर उन्हें जवाब देना बाकी है। चल रहा हूँ मंजिल के सफर में, मंजिल को पाना अभी बाकी है। कर लेने दो लोगों को चर्चे मेरी हार के, कामयाबी का शोर मचाना अभी बाकी है। फिलहाल इतना ही आज की अरुणिमा में। अब से आप कुछ देर में सुनेंगे समाचार और फिर से मुलाकात होगी आपसे आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इस कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आयोजन पिछले महीने की 4 से 30 तारीख तक दो चरणों में किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग

0: मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोष कांकरो जनता पार्टी सीजीपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजीपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियम अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
1: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उन्हें धर्मेंद्र प्रधान की जगह शिक्षा मंत्री का कार्यभार सौंपा गया है। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रियों का पांचवा जत्था माउंट कैलाश और मानसरोवर झील की पवित्र यात्रा पूरी कर गंगटोक सुरक्षित लौट आया है। यात्रा के सफल समापन के उपलक्ष्य में सिक्किम पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने शनिवार को गंगटोक में सम्मान समारोह आयोजित किया। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में अधिकारियों द्वारा संचार सेवाएं लगातार ठप करने, मनमाने ढंग से लोगों को गिरफ्तार करने और उनकी आवाजाही पर कड़ी पाबंदी लगाने पर गहरी चिंता जताई। भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने मस्कट में आयोजित एफआईएच यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 1-3 से हराकर चैंपियनशिप जीत ली है। और हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रनों पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

चहक उठी नब में चिड़िया, भीनी भीनी चली हवा, जाग उठा है कोना कोना, फैला कुदरत का जादू नया। सुनहरे किरणों ने आकर अंधियारे को दूर भगाया, फूलों की पंखुड़ियों ने भी हंसकर सबको गले लगाया। जी हाँ, आज का एक नया दिन, एक नई अध्याय की शुरुआत, हमारे जीवन का वो नया अध्याय जिसे आज हमने पूरी ऊर्जा के साथ अपने दिल के मन के उद्गारों को विभिन्न रंगों से इसको भरना है। तो चलिए आज का आगाज करते हैं, अध्याय की शुरुआत करते हैं ईश्वर के नाम।

के साथ, उन्हें धन्यवाद देने के साथ। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर भोर सुहानी लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन। सुप्रभात, नमस्कार।

ईश्वर ने हमें एक और नई सुबह देखने को दी, जिसका हम आज दिल से उन्हें धन्यवाद करते हैं। क्योंकि कल क्या हो, आज क्या हो, किस समय किसके साथ क्या हो, किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ ईश्वर जानता है। और आज का दिन जो एक ऊर्जावान दिन बनकर हमारे साथ आया है, हमें इस दिन को और भी उत्साह के साथ आगे जिंदगी की राहों में बढ़ते जाना है, उन राहों पर जिधर हमारी जिंदगी के रास्ते चलते हैं। क्यों ना उन जिंदगी के रास्तों में कुछ और अपनी हिम्मत के साथ, अपने सब्र के साथ चलकर खुद तो खुश रहा ही जाए, दूसरों को भी क्यों ना हम खुश रखें। फिलहाल आप चल रहे हैं हमारे साथ और हम चल रहे हैं आपके साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। भोर सुहानी लेकर आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त रूपा।

जिंदगी के रास्ते हमें पुकार रहे हैं, आकाश की ऊंचाइयां हमें बाहें फैलाकर बुला रही हैं कि आज अपने मन की सारी दुविधाओं को पीछे छोड़ दो, मन में जितने भी नकारात्मक विचार हैं उन्हें कहीं दूर पटक दो और सकारात्मक विचारों से अपनी जिंदगी को और भी रोशन करो। तो क्यों ना आज एक खुले आकाश में छोटे से एक उस पंछी की तरह उड़कर देखें, अपने मन में वो सकारात्मक हिलोरे लाएं जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे।